फिरौन ने कहा, क्या हमने तुझको अपने हां बच्चा सा नहीं पाला था? तूने अपनी उम्र के कई साल हमारे हां गुजारे और उसके बाद कर गया जो कुछ कर गया। तू बड़ा एहसान फरामोश आदमी है। मूसा ने जवाब दिया, उस वक्त वो काम मैंने नादानस्तगी में कर दिया था, फिर मैं तुम्हारे खौफ से भाग गया। उसके बाद मेरे रब ने मुझको हुक्म अता किया और मुझे रसूलों में शामिल फरमा लिया। रहा तेरा एहसान जो तूने मुझ पर जताया है, तो उसकी हकीकत यह है कि तूने बनी इसराइल को गुलाम बना लिया था। फिरौन ने कहा, और ये रब्बुल आलमीन क्या होता है? मूसा ने जवाब दिया, आसमानों और जमीन का रब और उन सब चीजों का रब जो आसमान और जमीन के दरमियान है, अगर तुम यकीन लाने वाले हो। फिरौन ने अपने गिर्दोपेश के लोगों से कहा, सुनते हो? मूसा ने कहा, तुम्हारा रब भी और तुम्हारे उन आबाओ अजदाद का रब भी जो गुजर चुके हैं। फिरौन ने हाजरीन से कहा, तुम्हारे ये रसूल साहब जो तुम्हारी तरफ भेजे गए हैं, बिल्कुल ही पागल मालूम होते हैं। मूसा ने कहा, मशरक़ो मगरिब और जो कुछ उनके दरमियान है, सब का रब, अगर आप लोग कुछ अक्ल रखते हैं। फिरौन ने कहा, अगर तूने मेरे सिवा किसी और को माबूद माना, तो तुझे भी उन लोगों में शामिल कर दूंगा जो कैद खानों में पड़े सड़ रहे हैं। मूसा ने कहा, अगरचे मैं ले आऊं तेरे सामने एक सरीह चीज भी। फिरौन ने कहा, अच्छा तो ले आ अगर तू सच्चा है। उसकी जबान से ये बात निकलते ही मूसा ने अपना आसा फेंका और यकायक वो एक सरीह अजदहा था। फिर उसने अपना हाथ बगल से खींचा और वो सब देखने वालों के सामने चमक रहा था।

हमने मूसा को वही भेजी कि रातों रात मेरे बंदों को लेकर निकल जाओ, तुम्हारा पीछा किया जाएगा। इस पर फिरौन ने फौजें जमा करने के लिए शहरों में नकीब भेज दिए और कहला भेजा कि ये कुछ मुट्ठी भर लोग हैं और इन्होंने हमको बहुत नाराज किया है, और हम एक ऐसी जमात हैं जिसका शेवा हर वक्त चौकन्ना रहना है। इस तरह हम उन्हें उनके बागों और चश्मों और खजानों और उनकी बेहतरीन कयामगाहों से निकाल लाए। ये तो हुआ उनके साथ, और दूसरी तरफ बनी इसराइल को हमने इन सब चीजों का वारिस कर दिया। सुबह होते ये लोग उनके ताकुब में चल पड़े। जब दोनों ग्रोहों का आमना सामना हुआ तो मूसा के साथ ही चीख उठे कि हम तो पकड़े गए। मूसा ने कहा, हरगिज नहीं, मेरे साथ मेरा रब है, वो जरूर मेरी रहनुमाई फरमाएगा। हमने मूसा को वही के जरिए से हुक्म दिया कि मार अपना आसा समंदर पर। यकायक समंदर फट गया और उसका हर टुकड़ा एक अजीम शान पहाड़ की तरह हो गया। उसी जगह हम

और इन्हें इब्राहिम का किस्सा सुनाओ, जबकि उसने अपने बाप और अपनी कौम से पूछा था कि ये क्या चीजें हैं जिनको तुम पूछते हो। उन्होंने जवाब दिया, कुछ बुत हैं जिनकी हम पूजा करते हैं और इन्हीं की सेवा में हम लगे रहते हैं। उसने पूछा, क्या ये तुम्हारी सुनते हैं जब तुम उन्हें पुकारते हो, या ये तुम्हें कुछ नफा या नुकसान पहुंचाते हैं? उन्होंने जवाब दिया, नहीं, बल्कि हमने अपने बाप दादा को ऐसा ही करते पाया है। इस पर इब्राहिम ने कहा, कभी तुमने आंखें खोलकर उन चीजों को देखा जिनकी बंदगी तुम और तुम्हारे पिछले बाप दादा बजा लाते रहे? मेरे तो ये सब दुश्मन हैं, बजुज एक रब्बुल आलमीन के, जिसने मुझे पैदा किया, फिर वही मेरी रहनुमाई फरमाता है, जो मुझे खिलाता और पिलाता है, और जब बीमार हो जाता हूं तो वही मुझे शिफा देता है, जो मुझे मौत देगा और फिर दोबारा मुझको जिंदगी बख्शेगा, और जिससे मैं उम्मीद रखता हूं कि रोजे जजा वो मेरी खता माफ फरमा देगा। इसके बाद इब्राहिम ने दुआ की, ऐ मेरे रब, मुझे हुक्म अता कर और मुझको सालेहों के साथ मिला, और बाद के आने वालों में मुझको सच्ची नाम वरी अता कर, और मुझे जन्नत नाइम के वारिसों में शामिल फरमा, और मेरे बाप को माफ कर दे कि बेशक वो गुमराह लोगों में से है, और मुझे उस दिन रुसवा न कर जबकि सब लोग जिंदा करके उठाए जाएंगे, जबकि न माल कोई फायदा देगा न औलाद, बजुज इसके कि कोई शख्स कल्बे सलीम लिए हुए अल्लाह के हुजूर हाजिर हो।

0: समूद ने रसूलों को जुटलाया। याद करो जबकि उनके भाई सालेह ने उनसे कहा, क्या तुम डरते नहीं, मैं तुम्हारे लिए एक अमानतदार रसूल हूं, लिहाजा तुम अल्लाह से डरो और मेरी इताअत करो, मैं इस काम पर तुमसे किसी अजर का तालिब नहीं हूं, मेरा अजर तो रब्बुल आलमीन के जिम्मे है। क्या तुम उन सब चीजों के दरमियान जो यहां हैं बस यूं ही इत्मीनान से रहने दिए जाओगे? इन बागों और चश्मों में, इन खेतों और नखलिस्तानों में जिनके खोशे रस भरे हैं, तुम पहाड़ खोद खोद कर फखरिया उनमें इमारतें बनाते हो, अल्लाह से डरो और मेरी इताअत करो। उन बेलगाम लोगों की इताअत न करो जो जमीन में फसाद बरपा करते हैं और कोई इस्लाह नहीं करते। उन्होंने जवाब दिया, तू महज एक सहरज़दा आदमी है, तू हम जैसे एक इंसान के सिवा और क्या है, ला कोई निशानी अगर तू सच्चा है। सालेह ने कहा, ये ऊंटनी है, एक दिन इसके पीने का है और एक दिन तुम सबके पानी लेने का, इसको हर गिज न छेड़ना वरना एक बड़े दिन का आजाब तुमको आ लेगा। मगर उन्होंने उसकी कोंचे काट दी और आखिरकार पछताते रह गए, अजाब ने उन्हें आ लिया। यकीनन इसमें एक निशानी है मगर इनमें से अक्सर मानने वाले नहीं, और हकीकत यह है कि तेरा रब जबरदस्त भी है और रहीम भी। सदकल्लाहुल अज़ीम।
1: उर्दू रेडियो FM 107 के अपने तमाम सामीन को मुत्तला करता है कि दोहा और उसके निवाही इलाकों में फजर की अजान का वक्त हो गया है। अल्लाह

0: دن میں 100 مرتبہ یہ استغفار پڑھا جائے، روایت ہے بخاری کی۔
1: اللہم صلی

ने कभी ये दावा नहीं किया था कि वो कोई फरिश्ता है। उन्होंने ये भी नहीं कहा कि उनके पास दुनिया के खजाने हैं। उन्होंने ये दावा भी नहीं किया कि वो गैब का हर इल्म रखते हैं। वो अल्लाह के बंदे और उसके रसूल थे। उनका काम पैगाम पहुंचाना था और यही उनकी अजमत थी। यहाँ एक बहुत अहम सबक है। किसी शख्स की बात को सिर्फ इसलिए रद्द नहीं करना चाहिए कि वो हमारी तवक्को के मुताबिक नहीं। आज भी हम कभी कभी सच को देखने से पहले ये देखते हैं कि बात कहने वाला कौन है, उसका ओहदा क्या है, उसके पास कितना पैसा है, वो किस खानदान से ताल्लुक रखता है, उसके कितने फॉलोअर्स हैं। लेकिन दीन हमें ये सिखाता है कि हक को हक होने की वजह से पहचाना जाए, ना कि इसलिए कि उसे कहने वाला कोई मशहूर बंदा हो। हजरत नूह अलैहि सलाम की कौम के 62 लोग एक और भी एतराज करते थे। वो हजरत नूह अलैहि सलाम के साथ मौजूद गरीब और कमजोर लोगों को देखते और कहते, क्या हम ऐसे लोगों के साथ बैठे जो इतने गरीब हो? यानी उनके नजदीक इंसान की कदर उनके ईमान और किरदार से नहीं बल्कि उनकी समाजी हैसियत से थी। लेकिन हजरत नूह अलैहि सलाम ने ईमान वालों को सिर्फ इसलिए नहीं छोड़ा कि ताकतवर लोग उनसे नाराज थे। ये बहुत बड़ा उसूल है। अल्लाह के नजदीक इंसान की कदर उसकी दौलत, लिबास, ओहदे या शोहरत से नहीं होती। ईमान और तकवा असल मेयार है। जरा आज की दुनिया को देखिए। कभी स्कूल में बच्चे किसी दूसरे बच्चों को इसलिए कम समझते हैं कि उसके पास महंगा फोन नहीं। कभी माशरे में किसी शख्स को इसलिए ज्यादा अहमियत दी जाती है कि उसके पास दौलत है। कभी किसी की बात सिर्फ इसलिए ज्यादा सुनी जाती है कि उसका ओहदा बड़ा है। हजरत नूह अलैहि सलाम की कौम का रवैया हमें खबरदार करता है, हक को स्टेटस से मत नापो और इंसान को भी स्टेटस से मत नापो। अब हम हजरत नूह अलैहि सलाम की दास्तान के एक ऐसे हिस्से तक पहुंचे हैं जिसे सुनकर इंसान वाकई हैरान रह जाता है। कुरान करीम सूरह अनकबूत में फरमाता है कि हजरत नूह अलैहि सलाम अपनी कौम में 1000 से 50 साल कम रहे, यानी 950 साल। कुरान का ये बयान हमारे लिए एक बहुत बड़ा सबक है। 950 साल। हम अपनी जिंदगी में चंद साल की मुश्किल से थक जाते हैं। एक शख्स को एक इम्तिहान में नाकामी हो जाए तो वो कहता है मुझसे नहीं हो पाएगा। किसी कारोबार में चंद माह नुकसान हो जाए तो इंसान मायूस हो जाता है। किसी रिश्ते में कुछ मुश्किलात आ जाएं तो हम सोचते हैं कि अब कुछ बेहतर नहीं हो सकता। और हजरत नूह अलैहि सलाम वो सदियों तक अपनी कौम को अल्लाह की तरफ बुलाते रहे। कुरान हमें भी ये बताता है कि उनकी दावत के बावजूद उनकी कौम की बड़ी तादाद ने इनकार किया। तो फिर हजरत नूह अलैहि सलाम की कामयाबी क्या थी? ये सवाल यकीनन बहुत अहम है। क्या कामयाबी सिर्फ ये है कि आपके साथ हजारों लोग खड़े हों? नहीं, कभी कामयाबी ये होती है कि आप हक पर कायम रहें, चाहे आपके साथ बहुत कम लोग हों। हजरत नूह अलैहि सलाम की कामयाबी ये थी कि उन्होंने अल्लाह की जिम्मेदारी पूरी की, उन्होंने पैगाम पहुंचाया, उन्होंने कोशिश की और उन्होंने सबर किया। नतीजा अल्लाह के हाथ में छोड़ दिया। यही सबर है। हजरत नूह अलैहि सलाम ने अपनी कौम को सिर्फ अजाब से नहीं डराया, उन्होंने उम्मीद भी दिलाई। उन्होंने फरमाया अपने रब से मगफरत तलब करो, बेशक वो बहुत बख्शने वाला है। फिर उन्होंने बताया कि इस्तग़फार और अल्लाह की तरफ रुजू के नतीजे में अल्लाह आसमान से बारिश भेज सकता है, माल और औलाद में इजाफा दे सकता है और बागात और नहरें अता कर सकता है। ये आयात हमें एक बहुत खूबसूरत तवाज़ुन सिखाती हैं। इस्लाम में सिर्फ खौफ नहीं, उम्मीद भी है।

दोस्तों, कतर एक ऐसा मुल्क है जहां वक्त के साथ तेजी से नए स्टाइल्स को अडॉप्ट करने का सिलसिला या यूं कहें कि ट्रेंड बढ़ रहा है और आर्टिस्ट नए नजरिए और सोच के साथ आने वाले मुस्तकबिल की तस्वीर खींचने का काम बखूबी कर रहे हैं। जी हाँ, आज हम बात करेंगे आर्ट कॉर्नर शो में एक ऐसी आर्टिस्ट की जो कि आर्ट, फिल्म और राइटिंग को अपनी पर्सनालिटी में ऐसे एम्बेड करती है कि आप इनके परफेक्शन की तारीफ किए बिना रह नहीं पाएंगे। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूँ नाजिया एफएम 107 से एंड वेलकम टू द शो कॉल्ड आर्ट कॉर्नर। इस शो में हम लोकल और इंटरनेशनल आर्टिस्ट की आर्टिस्टिक जर्नी को एक्सप्लोर करते हैं। दोस्तों, आज का ये एपिसोड उस पर्सनालिटी के नाम है

0: इसीलिए सोफिया की पर्सनालिटी में वेस्टर्न कल्चर और कतरी ट्रेडिशंस का ब्लेंड साफ नजर आता है। सोफिया का तालीमी सफर भी काफी इम्प्रेसिव है। आपने अमेरिकन यूनिवर्सिटी कायरो से कंपैरेटिव लिटरेचर में तालीम हासिल की, वहाँ उन्होंने ओरल और विजुअल कल्चर की भी डीप स्टडी की, जो उनकी सोच और तसव्वुर पर पॉजिटिव असर डालने में यूजफुल रही। सोफिया ने स्टडीज कंप्लीट करने के बाद कतर का रुख किया और सोफिया ने मथाफ कंटेम्प्रेरी आर्ट म्यूजियम की बुनियाद रखने का काम स्टार्ट किया। आपने अपनी रीच को एक्सटेंड किया और उन आर्टिस्ट से इंटरैक्ट किया जिनसे इन्हें बहुत कुछ सीखने और अडॉप्ट करने को मिला। एक बार सोफिया ने अपने इंटरव्यू में कहा कि मैं सीखने को अपना पहला पैशन मानती हूँ। ये लर्निंग प्रोसेस मुझे हर तरह से स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है। बेशक दोस्तों, सोफिया का काम उनकी खुद से पहचान और उनकी आर्ट से मोहब्बत को बयां करता है। सोफिया की वर्सटैलिटी को उनकी फिल्म मेकिंग टेक्निक्स के जरिए बखूबी मापा जा सकता है। सोफिया देखा जाए तो सिर्फ एक फिल्म मेकर नहीं है, बल्कि वो एक ऐसी आवाज भी है जो इंक्लूसिव स्टोरी टेलिंग के लिए काम करती है। उनका काम इस बात पर रोशनी डालता है कि कैसे नई टेक्नोलॉजी और आर्ट दोनों मिलकर नई सोच और नए नैरेटिव को माशरे में उजागर कर सकते हैं। सोफिया के काम का असर कतर तक ही महदूद नहीं है, बल्कि ये दुनिया भर में फेस्टिवल्स और एग्जीबिशंस के जरिए वॉल्यूम्स में बोलता है। सोफिया ने पेरिस, वेनिस, बर्लिन जैसे कंट्रीज में बड़े स्केल पर अपने वर्क को शोकेस किया, वेयर शी रिसीव्स एक्लेड्स। जी हाँ, इनकी फिल्म बरीटा, वेल, इनिशियली इट शेल्फ ड्यू टू लीगल रीजंस, बट लेटर ऑन 2024 में राइट्स के परचेज कर लिए गए थे। देखा जाए तो इस फिल्म ने काफी सुर्खियां बटोरी। 2020 में अलमारिया ने प्रोड्यूस और को रोट किया ब्रिटिश मिनी सीरीज को कॉल्ड लिटिल बर्ड। इस सीरीज को भी काफी पसंद किया गया। मारिया ने गल्फ फ्यूचरिज्म को क्वाइंड और डेवलप किया। ये टर्म पर्शियन गल्फ रीजन के यूनिक ब्लेंड को नुमाया करती है। गल्फ फ्यूचरिज्म का मतलब है गल्फ का मुस्तकबिल। ये कई गल्फ रीजन के रैपिड मॉडर्नाइजेशन को उजागर करता है। गल्फ फ्यूचरिज्म के जरिए अलमारिया ने वेस्टर्न सोसाइटीज के मुस्तकबिल की झलक को नया नजरिया दिया और बताया कि गल्फ रीजन कैसे दुनिया भर की तब्दीलियों का मरकज बन चुका है। इन कंट्रीज की तरक्की, पेट्रो कैपिटलिस्ट इकोनॉमी और वो नए टावर्स जैसे बिल्डिंग्स एक नई तस्वीर को हम सबके सामने पेश करता है। गल्फ फ्यूचरिज्म की ये पहली और अहम बुनियाद भी है। सोफिया का कंट्रीब्यूशन ना सिर्फ इनोवेटिव फिल्म्स तक ही सीमित है, बल्कि उनकी लिखी हुई किताबें और एसेज भी एक अहम हिस्सा सोसाइटी में रखते हैं। जी हाँ, सोफिया ने कई किताबें लिखी, कई बुक्स लिखी हैं, कई एसेज लिखे हैं और साथ ही मैं आपको बताना चाहूंगी कि कई फिल्म्स भी लिखी हैं, जिनमें नुमाया तौर पर हम जिक्र कर सकते हैं द वॉचर का, मैजिकल स्लेट का और मिरर कुकीज का। सोफिया की राइटिंग सोची समझी व्यू पॉइंट और कंटेम्प्रेरी इश्यूज के बारे में उनकी सोच को बयां करती है। आप अपने आर्ट फॉर्म के जरिए कतरी कल्चर को सेलिब्रेट करती हैं और ये इजहार माशरे को बेहतर बनाता भी है। अलमारिया की कहानियों में एक विजन है और एक ऐसी आवाज है जो मुस्तकबिल की पहचान बनने की सलाहियत रखती है। अलमारिया का कॉन्ट्रीब्यूशन सारी दुनिया के लिए एक नए सफर की शुरुआत है। क्या आप तैयार हैं इस सफर का हिस्सा बनने के लिए? चलिए इसी सोच के साथ आपसे इजाजत लेंगे। नेक्स्ट एपिसोड में नए आर्टिस्ट के साथ आपकी दिलचस्प मुलाकात करवाएंगे। अभी के लिए शकीब अहमद और नासिया हम दोनों को इजाजत दें और सुनते रहें FM 107 दिल से देसी।
1: कतर का पहला देसी रेडियो स्टेशन FM 107 दिल से देसी।

0: आपने सुना हमें ऑन एयर, नाउ फॉलो अस ऑन फेसबुक एंड इंस्टाग्राम एट FM 107 कतर। दिल से देसी।
1: कुछ ऐसी हस्तियां होती हैं जिनका काम बोलता है, उनकी मेहनत, उनकी लगन हजारों लाखों को इंस्पायर करती है। पर ऊंची कुर्सी ये पोजीशन के पीछे एक शख्स होता है जिसकी कहानी लोग जानना चाहते हैं, और वही कहानी हम पहुंचाएंगे आप। ये बातें होंगी थोड़ी सी प्रोफेशनल और बहुत सारी पर्सनल, तो सुनिएगा जरूर। एम्बेसडर ऑफ द मंथ आरजे नाजिया के साथ हर महीने के पहले जुमेरात को शाम 5 बजे से सिर्फ FM 107 पर। दिल से देसी।
2: Qatar's most heard radio station, FM 107. FM 107. Dil se Desi.
3: Samin, ek nihayat baligh aur mukhtasar arabi kahawat hai. Hamiha, haramiha. Pehle lafz mein ra nahi aur dusre lafz mein ra hai. Hamiha, haramiha. Yani jis par hifazat ki zimmedari ho, wahi chor nikal aaye. Ye kahawat tab kahi jati hai jab kisi par aitmad karke amanat ya hifazat ki zimmedari di jati hai. मगर वही शख्स खयानत कर बैठे। ये बदतरीन सूरत है कि मुहाफिज ही लुटेरा बन जाए। कहते हैं ना, रखवाला ही लुटेरा, मतलब वही शख्स जिस पर भरोसा था नुकसान पहुंचाए। ये कहावत हमें खबरदार करती है कि अमानतदारी ही सबसे बड़ी जिम्मेदारी है। अगर मुहाफिज ही खायन बन जाए तो मुआशरे की बुनियादें हिल जाती है। इसलिए असल इज्जत उसी की है जो एतमाद पर पूरा उतरे, न कि वो जिसके बारे में कहा जाए हामीहा haramiha.
2: Maximum music, maximum fun
0: on FM 107. Dil se desi.

0: आप सुन रहे हैं FM 107 दिल से देसी।
1: अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुह। सामिन किराम, खुश आमदीद आपको आपके पसंदीदा प्रोग्राम सुनना ऑफ द डे में। हम में से बहुत से लोग ये ख्वाहिश रखते हैं कि हमारा ताल्लुक दीन इस्लाम से मजीद मजबूत हो, हमारा ईमान बढ़े और हमारी जिंदगी अल्लाह ताला और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत से भर जाए। अक्सर हम ये समझते हैं कि इसके लिए शायद बहुत बड़े बड़े आमाल, लंबी इबादत या मुश्किल मराहिल दरकार हैं। हालांकि कभी कभी अल्लाह के करीब होने का सबसे आसान रास्ता उन्हीं छोटी छोटी सुन्नतों में पोशीदा होता है जिन्हें हम रोज़मर्रा ज़िंदगी में आसानी से अपना सकते हैं। माहिरीन नफ्सियात भी कहते हैं कि बड़ी तब्दीली हमेशा छोटे कदमों से शुरू होती है। इसीलिए इस प्रोग्राम में हम ऐसी आसान और मुख्तसर सुन्नतों का जिक्र करेंगे जो सिर्फ चंद सेकंड या एक मिनट लेती हैं, लेकिन इंसान की रूह, आदतों और अल्लाह से ताल्लुक को मजबूत बनाने में बहुत बड़ा किरदार अदा करती हैं। तो आइए आज हम मिलकर एक और खूबसूरत सुन्नत सीखते हैं और अपनी जिंदगी को सुन्नत नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रोशनी से मुनव्वर करते हैं। समीन, मुसलमान की पूरी जिंदगी विलादत से लेकर वफात तक सुन्नत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साये में ढली हुई है। जैसे कि अल्लाह सुबहानहु व तआला का इरशाद है, वमन युतिअर रसूल फकद अता अल्लाह, यानी जिसने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत की उसने दरअसल अल्लाह की इताअत की। इसीलिए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों पर अमल पैरा होना ये एक इबादत होने के साथ साथ मुसलमान के लिए मुकम्मल तर्ज हयात भी है। सामिन, जब हमारा छोटा नन्ना मेहमान दुनिया में आता है तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वालिदैन को हिदायत दी कि बच्चे के दाएं कान में अजान दी जाए, और ये हिदायत हमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अमल से मिलती है। तिर्मिजी की रिवायत है, हजरत अबू राफे बयान करते हैं, मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हसन बिन अली रज़ियल्लाहु

0: पहला देसी रेडियो स्टेशन FM 107, दिल से देसी।
1: कतर नेशनल हेल्थ स्ट्रेटजी, हेल्थ फॉर ऑल। सुनिए डॉक्टर फौजिया शफीक के साथ FM 107, दिल से देसी।
2: अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह, हेल्थ फॉर ऑल में खुश आमदीद। खवातीन के लिए सेहतमंद रहना बहुत ही जरूरी है, मगर एक बड़ा मसला ये है कि पहले तो वो अपने किसी भी मसले की जो तशखीस है उसमें देर कर देती हैं, और जब फिर इलाज करती हैं या कराती हैं तो भी डॉक्टर की हिदायत पर पूरी तरह अमल नहीं कर पाती, और इन्हें ये फिक्र भी रहती है कि उनके घर और बच्चों की देखभाल कौन करेगा। बहरहाल एक बहुत ही माहिर जो दिल के अमराज के माहिर हैं, कार्डियोलॉजिस्ट हैं, उनका कहना यह है कि ख्वातीन अपना केस खुद

0: का पहला देसी रेडियो स्टेशन FM 107, दिल से देसी।
1: कतर नेशनल हेल्थ स्ट्रेटजी, हेल्थ फॉर ऑल। सुनिए डॉक्टर फौजिया शफीक के साथ FM 107, दिल से देसी।
2: अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। लिसनर्स, बुजुर्ग हमारे घर का चिराग हैं और इनकी सेहत हमारी जिम्मेदारी है। आइए आज हम बात करते हैं कि किस तरह से हमें अपने घर के चिराग को ज्यादा बेहतर करना है, उसमें ज्यादा रोशनी जो है वो हमें लानी है। तो बढ़ती हुई उम्र में हड्डियां और जो मसल्स हैं वो कमजोर हो जाते हैं, इसलिए हल्की जो वर्जिश है वो बहुत जरूरी है। और इसके अलावा हम कहेंगे कि सबसे पहले ग़िज़ा कौन सी लेनी चाहिए, यानी मुतवाजन ग़िज़ा, बैलेंस डाइट बहुत जरूरी है। इसमें कैल्शियम हो, दूध, सब्जियां और फल देना उन्हें बेहद जरूरी है। जो आपके घर में बुजुर्ग अफराद हैं उनका बाकायदा मेडिकल चेकअप और ब्लड प्रेशर, शुगर कंट्रोल, ये सब आपने देखना है, मॉनिटर करना है। वैसे तो हर एक को ही अपना मेडिकल चेकअप करवाना जरूरी है, मगर ये फिर हमारी जिम्मेदारी हो जाती है कि हम अपने जो बुजुर्ग अफराद हैं, हमारे घर में हैं, हमारे पेरेंट्स हैं, उनका बाकायदा मेडिकल चेकअप करवाएं और उसमें देखें कि उनका ब्लड प्रेशर कैसा है, ब्लड शुगर जो है वो कंट्रोल है या नहीं है। और एक और बात कि अपने बुजुर्ग जो अफराद हैं, हमारे माँ बाप हैं, उनको तनहाई से बचाना और उनके साथ वक्त गुजारना बहुत जरूरी है। एक शख्स से एक मिसाल आपके साथ शेयर करना चाहूँगी कि वो हमेशा बहुत ही तन्हा महसूस करते थे और सेहत भी उनकी गिरती जा रही थी, लेकिन जब उनके जो पोते पोतियाँ रोज़ाना उनके साथ बैठने लगे, कहानियाँ सुनने लगे, तो उनकी जो तबीयत है उनकी सेहत में हैरत अंगेज बेहतरी आ गई। तो लिसनर्स, बुजुर्गों की खिदमत सिर्फ अखलाकी फर्ज नहीं है बल्कि हमारी अपनी भलाई है, तो आइए हम उनका सहारा बने। कल हमें भी सहारा चाहिए होगा और ख़ास तौर पर सेहत का हवाला जो है वो बहुत अहम है। उनकी सेहत का ख्याल रखिए, उनके खाने पीने का ख्याल रखिए, और अगर ये तमाम जिम्मेदारियाँ पूरी करेंगे तो तभी वो सेहतमंद रहेंगे। और जो सेहत है वही सबके लिए है। हेल्थ फॉर ऑल,
1: कतर नेशनल हेल्थ स्ट्रेटजी, हेल्थ फॉर ऑल, FM 107, दिल से देसी।
3: Anytime, anywhere.
4: Yes, anytime, anywhere.
3: कभी भी और कहीं भी आप सुन सकते हैं FM 107. Log into our website urduradio.qa or download the app QMC now.

0: मेरे भी इल्म में इजाफा हो रहा है, मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं जब बता भी रहा हूँ तो फायदा आपको हो रहा है, इसमें मुझे खुशी हो रही है। ये अलग ही किस्म का खुशी का आदान प्रदान है, विच आई एम रियली रियली ग्लैड इट्स हैपनिंग। सो बढ़िया है। तो मैं आपको बहुत जरूरी वेबसाइट्स बताने जा रहा हूँ। नंबर वन ऑन द लिस्ट एक ऐसी वेबसाइट जो उन लोगों के लिए है जिनका पीडीएफ का बड़ा काम रहता है यार, बहुत मतलब मैं परेशान हूँ, बहुत सारे पीडीएफ टूल्स काम नहीं करते, एंड नाउ फाइनली देयर आर वेबसाइट जो कि बहुत हेल्पफुल है और एकदम फ्री है। तो चलो सबसे पहले वेबसाइट के बारे में बात कर लेते हैं। इसका नाम है pdffly.com, pdffly.com, ठीक है। इस वेबसाइट पे जब आप जाएंगे तो पीडीएफ के सारे टूल्स एकदम फ्री 100% आपको मिलेंगे। बता दो एग्जांपल, पीडीएफ से कोई और फाइल की तरफ उसे कन्वर्ट करना है, पीडीएफ टू वर्ड करना है या वर्ड टू पीडीएफ करना है, किसी भी फाइल से पीडीएफ तक जाना है, पीडीएफ से किसी भी फाइल तक जाना है, किसी भी फॉर्मेट तक जाना है, बेसिकली यहाँ पर आप कर सकते हैं। इसके अलावा पीडीएफ को, पीडीएफ फाइल को आप एडिट कर सकते हैं। इसके अलावा पीडीएफ के ऊपर का जो वॉटरमार्क होता है जो बहुत इरिटेटिंग होता है, उसे भी आप हटा सकते हैं। मैं सही बता रहा हूँ, ये वेबसाइट आप फैला दो कॉर्पोरेट जगत में मायसा बांध दिया जाएगी। जिन्हें नहीं पता ना उनका काम बहुत आसान होने वाला है, एंड इट इज वेरी वेरी हेल्पफुल। सबसे ज्यादा जो मुझे इरिटेटिंग चीज लगती है वो जब एडिट करना होता है ना पीडीएफ फाइल को, भाई साहब। लेकिन इस वेबसाइट पे जाके आप वो भी कर सकते हैं, एंड एक्सट्रीमली एक्सट्रीमली इजी। मैं दोबारा से बता देता हूं नाम इसका, pdffly.com, ठीक है। ऑलराइट, मूविंग ऑन टू अनदर वन। अब अगली वेबसाइट जो है ये भी बड़ी कमाल की है। ये भी उन लोगों के लिए है जो वीडियो एडिटर ढूंढ रहे हैं, जो फोटो एडिटर ढूंढ रहे हैं, जिन्हें चाहिए कि भाई थोड़ा सा मुफ्त में काम हो जाए तो मजा आ जाएगा। तो इस वेबसाइट का नाम है opencut.app, ठीक है, opencut.app, opencut.app। इस वेबसाइट पर चले जाइएगा आप, आपको CapCut का क्लोज कजन मिल जाएगा और ये एकदम फ्री है। आप इस पर स्टिकर्स, एडिटिंग टूल्स, सब कुछ देख सकते हैं, एक्सट्रीमली फ्री। आपका बेसिक से जो ऊपर का काम है जो कि काफी है, हालांकि प्रोफेशनल है आज के जमाने में, वो सारा का सारा काम हो जाएगा, इस बात की मैं गारंटी लेता हूं। तो आप इसको जरूर जरूर इस्तेमाल करें। ऑलराइट, नाउ मूविंग ऑन टू अनदर वन। तो भाई अगली वेबसाइट का नाम है reccloud.com, reccloud.com। इस वेबसाइट पे आपको बहुत सारे AI जनरेटर्स नजर आएंगे, AI वीडियो जनरेटर्स नजर आएंगे जो आपके बहुत काम आ सकते हैं। लिस्ट इतनी लंबी है कि मैं हर एक का नाम लेने बैठूंगा तो फिर अगली अपडेट तक पहुंच जाऊंगा, इसलिए मैं वो काम नहीं करने वाला हूं। मगर मैं सजेस्ट करूंगा कि आप खुद ही एक बार ट्राई करें, एंड यू विल अंडरस्टैंड द इंपॉर्टेंस ऑफ इट, एंड आई थिंक आपको बहुत बहुत बढ़िया लगने वाला है, ठीक है। अब जरा बढ़ते खबरों की तरफ, क्योंकि हम अब जब रिकॉर्ड कर रहे हैं तो हमारे पास एप्पल की अपडेट आ चुकी है, तो वो अपडेट मैं दे देता हूं। जो उसके प्रोडक्ट डिजाइन से तो वाकिफ है, लेकिन अंदरूनी चीजों के बारे में उन्हें शायद कम पता हो। शुरू करते हैं। तो देखो, रिसेंटली एप्पल ने लॉन्च कर दिया अपना फोल्डेबल फोन आईफोन टीओ, जो 23 अक्टूबर को मार्केट को हिट भी कर जाएगा। ऑब्वियसली ये थोड़ा सा महंगा होने वाला है, ऑब्वियसली इसका प्राइस अप किया गया है और बाकी आईफोन्स के प्राइसेस को भी बढ़ाया जाएगा। अब लोगों का सवाल ये रहता कि ये है किसा, मतलब फोल्डेबल है क्या ये सैमसंग कॉम्पिटिशन में? देखो, सैमसंग ने अभी आगे निकल गया, मैं ऑनेस्टली ये कहना चाहूंगा। हालांकि एप्पल ने कुछ चीजें करी, बड़ी इंटरेस्टिंग चीजें हैं, जिनमें इन्होंने जो अपने डुओ पे काम किया है, ये लोग अभी फेस आईडी तो लगा नहीं पाए, ऑब्वियसली मुश्किल था लगाना, तो उन्होंने कहा कि चलो हम आपको जो है इनविजिबल एक बार वो दे देते हैं, फिंगरप्रिंट सेंसर दे देते हैं, तो आप आराम से अनलॉक कर सकते हैं अपना वेबसाइट। साइड बटन दिया है फॉर अनलॉकिंग बेसिकली, और जो केस है वो इट इज मेड अप ऑफ टाइटेनियम। और इसके साथ साथ इन्होंने बोला कि देखो कैमरास बड़े हुए हैं, हालांकि कैमरास का काफी बेसिक है। और एक चीज जो अच्छी है फोल्डेबल दुनिया में फोन के साथ, वो ये है कि इन्होंने हिंजिस पे बहुत बढ़िया काम किया है, एंड आई थिंक प्राइस इसका कम तो नहीं होगा, पर जो भी लेगा उसको प्रीमियम फील तो डेफिनेटली आएगा। इसी के बेसिस पे एप्पल अपना फोन बेचता है, एंड अगेन हिस्ट्री विल रिपीट इटसेल्फ। ये थी अपडेट, मैं दुहा वाला कबीर, FM 107 पे स्टे ट्यून्ड।
1: Qatar's most heard radio station, FM 107. FM 107. Dil se desi.

0: आपने सुना हमें ऑन एयर, नाउ फॉलो अस ऑन फेसबुक एंड इंस्टाग्राम एट FM 107 कतर। दिल से देसी।
1: वक्त रुका नहीं है, वो तो नए रास्ते बना रहा है। क्या आप तैयार हैं उस कल के लिए जो आज शुरू हो चुका है? पेश करते हैं नेक्स्ट जेन, नेक्स्ट जेन आरजे सफा और आरजे अमिता के साथ। एक ऐसा सफर जो है आपकी क्रिएटिविटी, टेक्नोलॉजी और फ्यूचर का नया ब्लूप्रिंट। ब्लूप्रिंट, सिंपल स्टाइल, बिग इंपैक्ट। पर्सनल ग्रोथ हो या टेक रेवोल्यूशन, अपने आइडियाज को दीजिए एक नई पहचान। बनिए कल का चेहरा आज ही। आज ही सुनिए नेक्स्ट जेन आरजे सफा और आरजे अमिता के साथ हर संडे शाम 5 बजे से FM 107 पर। दिल से देसी। FM 107 पर अपना बिजनेस एडवर्टाइज करने के लिए आज ही रابطہ करें हमारी कतर मीडिया कॉरपोरेशन की मार्केटिंग टीम से। कॉल करें 4488806 पर या ईमेल करें marketing@qmc.qa।
2: हमारे नए स्पोर्ट्स प्रोग्राम गेम चेंजर में हम उन मारूफ स्पोर्ट्स खिलाड़ियों के बारे में बात करेंगे जिनकी तकनीक और अंदाज ने उनके खेलों के रुख को बदल दिया। सुनिए गेम चेंजर हमारे स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट और एक्सपर्ट मोहम्मद अमीन के साथ एवरी थर्सडे फ्रॉम 7:15 PM ओनली ऑन FM 107। दिल से देसी।
3: गेम चेंजर Season 2 Qatar's most heard radio station FM 107 Dil Se Desi।

0: आप सुन रहे हैं FM 107
1: दिल से देसी
2: स्कैम अलर्ट। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु। FM 107 पे इस्तकबाल है दोस्तों, आप सभी का एक नया दिन और एक नया एपिसोड। ये शो है फ्रॉड अवेयरनेस, जहां पर नए जमाने के नए फ्रॉड से मैं आपको बचाता हूं और किन तरीकों से लोग आपको फ्रॉड करते हैं, लोग आपको स्कैम करते हैं। हर रोज नए और यूनिक स्कैम्स जो मार्केट में चल रहे हैं उसके बारे में आपको इत्तला करता हूं। तो आज जिस स्कैम के बारे में बात करने वाला हूं, वो आपके ऑफिस में ही स्कैम होता है, आपके ऑफिस के लोगों के थ्रू या आपके ऑफिस के लोग यू नो उनको इस्तेमाल किया जाता है। वेल, ये क्या स्कैम है इसके बारे में हम बात करेंगे और साथ ही साथ हम बात करेंगे कि इसका सॉल्यूशन क्या है। दोस्तों, ये स्कैम है डिसग्रंटल कलीग एक्सटॉर्शन। वर्क प्लेस के अंदर होने वाला ये एक ऐसा इंटरनल थ्रेट है जो आपकी प्रोफेशनल रेपुटेशन और मेंटल पीस को पूरी तरह डिस्ट्रॉय कर सकती है। इस स्कैम में कोई बाहरी क्रिमिनल नहीं होता है, बल्कि आपका ही कोई नाराज, जेलस या मलिशियस कलीग शामिल होता है जो आपसे बदला लेना चाहता है या रातों रात पैसा कमाना चाहता है, क्योंकि हर शख्स के दिमाग में जल्दी और तेज पैसा कमाने का ना बहुत ज्यादा शौक होता है और उसके अंदर ये क्यूरियोसिटी उसको फ्रॉड में शामिल कर देती है। ये काम कैसे करता है? ये कली कॉर्पोरेट एनवायरनमेंट और आपकी पर्सनल डिटेल्स का फायदा उठाता है। वो बड़ा ही कैलकुलेटेड तरीके से आपके वर्कप्लेस सीक्रेट या आपकी किसी छोटी सी गलती को टारगेट करता है। होता यह है कि वो मलिशियस कलीग सीक्रेटली आपकी किसी प्राइवेट कॉन्वर्जेशन को रिकॉर्ड कर लेता है। ऑफिस लैपटॉप या शेयर्ड नेटवर्क पर आपकी कोई पर्सनल फाइल्स या फोटोज ढूंढ निकालता है या फिर प्रोजेक्ट पर काम करते वक्त किसी बड़ी मिस्टेक का टेक्निकल प्रूफ वो कलेक्ट कर लेता है। इन बातों को नॉर्मल चैनल के जरिए मैनेजमेंट के पास ले जाने के बजाय वो इंसान आपको ब्लैकमेलिंग करता है। वो आपको अकेले में थ्रेट करेगा कि अगर आपने उसे एक बड़ी अमाउंट कैश में नहीं दी या फिर उसके हिस्से का सारा ऑफिस वर्क और प्रोजेक्ट खुद नहीं संभाला, तो वो ये सेंसिटिव फाइल्स पूरी कंपनी के बोर्ड, आपके एचआर और आपके परिवार के बीच लीक कर देगा। कई बार 99% ऑफ द टाइम ये शख्स एनोनिमसली आपके प्रोफाइल पे आपसे यू नो फेक नंबर से चैट करता है और ये सारी बातें आपसे कह रहा होता है। एम्प्लॉई ऐसे में डर जाता है, उसकी नौकरी चली जाएगी ऐसा सोचता है, सोसाइटी में बेइज्जती होगी, इसलिए वो उस डिसग्रंटल कलीग के दबाव में आकर उनकी डिमांड्स पूरी करने लगता है, जो आगे चलकर एक कभी ना खत्म होने वाला लूप बन जाता है। लेकिन इसका सॉल्यूशन भी है, इस तरीके के स्कैम से कैसे बचा जाए। सबसे पहले जीरो कंप्लायंस पॉलिसी, इस पर ध्यान होना चाहिए आपका। हमेशा याद रखिए कि किसी भी ब्लैकमेलर की डिमांड को पूरा करना सॉल्यूशन नहीं होता है, बल्कि उनका हौसला इससे और ज्यादा बढ़ता है। अगर कोई कलीग आपको ब्लैकमेल कर रहा है या फिर कोई शख्स अपने सारे आपके सारे डिटेल्स लेकर अपने मोबाइल से या यू नो फोन नंबर से आपसे चैट कर रहा है और कह रहा है कि आपकी सारी डिटेल्स एचआर को दे देगा या फिर बोर्ड के सामने खोल देगा, तो उन्हें एक भी रुपया ना दे और डरने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। जहां आपने कॉम्प्रोमाइज किया वहां आपकी मुश्किलें और ज्यादा बढ़ जाती हैं। उसके अलावा कॉम्प्रिहेंसिव एविडेंस डॉक्यूमेंटेशन, उस कलीग के साथ हुई हर एक डिजिटल इंटरेक्शन का प्रूफ कलेक्ट करें, उनके ब्लैकमेलिंग ईमेल्स, व्हाट्सएप चैट्स, वॉइस नोट या फिजिकल नोट्स के क्लियर स्क्रीनशॉट्स और रिकॉर्डिंग्स लेकर मल्टीपल सेफ प्लेसेस जैसे कि पर्सनल ड्राइव या हार्ड डिस्क पर बैकअप बनाएं। तीसरा तरीका है डायरेक्ट एचआर और लीगल एस्केलेशन। इस सारे कलेक्टेड एविडेंस को लेकर बिना किसी डर के सीधे अपनी कंपनी के एचआर हेड और लीगल कंप्लायंस डिपार्टमेंट के पास जाएं। कॉर्पोरेट लॉज के तहत एक्सटॉर्शन और ब्लैकमेलिंग एक पनिशेबल ऑफेंस है। एचआर तुरंत इन्वेस्टिगेशन सेटअप करेगा और उस एम्प्लॉय के खिलाफ स्ट्रिक्ट टर्मिनेशन और लीगल एक्शन लिया जाएगा। तो ये कुछ तरीके हैं जिनसे आप बच सकते हैं, लेकिन इस तरीके के होने वाले फ्रॉड से बचने के ये तीन तरीके आपको फ्रॉड से बचा लेंगे, आपके जेब से जो पैसा है उसे खर्च होने से बचा लेंगे। फिलहाल आज के लिए मुझे यानी कि फजील को दीजिए इजाजत। मुलाकात होगी आपसे नेक्स्ट एपिसोड में, इसी बारे में बात करते हुए, फ्रॉड के बारे में बात करते हुए। सुन रहे हैं FM 107 दिल से देसी स्कैम अलर्ट।
0: Qatar's most heard radio station, FM 107. FM 107. Dil se Desi.

अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप सुन रहे हैं FM 107 और स्पोर्ट्स हाइलाइट्स के साथ मैं हूं आपका होस्ट मोहम्मद अमीन। 1986 का फीफा वर्ल्ड कप क्वार्टर फाइनल, अर्जेंटीना वर्सेस इंग्लैंड, टेंशन हाई, क्राउड क्रेजी और डिएगो मैराडोना फुल मोड में। लेकिन फिर हुआ वो जो फुटबॉल हिस्ट्री में कॉमेडी और कॉन्ट्रोवर्सी का कॉकटेल बन गया। मैच चल रहा था, इंग्लैंड की डिफेंस टाइट थी, लेकिन मैराडोना ने सोचा फुट से गोल करने की क्या जरूरत है जब हाथ ही काफी है। एक क्रॉस आया, गोलकीपर जंप कर रहा था और उसी वक्त मैराडोना ने चीकी स्टाइल में हाथ उठाया, बॉल नेट में और इट वॉज वन अप फॉर अर्जेंटीना, यानी गोल मिल गया। रेफरी ने आंखों में सुरमा नहीं लगाया था, गोल दे दिया और इंग्लैंड के खिलाड़ियों ने चीख चीख कर बोला कि ये हाथ था और हाथ था लेकिन रेफरी नजरअंदाज कर दिया इस बात को। लेकिन इसके बाद भी रेफरी ने कहा कि मुझे तो सब कुछ लीगल लगा और आप मैच शुरू कर सकते हैं। और कमेंटेटर भी कंफ्यूज हो गए एंड उनको भी लगा कि ये क्या हेडर था या हाथ से। और दूसरा कमेंटेटर को भी कंफ्यूजन में डाल दिया कि नहीं, वो तो लग रहा है कि वो थप्पड़ था, बॉल के ऊपर थप्पड़ मारा गया था। बाद में जब मैराडोना से पूछा गया कि ये क्या सीन था भाई, तो हुजूर ने स्माइल देके बोला, थोड़ा मैराडोना का सर और थोड़ा हैंड ऑफ गॉड। पूरे इंग्लैंड फैंस जो मौजूद थे वो थोड़ा सा क्रेजी हो गए, थोड़ा सा मतलब परेशान हो गए, और वहीं अर्जेंटीना खुश। और मीम्स जो है अगर उस वक्त होते तो आज तक वायरल हो रहे होते। और एक फैन ने लिखा था, गॉड ने हैंड यूज किया, रेफरी ने आईज बंद कर दी। And that was such an interesting anecdote, अगर मैं कहूँ, एक brilliant caption of Maradona's hand of God goal जो 1986 World Cup में हुआ था, उसी के बारे में आज हम बात कर रहे हैं। And how it turned out to be a goal आज भी एक mystery है। England के खिलाड़ी शायद अब तक उस referee को WhatsApp पे block किए बैठे हैं। और Maradona वो legend बन गया, और goal illegal था लेकिन confidence 100% legal था। इस मैच ने हमें दिखाया कि कभी कभी फुट नहीं बल्कि फेथ चाहिए होता है, और थोड़ी सी चलाकी जो मैराडोना के पास था। और आज भी इस बात पे हर कोई कहता है कि क्या डिएगो मैराडोना वाज द ग्रेटेस्ट फुटबॉलर ऑन अर्थ, क्या डिएगो मैराडोना का वो गोल जिससे उन्होंने हाथ से किया था, पीटर शिल्टन को बीट किया था, क्या उस गोल को ऑफिशियली एक्सेप्ट या एक्नॉलेज किया जा सकता है।

There are a lot of debates. आज भी है 1986 और ये है 2026. तो 40 साल में आज भी लोग ये कहते हैं, फैंस भी ये कहते हैं, एक्सपर्ट्स भी ये कहते हैं, क्योंकि देखिए कैमरा उस वक्त भी it was not that powerful, कैमरा टेक्नोलॉजी was not that, लेकिन जो क्लोज इन फोटोग्राफ्स है आप देखेंगे, अगर सोशल मीडिया पे जाएंगे तो पता चलेगा एक्यूरेटली एंड एग्जैक्टली डिएगो माराडोना का हाथ जो है उस गेंद पर हवा में, वो गेंद है, और पीटर शिल्टन इंग्लैंड के मशहूर गोलकीपर उस बॉल को लपकने के लिए वो भी डिड अ स्पॉट जंप, और माराडोना भी डिड अ स्पॉट जंप, और मिड एयर में माराडोना का हाथ दिख रहा था कि वो गेंद पर यानी बॉल पर चपट लगाते हुए, एंड यही चीज लाइन्समैन यानी उस टाइम में लाइन्समैन कहते थे असिस्टेंट रेफरी भी नजरअंदाज किया, नजरअंदाज के साथ साथ रेफरी को भी उन्होंने बताया कि भाई नहीं नहीं ये गोल है, क्योंकि बॉल जो है ये नेट पर ऑलरेडी एट मेड इट्स एंट्री एंड दैट वाज अ गोल, एंड जिस वक्त ये गोल हुआ अब माराडोना के जो वो सेलिब्रेशन जिस टाइम में वो सेलिब्रेट करते थे, टच लाइन पर जाकर थोड़ा सा डांस करना एंड अर्जेंटीनियन फैंस के साथ पार्टिसिपेट करना, उससे ये एक कंप्लीट ड्रामा को सबके सामने एक रियल बना दिया था, एंड दैट वाज अ रियल स्टोरी जो आज भी हम कहते हैं कि हैंड ऑफ गॉड, इट वाज नॉट हैंड ऑफ माराडोना एज माराडोना सेड, ये हैंड ऑफ गॉड था और मैंने तो सिर्फ चापट मार, एंड आज भी इस बात को लेकर काफी डिस्कशंस होते हैं फुटबॉल के महफिल में, फुटबॉल के टॉपिक जब भी इस गोल को लेकर होता, कि जो कंट्रोवर्शियल गोल्स हैं वर्ल्ड कप की हिस्ट्री में, तो माराडोना का गोल जो है ये सबसे ऊपर, एंड ऊपर है मींस ये एक माराडोना से हुआ है, एंड माराडोना आपको पता है कि माराडोना इज वन ऑफ द लेजेंडरी फुटबॉलर्स ड्यूरिंग हिज टाइम ड्यूरिंग हिज एरा, मोस्ट स्किलफुल प्लेयर अगर कहें तो, इसमें कंट्रोवर्सी के साथ ये भी है कि माराडोना के साथ कंपेयर किया जाता है विद लियोनेल मेसी, विद पेले, विद क्रिस्टियानो रोनाल्डो, लेकिन माराडोना वाज माराडोना। इस गोल को अगर हम थोड़ा सा नजरअंदाज कर दें कि हाँ भाई उन्होंने अपने करियर में कुछ इस तरह के हरकतें की हैं, अदरवाइज माराडोना वाज अ ट्रूली लेजेंडरी प्लेयर। इनफैक्ट अगर इस गोल को अगर देखें तो वो गोल भी फेमस हो गया, वो गोल भी इनफेमस नहीं बल्कि फेमस है। माराडोना को बहुत सारे लोग जानते भी हैं, जो फैंस हैं आज के दौर में, जो नौजवान फॉलोअर्स हैं वो भी माराडोना के जानते, अच्छा वो ही खिलाड़ी था जिन्होंने हाथ से गोल किया था। एनीवे माराडोना इज अ लेजेंडरी प्लेयर एंड देयर इज नो डाउट अबाउट दैट, और आज भी हम इस गोल को याद करते हैं। उम्मीद है आपको हमारा आज का ये स्पोर्ट्स सेगमेंट पसंद आया होगा, अगली बार एक नए लेजेंड की कहानी के साथ वापस आएंगे, तब तक के लिए मुझे यानी मोहम्मद अमीन और साउंड डिजाइनर नदीम अंसारी को दीजिए इजाजत, खुश रहें, सेहतमंद रहें और हमेशा अपना जज्बा जिंदा रखें। फी अमानिल्लाह।

0: आप सुन रहे हैं FM 107
1: दिल से देसी।
2: अस्सलाम वालेकुम, आप सुन रहे हैं कल्चर मोमेंट। मैं हूं आपकी आरजे महावश। इस 5 मिनट के सफर में हम बात करेंगे कतर की खूबसूरत सकाफत, रिवायत और विरसे की। यहाँ हर रसम, हर लिबास, हर खाने और हर मेहमान नवाजी के पीछे एक प्यारी सी कहानी होती है। आइए मिलकर कतर की सकाफत को समझें, महसूस करें और इस विरसे को अगली नस्लों तक पहुँचाने का अहद करें। कतर की इस सकाफत में दस्तरखान सिर्फ खाना खाने की जगह नहीं, बल्कि मिल बैठने, बातचीत करने और रिश्तों को मजबूत बनाने का एक खूबसूरत जरिया है। घर के अफराद या मेहमान जब एक साथ खाना खाते हैं तो वो सिर्फ एक जरूरत पूरी नहीं कर रहे होते, बल्कि मोहब्बत और अपनाइयत के लम्हे भी शेयर कर रहे होते हैं। कतरी दस्तरखान पर सादगी और खुलूस को बहुत अहमियत दी जाती है। खाना कम हो या ज्यादा, असल खूबसूरती इस बात में होती है कि उसे किस तरह, किस अंदाज में पेश किया गया है। मेहमान को खुशी से खाना पेश करना और उसकी राहत का ख्याल रखना अच्छे रवैये की अलामत है। दस्तरखान तैयार करते वक्त सफाई और तरतीब का खास ख्याल रखा जाता है। बर्तन मुनज्जम अंदाज में रखे जाते हैं और हर फर्द के लिए आसानी का इंतजाम किया जाता है। खाने की पेशकश में भी सलीका और नरमी नजर आती है। कतरी दस्तरखान पर मशहूर रिवायती खानों में मजबूज, हरीस, सुरीद और मुख्तलिफ समुद्री खाने भी शामिल हैं। खानों का इंतखाब अक्सर मौके और घर की पसंद के मुताबिक होता है। हर खाना अपने साथ एक कहानी, मेहनत और खानदानी रिवायत रखता है। मजबूज कतर का एक मशहूर रिवायती खाना है। इसमें चावल, गोश्त, मछली या चिकन के साथ मुख्तलिफ खुशबूदार मसाले इस्तेमाल किए जाते हैं। इसकी तैयारी में वक्त, तवज्जो और मसालों का दुरुस्त तवाजुन होता है। हरीस भी कतरी दस्तरखान का एक मशहूर खाना है। ये गंदम और गोश्त से तैयार किया जाने वाला सादा मगर गजाई खाना है। इसकी नरमी और सादगी इसे खास बना देती है। रमजान और खुशी के दूसरे मौके पर भी

इसे पसंद किया जाता है। सुरीद में रोटी या पतली ब्रेड के साथ गोश्त और सब्जी का शोरबा शामिल होता है। रोटी शोरबे का जायका अपने अंदर जज्ब कर लेती है और खाना और भी दिलकश हो जाता है। ऐसे खाने पुरानी घरेलू रिवायात और सादा दस्तरखान की याद दिलाते हैं। कतरी दस्तरखान में खाना शेयर करना एक अहम पहलू है। जब कई अफराद एक साथ मिलकर खाते हैं तो गुफ्तगू और अपनाइयत का माहौल पैदा होता है। बच्चे इस मौके पर खानदानी आदाब सीखते हैं, जैसे खाने से पहले बिस्मिल्लाह रहमान रहीम पढ़ना, शुक्रगुजारी, दूसरों का इंतजार और बेहतर अंदाज से बैठना। दावत के वक्त मेहमान की पसंद और जरूरत का लिहाज रखना भी अच्छे मेजबान की अलामत होता है। किसी को खास खाने की जरूरत हो तो उसका ख्याल रखना मोहब्बत और तवज्जो को जाहिर करता है। खाने के साथ कहवा, खजूर या मिठाई पेश करना भी रिवायती मेहमान नवाजी का हिस्सा है। दस्तरखान पर गुफ्तगू का भी अपना हुस्न होता है। लोग खाने के बाद हाल अहवाल पूछते हैं, खुशगवार बातें करते हैं और अपनी यादें शेयर करते हैं। पुरानी नस्ल के लोग अक्सर बच्चों को खानों और उनकी तैयारी के बारे में बताते हैं। आज के दौर में लोग मसरूफ जिंदगी गुजारते हैं, लेकिन एक साथ खाना खाने की अहमियत अब भी कायम है। अगर घर के तमाम अफराद रोजाना या हफ्ते में किसी भी वक्त मिलकर खाना खा लें तो रिश्ते मजबूत होते हैं। ये लम्हात मोबाइल और दीगर मसरूफियात से दूर रह के गुफ्तगू का मौका देते हैं। खाना शेयर करने का ताल्लुक शुक्रगुजारी से भी है। किसान, मछेरे, खान सामा और घर में खाना तैयार करने वाले तमाम अफराद की मेहनत इस एक दस्तरखान के पीछे होती है। खाने की कदर करना और जाया ना करना इसी शुक्रगुजारी का जरिया है। कतरी खाने अपनी खुशबू और जायके के साथ जमीन, समंदर और खानदानी रिवायत से जुड़े हुए हैं। रिवायती खाने सीखना सिर्फ पकवान बनाने का हुनर हासिल करना नहीं, बल्कि अपनी सकावत के एक हिस्से को महफूज रखना भी है। घर की खवातीन, बुजुर्ग और कभी कभी पूरा खानदान मिलके खास खानों की तैयारी करते हैं। किसी दावत से पहले की ये तैयारी रिश्तों को मजबूत करने का एक खूबसूरत वक्त होती है। इसमें मेहनत के साथ हंसना, बातचीत और यादें भी शामिल होती हैं। कतरी दस्तरखान हमें ये दर्स देता है, एक खाना सिर्फ जायके का नाम नहीं, इसमें मोहब्बत, मेहनत, शुक्र, मेहमान नवाजी और एक दूसरे का ख्याल भी शामिल होता है। जो खाना मिलकर खाया जाए वो अक्सर खूबसूरत याद बन जाता है। तो लिस्टनर्स, आज के कल्चर मोमेंट को यही मुकम्मल करते हैं। याद रखिए, सकाफत सिर्फ गुजरे हुए वक्त का नाम नहीं, बल्कि हमारी रोजमर्रा जिंदगी का खूबसूरत हिस्सा है। मैं हूँ आपकी आरजे महाविश। अगली मुलाकात तक अपना ख्याल रखिए और कतर की खूबसूरत सकाफत को हमेशा इज्जत और मोहब्बत के साथ याद रखिए। अल्लाह हाफिज।

0: यतूर लीग सिर्फ और सिर्फ अलकास चैनल और शूफ प्लेटफॉर्म पर।
1: हर इंसान के पीछे एक कहानी है, एक जज्बा है, एक ख्वाब है, जहां उसके साथ सिर्फ जॉब टाइटल ही नहीं बल्कि जिंदगी के रंगों का सफर है। एक प्रोग्राम जहां आप जानेंगे वो बातें जो दिल को छू जाएंगी, जहां कामयाबी का मतलब सिर्फ आपकी कुर्सी या ओहदा ही नहीं बल्कि असर है जो आप दुनिया पे छोड़ते हैं। एक नई रूहानी मुलाकात, एक नया जज्बा, एक नई सोच के साथ सुनिए प्रोग्राम बियॉन्ड द जॉब टाइटल हर संडे रात 8 बजे से आरजे सरवर मिर्जा के साथ ओनली ऑन एफएम 107 दिल से देसी।
2: अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप सुन रहे हैं प्रोग्राम बियॉन्ड द जॉब टाइटल, जहां हम बात करते हैं जिंदगी के उन पहलुओं पर जो अक्सर हमारी नजर से छुप जाते हैं। मैं हूं आपका दोस्त सरवर मिर्जा और आज का हमारा टॉपिक है इंट्रोडक्शन टू द एपिसोड टीम, फ्रॉम एम्प्लॉय टू द इम्पैक्ट मेकर। हम बात करेंगे एक बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक पर, कैसे हम अपनी प्रोफेशनल लाइफ में सिर्फ KPIs और टारगेट्स तक लिमिटेड ना रहें बल्कि अपनी वैल्यू क्रिएट करें बियॉन्ड नंबर्स, क्योंकि असल सक्सेस वो होती है जो सिर्फ आपके लिए नहीं बल्कि सोसाइटी और कम्युनिटी के लिए भी पॉजिटिव इम्पैक्ट क्रिएट करती है। थिंक अबाउट इट, हर दिन हम अपनी जॉब डिस्क्रिप्शंस फॉलो करते हैं, अपने टारगेट्स अचीव करते हैं, लेकिन क्या यही हमारी आइडेंटिटी है या हम इससे ज्यादा कर सकते हैं? आज हम एक्सप्लोर करेंगे वो जर्नी फ्रॉम बीइंग जस्ट एन एम्प्लॉय टू बिकमिंग एन इम्पैक्ट मेकर। एक सिंपल एग्जांपल लेते हैं, एक एचआर मैनेजर जो अपने ऑफिस के एम्प्लॉयज के लिए मेंटल हेल्थ अवेयरनेस सेशन अरेंज करता है, ये उसकी KPIs का पार्ट नहीं, लेकिन उसने एक कल्चर क्रिएट किया जो लॉन्ग टर्म प्रोडक्टिविटी और वेल बीइंग को इम्प्रूव करता है। दैट्स इम्पैक्ट बियॉन्ड जॉब टाइटल। तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। अक्सर हम अपनी आइडेंटिटी को अपनी जॉब टाइटल से डिफाइन करते हैं, मैं इंजीनियर हूं, मैं बैंकर हूं, वगैरह वगैरह, लेकिन असल सवाल ये है हु आर वी बियॉन्ड वर्क। क्या हम सिर्फ अपनी डेजिग्नेशन है या हमारी वैल्यू इससे ज्यादा है? सोसाइटी का प्रेशर होता है, लोग आप

एक आईटी प्रोफेशनल जो अपने फ्री टाइम में स्टूडेंट्स को कोडिंग सिखाता है, वो सिर्फ अपनी कंपनी के लिए ही नहीं बल्कि फ्यूचर जनरेशन के लिए भी कंट्रीब्यूट कर रहा है। वहीं एक नर्स जो अपने ऑफ डेज पर एल्डरली केयर होम्स विजिट करती हैं, ये उनकी जॉब डिस्क्रिप्शन का पार्ट नहीं है, लेकिन वो अपनी ह्यूमैनिटी को एक्सप्रेस कर रही हैं। सोच के देखिए, अगर आप अपनी स्किल्स को यूज करके किसी को हेल्प करते हैं तो आपकी आइडेंटिटी इंस्टेंटली एक्सपेंड हो जाती है। आप सिर्फ एक एम्प्लॉय नहीं बल्कि एक चेंज एजेंट बन जाते हैं। दोस्तों, लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। प्रोग्राम सुन रहे हैं आप बियॉन्ड द जॉब टाइटल सरवर मिर्जा के साथ। कहीं भी मत जाइएगा, हमारे साथ बने रहिएगा और जानेंगे कि कैसे हम अपने टाइटल

0: इंसान के पीछे एक कहानी है, एक जज्बा है, एक ख्वाब है, जहां उसके साथ सिर्फ जॉब टाइटल ही नहीं बल्कि जिंदगी के रंगों का सफर है। एक प्रोग्राम जहां आप जानेंगे वो बातें जो दिल को छू जाएंगी, जहां कामयाबी का मतलब सिर्फ आपकी कुर्सी या ओहदा ही नहीं बल्कि असर है जो आप दुनिया पे छोड़ते हैं। एक नई रूहानी मुलाकात, एक नया जज्बा, एक नई सोच के साथ
1: कुछ प्रैक्टिकल स्टेप्स तो समझते हैं भाई। स्टार्ट स्मॉल, अपनी स्किल्स को यूज करके किसी को हेल्प करना शुरू कीजिए। वॉलंटियर फॉर अ कॉज, एजुकेशन, एनवायरमेंट, हेल्थ, इन तमाम शोबों में आप बहुत कुछ कर सकते हैं। क्रिएट माइक्रो इम्पैक्ट, जैसे अपने ऑफिस में ही सस्टेनेबिलिटी प्रैक्टिसेस प्रमोट कीजिए, कोई हर्ज नहीं। दोस्तों, ये सब चीजें एक माइंडसेट शिफ्ट डिमांड करती हैं। जब आप अपनी आइडेंटिटी को सिर्फ पेचेक तक लिमिटेड करते हैं तो आप अपनी पोटेंशियल को इग्नोर कर रहे होते हैं, लेकिन जब आप अपने सर्कल से बाहर जाकर कॉन्ट्रीब्यूट करते हैं तो आपकी लाइफ और करियर दोनों एनरिच्ड हो जाते हैं। बढ़ते हैं अब इसके पर्पस और ग्रोथ की जानिब। यहाँ हम बात करेंगे कैसे अपनी हिडन स्किल्स और पैशन को डिस्कवर किया जाए। ख्वातीनों हजरात, असल ग्रोथ वो होती है जो आपको एक बेहतर इंसान बनाती है, ना कि सिर्फ एक बेहतर एम्प्लॉय। भाई KPIs और सैलरी इम्पोर्टेंट है, मैं ये नहीं कहता कि इनके ऊपर से बिल्कुल ही फोकस हटा दें, लेकिन अगर आप अपनी पैशन को एक्सप्लोर करते हैं तो आपकी लाइफ और करियर दोनों इसमें बेहतरीन सबक पाते हैं। दोस्तों, हर इंसान के अंदर कुछ हिडन टैलेंट्स होते हैं जो शायद जॉब के प्रेशर में इग्नोर हो जाते हैं। फॉर एग्जांपल, एक फाइनेंस प्रोफेशनल जो फोटोग्राफर का शौक रखते हैं, उन्होंने अपनी हॉबी को यूज करके चैरिटी इवेंट्स कवर करना शुरू किया। रिजल्ट, क्रिएटिविटी प्लस सोशल इम्पैक्ट। और वहीं अगर एक सक्सेस को सिर्फ पेचेक और प्रोमोशन से मेजर किया जाए एक आउटडेटेड अप्रोच के लिए, तो आज के जमाने में सक्सेस का मतलब है फुलफिलमेंट, पर्पस और पॉजिटिव इम्पैक्ट। वहीं रेजिलियंस को बिल्ड करने की बात करें तो फेलियर्स आएंगे, लेकिन रेजिलियंस वो स्किल है जो आपको हर चैलेंज से निकालती है। जब आप अपने गोल्स को सिर्फ मटेरियलिस्टिक रखेंगे तो फेलियर हर्ट करेगा, लेकिन जब आपका गोल इम्पैक्ट हो तो फेलियर एक लर्निंग बन जाता है। नेटवर्किंग फॉर इम्पैक्ट के हवाले से बात करें तो लाइक माइंडेड लोगों के साथ कोलेबरेट करें, आपके आइडियाज मल्टीप्लाई होंगे। कतर में बहुत सारी कम्युनिटी ग्रुप्स हैं जो एजुकेशन, एनवायरमेंट और हेल्थ पर काम करती हैं, तो ज्वाइन देम। और याद रखिए, योर जॉब इज व्हाट यू आर पेड फॉर, योर इम्पैक्ट इज व्हाट यू आर रिमेम्बर्ड फॉर। दोस्तों, लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। प्रोग्राम सुन रहे हैं आप बियॉन्ड द जॉब टाइटल सरवर मिर्जा के साथ। कहीं भी मत जाइएगा, हमारे साथ बने रहिएगा और जानेंगे कि कैसे हम अपने टाइटल से बाहर निकलकर दुनिया में बहुत कुछ कर सकते हैं।

0: इंसान के पीछे एक कहानी है, एक जज्बा है, एक ख्वाब है, जहां उसके साथ सिर्फ जॉब टाइटल ही नहीं बल्कि जिंदगी के रंगों का सफर है। एक प्रोग्राम जहां आप जानेंगे वो बातें जो दिल को छू जाएंगी, जहां कामयाबी का मतलब सिर्फ आपकी कुर्सी या ओहदा ही नहीं बल्कि असर है जो आप दुनिया पे छोड़ते हैं। एक नई रूहानी मुलाकात, एक नया जज्बा, एक नई सोच के साथ।
1: तो दोस्तों, तरह तरह की किस्में हैं अपने आप को समझने की, अपने आप पे रोशनी डालने की, और अपने अंदर जो मैं हूँ, मैं से मेरा मतलब वो तकब्बुर नहीं जो हम समझते हैं, मैं से मेरा मतलब जो मेरे अंदर इंसानियत छुपी है उसको मैं बाहर लाने की कोशिश करूं और दुनिया को कुछ ना कुछ करके दूं अपार्ट फ्रॉम माई वर्क। भाई जो मैं हूं, जो मेरा ओहदा है, वो सारी चीजें मेरी कंपनी तक महदूद हैं, सहमत हैं, महदूद हैं, सीमित हैं, लेकिन दुनिया के लिए क्या, खिदमत खल्क बहुत जरूरी है दोस्तों, और वो समझना बेहद जरूरी है। जब हम इस बात को समझते हैं कि हमें दुनिया के लिए भी

लिए भी करते हैं, रोजगार नहीं होगा तो कैसे काम चलेगा। बट वॉट अबाउट वर्ल्ड, भाई दुनिया भी आपकी खिदमत के लिए इंतजार कर रही है। अल्लाह ताला ने हमें बनाया है हमसे कुछ ना कुछ काम लेने के लिए, और वो काम हम जभी करेंगे जब हम अपने अंदर की सलाहियतों को समझेंगे, इन्हें बाहर निकालेंगे और किसी ना किसी के लिए कुछ अच्छा करने की कोशिश करेंगे। तो याद रखिए, इट्स नॉट अबाउट योर वर्क, इट्स नॉट अबाउट योर जॉब टाइटल, इट्स बियॉन्ड जॉब टाइटल। भाई अपने आप को अपने पड़ोसियों के साथ ही बेहतर बनाना हमारे लिए बहुत कुछ सिखा जाता है, या वहीं हम जो दूसरी मखलूक हैं, परिंदे हैं, चरिंद हैं, इनके लिए भी अगर हम दाना पानी ही रख देते हैं तो ये भी अपने आप को कुछ समझाना है, कुछ सिखाना है कि हमने किसी ना किसी के लिए कुछ ना कुछ तो किया है। तो अपने अंदर के इंसान को पहचानिए और उसको दुनियावी चीजों के लिए कुछ बेहतर करने की तरगीब दीजिए। तो दोस्तों, आज हमने बात की कि कैसे एक एम्प्लॉई अपनी प्रोफेशनल बाउंड्रीज से बाहर जाके एक इम्पैक्ट मेकर बन जाता है। भाई जाते जाते मैं आपके लिए कुछ सवाल छोड़ जाता हूँ। आप अपनी लाइफ में किस तरह वैल्यू क्रिएट कर रहे हैं बियॉन्ड योर जॉब, या आपके लिए सक्सेस का मतलब क्या है, सिर्फ प्रमोशन या पॉजिटिव इम्पैक्ट? तो सोचिए और इसमें कुछ ना कुछ करने की कोशिश कीजिए। और याद रखिए, आपकी वर्थ सिर्फ आपकी जॉब टाइटल से नहीं होती, आप एक ह्यूमन बीइंग हैं जिसकी पोटेंशियल लिमिटलेस है। सोचना शुरू करें, एक्शन लेना शुरू करें और अपनी जर्नी को मीनिंगफुल बनाएं। और दोस्तों एक बात क्लियर है, हमारी पहचान सिर्फ हमारी नौकरी नहीं है, हमारी वर्थ हमारे जज्बात, एक्शन और रिलेशनशिप से डिफाइन नहीं होती है। अपने आप से सवाल पूछिए, मैं अपनी जिंदगी को किस तरह मीनिंगफुल बना रहा हूँ। भाई आप अपनी जिंदगी में जितने भी रोल्स प्ले करते हैं, घर पर, ऑफिस में, सोसाइटी में, सब इम्पोर्टेंट हैं। अपने आप को

एक्सेप्ट कीजिए, अपनी वैल्यू समझिए और अपनी ग्रोथ पर फोकस कीजिए। याद रखिए, आपकी ह्यूमन वर्थ किसी टाइटल से नहीं, आपकी इंसानियत से है। इस बात को हमेशा याद रखिए। इसी के साथ प्रोग्राम साउंड डिजाइनर शकीब अहमद जी और सरवर मिर्जा को अगली मुलाकात तक के लिए इजाजत दीजिए। सुनते और देखते रहिए FM 107, दिल से देसी।

0: का पहला देसी रेडियो स्टेशन FM 107, दिल से देसी।
1: FM 107 पर अपना बिजनेस एडवर्टाइज करने के लिए आज ही रابطہ करें हमारी कतर मीडिया कॉरपोरेशन की मार्केटिंग टीम से। कॉल करें 4488806 पर या ईमेल करें marketing@qmc.qa।
2: दोस्तों, ड्राइविंग के दौरान मोबाइल का इस्तेमाल आपको, आपके घर वालों को और दूसरों की जिंदगी को खतरे में डाल सकता है। अपने मोबाइल को हमेशा साइड पर रखें ताकि अपने साथ साथ दूसरों की हिफाजत को भी यकीनी बनाया जा सके। आपकी ये आदत और एहतियात किसी की जान बचा सकती है। महफूज ड्राइविंग के लिए जरूरी है कि पूरी तवज्जो सिर्फ रोड पर हो और हर किस्म के डिस्ट्रैक्शन से बचा जाए। अपनी और दूसरों की सेफ्टी के लिए ड्राइविंग के वक्त मोबाइल फोन का इस्तेमाल ना करें और किसी की जिंदगी को रिस्क में ना डालें। ड्राइव करते वक्त पूरी तवज्जो रोड पर रखिए, क्योंकि एक छोटी सी गलती भी बड़ा हादसा बन सकती है। ये भी याद रखिए कि आपकी जिम्मेदारी सिर्फ अपनी नहीं बल्कि दूसरों की जिंदगी की हिफाजत भी है। वजारत दाखिला का कहना है कि ये छोटी छोटी एहतियात आपको और आपके आसपास के लोगों को महफूज रखती हैं। जिम्मेदार फर्द होने के फर्ज को अदा करते हुए बहुत ही एहतियात और ख्याल से ड्राइविंग कीजिए। FM 107 आपकी और आपकी फैमिली की हिफाजत की ख्वाहिश करता है।
3: आप सुन रहे हैं FM 107,
0: दिल से देसी।

0: Anytime, anywhere.
1: Yes, anytime, anywhere.
0: कभी भी और कहीं भी आप सुन सकते हैं FM 107. Log into our website urduradio.qa or download the app QMC now.
2: FM 107 पर अपना बिजनेस एडवर्टाइज करने के लिए आज ही राब्ता करें.
3: आज ही राब्ता करें
2: हमारी कतर मीडिया कॉरपोरेशन की मार्केटिंग टीम से. कॉल करें 4488806 पर या ईमेल करें marketing@qmc.qa.
4: ऐ बनी आदम, क्या तुम दुआ का मजाक उड़ाते हो? दुआ को हकीर समझते हो? हालांकि तुम्हें खबर ही नहीं कि दुआ क्या कुछ करती है. ये रात के तीर हैं जो सीधे अपने निशाने पर जा लगते हैं, खता नहीं करते. अलबत्ता उनका एक वक्त मुकर्रर है जिसके बाद उनका असर जाहिर होता है. और दोस्तों, प्रोग्राम आज की दुआ, इसका मकसद हमें याद दिलाना है कि दुआ बंदे का सबसे कीमती हथियार है, दिल का सुकून है और रब से ताल्लुक का सबसे मजबूत रिश्ता है. आइए चंद लम्हों के लिए हम अल्लाह की बारगाह में दुआ मांगे. समीन, प्रोग्राम आज की दुआ में आपको खुश आमदीद. इस प्रोग्राम में हम रोजाना एक कुरानी या नबवी दुआ सीखते हैं. तो आज की दुआ है नूह अलैहिस्सलाम की, जब उनकी कौम ने मुसलसल इनकार और तकजीब की. ये दुआ मजलूम नबी की पुकार है जो रब्बुल आलमीन के हुजूर फैसला और नजात की दरख्वास्त है.
5: रब्बी इन्न कौमी कज़्ज़बून

सर्विस को एक्सेस कर सकते हैं जो कि स्पेशली डिजाइंड है हियरिंग इंपेयर्ड इंडिविजुअल्स यानी वो लोग जो सुन नहीं सकते। ये सर्विस उनकी जरूरत के हिसाब से उनको इमरजेंसी रिस्पांस देती है और उनके लिए सेफ्टी को इंश्योर करती है। यानी अगर आप या आपके आसपास कोई शख्स हियरिंग इंपेयरमेंट से मुतासिर है तो 992 का नंबर याद रखें और इस सर्विस का फायदा उठाएं। ये इनिशिएटिव सिर्फ एक सर्विस नहीं बल्कि एक अहम कदम है उन लोगों की मदद करने के लिए जो अक्सर अपने हक में मदद हासिल करने में मुश्किलात का सामना करते हैं। मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर की ये एफर्ट्स ये दिखाती हैं कि हर शख्स की सेफ्टी और सिक्योरिटी उनकी पहली प्रायोरिटी है चाहे उन्हें सुनाई न दे। तो अगर आप किसी ऐसे शख्स को जानते हैं जो हियरिंग इंपेयरमेंट से मुतासिर है उन्हें ये सर्विस जरूर बताएं। ये सर्विस उनके लिए एक नया रास्ता है अपने इश्यूज को सॉल्व करने का और इमरजेंसी सिचुएशंस में मदद लेने का। FM 107 आपकी और आपकी फैमिलीज की हिफाजत की ख्वाहिश करता है।

अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप सुन रहे हैं एफएम 107 और स्पोर्ट्स हाईलाइट के साथ, मैं हूं आपका होस्ट मोहम्मद अमीन। दोस्तों, फुटबॉल में अगर माराडोना को जीनियस कहा जाता है, टेनिस में रॉजर फेडरर को आर्टिस्ट, तो शतरंज की दुनिया में एक नाम ऐसा है जिन्हें अक्सर शतरंज का बादशाह कहा जाता है। यहां दोस्तों, रशिया के गैरी कास्पारोव। कास्पारोव सिर्फ एक ग्रेट शतरंज खिलाड़ी नहीं थे, वो एक ऐसे कॉम्पिटिटर थे जो अपने ओपोनेंट को बोर्ड पर ही नहीं बल्कि जहनी तौर पर भी चैलेंज करते थे। हाँ, मैंने ये कहा कि वो थे, आज भी गैरी कास्पारोव चेस खेलते हैं। I mean, there is no retirement for any chess player. 1963 में बाकू में पैदा होने वाले कास्पारोव ने बहुत छोटी सी उम्र में अपनी एक्स्ट्राऑर्डिनरी टैलेंट का सबूत देना शुरू कर दिया था। सिर्फ 22 साल की उम्र में 1985 में, टू बी वेरी प्रिसाइज, सन 1985 में वो दुनिया के सबसे कम उम्र वर्ल्ड चैंपियन बन गए। और फिर उन्होंने तकरीबन 2 decades तक वर्ल्ड चेस पर अपनी हुकूमत कायम रखी। अजय बताना चलो कि 1985 में उन्होंने हराया किसको था। उन्होंने हराया था उस वक्त के अनदर लेजेंडरी सोवियत यूनियन के टॉप, वर्ल्ड के टॉप चेस प्लेयर अनातोली कारपोव को। लेकिन सवाल ये है कि कास्पारोव इतने अच्छे क्यों थे या क्यों हैं? उनकी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ उनकी कैलकुलेशन। वो चेस बोर्ड पर बहुत आगे तक सोच सकते थे। जहां आम खिलाड़ी एक या दो मूव्स आगे देखता है, कास्पारोव कई पॉसिबिलिटीज को एक साथ कैलकुलेट करने की कोशिश करते थे। लेकिन सब कैलकुलेशन ही सब कुछ नहीं होता है। कास्पारोव की ओपनिंग प्रिपरेशन लेजेंडरी थी। वो अपने ओपोनेंट्स के गेम्स का गहरा जो इरो फोकस था उसको नोट करते थे, उनकी वीकनेसेस ढूंढते और फिर मैच के लिए स्पेसिफिक स्ट्रेटजीज तैयार करते। मतलब एक शार्प आई, मतलब बहुत ही तीखी नजर से अपने ओपोनेंट को देखना, उनके मूव्स को नोट करना, मतलब एक चेस खिलाड़ी के अंदर ये सलाहियत बहुत कम खिलाड़ियों में हमने देखा है। और वहां पे एक्सेप्शनल वाज गैरी कास्पारोव। आज के कंप्यूटर असिस्टेड चेस के दौर में जो चीज नॉर्मल लगती है, कास्पारोव के जमाने में उस लेवल की प्रिपरेशन बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरी समझी जाती थी। और फिर आती है उनकी एग्रेसिव स्टाइल। कास्पारोव को सिर्फ चेस खेलना पसंद नहीं था, वो पोजीशन को कॉम्प्लिकेटेड बनाते, प्रेशर क्रिएट करते और ओपोनेंट को डिफिकल्ट डिसीजंस लेने पर मजबूर कर देते। उनकी आंखों में वो कॉन्फिडेंस नजर आता था कि वो मुश्किल पोजीशन में भी कुछ ना कुछ नया निकाल लेंगे। लेकिन कास्पारोव की सबसे मशहूर राइवलरी थी अनातोली कारपोव के साथ, जिसके बारे में आपको बताया था। 1985 में उनको हराने के बाद ही बिकेम द यंगेस्ट वर्ल्ड

चैंपियन। कास्पारोव और कारपोव बिल्कुल मुख्तलिफ स्टाइल्स के खिलाड़ी थे। कारपोव को पोजिशनल जीनियस कहा जाता था। वो धीरे धीरे ओपोनेंट की पोजीशन को स्क्वीज करते और छोटी सी वीकनेस का फायदा उठाते। दूसरी तरफ कास्पारोव एनर्जी और एग्रेशन लेकर आते। 1984 में दोनों के दरमियान वर्ल्ड चैंपियनशिप मैच शुरू हुआ। मैच इतना लंबा और इंटेंस हो गया कि आखिरकार ऑथोरिटीज ने इसे रोक दिया। अगले साल यानी 1985 में दोनों दोबारा आमने सामने आए और कास्पारोव ने कारपोव को हराकर वर्ल्ड चैंपियन का टाइटल हासिल कर लिया। लेकिन कहानी यहां खत्म नहीं होती है। कारपोव और कास्पारोव ने वर्ल्ड चैंपियनशिप के लिए कई बार मुकाबला किया। हर मैच में स्ट्रेटजी, साइकोलॉजी और नर्व्स का जबरदस्त इम्तिहान होता था। ये राइवलरी चेस हिस्ट्री की सबसे लेजेंडरी राइवलरीज में शुमार होती है। फिर 1990s में कास्पारोव का सामना हुआ एक और जबरदस्त ओपोनेंट के साथ, और वो थे और हैं इंडिया के विश्वनाथन आनंद। आनंद की स्पीड, प्रिपरेशन और टैक्टिकल ब्रिलियंस ने कास्पारोव के लिए एक नया चैलेंज पैदा किया। 1995 में दोनों ने वर्ल्ड चैंपियनशिप मैच खेला। कास्पारोव ने मैच जीता, लेकिन आनंद ने दुनिया को दिखा दिया कि इंडिया से एक ऐसा चेस सुपरस्टार आ चुका है जो वर्ल्ड चैंपियन को भी सीरियस चैलेंज दे सकता है। और दोस्तों, यही कास्पारोव की ग्रेटनेस का एक और रीजन है। वो सिर्फ अपने जमाने के प्लेयर से नहीं लड़ते थे, यानी चेस करते थे या राइवलरी रखते थे, वो चेस को इवॉल्व करने पर मजबूर करते थे। आज के मॉडर्न चेस में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, पावरफुल इंजन्स और ऑनलाइन डेटाबेसेस ने गेम को बिल्कुल बदल दिया है, लेकिन कास्पारोव की कैलकुलेशन, प्रिपरेशन, अटैकिंग माइंडसेट और साइकोलॉजिकल स्ट्रेंथ आज भी चेस खिलाड़ियों के लिए एक इंस्पिरेशन है। शायद इसीलिए गैरी कास्पारोव को सिर्फ एक वर्ल्ड चैंपियन कहना कम होगा। वो एक चेस रेवोल्यूशनरी थे। उन्होंने हमें दिखाया कि शतरंज सिर्फ 64 खानों और 32 मोहरों का गेम नहीं, ये इमेजिनेशन, डिसिप्लिन, पेशेंस, कैलकुलेशन और सबसे बढ़कर ह्यूमन माइंड की पावर का इम्तिहान है। तो दोस्तों, उम्मीद है आपको हमारा आज का ये स्पोर्ट्स सेगमेंट पसंद आया होगा। अगली बार एक नए लेजेंड की कहानी के साथ वापस आएंगे। तब तक के लिए मुझे यानी मोहम्मद अमीन और साउंड डिजाइनर नदीम अंसारी को दीजिए इजाजत। खुश रहें, सेहतमंद रहें और हमेशा अपना जज्बा जिंदा रखें। फी अमानिल्लाह।

अस्सलाम वालेकुम, मैं दुहा वाला कबीर एफएम 107.7। वेलकम टू अनदर टेक अपडेट। आज जो है वेबसाइट्स बहुत जरूरी हैं। आज एजुकेशनल पर्पस के लिए हम वेबसाइट्स लेकर आए हैं। मेरा मकसद ये है कि मैं आज उन बच्चों तक पहुंच सकूं, उन माँ बाप तक स्पेशली, जो अपने बच्चों को अलग अलग तरीके से एजुकेट करने की कोशिश करते हैं, इंटरैक्टिव तरीके से, जो माँ बाप क्रिएटिवली अप्रोच रखते हैं, कुल मिला के उनकी बात कर रहा हूं मैं। तो आज उन्हीं के लिए है सारी की सारी वेबसाइट्स, नहीं इनफैक्ट दो वेबसाइट्स उनके लिए, एक थोड़ा सामने अलग रखे, ठीक है? तो शुरू करते हैं। नंबर वन जो वेबसाइट है ऑन द लिस्ट, इसका नाम है टॉय थिएटर, खिलौने वाला, TOY टॉय थिएटर, TH E A T R E। इस वेबसाइट पे अगर आप जाएंगे तो अपने बच्चों के साथ आप बहुत सारे गेम्स खेल सकते हैं। इस पे बहुत सारे गेम्स हैं जो इंटरेक्टिव हैं, ऑनलाइन है, तो ऑब्वियसली उनको अगर आप हाथ में टैबलेट पकड़ा देते हैं, फोन ही पकड़ा देते हैं, तब भी आप इसके जरिए उन्हें सिखा सकते हैं। फोनिकली वो आवाजों के जरिए मैथ्स के सम से लेकर एक एक चीज पजल के थ्रू पढ़ाई कर सकते हैं, और ये ब्रेन के ना उन हिस्सों को टैप इन करता है जो यूजुअली गेम्स करते हैं। और मैं हमेशा से इस बात के लिए आगे आता हूँ, वकालत करता हूँ कि गेम्स आपके ब्रेन को खोलते हैं। तो वाले गेम जो बच्चों के लिए और एलिमेंट्री स्कूल तक के लिए, जो बच्चों के दिमाग को खोलेंगे भी और उन्हें बहुत कुछ सिखाएंगे, ये वेबसाइट उनके काम की है।

0: joytheater.com इस वेबसाइट पे जरूर जरूर जाइएगा। इससे मिलते जुलती एक और वेबसाइट मैं आपको बता देता हूँ। अगली वेबसाइट का नाम है starfall.com, starfall.com, starfall.com। इस वेबसाइट पर जब आप जाएंगे तो इस वेबसाइट पर भी आपको शुरुआत से किंडरगार्टन से लेकर एलिमेंट्री तक बच्चों को सिखाने के लिए बहुत सारी एक्टिविटीज हैं। इसमें क्या है ना, रीडिंग का भी जो हिसाब किताब है ना वो एनिमेशन के जरिए है, तो वो किताब उनके सामने खुलेगी, वो किताबें पढ़ेंगी, किताबें उनसे बात भी करेंगी और सारी की सारी कहानी है कि एनिमेशन के थ्रू उनकी नजरों के सामने आएगी। इट इज इमेंसली ब्यूटीफुल। ये जो मौका है ना, ये अपने बच्चों को दीजिए, बिकॉज आई थिंक कॉग्निटिव जो एबिलिटीज होती हैं दिमाग की वो अनलॉक होती हैं और एनिमेशन के थ्रू बहुत इंटरेस्टिंग हो जाती है पढ़ाई, है ना। तो रादर देन यू सिटिंग एंड टेलिंग देम पढ़ो पढ़ो पढ़ो पढ़ो पढ़ो एंड टेलिंग देम स्टोरीज, ये जो है ना उनको मदद करेगा। चाहे उनके हाथ में फोन्स क्यों ना हो, अगर आपने ये कर दिया है ना तो उनको एक आदत लगेगी और वो आदत उन्हें बहुत सारी चीजें सिखाएगी, कलर्स हो, नाम हो, मैथ्स के सम्स हो, या फिर एक बेसिक एक कहानी सुनाने का तरीका हो। और कहानी सुनाने के तरीके से बेहतर कोई और तरीका नहीं है जो बच्चे के दिमाग को टैप इन करता है, बिकॉज उसके इमेजिनेटिव वर्ल्ड को छू लेना इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट अगर आप उसे सच में कुछ सिखाना चाहते हैं। दैट इज सो ट्रू। मैं कोई इसमें डॉक्टर नहीं हूं, बट जहां तक मैंने जाना है, देखा है, पढ़ा है, वो तो भाई यही है। तो आई जस्ट वॉन्टेड टू गिव दिस टू यू कि आपको अच्छा लगे। अगली वेबसाइट की तरफ बढ़ते हैं। अगली वेबसाइट का जो नाम है ये है chatforce.com, chatforce, chatforce.com। इस वेबसाइट पे जब आप जाएंगे तो आपको एक मौका मिलेगा एक गेम अपने हिसाब से फ्री में बनाने का। ट्रस्ट मी, मोबाइल गेम आप अपने आप बना सकते हैं और आपका इमेजिनेशन जितना लंबा दौड़ाना चाहे घोड़े को दौड़ाइए भाई। आपको कोई सा इसमें कैसा एनवायरनमेंट चाहिए, कैसा म्यूजिक चाहिए, आप कैसा देखते हैं वो गेम है क्या, वो सब कुछ आप एक प्रॉम्प्ट पे दे सकते हैं। एंड ये हालांकि मजे मजे में आप कुछ बनाएंगे, मगर आपको सीखने को मिलेगा कि गेम्स में क्या क्या चीज़ें की फैक्टर्स होती हैं, एनवायरनमेंट कैसे होता है, क्या बिल्डअप होता है, और ये सब चीज़ें सीख के हो सकता है यू नेवर नो कि किसी का इंटरेस्ट किसी और फील्ड को अनलॉक कर दे। तो डेफिनेटली ये तो खैर एडल्ट्स के लिए भी है, आप अगर गेम बनाना चाहें आप बनाइए, बिंदास बनाइए और सीखिए इससे। यू नेवर नो कि एक और इंडस्ट्री को आप अनलॉक कर लें अपने लिए एंड डेफिनेटली आप काम आ सकते। सो chatforce.com ये है जी इसका नाम। जरा खबरों की तरफ बढ़ते हैं। देखिए खबरों में मैं बताना चाहूंगा साल का आखिर होने वाला है, अभी अगर आप कोई प्रोडक्ट खरीदने की कोशिश कर रहे हैं तो अभी आप खरीद दीजिए। मैं सही बता रहा हूँ, विंटर क्या आते आते मतलब टुवर्ड्स द फॉल सीजन में कुछ ही प्रोडक्ट्स हैं जो कम जो जिनका प्राइस कम होगा, बाकी सबके सब अपने प्राइस पे अड़े रहेंगे। हाउ एवर अभी एक जंग जो है वो फोल्डेबल फोन्स की चल रही है जिसमें आपको डिस्काउंट मिलने के चांसेस हैं। रिसेंटली एक आर्टिकल में छपा है कि अभी तो रूमर्ड है बट अगर उसकी माने तो टुवर्ड्स द फॉल आपको बहुत सारे जो फोल्डेबल फोन्स हैं उस पे एक प्राइस कट मिल सकता है। ऑल द बेस्ट फॉर दैट। तो ये थी टेक अपडेट, मैं दुआ वाला कबीर साइनिंग ऑफ। अपना ख्याल रखिएगा, आप बेहद बेहद जरूरी हैं। मास्सलाम।
1: Qatar's most heard radio station, FM 107. FM 107. Dil se desi.

स्कैम अलर्ट। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। एफएम 107 पे फजील के साथ दोस्तों इस्तकबाल है एक नए दिन में आप सभी का, और ये शो है या ये एपिसोड है फ्रॉड अवेयरनेस, जहां पर नए जमाने के नए फ्रॉड के बारे में आपको मैं अवेयर करता रहता हूं। और आज जिस फ्रॉड के बारे में मैं बात करने वाला हूं, इस फ्रॉड में लोग बड़े आसानी से फंस जाते हैं, चाहे वो घर की फीमेल्स हो या फिर सोशल मीडिया पे एक्टिव कोई लड़का हो या फिर सोशल मीडिया पे एक्टिव कोई बच्चे हो, ये सब बड़े आसानी से इस फेक या कहें फ्रॉड में फंस जाते हैं। ये है फेक सोशल मीडिया गिव अवेज। ये एक डीप स्कैम है दोस्तों। ये काम कैसे करता है, सबसे पहले इस पर बात करते हैं। सोशल मीडिया पर चलने वाला ये फेक गिव अवेज दिखने में बहुत ही ज्यादा अट्रैक्टिव लगता है, लेकिन इनके पीछे एक बहुत बड़ा साइबर क्राइम नेटवर्क होता है। इस स्कैम को करने के लिए क्रिमिनल सबसे पहले आइडेंटिटी थेफ्ट का सहारा लेते हैं। वो आपके किसी बेहद क्लोज फ्रेंड की प्रोफाइल को टारगेट करते हैं, उनकी सारी फोटोज, कवर पिक्चर, बायो, पर्सनल स्टेटस, अपडेट्स को सब चुरा लेते हैं। एक बिल्कुल फिर डुप्लीकेट फेक प्रोफाइल क्रिएट की जाती है। इसके बाद आपको उस डुप्लीकेट प्रोफाइल से एक नई फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजी जाती है। चैट शुरू करते ही वो झूठ बोलते हैं, मेरा पुराना अकाउंट ब्लॉक है, हैक हो गया है, इसलिए मैंने ये बैकअप आईडी बनाई है। जैसे ही आप उनकी रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कर लेते हैं, वो फेक फ्रेंड आपसे एक बड़ी एक्साइटिंग ऑफर शेयर करता है। वो बोलेगा कि मैंने अभी एक सीक्रेट गवर्नमेंट ग्रांट जीता है, या मुझे एक मैसिव इंटरनेशनल कैश गिव अवे में लाखों रुपए मिले हैं। आपका लालच बढ़ाने के लिए वो कहेगा कि मैंने विनर्स लिस्ट चेक की है, उसमें तेरा भी नाम शामिल है, मुझे तो पैसे मिल गए, तू भी अपने प्राइज मनी को क्लेम कर सकता है। वो आपको चैट पर एक एक्सटर्नल लिंक भेजेगा और बोलेगा कि इस लिंक पर क्लिक करके अपनी बैंक डिटेल्स और लॉगिन डिटेल्स भर दो, ताकि प्राइज मनी आपके अकाउंट में ट्रांसफर हो सके। देखिए, ये तो मैंने बहुत छोटे में बता दिया, लेकिन और भी बहुत ज्यादा ट्रिक जो है ये स्कैमर्स उस फेक प्रोफाइल से लगाते हैं ताकि आपको फंसाया जा सके। लेकिन रियलिटी ये होती है कि जैसे ही आप उस फ्रॉड लिंक पर क्लिक करते हैं, आपके फोन या कंप्यूटर में ऑटोमेटिक मालवेयर और स्पाईवेयर डाउनलोड हो जाता है। ये मालवेयर आपके बैंक पासवर्ड्स, ओटीपीज और सोशल मीडिया लॉगिन क्रेडेंशियल्स को चुराकर हैकर के पास भेज देता है, और कुछ ही मिनट्स में आपका बैंक अकाउंट पूरी तरह खाली हो जाता है। लेकिन इस तरह के फ्रॉड से बचने का कंप्लीट सॉल्यूशन भी है दोस्तों। कुछ 3 सॉल्यूशंस ऐसे हैं जिनको अगर आप अपनाएंगे तो इस तरह के फ्रॉड से बड़े आसानी से आप बच जाएंगे। सबसे पहला तरीका है इस तरह के फ्रॉड से बचने के लिए, वो है क्रॉस वेरीफाई वाया अल्टरनेटिव चैनल्स। जब भी कोई दोस्त अचानक सोशल मीडिया पर फ्री मनी, गवर्नमेंट ग्रांट्स या लॉटरी की बातें करने लगे, तो तुरंत अलर्ट हो जाए। उस आईडी पर रिप्लाई करने के बजाय उन्हें फोन कॉल करें, पर्सनल टेक्स्ट मैसेज या किसी दूसरी मैसेजिंग ऐप पर कॉन्टेक्ट करें और पूछें कि क्या उन्होंने सच में कोई ऐसा लिंक भेजा है या नहीं। दूसरा तरीका है एनालाइज द प्रोफाइल एज एंड फॉलोवर्स एज वेल। किसी भी पुराने दोस्त

0: की नई रिक्वेस्ट एक्सेप्ट करने से पहले उनकी प्रोफाइल का हिस्ट्री जरूर चेक करें। देखें कि वो अकाउंट कब बना है। अगर अकाउंट बिल्कुल नया है, उसमें सिर्फ 5 से 10 फॉलोवर्स हैं और पोस्ट की डेट सिर्फ 1, 2, 3, 4, 6 दिन पुरानी है, तो समझ लीजिए कि ये 100% एक फेक डुप्लीकेट प्रोफाइल है जो आपको ठगने के लिए बनाई गई है। तीसरा तरीका है नेवर क्लिक एंड रिपोर्ट इमीडिएटली। ऐसे किसी भी सस्पिशियस एक्सटर्नल गिव अवे लिंक पर क्लिक बिल्कुल ना करें। उस अकाउंट की प्रोफाइल पर जाकर फेक अकाउंट प्रिटेंडिंग टू बी समवन एल्स का ये ऑप्शन जो है वो आप रिपोर्ट कर सकते हैं, और बिल्कुल एडमिन को रिपोर्ट करना ये आपकी ड्यूटी भी है। अपने बाकी फ्रेंड्स को भी टाइमलाइन पर अलर्ट कर दें ताकि कोई और उस लिंक पर क्लिक ना करे, और लोगों को बताएं कि आपके दोस्त के नाम की एक फेक प्रोफाइल बनी है। इस तरह से आप अपने दोस्तों को और बाकी लोगों को बचा भी सकते हैं, खुद को बचाने के साथ साथ। इसी के साथ मुझे यानी कि फजील को दीजिए इजाजत। इंशाल्लाह मुलाकात होगी कल एक नए जमाने के नए फ्रॉड के बारे में बात करते हुए और आपको फ्रॉड से अवेयर करते हुए। सुनते रहे FM 107, दिल से देसी।
1: स्कैम अलर्ट।

वेलकम टू अ सेगमेंट कॉल स्मार्ट मनी. मैं हूं आपकी दोस्त, आपकी होस्ट नासिया. आज के सेगमेंट में दोस्तों मैं बात करने वाली हूं कि जेन जी जो है वो किस तरह से डिफरेंटली इन्वेस्ट कर रहे हैं. वेल, हर जनरेशन क्या पैसे को लेकर एक अलग परसेप्शन है. हर जनरेशन के पैसे को देखने का अपना एक अलग तरीका भी है. आज के दौर में सबसे ज्यादा डिस्कस होने वाली दो जनरेशंस, मिलेनियल एंड जेन जी. मिलेनियल्स वो लोग हैं जो लगभग 1981 से 1996 के दरमियान पैदा हुए, जबकि जेन जी वो जनरेशन है जो उनके बाद आई. लेकिन दोनों जनरेशंस इन्वेस्टिंग में इंटरेस्टेड हैं, लेकिन उनकी अप्रोच, उनकी प्रायोरिटीज, उनके इन्वेस्टमेंट डिसीजंस एक दूसरे से बिल्कुल अलग. मिलेनियल्स में अपनी जवानी, उस दौर में गुजरे ट्रेडिशनल बैंकिंग, कन्वेंशनल इन्वेस्टमेंट मेथड्स, ये सारी चीज़ें उन्हें डोमिनेट आज भी करती हैं. और इसीलिए उनसे बहुत से लोग, जितने भी आपने देखे होंगे, वो ज़्यादातर म्यूचुअल फंड्स, रिटायरमेंट प्लान्स, फिक्स सेविंग प्लान्स और रियल स्टेट इन्वेस्टमेंट्स को ही प्रेफर करते हैं. उनकी इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी अक्सर लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी और सिक्योरिटी पर फोकस करती है. वहीं देखा जाए दूसरी तरफ जेन जी को, तो ये कम्प्लीटली डिजिटल वर्ल्ड में पली बड़ी जनरेशन है. उन्होंने स्मार्टफोन्स, सोशल मीडिया और ऑनलाइन टेक्नोलॉजी को बचपन से यूज किया है, और शायद इसी वजह से उनका इन्वेस्टिंग का स्टाइल भी ज्यादा डिजिटल और फास्ट पेस्ड होता है. देखिए, जेन जी के लिए स्मार्टफोन्स, एप्स और ऑनलाइन इन्वेस्टमेंट प्लेटफॉर्म सब कुछ बड़ा नॉर्मल है. वो इन्वेस्टमेंट डिसीजंस लेने के लिए इंटरनेट और सोशल मीडिया पर अवेलेबल इन्फॉर्मेशन का बहुत ज्यादा सहारा लेते हैं. जेन जी की सबसे खास पहचान ये है कि वो इन्वेस्टिंग को पहले की जनरेशन की तरह कॉम्प्लिकेटेड नहीं समझते. आजकल कई इन्वेस्टमेंट एप्स इन्वेस्टिंग प्रोसेस को इतना सिंपल बना चुकी हैं कि यंग इन्वेस्टर्स कुछ ही मिनटों में अकाउंट ओपन कर सकते हैं और इन्वेस्टिंग स्टार्ट कर सकते हैं. इस तरह की एक्सेसिबिलिटी ने जेन जी को फाइनेंशियल मार्केट के करीब ला दिया है. एक और इम्पोर्टेंट डिफरेंस है इन्फॉर्मेशन के सोर्सेस का. मिलेनियल्स अक्सर फाइनेंशियल एडवाइजर्स, बैंक या फिर ट्रेडिशनल फाइनेंशियल पब्लिकेशंस पर ही डिपेंड करते हैं. वहीं जेन जी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स, यूट्यूब चैनल्स, पॉडकास्ट, ऑनलाइन फाइनेंस इन्फ्लुएंसर्स. देखिए, जेन जी इन्वेस्टर्स अक्सर फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस और फ्लेक्सिबिलिटी को प्रायोरिटी देते हैं. वो सिर्फ रिटायरमेंट की नहीं बल्कि फ्यूचर लाइफस्टाइल, एंटरप्रेन्योरशिप और पर्सनल गोल्स के लिए भी इन्वेस्टिंग करना चाहते हैं. देखिए, इस जनरेशन के लिए पैसा सिर्फ सिक्योरिटी का सोर्स नहीं बल्कि अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करने का जरिया भी है. लेकिन हाँ, इन्वेस्टिंग में जल्दी रिजल्ट्स हासिल करने की डिजायर कभी कभी चैलेंजिंग हो जाती है. तो बस आखिर में मैं यही कहना चाहूंगी कि जेन जी और मिलेनियल्स दोनों वेल्थ क्रिएट करना चाहते हैं, लेकिन उनकी अप्रोच डिफरेंट है. मिलेनियल्स ट्रेडिशनल और स्टेबल इन्वेस्टमेंट मेथड्स को प्रेफर करते हैं, जबकि जेन जी टेक्नोलॉजी, एक्सेसिबिलिटी और डिजिटल प्लेटफॉर्म्स को इम्पोर्टेंस देती है. वेल, इसके बावजूद एक चीज जो दोनों जनरेशन में कॉमन है, वो बताऊँ क्या है? वो है फाइनेंशियल

और ये राज नॉलेज डिसिप्लिन और लॉन्ग टर्म थिंकिंग में छुपा है। पहले आज की जनरेशन के पास इंफॉर्मेशन और टूल्स पहले से ज्यादा हैं। अगर वो फाइनेंशियल लिटरेसी को इम्प्रूव करें, सोशल मीडिया इंफॉर्मेशन को क्रिटिकली इवैल्यूएट करें और पेशेंस के साथ इन्वेस्टिंग कंटिन्यू रखें तो वो अपने फाइनेंशियल गोल्स अचीव कर सकते हैं। आखिर में यही कहूंगी कि इन्वेस्टिंग का सबसे इम्पोर्टेंट लेसन ये है कि वेल्थ जल्दी नहीं बनती लेकिन स्मार्ट डिसीजंस और कॉन्स्टेंट हैबिट से जरूर बनती है। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। मुझे यानी नाजी और शकीब अहमद हम दोनों को इजाजत दीजिए। देखते हो सुनते रहिए FM 107 दिल से देसी।

0: सितारे उतरेंगे मैदान में अजमत की जुस्तजू में टीमें टकराएंगी टॉप पोजीशन के लिए और जोश ऐसा जो आखिरी सीटी तक थमने ना पाए दोहा बैंक स्टार्स लीग सिर्फ अलकास के इनक्रिप्टेड चैनल्स और शू प्लेटफॉर्म पर
1: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون
2: بس اگر تم نہیں جانتے تو اہل

0: तक पहुंचाने के लिए यार हमारा رابطہ नंबर है 4434377। इस नंबर पर आप رابطہ कीजिए और अपने सवालात हम तक पहुंचाएं, जिनके जवाब इंशाल्लाह प्रोग्राम के आखिर में मोहतरम शेख मोहम्मद मुद्दसर साहब इनायत फरमाएंगे। رابطہ नंबर है 4434377। सामीन, इस प्रोग्राम में नूर इस्लाम में हम एक तो तमाम सामीन के सवालात का जवाब इनायत देने की कोशिश करते हैं। और हमारी आज की पहली कॉल, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह।
1: वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाह जी, खैरियत सर?
0: अल्हम्दुलिल्लाह भाई, अल्लाह का फजल है। आपका नाम?
1: जी मेरा नाम अब्दुल मन्नान।
0: जी अब्दुल मन्नान भाई,
1: जी कैसे हैं?
0: अल्लाह का फजल है, अल्हम्दुलिल्लाह। आप ठीक हैं?
1: जी अल्हम्दुलिल्लाह।
0: अच्छा माशाल्लाह माशाल्लाह जी भाई।
1: मेरा सवाल एक ये है, जैसे बजमत के साथ में नमाज अदा किया, अब सुन्नत नमाज पढ़ रहा, कोई अचानक से आके वापस बैक साइड से टच किया, बोलता है कि मैं भी नमाज पढ़ा, क्या वो साथ में पढ़ना चाहिए या हाथ उठा देना चाहिए?
0: अच्छा, यानी आप नमाज पढ़ चुके हैं, अब आप सुन्नत पढ़ रहे हैं?
1: फर्ज नमाज पढ़ लिया हूँ मैं और सुन्नत पढ़ रहा हूँ, कोई वापस आया बैक से पीछे वो राइट साइड में वो खड़ा होके वो सोचा कि ये फर्ज नमाज पढ़ रहा है
0: जी,
1: क्या उसके साथ में नमाज पढ़ना चाहिए या इसे क्या इसका?
0: इंशाल्लाह इस पर जरूर बात करेंगे, इसका जवाब हम शेख की शेख से मालूम करेंगे। और आपका कोई दूसरा सवाल भाई?
1: दूसरा सवाल दिमाग में नहीं आ रहा।
0: अच्छा ठीक ठीक भाई,
1: कोई यही एक ही सवाल है।
0: इंशाल्लाह इंशाल्लाह इसका जरूर जवाब देंगे कि बाजमात नमाज अदा करने के बाद सुन्नत पढ़ते हो। जी
1: जी, और दूसरा सवाल याद आ गया
0: जी, जी।
1: जुमा की नमाज के वक्त कोशिश किया
0: जी,
1: अगर बाई चांस कोई जुमा ऐसा नहीं हो सका जमात के साथ, तो उसका क्या बाद में अदा कर सकता फर्ज जो हर का चार रकात या क्या है?
0: अच्छा अच्छा, यानी अगर जुमा फौत हो गया तो फिर क्या करें हम, जोहर की नमाज अदा करें क्या करें? ठीक है इंशाल्लाह,
1: क्या करना?
0: हाँ, जुमा अगर फौत हो जाता है तो फिर जोहर की चार रकात नमाज ही पढ़ी जाती है। और लेकिन याद रहे कि जुमा छोड़ना इसका बहुत बड़ा गुनाह है और हमें इससे एहतियात करना चाहिए इंशाल्लाह। बाकी इस ताल्लुक से मजीद बातें हम शेख से मालूम कर लेंगे। जज़ाकुमुल्लाह, बारकल्लाहु फ़ीकुम भाई, जज़ाकुमुल्लाह। सामीन, हमारे प्रोग्राम में सवालात का सिलसिला इस वक्त चल रहा है और आप अपने सवालात हम तक पहुँचा सकते हैं। रबता नंबर है 4434377। इस नंबर पे आप رابطہ कीजिए और हम तक अपने सवालात पहुँचाएँ और इंशाल्लाह उसके जवाबात हम आप तक पहुँचाने की कोशिश करेंगे। तो सामीन, मैं ये बता रहा था आपको कि इस प्रोग्राम में जिस तरह हम सवालात और जवाबात का सिलसिला लेकर चलते हैं, इसी तरह हम वक्त को काम में लाने की भी कोशिश करते हैं। ऐसा नहीं कि हम इंतज़ार करें और यहाँ वहाँ की बात करें, बल्कि हम इस मुख्तसर से वक्त में हम कुरान और हदीस की रोशनी में तमाम सामीन तक किसी न किसी मौजू पर कुछ गुफ्तगू करते हैं ताकि हम उसे सुनकर अपनी ज़िंदगियों में लाने की कोशिश करें। हमारे अखलाक हसना की सीरीज़ में चल रही है, काफ़ी हफ्तों से चल रही है। गुज़श्ता हफ्ते हमने सब्र और शुक्र, गुज़श्ता दो हफ्तों में सब्र और शुक्र पर हमने बात की है और उसी को उस पर बात करने के बाद आज हमारा जो मौजू है वो सिद्क व अमानत और किज़्ब व ख़यानत है, यानी सिद्क सच्चाई, सच बोलना और ये सारी चीज़ें, और अमानत और फिर झूठ और ख़यानत पर हम बात करेंगे। और याद रहे तमाम सामीन को कि एक ऐसा मौजू है यानी जिस पर हम गुफ्तगू करने जा रहे हैं, इसका ताल्लुक सिर्फ अखलाकियात से नहीं है, बल्कि एक मुसलमान के ईमान से, उसके किरदार से, मुआशरत से, मुआमलात से और पूरी इंसानी ज़िंदगी से ये ताल्लुक रखता है। और जैसा कि हमने आपको बताया कि हमारा मौजू है सिद्क़ो अमानत और किज़्बो ख़यानत। सच बोलना, वादे को पूरा करना, किसी के माल और या किसी के राज की हिफाजत करना, अपनी ज़िम्मेदारी को दयानतदारी से अदा करना, ये सब एक मुसलमान के किरदार का हिस्सा होना

चाहिए। इसके बरक्स दूसरी तरफ जब हम देखते हैं तो झूठ है, धोखा है, वादा खिलाफी है, कि ये कि वादा हमने किया और उस वादे को हम वफा न कर सके या नहीं किया हमने, और ख़यानत है। ये सारी ऐसी बुराइयां हैं जो फ़र्द के किरदार को भी ख़राब करती हैं और मुआशरे में एतमाद और क़ुव्वत को भी ख़त्म कर देती हैं। तो आज हम इसी मौजू को कुरान और सुन्नत की रोशनी में समझने की कोशिश करेंगे। सबसे पहला जो बुनियादी इसमें पॉइंट आता है वो हम एक पॉइंट लेते हैं, सिद्क। तो अब ये सवाल आता है कि सिद्क क्या है, यानी सच्चाई किसे कहते हैं, सिद्क क्या है। सबसे पहले ये समझते हैं कि इस्लाम में सिद्क से क्या मुराद है। क्या सिर्फ सच बोलने को सिद्क कहते हैं या उसका मफहूम इससे ज़्यादा वसी है। तो सामीन, सिद्क का बुनियादी मफहूम ये यानी सच्चाई, हकीकत के मुताबिक बात करना और कौलो अमल में मुताबकत रखना। सच्चाई यानी ये कि आदमी सच बोले, और हकीकत के मुताबिक बात करना यानी जो वाक़या अगर वो बयान कर रहा है या कोई चीज़ यानी या किसी इंसिडेंट के बारे में आपको ख़बर दे रहा है तो वो उसमें झूठ वगैरह ना बोले, बल्कि जिस तरह जो वाक़या पेश आया है उसी तरह वो बात बताए। इसी को कहते हैं हकीकत के मुताबिक बात करना और कौलो अमल में मुताबकत रखना, यानी जो बात हम कह रहे हैं और अमल के लिहाज से भी वो बात हमारे किरदार से समझी जा सके। एक शख्स ज़ुबान से जो कहता है हकीकत में भी वही हो, यानी जो बात वो कहे हकीकत में वो बात भी उसी तरह से हो, अपने दावे में सच्चा हो, वादा करे तो पूरा करने की कोशिश करे, मामलात में धोखा न दे और अमानत में खयानत ना करे। ये तमाम औसाफ सिद्क के वसी मफहूम में शामिल हैं। अल्लाह ताला कुरान करीम में इरशाद फरमाते हैं, या अय्युहल्लज़ीना आमनु तक़ुल्लाह वकूनु मअस्सादिकीन, कि ऐ ईमान वालों अल्लाह से डरो और सच्चों के साथ रहो। तो ज़रा गौर कीजिए कि अल्लाह ताला ने सिर्फ सच बोलने का हुक्म नहीं फरमाया, ये नहीं कहा कि तुम सच बोलो, ये बल्कि अल्लाह तबारक तआला ने ये हुक्म दिया है कि सच्चों की सुहबत इख्तियार करो। इससे मालूम होता है कि इंसान की शख्सियत पर उसके माहौल और सुहबत का भी बहुत बड़ा असर होता है। क़ुरान करीम में भी सच्ची गुफ्तगू के बारे में अल्लाह ताला फरमाते हैं, या अय्युहल्लज़ीना आमनु तक़ुल्लाह वक़ूलू क़ौलन सदीदा يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم, يعني اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سیدھی درست بات کیا کرو, اللہ تمہارے اعمال درست کر دے گا اور تمہارے گناہ بخش دے گا۔ سامعین, یہاں پر قولاً سدیدہ, قولاً سدیدہ کا مطلب صرف جھوٹ سے بچنا نہیں ہے, یعنی یہ نہیں کہ صرف ہم جھوٹ نہ بولیں, نہیں, بلکہ قولاً سدیدہ سے مراد یہ ہے کہ ایسی بات کرنا جو درست ہو, حقیقت کے مطابق ہو, حق ہو, یعنی جو بات کہے حق کہے۔ بہت سی باتیں ہوتی ہیں جو یعنی حق نہیں ہوتی, یعنی سچ ہوتی ہیں لیکن وہ باطل کی طرف ہوتی ہیں, تو حق کہنے کی کوشش کرنی چاہیے اور بات کو مناسب اور ذمہ داری سے کی جائے, یعنی اچھے انداز اور اچھے لہجے میں وہ بات کہی جائے۔ اس آیت سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے ہمیں, جس طرح آیت میں ہے وَقُولُ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا, اس کے بعد يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ, اس چیز سے ہمیں یہ اس آیت سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ ہمارے اعمال کی اصلاح, یعنی ہم اگر اچھے اپنے اعمال کو اچھا بنانا چاہتے ہیں تو اس چیز کا تعلق انسان کی زبان کی اصلاح سے ہے۔ لہٰذا اگر کوئی شخص یہ چاہتا ہے کہ اس کے اعمال اچھے ہوں, اس کے اعمال میں برائیاں نہ ہوں, وہ اچھے اچھے کام کرے, تو سب سے پہلا اسٹیپ جو لے یا جو اس کو لینا چاہیے وہ یہ ہے کہ اپنی زبان کا صحیح استعمال کرے اور جو بات بولے سچ بولے اور حق بولے۔ اسی طرح اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے بھی سچائی کی فضیلت بیان فرمائی ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم

0: अपनी ज़िंदगी में लाने की कोशिश करें ताकि हमारी मेहनतों का फल हमें इस दुनिया में भी मिले और आखिरत में भी मिले। तो आज की गुफ्तगू का खुलासा यही है कि सिद्क ये इंसान का एक वक़ार है, अमानत ये उसके किरदार की बुनियाद होनी चाहिए, जबकि किज़्ब है, ख़यानत है, यानी जो बुरी खसलतें हैं, ये इंसान के एतमाद को, उसके ताल्लुकात को और आखिरत को भी, इन तमाम तीनों चीज़ों को नुकसान पहुंचाते हैं। तो लिहाजा ये याद रखना चाहिए कि लोग हमारे माल, ओहदे या ज़ाहरी शख्सियत से ज़्यादा हमारी सच्चाई और अमानतदारी की वजह से हम पर एतमाद करते हैं। अल्लाह ताला हमें सच बोलने, अमानत अदा करने, वादा पूरा करने, लोगों के हुकूक़ की हिफाजत करने और झूठ, धोखे और ख़यानत से बचने की तौफीक अता फ़रमाए। अल्लाहुम्मा जअलना मिन अस्सादिकीन व अदिल अमानात इला अहलिहा व सरिफ अनिल कज़्ब वल ख़ियानत व सुअल अख़लाक। آمين يا رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته جزاكم الله
1: قطر کا پہلا دیسی ریڈیو سٹیشن FM 107 دل سے دیسی
2: FM 107 پر اپنا بزنس ایڈورٹائز کرنے کے لیے آج ہی رابطہ کریں ہماری قطر میڈیا کارپوریشن کی مارکیٹنگ ٹیم سے کال کریں 4488806 پر یا ای میل کریں marketing@qmc.qa
3: ہر گھر کی اپنی کہانی ہوتی ہے کبھی پیرنٹنگ کا چیلنج کبھی بچوں کی تربیت کی فکر کبھی فیملی ریلیشن شپس کو بہتر بنانے کی کوشش تو آئیے مل کر بات کرتے ہیں ان مسائل پر جو ہر گھر کا حصہ ہیں ایکسپرٹ کاؤنسلنگ پریکٹیکل پیرنٹنگ ٹپس اور ریئل لائف ڈسکشن کے ساتھ ہم ڈھونڈیں گے بہتر اور مضبوط فیملی ریلیشن شپ کا راستہ سنیے پروگرام فیملی میٹرز ود آر جے نازیہ اونلی آن FM 107 فیملی میٹرز کیونکہ ہر فیملی میٹرز
4: سلام آداب ویری ویری گڈ ایوننگ دوستو میں ہوں آپ کی ہوسٹ آپ کی دوست نازیہ اور آپ سن رہے ہیں شو فیملی میٹرز جی ہاں وہ شو جہاں ہم بات کرتے ہیں گھر کی رشتے کی پیرنٹنگ کی اور فیملی بانڈ کے بارے میں ویل ہر روز ہم ایک نئے ٹاپک کو لے کر آتے ہیں اور پھر اس پر آپ سے بات کرتے ہیں آپ کی پرابلمس کو کچھ حد تک سالو کرنے کی کوشش کرتے ہیں چھوٹے موٹے جو گھر سے ریلیٹڈ ایشوز ہو سکتے ہیں جو رشتوں سے ریلیٹڈ ایشوز ہو سکتے ہیں انہیں ہم کوشش کرتے ہیں کہ کس طرح سے جو ہے وہ سالو کیا جا سکتا ہے تو دوستوں آج جس ٹاپک پہ ہم بات کرنے والے ہیں وہ ہر گھر کا ایک بڑا مسئلہ ہے اور آج کا ٹاپک ہے مینیجنگ اسکرین ٹائم وداؤٹ آرگیومنٹ یعنی بچوں کا اسکرین ٹائم کیسے مینیج کریں بنا غصے بنا روز روز کے آرگیومنٹس کے دیکھیں آج کے اس ڈیجیٹل دور میں اسکرین ہر جگہ ہے موبائل فونس ہیں ٹیبلٹس ہیں گیمنگ کنسولس ہیں لیپ ٹاپس ہیں اسمارٹ ٹی ویز ہیں بچوں کی پڑھائی بھی اسکرینس پر ہے انٹرٹینمنٹ بھی اسکرینس پر ہے اور دوستی بھی اسکرینس کے ذریعے ہو رہی ہے کئی پیرنٹس روز یہ سینٹنس کہتے ہوئے سنائی دیے جاتے ہیں کہ بس کرو بہت ہو گیا اتنی دیر تک گیم کھیلتے ہو سونے کا وقت ہو گیا کوئی ہوش ہی نہیں اور پتہ نہیں کیا کیا اور اس کا نتیجہ کیا ہوتا ہے آپ فرسٹریٹڈ اور بچہ شاید تھوڑا ناراض یا وقتی طور پہ اس نے فون رکھا اور پھر پک کر لیا اب ایسے میں گھر کا ماحول خراب ہوتا ہے اور اکثر اس کا الزام جو ہے وہ فیمیلز کے اوپر جاتا ہے کہ تم بزی رہتی ہو تم نے بچے کی صحیح طریقے سے تربیت نہیں کی یہ ایک چھوٹا سا سٹیٹمنٹ ہوتا ہے فادرز کا کیونکہ وہ جب آتے ہیں اس طرح کا ماحول ٹینسڈ والا دیکھتے ہیں تو بھی ساختہ ہی منہ سے نکل جاتا ہے دیکھیے اسکرین ٹائم کا ڈسکشن کب اور کیسے آرگیومنٹ میں تبدیل ہو جاتا ہے یہ ہمیں بھی نہیں پتہ چلتا اور یہ واقعی بڑا میں نے جو ورڈ یوز کیا نا فرسٹریٹنگ ہے واقعی ہے آج کا سوال اس کے برعکس ہے کیا اسکرین ٹائم صرف فون چھین لینے سے کنٹرول ہو جائے گا کیا گھر میں اسٹرکٹ رولس لگانا ایک پراپر سولیوشن ہے یا کوئی اور بہتر طریقہ بھی ہے جب یہ سوال میرے ذہن میں آئے اور میں جب اس ٹاپک پہ بات کرنے کی سوچ رہی تھی اور میں نے سوچا کہ واقعی کیا سولیوشنز ہو سکتے ہیں تو مجھے بڑا اچھا لگا مجھے ایک بک نظر آئی اور یہ بک ہے دا آرٹ آف مینیجنگ اسکرین ٹائم بڑی اچھی بک ہے کبھی کبھی آپ کو موقع ملتا ہے تو ضرور پڑھیے گا اگر نہیں ملتا ہے تو اس کے جو بیسٹ پاورفل ٹیک اویز ہیں وہ میں ڈیفینیٹلی آپ کے ساتھ شیئر کرنے والی ہوں اور شروعات ہی اس بک کی اس طرح سے ہے کہ ٹیکنالوجی ایک ٹول ہے جسے ایک نائف یعنی جو چاقو ہے کچن میں کھانا بھی بنا سکتا ہے और दूसरी तरह से भी इस्तेमाल हो सकता है वैसे ही स्क्रीन सीखने के लिए कनेक्ट करने के लिए एंटरटेन करने के लिए भी यूज हो सकती है और अगर इसमें बैलेंस क्रिएट किया जाए तो कम से कम चैलेंज क्रिएट होंगे वहीं पर पेरेंट्स को इस बुक में जिस बुक का मैंने जिक्र किया यू नो द आर्ट ऑफ मैनेजिंग स्क्रीन टाइम बड़ा अच्छा एक वर्ड पेरेंट्स के लिए यूज किया गया है और वो है पुलिस का यहाँ बुक के मुताबिक पेरेंट्स को जो है ना वो पुलिस ऑफिसर कहा गया है और कहा गया है कि आपको ना घर में पुलिस ऑफिसर बनने की जरूरत नहीं है और हम अक्सर कहते हैं हिटलर ना बनो है ना लेकिन चलिए यहाँ पे पुलिस ऑफिसर कहा गया है बल्कि ये कहा है कि आपको पुलिस ऑफिसर बनने की जरूरत नहीं है कोच बनिए अब देखिए डिफरेंस समझिए पुलिस ऑफिसर पकड़ता है जबकि कोच गाइड करता है पुलिस ऑफिसर शायद पनिश करता है जबकि कोच ट्रेन करता है और जब आप पेरेंट्स कोचिंग अप्रोच अडॉप्ट करते हैं तो बच्चा ज्यादा कोऑपरेट करता है बिलीव मी ज्यादा कोऑपरेट करता है स्क्रीन टाइम का असल गोल मोबाइल कम करवाना नहीं है बल्कि बच्चों को सेल्फ कंट्रोल सिखाना है ये कितनी इम्पोर्टेंट बात है क्योंकि असल जिंदगी में हम हर वक्त उनके साथ तो नहीं होंगे ना हर वक्त उन्हें गाइड कर पाएंगे बहुत सारे डिसीजंस उन्हें अकेले ही लेने हैं लेकिन हमने जो रहनुमाई उनकी बचपन में की होगी शायद वो एक स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन ले करेगी जिसके बाद वो हर फैसला सही सोच समझ के साथ अच्छी सलाहियत का इस्तेमाल करते हुए कर पाएंगे एक और इम्पॉर्टेंट बात जो जब मैं इस बुक को देख रही थी तो मुझे समझ में आई वो है कि सबसे इम्पॉर्टेंट कंट्रोल करना नहीं बच्चे को जो है वो ना उसे स्क्रीन टाइम कम करवाना है सबसे इम्पॉर्टेंट बात है रिश्ता उसे स्ट्रॉन्ग बनाना अक्सर पेरेंट्स स्क्रीन प्रॉब्लम सॉल्व करने में इतना फोकस डाल देते हैं कि उनके रिश्ते डैमेज हो जाते हैं याद रखिए स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप के साथ रूल्स को इम्पोज करना आसान हो जाता है वहीं पर अगर वीक रिलेशनशिप है तो वही रूल्स जंग बन जाते हैं जब बच्चे महसूस करते हैं कि उनकी बात सुनी जा रही है तो वो भी पेरेंट्स की बात सुनने लगते हैं इसीलिए स्क्रीन टाइम डिस्कशन पनिशमेंट नहीं है ये कन्वर्सेशन और हेल्दी कन्वर्सेशन होनी चाहिए आज इस शो में हम बात करेंगे कि स्क्रीन टाइम आर्ग्यूमेंट्स क्यों होते हैं पेरेंट्स का क्या रोल है बच्चों को कैसे इन्वॉल्व करें फैमिली रूल्स कैसे बनाए जाएं और कैसे टेक्नोलॉजी को फैमिली एनिमी नहीं एक फैमिली हेल्पर बनाया जा सकता है तो चलिए आज इसी टॉपिक को फर्दर एक्सप्लोर करेंगे और अगर आपके घर में ये इशू है कि बच्चा ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो स्क्रीन टाइम पर अपना वक्त ज़ाया करता है घर में टेंशन हो जाती है आपको समझ में नहीं आता कि मुझे करना क्या चाहिए तो मैं यहीं से शुरुआत करूँगी कि करना क्या है सबसे पहले मैं कुछ प्रैक्टिकल पेरेंटिंग स्ट्रेटजीज की बात करूंगी और उसमें कुछ रूल्स होते हैं जो सबसे पहला रूल है वो है कनेक्शन का आई थिंक जैसे मैंने शो स्टार्ट किया है तब से मैं कनेक्शन की बात कर रही हूँ और ये बड़ी इम्पॉर्टेंट बात है और इसे बार बार मैं इसलिए भी दोहरा रही हूँ कि शायद हमारे और आपके जहन में ये फिट हो जाए ऐसे तो हम कनेक्शन कहते हैं हमारा है सबसे है सब कुछ है लेकिन वो कनेक्शन जिसकी हम बात कर रहे हैं वो एक सॉलिड कनेक्शन है वो कह देने से समझ लेने से नहीं महसूस करने से होगा जब बच्चे गेम खेल रहे हों या फिर वीडियोस देख रहे हों हम अचानक जाकर कहें कि बस बंद करो तो रेजिस्टेंस नेचुरल है आप इमेजिन कीजिए कि आपका कोई बहुत ही फेवरेट कोई पाकिस्तानी ड्रामा आ रहा है फॉर एग्जांपल जंजीरे आ रहा है एकदम क्लाइमेक्स वाला माहौल है और आप देखना पसंद कर रहे हैं और इसी बीच कोई आपसे जो है वो टीवी का रिमोट छीन ले या वो बंद कर दे तो अचानक आपको कैसा लगेगा बहुत ज्यादा गुस्सा आएगा ना बस यही समझना है आपको भी अच्छा नहीं लगेगा इसीलिए सबसे पहले जो मैंने बात की वो है कनेक्शन की और फिर करेक्शन की जाकर उस बच्चे से पूछिए क्या देख रहे हो किस लेवल तक पहुंच गए अगर गेम खेल रहा है तो क्या इंटरेस्टिंग गेम है क्या दो तीन सवाल और बच्चे को महसूस होता है कि पेरेंट्स इंटरेस्ट ले रहे हैं जैसे ही बच्चे को ये बात महसूस होती है कि पेरेंट्स जो हैं वो इंटरेस्ट ले रहे हैं उनका डिफेंसिव मोड कम हो जाता है और इस मोड को ट्रिगर नहीं करना है कम करना है ये सबसे पहला रूल है वहीं दूसरा और बहुत इम्पॉर्टेंट रूल है आपकी क्लियर एक्सपेक्टेशंस देखिए अक्सर आर्ग्यूमेंट्स इसलिए होते हैं कि रूल्स क्लियर नहीं होते आज एक घंटा खेला बच्चे ने कल तीन घंटा और परसों कोई लिमिट ही नहीं है बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं

फैमिली स्क्रीन एग्रीमेंट बनाइए, आर्ग्यूमेंट नहीं. और एग्रीमेंट में आप लिख सकते हैं कि भाई होमवर्क पहले, डिनर के वक्त नो फोन्स, बेडरूम में स्क्रीन नहीं, वीकेंड स्क्रीन टाइमिंग अलग रहेंगे, वीकडेज स्क्रीन टाइमिंग अलग रहेंगे और जो रूल्स हैं उन्हें सब फॉलो करेंगे. इस तरह से आप भी फॉलो करेंगे और बच्चा भी. तीसरी इम्पोर्टेंट बात या तीसरा इम्पोर्टेंट रूल है वार्निंग्स देना. अचानक स्क्रीन बंद करवाना बड़ा मुश्किल है और बच्चा जो है वो ज्यादा डिस्टर्ब हो जाता है, ज्यादा जो है वो प्रोवोक हो जाता है. वार्निंग्स दीजिए, स्लो ट्रांजिशंस, 10 मिनट पहले वार्निंग, 5 मिनट वार्निंग, 2 मिनट्स वार्निंग. ये तरीका इमोशनल रेजिस्टेंस को कम करता है, ये साइकोलॉजिस्ट कहते हैं, इसलिए मैंने आपके साथ ये शेयर की. एक और चौथा रूल जो मुझे लगता है बहुत ही इम्पोर्टेंट है वो है मॉडल व्हाट यू वांट. बच्चे सुनते नहीं हैं, देखते ज़्यादा हैं और हमेशा पता नहीं होता कि वो हमें कैसे कैसे कैसे कैसे ऑब्जर्व कर रहे हैं. अगर पेरेंट्स खुद हर वक्त फ़ोन पर हों तो बच्चे से फ़ोन कम यूज़ करने का कैसे कहेंगे. मान लीजिए कहते भी हैं तो बच्चे के जहन में ये मैसेज फीक जाता है. फैमिली को रोल मॉडल चाहिए, पेरेंट्स भी स्क्रीन डिसिप्लिन फॉलो करें उसके बाद कहें. पांचवा और बहुत ही पावरफुल तरीका, और ये बड़ा ही प्रैक्टिकल और बड़ा इम्पॉर्टेंट रूल है, वो है रिप्लेस का. रिप्लेस नॉट जस्ट रिमूव. रिमूव कर देते हैं हम चीज़ों को, छीन लेते हैं, रिमूव कर देते हैं, डांट देते हैं, जो कि तरीका सही नहीं है. हमें बेहतर अल्टरनेटिव्स देने हैं. अगर हम सिर्फ और सिर्फ रिमूव करेंगे, छीनेंगे तो रिजल्ट होगा फ्रस्ट्रेशन, एग्रेशन, आर्ग्यूमेंट, और भी हो सकता है बच्चा बहुत हाइपर हो जाए. लेकिन अगर हम रिप्लेस करेंगे तो शायद उस तरह का रिएक्शन ना आए. अब हम रिप्लेस कर सकते हैं किससे? स्पोर्ट्स से, ड्राइंग से, कुकिंग से, आर्ट एक्टिविटी है, कोई अच्छी कन्वर्सेशन है, स्टोरी टाइम है, या कोई और हेल्दी अल्टरनेटिव आपके जहन में है तो वो. इससे बच्चा जो है थोड़ा सरल वे में उस चीज को एक्सेप्ट करता है. छठा और एक और इम्पॉर्टेंट रूल वो है डोंट यूज स्क्रीन्स एज रिवॉर्ड. एंड दिस आई रिपीट, डोंट यूज स्क्रीन्स एज रिवॉर्ड, बिकॉज आई हैव सीन सो मेनी मदर्स सेइंग कि ये काम कर लो फिर तुम्हें फोन मिल जाएगा. प्लीज स्टॉप सेइंग दिस, प्लीज फॉर गॉड्स सेक. ये स्क्रीन की वैल्यू को बढ़ा रहा है बच्चे के दिल में कि वाह रिवॉर्ड मुझे मिलेगा वो भी स्क्रीन के फॉर्म में. यानी इसकी कितनी इम्पोर्टेंस है. स्क्रीन एक बहुत ही नॉर्मल एक्टिविटी या ब्लू नॉर्मल एक्टिविटी होनी चाहिए. इट जस्ट कुड बी एन एक्टिविटी, नॉट एट ऑल अ रिवॉर्ड. इसलिए इसे वैल्यूएबल चीज हरगिज मत बनाइए. कोशिश कीजिए कि ये स्टेटमेंट या ये सेंटेंस आपकी जबान से ना निकले. सातवां और एक और पावरफुल रूल जो मुझे लगता है सबसे पावरफुल है वो है सेल्फ रेगुलेशन. माफ कीजिएगा, फाइनल गोल जो है वो फोन पर कंट्रोल करना नहीं है बल्कि बच्चे को सेल्फ कंट्रोल सिखाना है, जिससे बच्चा खुद डिसाइड करने लग जाता है कि अब स्क्रीन टाइम बहुत हो गया. ये स्किल लाइफ के हर मोड़ पे उसके काम आती है. और जब बच्चे देखते हैं कि पेरेंट्स उन्हें इस तरह से गाइड कर रहे हैं कि वो उन्हें डोमिनेट नहीं कर रहे, तो ये स्किल बच्चे नेचुरली डेवलप कर लेते हैं. याद रखिए, कभी भी डिसिप्लिन डर से नहीं आएगा, डिसिप्लिन कनेक्शन से, रिलेशनशिप से आएगा. अब इतनी सारी चीज़ें तो मैंने आपको टिप्स दी, बताई, और मुझे उम्मीद है कि आप इन्हें फॉलो भी कर सकते हैं क्योंकि बहुत ही प्रैक्टिकल बातें मैंने रखी. कोई ऐसा कोई लेंथी चीज़ नहीं बताई जो आपके लिए कॉम्प्लिकेटेड हो. अब हमें और आपको बच्चों को टाइम टू टाइम फैमिली की इम्पोर्टेंस, टुगेदरनेस की इम्पोर्टेंस भी समझानी है. स्क्रीन के साथ बैलेंस क्रिएट करना बहुत ज़रूरी है क्योंकि हमें फैमिली मेंबर्स के बीच भी गुड बैलेंस क्रिएट करना है. स्क्रीन फैमिली को दूर भी कर सकती है और करीब भी ला सकती है. डिफरेंस सिर्फ इस बात पर डिपेंड करता है कि हम उसे कैसे यूज करते हैं. फैमिली के लिए कुछ बहुत ही पावरफुल हैबिट्स हैं, जैसे स्क्रीन फ्री डिनर्स, रोज सिर्फ 30 मिनट्स, कोई फोन नहीं, कोई टीवी नहीं, सिर्फ और सिर्फ फैमिली. और रिसर्च भी यकीन मानिए ये कहती है कि फैमिली मील्स कम्युनिकेशन और इमोशनल कनेक्शन को स्ट्रॉन्ग बनाती हैं. वहीं फैमिली एक्टिविटी नाइट्स, हफ्ते में एक नाइट कोई अच्छा सा गेम, कोई अच्छी सी स्टोरी, कोई कुकिंग चैलेंज, क्विज नाइट, ये चीज़ें कहने को एक्टिविटीज़ हैं लेकिन ये मेमोरीज क्रिएट करती. वहीं पर टेक टॉक टाइम,

प्रिया महीने में एक बार फैमिली मीटिंग, बच्चों से पूछिए ऑनलाइन क्या सीखा। ऐसा नहीं है कि हमें उन्हें डरा देना है टेक्नोलॉजी से, नहीं, टेक टॉक टाइम होना ही चाहिए, टेक के बारे में बात होनी चाहिए। पूछिए आपने क्या सीखा, जिससे बच्चा ये समझे कि जो टेक्नोलॉजी, जो गैजेट्स उसके हाथ में है, वो सिर्फ एंटरटेनमेंट का जरिया नहीं है, वो एक पावरफुल लर्निंग टूल भी है। क्या पसंद आया, किस चीज ने तुम्हें परेशान या डिस्टर्ब किया, ये ट्रस्ट कैसे स्ट्रॉन्ग होगा आपका और आपके बच्चे के बीच आपको पता ही नहीं चलेगा। कहने को छोटे छोटे सेंटेंसेस हैं, लेकिन इनका इम्पैक्ट बहुत ही स्ट्रॉन्ग। वहीं पर शेयर्ड स्क्रीन एक्सपीरियंस, कभी कभी साथ में मिलकर डॉक्यूमेंट्री देख लीजिए, कोई एजुकेशनल वीडियो देख लीजिए, और हाँ, स्पोर्ट्स देखिए, बच्चों को स्पोर्ट्स में तो कितना इंटरेस्ट आता है। स्क्रीन को कनेक्शन का टूल बनाइए, सेपरेशन का नहीं। यहाँ एक और छोटी सी कहानी मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती हूँ, और जितने भी बच्चे इस वक्त मुझे सुन रहे हैं तो उनके साथ भी। और ये कहानी है एक फैमिली की, अहमद और सारा। इस फैमिली के दो बच्चे थे, अली इनके वालिद साहब का नाम और हानिया इनकी अम्मा का नाम। घर में रोज मोबाइल पर, मोबाइल को लेकर झगड़ा होता। पापा कहते फोन रख दो, और बेटा कहता बस 5 मिनट, और वो 5 मिनट 30 मिनट कम बन जाते, पता ही नहीं चलता। मम्मी नाराज, बच्चे नाराज, हर रोज टेंशन। एक दिन पेरेंट्स ने अपनी अप्रोच चेंज करने का फैसला किया। उन्होंने फैमिली मीटिंग रखी, सब ने मिलकर उस मीटिंग को अटेंड किया। अब ये मीटिंग की कामयाबी पेरेंट्स ने बच्चों के ऊपर डाली, कहा कि मीटिंग प्लान करो, मीटिंग कैसे कोऑर्डिनेट करनी है वो करो, और मीटिंग का एजेंडा भी तुम ही शेयर करो। अब मीटिंग का एजेंडा जो रखा गया, वो बड़ा ही इंटरेस्टिंग टाइम था, फैमिली टाइम। यहाँ पर उन्होंने लिखा ST वर्सेस FT, स्क्रीन टाइम वर्सेस फैमिली टाइम। अब इस मीटिंग में बातचीत स्टार्ट हुई। अब क्योंकि बच्चों ने खुद ने मीटिंग अरेंज की थी, और उनको एजेंडा भी फैमिली टाइम दिया गया था, अब डिबेट जो थी स्क्रीन टाइम वर्सेस FT यानी फैमिली टाइम पर थी। पेरेंट्स ने कहा कि हम जो है वो स्क्रीन टाइम के प्रो बात करेंगे, मतलब स्क्रीन टाइम के फेवर में बोलेंगे। बच्चे बड़े हैरान थे और मजबूर भी थे, क्योंकि अब उनके पास एक ऑप्शन था, वो था फैमिली टाइम पर बोलने का। तो बस बच्चों ने ढूंढा फैमिली टाइम के बारे में, खकोड़ा निकाला क्या बेस्ट पॉइंट्स हो सकते हैं। अच्छा, इस मीटिंग को एक तरह का हेल्दी कंपटीशन भी रखा गया कि भाई एक डिबेट होगी, और पेरेंट्स वर्सेस बच्चे, कौन जीतता है कौन हारता है। तो पेरेंट्स ने भी अपने आप में तैयारी दिखाई भरपूर, जो भी स्क्रीन टाइम से रिलेटेड पॉइंट्स हो सकते हैं बेस्ट, सारे पॉजिटिव पॉइंट्स रखे जाने थे। ये कहा गया था कि नेगेटिव कुछ भी नहीं रखेंगे, दोनों तरफ से दोनों पक्ष जो हैं वो सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव पॉइंट्स रखेंगे। अब पेरेंट्स ने जो था वो स्क्रीन टाइम को लेकर बहुत सारे पॉजिटिव पॉइंट्स रखने शुरू कर दिए। इधर बच्चों ने भी भरपूर रिसर्च की, फैमिली टाइम, फैमिली वैल्यू, फैमिली टुगेदरनेस, बॉन्ड, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, इतनी बातें बच्चों ने कही कि एक मोड़ आया कि जो पेरेंट्स थे वो स्क्रीन टाइम के बारे में बहुत सारे प्रोस जो है वो गिना ही नहीं पा रहे थे, वो चुप हो गए। और बच्चों ने इतनी अच्छी तैयारी की थी, क्योंकि उनके दिमाग में ये नहीं था कि स्क्रीन टाइम उनका फेवरेट होने के बावजूद, उनके दिमाग में ये था कि हमें जीतना है। तो फैमिली टाइम ने उन्हें जितवा दिया, और इतने सारे प्रोज एंड कॉन्स जब उन्होंने देखे पढ़े, तो उन्हें समझ में आया कि वाकई फैमिली टाइम इज फार बेटर देन स्क्रीन टाइम। और इस तरह से इस एक्टिविटी ने, कम मीटिंग ने, कम डिबेट ने उन्हें बहुत कुछ सिखाया। तो ये कहानी भी, ये छोटा सा इंसिडेंट कहना चाहिए, कहानी तो नहीं, ये छोटा सा इंसिडेंट हमें और आपको ये सिखाता है कि जब फैमिली एक टीम बन जाए तो स्क्रीन टाइम प्रॉब्लम रहती ही नहीं है, आसानी से चीजें सॉल्व हो जाती हैं। दोस्तों, आज हम स्क्रीन टाइम की उस रियलिटी की बात कर रहे हैं जो हमारी और आपकी जिंदगी का एक बहुत अटूट हिस्सा बन चुका है। चाहे या हम ना चाहें, हम इस चीज को मानते हैं कि सोशल मीडिया एप्स और गेम्स इस तरह से डिजाइन किए गए हैं कि वो बार बार चेक किए जाए। हर नोटिफिकेशन, हर नया वीडियो, हर गेम रिवॉर्ड ब्रेन को कहीं ना कहीं टेम्परेरी सही, लेकिन एक्साइटमेंट तो देता है। अब इस एक्साइटमेंट को बच्चे कितनी जल्दी एडिक्शन में बदल लेते हैं, ये भी हमें समझाने की जरूरत नहीं है। ये चीजें बहुत कॉमन हो चुकी हैं, इसलिए पूरी तरह से बच पाना बड़ा मुश्किल है। एडल्ट्स भी कई बार जो है वो इस एडिक्शन का शिकार हो जाते हैं, बट दैट्स ओके। लेकिन कोशिश ये है कि हम इसे पूरी तरह से ना बचें, लेकिन इसे रिड्यूस करें।
अब रिड्यूस, पहले तो स्क्रीन टाइम के नुकसान आप जानते ही जानते हैं, आई थिंक मुझे रिपीट नहीं करना चाहिए। चलिए क्विक से मैं आप सबके लिए कर भी देती हूँ कि कई बार आपने और हमने देखा है कि बच्चा जो है वो पूरी पूरी रात जागता है और शायद पूरे पूरे दिन सोने लगता है। इससे इसकी बड़ी वजह है उसका स्क्रीन टाइम। स्क्रीन टाइम का जो सबसे बड़ा और पहला नुकसान है वो है स्लीप प्रॉब्लम्स। बच्चों का जो स्क्रीन की जो ब्लू लाइट है वो ब्रेन को सिग्नल देती है कि अभी दिन है और बॉडी स्लीप हार्मोन कम प्रोड्यूस करती है और रिजल्ट क्या होता है, नींद लेट आती है, सुबह उठना मुश्किल हो जाता है। इससे बच्चों की स्कूल परफॉर्मेंस पर भी असर पड़ता है। मतलब कोई भी बच्चा जो सुबह से शाम तक या अच्छा खासा टाइम स्क्रीन को दे रहा है, स्कूल थका हुआ जाएगा तो क्या वो उस तरह से पढ़ पाएगा, सीख पाएगा? नहीं। इसको, इस स्लीप पैटर्न को सुधारने में काफ़ी लोगों को महीने भी लग जाते हैं। तो ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है स्क्रीन टाइम का। उसके बाद हमने देखा है कि स्क्रीन टाइम के चलते बच्चों में जो फिजिकल एक्टिविटीज़ हैं वो कितनी कम हो जाती हैं। आजकल बच्चे जो है बॉडी मूवमेंट को पसंद ही नहीं करते, उन्हें रनिंग, साइकिलिंग या कोई दूसरा स्पोर्ट का वो थक जाते हैं या करना ही नहीं चाहते। ये सिर्फ फिटनेस की बात नहीं है, इमोशनल हेल्थ और इमोशनल वेलबींग के लिए भी ज़रूरी है। इसीलिए 5 घंटे ई गेम्स खेलने से अच्छा है कि आप उसे किसी भी फुटबॉल एकेडमी को ज्वाइन करवा दें। पहले तो वो रिलक्टेंट था लेकिन कुछ हफ्तों बाद की जो रिलक्टेंस है वो कम हो जाएगी और शायद फुटबॉल उसे पसंद आने लगे। तो मैंने एग्जाम्पल दिया, हो सकता है इसके अलावा कोई और स्पोर्ट हो जो आपके जहन में हो, जो आपको लगता है आपके बच्चे का इंटरेस्ट डेवलप हो सकता है बाय द टाइम, तो वो भी आप फॉलो करवा सकते हैं। वहीं पर एक फैमिली कम्युनिकेशन एक्टिविटी मैंने आपके साथ शेयर की, ये तो होनी ही चाहिए। आजकल पेरेंट्स बिजी हैं, शायद उस तरह से टाइम ही नहीं दे पाते, तो बच्चों के साथ वो कनेक्शन जो बिल्ड होना चाहिए वो नहीं होता। अब स्क्रीन टाइम को कम करने के लिए बहुत सारी चीज़ें मैंने आपको बताई। ये चीज़ याद रखिए कि इसे ग्रेजुअली रिड्यूस किया जा सकता है, पूरी तरह से ख़त्म नहीं किया जा सकता, क्योंकि ये हमारी और आपकी जो है वो आज के टाइम की ज़रूरत भी है। अब बहुत सारी बातें तो हमने आपके साथ शेयर की, वहीं पर आप और हम इन चीज़ों को किस तरह से इम्प्लीमेंट करते हैं या कर पाते हैं ये देखना बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। वैसे तो मैंने बहुत सारे आपको टिप्स दिए और अभी मुझे एक चीज़ और याद आ गई कि एक बड़ी अच्छी टिप किसी ने, मेरी एक फ्रेंड है, उन्होंने मेरे साथ शेयर की थी और वो कहती हैं कि एक फैमिली चार्जिंग स्टेशन हो, यानी घर में एक कॉमन चार्जिंग एरिया, नाइट टाइम पर सब डिवाइसेस वहाँ रखें, सिर्फ बच्चे ही नहीं पेरेंट्स भी। तो जब घर का रूल सबके लिए सेम होता है तो बच्चा भी फेयर फील करता है और वाकई कोऑपरेट भी करता है। एक और किस्सा मैं आपको सुनाऊंगी और ये शायद मेरे नेबर्स का किस्सा है। एक फैमिली थी और उनके 3 बच्चे। यहाँ पर ये फैमिली, मेरा मतलब उनके जो पेरेंट्स थे, वो हर रोज स्क्रीन टाइम को लेकर परेशान रहते, हर रोज उनके घर में टेंशन और आर्ग्यूमेंट्स होते। एक दिन उन्होंने सोचा कि हम क्या बेहतर कर सकते हैं। बच्चों को पनिश करके देख लिया, छीन के देख लिया, छुपा के देख लिया, बट कुछ भी जो है उसने वर्क नहीं किया। अब इन्होंने सोचा कि कुछ नहीं तो एक चांस और देते हैं, बच्चों के साथ बैठ के ओपन कम्युनिकेशन। इस ओपन कम्युनिकेशन ने बच्चे के अंदर एक कॉन्फिडेंस बिल्ड किया, सिर्फ और सिर्फ स्क्रीन टाइम के पॉजिटिव बात और उन बातों के बीच बीच में अपनी बात कहना कि मेरे साथ मैं जो था वो आज मैं सिंपली ऐसी स्क्रीन स्क्रॉल करता रह गया और एक मीटिंग थी मैंने मिस कर दी, उसकी जो स्टार्ट थी वो मैंने मिस कर दी, उसके बाद मुझे ना डांट पड़ी।

कि मैं थोड़ा मोहतात रहूं। और ये ना चाह के जो मैसेज मिलता है ये बड़ा स्ट्रांग होता है। जब आप चाह के मैसेज चाहते हैं पहुंचे तो वो शायद एक नसीहत बच्चे जो है ना वो उतना सीरियस नहीं लेते। लेकिन अगर आप यूं ही बातों बातों में अपनी स्टोरीज के थ्रू, अपने एक्सपीरियंसेस के थ्रू, अपने इंसिडेंट्स के थ्रू बच्चे तक बात पहुंचाते हैं तो बच्चा उसे बहुत ज़्यादा सीरियसली लेता है। एक और चीज़ मैं आपके साथ शेयर करूंगी और ये है 20-20-20 रूल। आई स्ट्रेन अवॉइड करने के लिए सिंपल रूल भी आप याद रख सकते हैं। हर 20 मिनट बाद 20 सेकेंड्स के लिए 20 फीट दूरी से आप इन चीज़ को देखिए, ये आइस को रिलैक्स करती है। अगर बच्चे स्टडी या स्क्रीन यूज़ कर रहे हैं तो उन्हें भी ये हैबिट सिखाई जा सकती है। वहीं जब बच्चे ये स्किल्स सीख लेते हैं तो पेरेंट्स को हर वक्त मॉनिटरिंग की ज़रूरत नहीं पड़ती। बच्चे अपने आप उन चीज़ों से जो है वो वैल्यूबल एक्सट्रैक्शन निकाल लेते हैं। एक और मैं आपको बात बताऊँ, एक टीचर की बात, और उन्होंने एक बार बच्चों से बड़ा इंटरेस्टिंगली पूछा कि बच्चों बताओ तुम सब के लिए सबसे ज़्यादा वैल्यूबल चीज़ क्या है। बहुत सारे बच्चों ने कहा मेरी साइकिल, किसी ने कहा मेरा मोबाइल, किसी ने कहा मेरा गेमिंग डिवाइस। टीचर ने इतने सारे आंसर्स जमा करे और फिर मुस्कुरा कर कहा सबसे वैल्यूबल चीज़ है दोस्तों टाइम। अगर टाइम चला गया तो वापस नहीं आता। क्लास के एक बच्चे ने उस दिन घर जाके अपना टाइम चेक करा कि मैं कितने घंटे जो है वो स्क्रीन पे निकाल रहा हूँ, और उसे पता चला कि वो हफ्ते में लगभग 25 घंटे गेम्स पर स्पेंड करता है। उसने डिसाइड किया कि हर दिन सिर्फ 30 मिनट कम करेगा, सिर्फ 30 मिनट, और एक साल के अंदर उसने डजंस बुक रीड कर ली, स्पोर्ट्स वो ज्वाइन कर सका, नए दोस्त बने। और उसने कहा कि मुझे पता ही नहीं था कि मेरे पास तो इतना ज़्यादा वक्त था। ये छोटी सी इंसिडेंट हमें और आपको ये याद दिलाता है कि स्क्रीन टाइम को कम करना सिर्फ मोबाइल कम करना नहीं है बल्कि जिंदगी को ज़्यादा भरपूर बनाना है। देखिए, स्क्रीन टाइम मैनेजमेंट का मतलब टेक्नोलॉजी से जंग करना नहीं, बैलेंस क्रिएट करना है। टेक्नोलॉजी अच्छी भी हो सकती है और बुरी भी, ये डिपेंड करता है कि हम उसका इस्तेमाल कैसे करते हैं। अपने बच्चों को सिर्फ रूल्स मत दीजिए, रीजन समझाइए, सिर्फ लिमिट मत कीजिए, अल्टरनेटिव्स दीजिए, सिर्फ कंट्रोल मत कीजिए, कनेक्शन क्रिएट कीजिए। याद रखिए, बच्चों को सबसे ज़्यादा जिस चीज़ की ज़रूरत होती है वो है आज के दौर में लेटेस्ट मोबाइल। शायद उनकी पढ़ाई से रिलेटेड और भी सारी चीज़ें हैं, उन्हें लेटेस्ट ऐप की भी ज़रूरत है उन्हें, लेकिन जो चीज़ सबसे ज़्यादा मैंडेटरी है वो है आपका कनेक्शन। आप अपना वक्त, अपनी मोहब्बत, अपनी तवज्जो बच्चों को दें। जब स्ट्रॉन्ग होती है फैमिली, जब बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होता है, कम्युनिकेशन स्ट्रॉन्ग होता है, तो रिश्ते हेल्दी होते हैं। स्क्रीन टाइम नेचुरली अपनी जगह पर कम होने लगता है, ख़त्म नहीं, कम। आप बच्चों को समझाएं कि टेक्नोलॉजी को सर्वेंट की तरह ट्रीट करें, उसे अपना मास्टर ना बनाएं, और यही सक्सेसफुल डिजिटल पेरेंटिंग का राज भी है।

0: एक स्ट्रॉन्ग फैमिली बने, मिसाली फैमिली बने और बच्चे ऐसे बने जो वाकई दूसरे बच्चों के लिए भी एक ट्रू एग्जाम्पलर हो। बस इसी खूबसूरत पैगाम के साथ अब मैं यानी नाजिया आपसे इजाजत लूंगी। फैमिली मैटर में हम जो हैं वो एक और नए टॉपिक को अगले वीक एक्सप्लोर करेंगे। तब तक हम चाहेंगे कि आप हमारे साथ जुड़े रहिए। हमसे जुड़ सकते हैं आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स पर जाकर। हम आपको सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर मिलते हैं FM 107 के नाम से। हम FB पे हैं, इंस्टा पे हैं, एक्स पे हैं, यूट्यूब पर हैं। इसके अलावा अगर किसी तरह का कोई आपका फीडबैक है या कुछ और आप कहना सुनना चाहते हैं तो डेफिनेटली हमारे साथ जुड़िए हमारे व्हाट्सएप नंबर पे 666-22-107। और तब तक के लिए खुश रहिए, कनेक्टेड रहिए और अपने घर को मोहब्बत, समझ और बैलेंस के साथ मजबूत बनाए रखिए। इट्स मी नासिया, सी यू नेक्स्ट वीक। अपना ख्याल रखिए, सुनते रहिए FM 107, दिल से देसी।
1: फैमिली मैटर्स, क्योंकि हर फैमिली मैटर्स।
2: Anytime, anywhere.
3: Yes, anytime, anywhere.
2: कभी भी और कहीं भी आप सुन सकते हैं FM 107। Log into our website urduradio.qa और download the app QMC now.

मुकाबले के दरवाजे खुल चुके हैं पॉइंट्स की दौड़ का आगाज हो चुका है मुकाबले फिर सजेंगे और हर राउंड लेकर आएगा एक नई कहानी यतूर लीग सिर्फ और सिर्फ अलकास चैनल और शूफ प्लेटफॉर्म पर

0: आप सुन रहे हैं FM 107
1: दिल से देसी।
2: दोस्तों, फायरवर्क्स या फायर क्रैकर्स को लाइसेंस के बगैर यूज करना या अपनी कस्टडी में रखना कानूनन मना है, और ये एक जुर्म है जो आर्टिकल नंबर 18 ऑफ लॉ नंबर 7 ऑफ 2020 ऑन फायरवर्क्स के तहत पनिशेबल है। इस कानून के मुताबिक अगर कोई शख्स फायरवर्क्स को बिना इजाजत इस्तेमाल करता है तो उस पर जुर्माना हत्ता के जेल तक की सजा लग सकती है। आपकी अवेयरनेस और कानून की अंडरस्टैंडिंग सिर्फ आपकी नहीं बल्कि आसपास के लोगों की सेफ्टी के लिए भी बेहद अहम है। फायरवर्क्स जाहिरी तौर पर फन लगते हैं, लेकिन बिना कंट्रोल के वो पब्लिक सेफ्टी रिस्क भी बन सकते हैं, इसलिए कॉम्पिटेंट अथॉरिटी से प्रॉपर लाइसेंस लेना लाजमी है। वजारत दाखला का कहना है कि कानून का एहतराम करना हम सब की जिम्मेदारी है ताकि हम अपनी कम्युनिटी को सेफ और रिस्पॉन्सिबल बना सकें। FM 107 आपकी और आपकी फैमिलीज की हिफाजत की ख्वाहिश करता है।

0: आप सुन रहे हैं FM 107
1: दिल से देसी।
2: FM 107 presents Tech Update.
3: Assalamualaikum, मैं दुहा वाला कबीर FM 107 पे एंड वेलकम टू अनदर टेक अपडेट। आज जो है वेबसाइट्स बहुत जरूरी हैं। आज एजुकेशनल पर्पस के लिए हम वेबसाइट्स लेकर आए हैं। मेरा मकसद ये है कि मैं आज उन बच्चों तक पहुंच सकूं, उन माँ बाप तक स्पेशली जो अपने बच्चों को अलग अलग तरीके से एजुकेट करने की कोशिश करते हैं, इंटरैक्टिव तरीके से, जो माँ बाप क्रिएटिवली अप्रोच रखते हैं, कुल मिला के उनकी बात कर रहा हूँ मैं। तो आज उन्हीं के लिए है सारी की सारी वेबसाइट्स, नहीं इनफैक्ट दो वेबसाइट्स उनके

0: पजल के थ्रू पढ़ाई कर सकते हैं और ये ब्रेन के ना उन हिस्सों को टैप इन करता है जो यूजुअली गेम्स करते हैं। और मैं हमेशा से इस बात के लिए आगे आता हूँ, वकालत करता हूँ कि गेम्स आपके ब्रेन को खोलते हैं। तो वाले गेम जो बच्चों के लिए और एलिमेंट्री स्कूल तक के लिए जो बच्चों के दिमाग को खोलेंगे भी और उन्हें बहुत कुछ सिखाएंगे, ये वेबसाइट उनके काम की है, toytheater.com। इस वेबसाइट पे जरूर जरूर जाइएगा। इससे मिलती जुलती एक और वेबसाइट मैं आपको बता देता हूँ। अगली वेबसाइट का नाम है starfall.com, starfall.com, starfall.com। इस वेबसाइट पे जब आप जाएंगे तो इस वेबसाइट पर भी आपको शुरुआत से किंडरगार्टन से लेकर एलिमेंट्री तक बच्चों को सिखाने के लिए बहुत सारी एक्टिविटीज हैं। इसमें क्या है ना, रीडिंग का भी जो हिसाब किताब है ना वो एनिमेशन के जरिए है, तो वो किताब उनके सामने खुलेगी, वो किताबें पढ़ेंगे, किताबें उनसे बात भी करेंगी और सारी की सारी कहानी है कि एनिमेशन के थ्रू उनकी नजरों के सामने आएगी। इट इज इमेंसली ब्यूटीफुल। ये जो मौका है ना, ये अपने बच्चों को दीजिए, बिकॉज आई थिंक कॉग्निटिव जो एबिलिटीज होती हैं दिमाग की वो अनलॉक होती हैं और एनिमेशन के थ्रू बहुत इंटरेस्टिंग हो जाती है पढ़ाई, है ना। तो रादर देन यू सिटिंग एंड टेलिंग देम पढ़ो पढ़ो पढ़ो पढ़ो पढ़ो एंड टेलिंग देम स्टोरीज, ये जो है ना उनको मदद करेगा। चाहे उनके हाथ पे फोन्स क्यों ना हो, अगर आपने ये कर दिया है ना तो उनको एक आदत लगेगी और वो आदत उन्हें बहुत सारी चीजें सिखाएगी, कलर्स हो, नाम हो, मैथ्स के सम्स हो, या फिर एक बेसिक एक कहानी सुनाने का तरीका हो। और कहानी सुनाने के तरीके से बेहतर कोई और तरीका नहीं है जो बच्चे के दिमाग को टैप इन करता है, बिकॉज उसके इमेजिनेटिव वर्ल्ड को छू लेना इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट अगर आप उसे सच में कुछ सिखाना चाहते हैं। दैट इज सो ट्रू। मैं कोई इसमें डॉक्टर नहीं हूं, बट जहां तक मैंने जाना है, देखा है, पढ़ा है, वो तो भाई यही है। तो आई जस्ट वॉन्ट टू गिव दिस टू यू कि आपको अच्छा लगे। अगली वेबसाइट की तरफ बढ़ते हैं। अगली वेबसाइट का जो नाम है ये है chatforce.com, chatforce, chatforce.com। इस वेबसाइट में जब आप जाएंगे तो आपको एक मौका मिलेगा एक गेम अपने हिसाब से फ्री में बनाने का। ट्रस्ट मी, मोबाइल गेम आप अपने आप बना सकते हैं और आपका इमेजिनेशन जितना लंबा दौड़ाना चाहे घोड़े को दौड़ाइए भाई। आपको कोई सा इसमें कैसा एनवायरनमेंट चाहिए, कैसा म्यूजिक चाहिए, आप कैसा देखते हैं, वो गेम है क्या, वो सब कुछ आप एक प्रॉम्प्ट में दे सकते हैं। एंड ये हालांकि मजे मजे में आप कुछ बनाएंगे, मगर आपको सीखने को मिलेगा कि गेम्स में क्या क्या चीज़ें की फैक्टर्स होती हैं, एनवायरनमेंट कैसे होता है, क्या बिल्डअप होता है, और ये सब चीज़ें सीख के हो सकता है यू नेवर नो कि किसी का इंटरेस्ट किसी और फील्ड को अनलॉक कर दे। तो डेफिनेटली ये तो खैर एडल्ट्स के लिए भी है, आप अगर गेम बनाना चाहें आप बनाइए, बिंदास बनाइए और सीखिए इससे। यू नेवर नो कि एक और इंडस्ट्री को आप अनलॉक कर लें अपने लिए एंड डेफिनेटली आप काम आ सकते। सो chatforce.com ये है जी इसका नाम। जरा खबरों की तरफ बढ़ते हैं। देखिए खबरों में मैं बताना चाहूंगा, साल का आखिर होने वाला है, अभी अगर आप कोई प्रोडक्ट खरीदने की कोशिश कर रहे हैं तो अभी आप खरीद दीजिए। मैं सही बता रहा हूँ, विंटर क्या आते आते मतलब टुवर्ड्स द फॉल सीजन में कुछ ही प्रोडक्ट्स हैं जो कम जो जिनका प्राइस कम होगा, बाकी सबके सब अपने प्राइस पे अड़े रहेंगे। हाउएवर अभी एक जंग जो है वो फोल्डेबल फोन्स की चल रही है जिसमें आपको डिस्काउंट मिलने के चांसेस हैं। रिसेंटली एक आर्टिकल में छपा है कि अभी तो रूमर्ड है बट अगर उसकी माने तो टुवर्ड्स द फॉल आपको बहुत सारे जो फोल्डेबल फोन्स हैं उस पे एक प्राइस कट मिल सकता है। ऑल द बेस्ट फॉर दैट। तो ये थी टेक अपडेट, मैं दुआ वाला कबीर साइनिंग ऑफ। अपना ख्याल रखिएगा, आप बेहद बेहद जरूरी है।
1: FM 107 पर अपना बिजनेस एडवर्टाइज करने के लिए आज ही राब्ता करें, आज ही राब्ता करें हमारी कतर मीडिया कॉरपोरेशन की मार्केटिंग टीम से। कॉल करें 4488886 पर या ईमेल करें marketing@qmc.qa।
2: आपने सुना हमें ऑन एयर, नाउ फॉलो अस ऑन फेसबुक एंड इंस्टाग्राम @FM107 कतर। दिल से देसी।

desi. Scam alert. अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु. एफएम 107 पे फजील के साथ दोस्तों इस्तकबाल है एक नए दिन में आप सभी का. और ये शो है या ये एपिसोड है फ्रॉड अवेयरनेस, जहां पर नए जमाने के नए फ्रॉड के बारे में आपको मैं अवेयर करता रहता हूं. और आज जिस फ्रॉड के बारे में मैं बात करने वाला हूं, इस फ्रॉड में लोग बड़े आसानी से फंस जाते हैं, चाहे वो घर की फीमेल्स हो या फिर सोशल मीडिया पे एक्टिव कोई लड़का हो या फिर सोशल मीडिया पे एक्टिव कोई बच्चे हो, ये सब बड़े आसानी से इस फेक या कहें फ्रॉड में फंस जाते हैं. ये है फेक सोशल मीडिया गिव अवेज. ये एक डीप स्कैम है. दोस्तों ये काम कैसे करता है, सबसे पहले इस पर बात करते हैं. सोशल मीडिया पर चलने वाला ये फेक गिव अवेज दिखने में बहुत ही ज्यादा अट्रैक्टिव लगता है, लेकिन इनके पीछे एक बहुत बड़ा साइबर क्राइम नेटवर्क होता है. इस स्कैम को करने के लिए क्रिमिनल सबसे पहले आइडेंटिटी थेफ्ट का सहारा लेते हैं. वो आपके किसी बेहद क्लोज फ्रेंड की प्रोफाइल को टारगेट करते हैं, उनकी सारी फोटोज, कवर पिक्चर, बायो, पर्सनल स्टेटस, अपडेट्स को सब चुरा लेते हैं. एक बिल्कुल फिर डुप्लीकेट फेक प्रोफाइल क्रिएट की जाती है. इसके बाद आपको उस डुप्लीकेट प्रोफाइल से एक नई फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजी जाती है. चैट शुरू करते ही वो झूठ बोलते हैं, मेरा पुराना अकाउंट ब्लॉक है, हैक हो गया है, इसलिए मैंने ये बैकअप आईडी बनाई है. जैसे ही आप उनकी रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कर लेते हैं, वो फेक फ्रेंड आपसे एक बड़ी एक्साइटिंग ऑफर शेयर करता है. वो बोलेगा कि मैंने अभी एक

सीक्रेट गवर्नमेंट ग्रांट जीता है या मुझे एक मैसिव इंटरनेशनल कैश गिव अवे में लाखों रुपए मिले हैं। आपका लालच बढ़ाने के लिए वो कहेगा कि मैंने विनर्स लिस्ट चेक की है, उसमें तेरा भी नाम शामिल है, मुझे तो पैसे मिल गए, तू भी अपने प्राइज मनी को क्लेम कर सकता है। वो आपको चैट पर एक एक्सटर्नल लिंक भेजेगा और बोलेगा कि इस लिंक पर क्लिक करके अपनी बैंक डिटेल्स और लॉगिन डिटेल्स भर दो ताकि प्राइज मनी आपके अकाउंट में ट्रांसफर हो सके। देखिए ये तो मैंने बहुत छोटे में बता दिया, लेकिन और भी बहुत ज्यादा ट्रिक जो है ये स्कैमर्स उस फेक प्रोफाइल से लगाते हैं ताकि आपको फंसाया जा सके। लेकिन रियलिटी ये होती है कि जैसे ही आप उस फ्रॉड लिंक पर क्लिक करते हैं, आपके फोन या कंप्यूटर में ऑटोमेटिक मालवेयर और स्पाईवेयर डाउनलोड हो जाता है। ये मालवेयर आपके बैंक पासवर्ड्स, OTPs और सोशल मीडिया लॉगिन क्रेडेंशियल्स को चुरा कर हैकर के पास भेज देता है और कुछ ही मिनट्स में आपका बैंक अकाउंट पूरी तरह खाली हो जाता है। लेकिन इस तरह के फ्रॉड से बचने का कंप्लीट सॉल्यूशन भी है दोस्तों। कुछ 3 सॉल्यूशंस ऐसे हैं जिनको अगर आप अपनाएंगे तो इस तरह के फ्रॉड से बड़े आसानी से आप बच जाएंगे। सबसे पहला तरीका है इस तरह के फ्रॉड से बचने के लिए, वो है क्रॉस वेरीफाई वाया अल्टरनेटिव चैनल्स। जब भी कोई दोस्त अचानक सोशल मीडिया पर फ्री मनी, गवर्नमेंट ग्रांट्स या लॉटरी की बातें करने लगे तो तुरंत अलर्ट हो जाए। उस आईडी पर रिप्लाई करने के बजाय उन्हें फोन कॉल करें, पर्सनल टेक्स्ट मैसेज या किसी दूसरी मैसेजिंग ऐप पर कॉन्टेक्ट करें और पूछें कि क्या उन्होंने सच में कोई ऐसा लिंक भेजा है या नहीं। दूसरा तरीका है एनालाइज द प्रोफाइल एज एंड फॉलोवर्स एज वेल। किसी भी पुराने दोस्त की नई रिक्वेस्ट एक्सेप्ट करने से पहले उनकी प्रोफाइल का हिस्ट्री जरूर चेक करें, देखें कि वो अकाउंट कब बना है। अगर अकाउंट बिल्कुल नया है, उसमें सिर्फ 5 से 10 फॉलोवर्स हैं और पोस्ट की डेट सिर्फ 1, 2, 3, 4, 6 दिन पुरानी है तो समझ लीजिए कि ये 100% एक फेक डुप्लीकेट प्रोफाइल है जो आपको ठगने के लिए बनाई गई है। तीसरा तरीका है नेवर क्लिक एंड रिपोर्ट इमीडिएटली। ऐसे किसी भी सस्पिशियस एक्सटर्नल गिव अवे लिंक पर क्लिक बिल्कुल ना करें। उस अकाउंट की प्रोफाइल पर जाकर फेक अकाउंट प्रिटेंडिंग टू बी समवन एल्स का ये ऑप्शन जो है वो आप रिपोर्ट कर सकते हैं और बिल्कुल एडमिन को रिपोर्ट करना ये आपकी ड्यूटी भी है। अपने बाकी फ्रेंड्स को भी टाइमलाइन पर अलर्ट कर दें ताकि कोई और उस लिंक पर क्लिक ना करे और लोगों को बताएं कि आपके दोस्त के नाम की एक फेक प्रोफाइल बनी है। इस तरह से आप अपने दोस्तों को और बाकी लोगों को बचा भी सकते हैं खुद को बचाने के साथ साथ। इसी के साथ मुझे यानी कि फजील को दीजिए इजाजत। इंशाल्लाह मुलाकात होगी कल एक नए जमाने के नए फ्रॉड के बारे में बात करते हुए और आपको फ्रॉड से अवेयर करते हुए। सुनते रहे FM 107, दिल से देसी। स्कैम अलर्ट।

अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप सुन रहे हैं एफएम 107 और स्पोर्ट्स हाईलाइट के साथ, मैं हूं आपका होस्ट मोहम्मद अमीन। दोस्तों, फुटबॉल में अगर माराडोना को जीनियस कहा जाता है, टेनिस में रॉजर फेडरर को आर्टिस्ट, तो शतरंज की दुनिया में एक नाम ऐसा है जिन्हें अक्सर शतरंज का बादशाह कहा जाता है। यहां दोस्तों, रशिया के गैरी कास्पारोव। कास्पारोव सिर्फ एक ग्रेट शतरंज खिलाड़ी नहीं थे, वो एक ऐसे कॉम्पिटिटर थे जो अपने ओपोनेंट को बोर्ड पर ही नहीं बल्कि जहनी तौर पर भी चैलेंज करते थे। हाँ, मैंने ये कहा कि वो थे, आज भी गैरी कास्पारोव चेस खेलते हैं। आई मीन देयर इज नो रिटायरमेंट फॉर एनी चेस प्लेयर। 1963 में बाकू में पैदा होने वाले कास्पारोव ने बहुत छोटी सी उम्र में अपनी एक्स्ट्राऑर्डिनरी टैलेंट का सबूत देना शुरू कर दिया था। सिर्फ 22 साल की उम्र में 1985 में, टू बी वेरी प्रोसाइज, सन 1985 में वो दुनिया के सबसे कम उम्र वर्ल्ड चैंपियन बन गए। और फिर उन्होंने तकरीबन 2 decades तक वर्ल्ड चेस पर अपनी हुकूमत कायम रखी। अजय बताना चलो कि 1985 में उन्होंने हराया किसको था। उन्होंने हराया था उस वक्त के अनदर लेजेंडरी सोवियत यूनियन के टॉप, वर्ल्ड के टॉप चेस प्लेयर अनातोली कारपोव को। लेकिन सवाल यह है कि कास्पारोव इतने अच्छे क्यों थे या क्यों हैं? उनकी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ उनकी कैलकुलेशन। वो चेस बोर्ड पर बहुत आगे तक सोच सकते थे। जहां आम खिलाड़ी एक या दो मूव्स आगे देखता है, कास्पारोव कई पॉसिबिलिटीज को एक साथ कैलकुलेट करने की कोशिश करते थे। लेकिन सब कैलकुलेशन ही सब कुछ नहीं होता है। कास्पारोव की ओपनिंग प्रिपरेशन लेजेंडरी थी। वो अपने ओपोनेंट्स के गेम्स का गहरा जो यू नो फोकस था उसको नोट करते थे, उनकी वीकनेसेस ढूंढते और फिर मैच के लिए स्पेसिफिक स्ट्रेटजीज तैयार करते। मतलब एक शार्प आई, मतलब बहुत ही मतलब तीखी नजर से अपने ओपोनेंट को देखना, उनके मूव्स को नोट करना, मतलब एक चेस खिलाड़ी के अंदर ये सलाहियत बहुत कम खिलाड़ियों में हमने देखा है। और वहां पे एक्सेप्शनल वाज गैरी कास्पारोव। आज के कंप्यूटर असिस्टेड चेस के दौर में जो चीज नॉर्मल लगती है, कास्पारोव के जमाने में उस लेवल की प्रिपरेशन बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरी समझी जाती थी। और फिर आती है उनकी एग्रेसिव स्टाइल। कास्पारोव को सिर्फ चेस खेलना पसंद नहीं था, वो पोजीशन को कॉम्प्लिकेटेड बनाते, प्रेशर क्रिएट करते और ओपोनेंट को डिफिकल्ट डिसीजंस लेने पर मजबूर कर देते। उनकी आंखों में वो कॉन्फिडेंस नजर आता था कि वो मुश्किल पोजीशन में भी कुछ ना कुछ नया निकाल लेंगे। लेकिन कास्पारोव की सबसे मशहूर राइवलरी थी अनातोली कारपोव के साथ, जिसके बारे में आपको बताया था। 1985 में उनको हराने के बाद ही बिकेम द यंगेस्ट वर्ल्ड चैंपियन। कास्पारोव और कारपोव बिल्कुल मुख्तलिफ स्टाइल्स के खिलाड़ी थे। कारपोव को पोजिशनल जीनियस कहा जाता था। वो धीरे धीरे ओपोनेंट की पोजिशन को स्क्वीज करते और छोटी सी वीकनेस का फायदा उठाते। दूसरी तरफ कास्पारोव एनर्जी और एग्रेशन लेकर आते। 1984 में दोनों के दरमियान वर्ल्ड चैंपियनशिप मैच शुरू हुआ। मैच इतना लंबा और इंटेंस हो गया कि आखिरकार ऑथोरिटीज ने इसे रोक दिया। अगले साल यानी 1985 में दोनों दोबारा आमने सामने आए और कास्पारोव ने कारपोव को हराकर वर्ल्ड चैंपियन का टाइटल हासिल कर लिया। लेकिन कहानी यहां खत्म नहीं होती है। कारपोव और कास्पारोव ने

वर्ल्ड चैंपियनशिप के लिए कई बार मुकाबला किया। हर मैच में स्ट्रेटजी, साइकोलॉजी और नर्व्स का जबरदस्त इम्तिहान होता था। ये राइवलरी चेस हिस्ट्री की सबसे लेजेंडरी राइवलरीज में शुमार होती है। फिर 1990s में कास्परोव का सामना हुआ एक और जबरदस्त ओपोनेंट के साथ, और वो थे और हैं इंडिया के विश्वनाथन आनंद। आनंद की स्पीड, प्रिपरेशन और टैक्टिकल ब्रिलियंस ने कास्परोव के लिए एक नया चैलेंज पैदा किया। 1995 में दोनों ने वर्ल्ड चैंपियनशिप मैच खेला। कास्परोव ने मैच जीता, लेकिन आनंद ने दुनिया को दिखा दिया कि इंडिया से एक ऐसा चेस सुपरस्टार आ चुका है जो वर्ल्ड चैंपियन को भी सीरियस चैलेंज दे सकता है। और दोस्तों, यही कास्परोव की ग्रेटनेस का एक और रीजन है। वो सिर्फ अपने जमाने के प्लेयर से नहीं लड़ते थे, यानी चेस करते थे या राइवलरी रखते थे, वो चेस को इवॉल्व करने पर मजबूर करते थे। आज के मॉडर्न चेस में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, पावरफुल इंजन्स और ऑनलाइन डेटाबेसेस ने गेम को बिल्कुल बदल दिया है, लेकिन कास्पारोव की कैलकुलेशन, प्रिपरेशन, अटैकिंग माइंडसेट और साइकोलॉजिकल स्ट्रेंथ आज भी चेस खिलाड़ियों के लिए एक इंस्पिरेशन है। शायद इसीलिए गैरी कास्पारोव को सिर्फ एक वर्ल्ड चैंपियन कहना कम होगा। वो एक चेस रेवोल्यूशनरी थे। उन्होंने हमें दिखाया कि शतरंज सिर्फ 64 खानों और 32 मोहरों का गेम नहीं, ये इमेजिनेशन, डिसिप्लिन, पेशेंस, कैलकुलेशन और सबसे बढ़कर ह्यूमन माइंड की पावर का इम्तिहान है। तो दोस्तों, उम्मीद है आपको हमारा आज का ये स्पोर्ट्स सेगमेंट पसंद आया होगा। अगली बार एक नए लेजेंड की कहानी के साथ वापस आएंगे। तब तक के लिए मुझे यानी मोहम्मद अमीन और साउंड डिजाइनर नदीम अंसारी को दीजिए इजाजत। खुश रहें, सेहतमंद रहें और हमेशा अपना जज्बा जिंदा रखें। फी अमानिल्लाह।

0: आप सुन रहे हैं FM 107
1: दिल से देसी।
2: अस्सलाम वालेकुम, आप सुन रहे हैं कल्चर मोमेंट। मैं हूं आपकी आरजे महावश। इस 5 मिनट के सफर में हम बात करेंगे कतर की खूबसूरत सकाफत, रिवायत और विरसे की। यहाँ हर रसम, हर लिबास, हर खाने और हर मेहमान नवाजी के पीछे एक प्यारी सी कहानी होती है। आइए मिलकर कतर की सकाफत को समझें, महसूस करें और इस विरसे को अगली नस्लों तक पहुँचाने का अहद करें। कतर की सकाफत में दस्तकारी को बहुत अहमियत हासिल है। ये हुनर सिर्फ खूबसूरत अशिया तैयार करने का जरिया नहीं, बल्कि मेहनत, सबर, तसव्वुर और रिवायत को जिंदा रखने का तरीका भी है। कतरी दस्तकारी में ऐसी चीजें शामिल हैं जो रोजमर्रा जिंदगी, घर की जरूरियात और खास मौकों से जुड़ी हुई हैं। पुराने वक्त में घर की बहुत सी अशिया हाथ से तैयार की जाती थी। लोग अपनी जरूरत के मुताबिक कपड़ों, बर्तनों, टोकरियों और दूसरी चीजों पर काम करते थे। ये हुनर घरों और खानदानों में सीखे और सिखाए जाते थे। इसी तरह दस्तकारी का इल्म एक नस्ल से दूसरी नस्ल तक मुंतकिल होता रहा। कतर की मशहूर रिवायती दस्तकारियों में सद्दू बुनाई का खास तौर पर नाम लिया जाता है। सद्दू में रंगीन धागों और मुख्तलिफ नक्शों की मदद से कपड़ा तैयार किया जाता है। ये बुनाई पहले जरूरी अशिया बनाने के लिए भी इस्तेमाल होती थी। आज ये कतरी वर्से और हुनरमंदी की खूबसूरत अलामत समझी जाती है। सद्दू बुनाई के लिए सबर और बहुत तवज्जो दरकार होती है। हुनरमंद एक एक धागे को तरतीब के साथ बुनकर कपड़े पर नक्श बनाता है। रंगों का इंतखाब और नक्शों की तरतीब इस काम को दिलचस्प बनाती है। रिवायती सद्दू नक्शों में अक्सर कुदरत, सहराई जिंदगी और रोजमर्रा के तजुर्बात की झलक मिल सकती है। इन नक्शों की अहमियत सिर्फ जाहिरी खूबसूरती में नहीं, बल्कि उस हुनर के साथ जुड़ी यादों और कहानियों में भी होती है। सद्दू का काम अक्सर घरों में मिलजुल कर किया जाता था। खवातीन एक साथ बैठकर बुनाई करती थीं और इसी दौरान गुफ्तगू, कहानियां और तजुर्बे भी शेयर होते थे। इसी तरह दस्तकारी एक समाजी राबते का जरिया भी बन जाती थी। इस हुनर में इस्तेमाल होने वाले रंग और धागे मशहूर तौर पर सहराई माहौल से मुतासिर होते थे। काला, सफेद, सुर्ख और पीला जैसे रंग अक्सर दिखाई जाते हैं। हर रंग और नक्श को लोग अपनी पसंद और दस्तकारी के अंदाज के मुताबिक तरतीब देते हैं। सद्दू से बनने वाली अशिया में रिवायती कपड़े, सजावटी चीजें, कुशन, चादरें और दूसरी अशिया शामिल हो सकती हैं। आज के दौर में उन्हें घर की सजावट और सकाफती पेशकश के तौर पर भी पसंद किया जाता है। दस्तकारी की दूसरी किस्मों में खजूर के पत्तों से बुनाई भी शामिल है। खजूर के पत्तों को इस्तेमाल करके टोकरियां, चटाइयां और घर में काम आने वाली मुख्तलिफ अशिया तैयार की जाती थी। इस हुनर में फितरी वसाइल को मेहनत और हुनरमंदी के साथ मुफीद चीजों में तब्दील किया जाता। दस्तकारी का असल हुसन सादगी में होता है। हाथ से तैयार की गई चीजों में हुनरमंदी का वक्त, मेहनत और तवज्जो नजर आती है। हर चीज बिल्कुल एक जैसी नहीं होती, इसलिए हाथ की बनी अशिया में एक खास अपनायत महसूस होती है। आज कतर में सकाफती मरकज, वर्से के प्रोग्राम और नुमाइशी दस्तकारी को लोगों तक पहुंचाने में अहम किरदार अदा करते हैं। यहाँ लोग रिवायती हुनर को देख सकते हैं, हुनरमंदों से बात कर सकते हैं और इस काम की बारीकियां समझ सकते हैं। नई नस्ल को दस्तकारी सिखाना बहुत जरूरी है, क्योंकि किसी भी हुनर की हिफाजत सिर्फ उसे देखने से नहीं होती, बल्कि उसे सीखने, अमल में लाने

0: और इसको आगे पहुंचाने में होती है। जदीद डिजाइन के साथ रिफायती दस्तकारी को भी नया अंदाज दिया जा रहा है। पुराने नक्श और हुनर को नए घरों और एक्सेसरीज सजावटी अशिया में शामिल करके लोग वर्षे को आज की जिंदगी से जोड़ रहे हैं। इससे साबित होता है कि रिवायत वक्त के साथ खूबसूरती के साथ आगे बढ़ सकती है। दस्तकारी हमें मेहनत और सब्र का दर्स देती है। एक खूबसूरत चीज चंद लम्हों में तैयार नहीं होती, इसके पीछे मंसूबा बंदी, तवज्जो और मुसलसल कोशिश होती है। अतरी दस्तकारी किसी एक चीज का नाम नहीं, ये उन तमाम लोगों के हुनर की पहचान है जो लोगों की जिंदगी, यादों और वर्से से जुड़े होते हैं। तो लिस्टनर्स, आज के कल्चर मोमेंट को यही मुकम्मल करते हैं। याद रखिए, सकाफत सिर्फ गुजरे हुए वक्त का नाम नहीं बल्कि हमारी रोजमर्रा जिंदगी का खूबसूरत हिस्सा है। मैं हूँ आपकी आरजे महाविश। अगली मुलाकात तक अपना ख्याल रखिए और कतर की खूबसूरत सकाफत को हमेशा इज्जत और मोहब्बत के साथ याद रखिए। अल्लाह हाफिज।
1: Qatar's most heard radio station, FM 107. FM 107. Dil se desi.
2: Chuvappu nirathile saariyil njangal ellam danger aanallo.

0: FM 107 पर अपना बिजनेस एडवर्टाइज करने के लिए आज ही राबता करें,
1: आज ही राबता करें
0: हमारी कतर मीडिया कॉरपोरेशन की मार्केटिंग टीम से। कॉल करें 4488806 पर या ईमेल करें marketing@qmc.qa।
2: क्या आपने कभी सोचा है कि कल हमारा फ्यूचर, हमारा मुस्तकबिल कैसा होगा? क्या AI सिर्फ एक मशीन है या एक ऐसी ताकत जो हमारी जिंदगी बदल रही है? डरिए नहीं, समझिए। RJA फॉर अमिता के साथ AI Unlocked पर एक ऐसा सफर जहां हम रोबोटिक्स से लेकर मशीन लर्निंग तक हर मुश्किल बात को आसान बनाए। तो सुनिए AI Unlocked RJA फॉर अमिता के साथ सिर्फ FM 107 पर, दिल से देसी।
3: हेलो, अस्सलाम वालेकुम। FM 107 सुन रहे हैं आप, मैं हूँ आपकी अमिता आपके साथ, और इस वक्त AI Unlocked पर आप सभी का तहे दिल से इस्तकबाल है। सो ऑल माय क्यूरियस माइंड्स एंड उन सभी दोस्तों को जो इस वक्त गाड़ी चला रहे हैं ना, आई शुड से कि बिल्कुल रिलैक्स हो जाइए, क्योंकि आज का जो ये प्लेटफॉर्म है हमारे शो का, जहाँ पर हम टेक्नोलॉजी के कॉम्प्लेक्स लेयर्स खोलेंगे, हम अक्सर ना AI को लेकर बहुत सारे क्वेश्चंस में डूबे रहते हैं। कभी हमें लगता है कि AI का हम इस्तेमाल कैसे करें, क्या वो हमें सुन रहा है, अगर हम यूज करेंगे तो कुछ गलत ना हो जाए, और ये जो फियर फैक्टर है ना, ये बढ़ते जाता है। और कभी कभी AI की चीजों के अपडेट्स देखते हुए हम बड़े हैरान हो जाते, हैरत अंगेज हो जाते कि वाह यार क्या चीज है। वेल, आज के शो का मेरा पर्पस है कि ये जो टेक्नोलॉजी है उसे मैं आपके लिए आसान बनाऊं, जो हमारी जिंदगी की फाउंडेशन बनते जा रहा है। वेल, आज का जो टॉपिक है, आज का जो मौजू है, मेरे दिल के बहुत करीब है, और आज हम बात करेंगे AI इन हेल्थ केयर, योर डिजिटल लाइफ सेवर। जरा आंखें बंद कीजिए एंड सोचिए कि वो हॉस्पिटल की लंबी कतारें, क्यूज, वो पुराने फाइल्स का ढेर, और वो एंग्जायटी जब हम रिपोर्ट का इंतजार कर रहे होते हैं। हम सब ने कभी ना कभी वो दुश्वारी या वो डिफिकल्टी महसूस की होती है। वेल, हेल्थ केयर एक ऐसा मामला है जो सीधा हमारी जिंदगी और मौत से ना जुड़ा होता है। मैंने पिछले हफ्ते एक अपडेट देखी थी और उसे पढ़ा, तो एक छोटा बच्चा जिसका डायग्नोसिस बड़े बड़े डॉक्टर्स नहीं कर पा रहे थे, ओके? एक AI मॉडल ने उसकी जो रेयर डिसीज थी या उसका जो रेयर बीमारी थी उसको पकड़ लिया। सोचिए, जहां इंसानी दिमाग थक जाता है, वहां एक एल्गोरिदम उम्मीद की किरण बनकर आता है। क्या ये वाकई एक मिरेकल नहीं है? लेकिन जनाब, एक सवाल हम सबके जहन में बिल्कुल, वो कहते ना, मैग्नेट की तरह चिपक गया है, एंड दैट इज कि क्या फ्यूचर में कोई रोबोट आपके फैमिली डॉक्टर की जगह ले लेगा? क्या वो मशीन जिसमें इमोशंस नहीं होते हमारा इलाज कर पाएगी? वेल, आज के शो में हम इसी डर और हकीकत के बीच का फर्क मिटाएंगे। वेल, हम देखेंगे कि AI डॉक्टर को रिप्लेस करने नहीं, बल्कि उन्हें सुपर पावर्स देने आया है। आज हम बात करेंगे स्टैनफोर्ड मेडिसिन के रिसर्च से लेकर UAE के उन फ्यूचरिस्टिक AI हॉस्पिटल्स तक, जहां टेक्नोलॉजी इंसानी जान बचा रही है। तो जनाब, ये डिजिटल लाइफ सेवर सिर्फ एक फैंसी नाम नहीं है, ये एक नई शुरुआत है जहां गलती की गुंजाइश कम और उम्मीद ज्यादा है। AI is transforming the landscape, हमारे medicines की दुनिया का, एंड आपको ये धीरे धीरे पता भी चलते जाएगा। वेल, इस पूरे हमारे शो में हम आपके साथ कुछ ऐसी कमाल की बातें करने वाले हैं जो कि आपकी लाइफ को और भी ज्यादा अपडेट करेगी, जहां पर हम बात करेंगे टूल ऑफ द वीक के बारे में, जो आपकी मेडिकल सर्च को आसान बना देगा, और साथ ही हम देखेंगे कि कैसे एक सही प्रॉम्प्ट आपको बेहतर हेल्थ एडवाइस दिला सकता है। लेकिन पहले मैं आपका हाले दिल जानना चाहती हूँ। यस, क्या आपको लगता है कि आप एक AI सर्जन पर भरोसा कर पाएंगे? हमें व्हाट्सएप करके 6622107 पर अपने नाम के साथ अपने व्यूज, अपने सजेशंस जरूर भेजें, और इस पूछे गए सवाल का जवाब दीजिए कि हाउ डू यू फील कि आपको अगर कोई AI सर्जन को मैसेज करना हो, और आप अगर उसे अपनी बात को बताकर

या अपनी बीमारी को बताकर कुछ कंसल्ट करना चाहें तो क्या वो ट्रस्ट फैक्टर रहेगा या नहीं? डू शेयर योर व्यूज विद अस। और अभी आगे हम खोलने वाले हैं AI का वो दरवाजा जो आपकी सेहत और सलामती से जुड़ा हुआ है। सो लेट्स स्टेप इनटू द फ्यूचर ऑफ मेडिसिन। पर जनाब, आज हम जहाँ खड़े हैं ना, वहाँ से जरा पीछे मुड़कर देखते हैं, ठीक है? सिर्फ 10 साल पीछे जाते हैं। सो 10 साल कोई बहुत बड़ा वक्त नहीं होता, लेकिन मेडिसिन की दुनिया में ना इट्स लाइक अ सेंचुरी, एक सेंचुरी के बराबर हो जाता है, ठीक है? सो इमेजिन कीजिए कि 2016 का वो दौर, ठीक है, अगर खुदा ना खास्ता किसी को कोई गंभीर बीमारी या सीरियस इलनेस हो जाती थी तो डायग्नोसिस का सफर किसी इम्तिहान से ना कम नहीं लगता था। एंड आई रियली हैव माय पर्सनल एक्सपीरियंस, मेरे सारे घर में जो बुजुर्ग लोग हैं उनको अगर मैं सोचूं तो ये चैलेंज हमारी फैमिली ने बहुत देखा। वो हॉस्पिटल के चक्कर, वो रिपोर्ट्स का इंतजार, कई दिन और कभी कभी तो वो हफ्ते गुजर जाते थे सिर्फ ये समझने में कि दर्द कहाँ हो रहा है और बीमारी क्या है। और अगर सोचें तो जो डॉक्टर्स अवेलेबल होते थे उनके पास माउंटेन्स ऑफ पेपर वर्क होता था, एक मरीज की पूरी हिस्ट्री, सैकड़ों पुराने स्कैन्स और हजारों पन्नों के मेडिकल रिपोर्ट्स। वेल, इंसान ही तो है ना, वो भी हमारे डॉक्टर्स। नाउ इस सख्त मेहनत और प्रेशर में ह्यूमन फटीग यानी थकावट एक बहुत बड़ा रिस्क बन जाता था। कभी कभी डिटेल, वो एक छोटी सी लकीर जो स्कैन में किसी बड़े खतरे का निशान हो सकती थी, वो somehow मिस हो जाती थी। वो वक्त बेबसी का होता था जनाब। लेकिन हम आज की अगर दौर की बात करें, इस 2026 की, तो ये एक नया सवेरा है जो हमारे लिए लेकर आया है, जहां लैंडस्केप बिल्कुल बदल चुका है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ने मेडिसिन को एक नया, वो कहते हैं ना, परसेप्शन दिया है। पहले जहां एक एक्सपर्ट रेडियोलॉजिस्ट को एक MRI या सिटी स्कैन देखने में घंटों लगते थे, वहां आज AI एल्गोरिदम्स वही काम सिर्फ मिली सेकेंड्स में कर लेते हैं। और ये सिर्फ स्पीड की बात नहीं है जनाब, ये परफेक्शन की बात है। ये AI systems जो कि millions data points पर trained है, इनकी vision इतनी बारीक है कि ये उन hidden patterns को भी पहचान लेते हैं जो शायद इंसानी आंख कभी ना देख पाए। तो आज कैंसर की शुरुआती सेल्स हो या दिल की धड़कनों में छुपी कोई ब्लॉकेज की prediction हो, AI हमारा सबसे मजबूत early warning system बन चुका है। ये हमें खतरे के आने से पहले खबरदार या अलर्ट कर देते है। चलिए अब बात करते हैं उन तीन बड़े पिलर्स की जिस पर ये डिजिटल हेल्थ केयर टिकी है। सबसे पहला है अनप्रेसिडेंटेड स्पीड, यानी मेडिकल इमरजेंसी में एक एक सेकंड की कीमत होती है। टाइम इज मसल और टाइम इज ब्रेन, ये कहा जाता है। वेल, आज के इमरजेंसी रूम्स में AI एक गेट कीपर की तरह काम कर रहे हैं। मान लीजिए एक साथ 10 मरीज आए हैं, ठीक है, सो AI तुरंत उनके स्कैन्स को प्रोसेस करता है और डॉक्टर्स को बताता है कि किस मरीज की हालत सबसे नाजुक है। वेल, अब रिपोर्ट्स का इंतजार नहीं बल्कि रियल टाइम इनसाइट्स का जमाना है। इस स्पीड ने मौत और जिंदगी के बीच का जो फासला था ना, उसे कम कर दिया है। डॉक्टर्स को अब फाइल्स ढूंढनी नहीं पड़ती, AI उन्हें वो क्रिटिकल डेटा प्लेट में सजा कर देता है लाइक क्विकली, ताकि किसी भी चीज का टाइम वेस्ट ना हो। और अब दूसरा पिलर है हाइपर पर्सनलाइजेशन, जिसे हम प्रिसिशन मेडिसिन भी कहते हैं। ये मेरी नजर में ना सबसे बड़ा मिरेकल है। कैसे? वेल, हर इंसान का शरीर अलग होता है, दिस इज व्हाट वी नो। उसका DNA अलग है और उसकी जिंदगी जीने का तरीका भी डिफरेंट होगा, तो फिर दवाई सबके लिए एक जैसी क्यों? वेल, AI ने इस सवाल का जवाब दे दिया है हमको, और दैट इज कि आज AI आपके DNA सीक्वेंस और आपकी लाइफस्टाइल हैबिट्स को एनालाइज करके बताता है कि कौन सी दवाई सिर्फ और सिर्फ आपके लिए बनाई गई है। चलिए इसे ऐसे समझते हैं कि पहले ट्रीटमेंट हिट एंड ट्रायल बेसिस पर होता था, लेकिन अब ये टारगेटेड है। AI प्रिडिक्ट कर लेता है कि कौन सी मेडिकेशन बिल्कुल बेस्ट है आपके लिए और स्पेसिफिकली सिर्फ और सिर्फ आप पर काम करेगी। ये हेल्थ केयर का वो पर्सनल रूप है जो हमने पहले कभी नहीं देखा। इट्स लाइक हैविंग अ मेडिसिन टेलर मेड फॉर योर यूनिक जेनेटिक कोड।
और फिर आता है तीसरा पिलर जो मेरे लिए सबसे हार्टनिंग है, दैट इज यूनिवर्सल एक्सेस. हम जानते हैं कि हम चाहे इंडिया पाकिस्तान की बात करें या दूर दराज के हमारे कंट्रीज के गांवों की बात करें या अरब रीजन का कोई भी कस्बा ले ले, ठीक है, हर जगह बड़े बड़े स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स का पहुंचना कभी कभी ना बड़ा मुश्किल हो जाता है, लेकिन इंटरनेट

और AI ने इस मुश्किल को आसान कर दिया है. आज AI powered virtual assistants एक high level medical advice दे रहे हैं उन जगहों पर जहां specialized medical care imagine भी नहीं की जा सकती और उसका concept भी नहीं है. अब एक farmer या यूं कहे किसान एक remote इलाके में रहते हुए भी अगर उसके पास internet है तो वही शख्स quality का diagnosis पा सकता है जो एक बड़े शहर के अमीर मरीज को मिलता है. पर ये technology की डेमोक्रेसी है और जनाब सबको बराबर का मौका मिल रहा है तो सोचिए क्या कमाल की चीज है. और इतनी सब बातों के बाद सच तो ये है कि जो AI है वो कभी भी डॉक्टर की जगह नहीं ले सकता. डॉक्टर का वो टच, उनका वो हौसला देना, उनकी वो इंस्टेंट एम्पैथी, ये कोई मशीन नहीं कर सकती. AI डॉक्टर को रिप्लेस कभी नहीं कर सकता बल्कि उन्हें सुपर पावर्स दे रहा है एंड उनकी हेल्प कर रहा है. ये उनके हाथ में एक ऐसा टूल दे रहा है जिससे वो थके नहीं और चूके नहीं, है कि नहीं? Well, AI is giving our doctors the sight to see the invisible और यही पार हर एक हेल्थ सेक्टर में बहुत कामयाब हो रहा है जिससे कि सारे मरीज अपनी बीमारी के सही इलाज करा पा रहे हैं और सही तरीके से लाइफ जी पा रहे हैं. और अब वक्त है हमारे AI around the world अपडेट का. तो ग्लोबल हेडलाइंस की बात करें तो एनवीडिया और गूगल ने हाल ही में एक बायोमेडिकल फाउंडेशन मॉडल पेश किया है. ठीक है, ये सिर्फ एक चैटबॉट नहीं है बल्कि एक ऐसा सिस्टम है जो साइंटिस्ट को ऐसी नायाब बीमारियों का इलाज ढूंढने में मदद करेगा जो सदियों से इंसान के लिए मतलब सोच पाना, पहुंच पाना या बिल्कुल पहेली जैसा लगता था. ठीक है, वहीं अगर हम अपने मिडिल ईस्ट की तरफ देखें तो UAE और सऊदी अरेबिया हॉस्पिटल ऑफ द फ्यूचर बनाने में से आगे हो रहे हैं. वहाँ ऐसे फुली इंटीग्रेटेड AI हॉस्पिटल्स बन रहे हैं जहाँ रोबोटिक सर्जिकल सिस्टम 99.9% एक्यूरेसी के साथ ऑपरेट करते हैं जिससे मरीज का रिकवरी टाइम बहुत कम हो जाता है. वेल, इन सारी बातों को सुनने के बाद आई एम वेरी सर्टेन कि आपको एक राहत मिल रही होगी कि AI सिर्फ मशीनी दुनिया का इंटेलिजेंस नहीं है बट ये इंटेलिजेंस, ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हमारी जिंदगियों को अब बहुत ही बेहतर कर रहा है और आसान कर रहा है. वेल, अब हम बात करेंगे आर वन ऑफ अ वेरी स्पेशल सेगमेंट टूल ऑफ द वीक की. तो जनाब हम एक ऐसे जमाने में जी रहे हैं जहां इंफॉर्मेशन का एकदम कहते हैं ना सैलाब आया हुआ है. आप गूगल पर कुछ ढूंढने निकलते हैं और हजारों लिंक्स के बीच खो जाते हैं कि भाई कौन सी वाली लिंक सही है और इतनी सारी इंफॉर्मेशन, उफ कभी कभी तो लगता है कि हम ढूंढ कुछ और रहे थे और पहुंच कहीं और गए. क्या आपके साथ ऐसा हुआ है? वेल, अक्सर मेरे साथ ऐसा होता है और मैं वही चीजें आपसे भी शेयर करती हूं ताकि वो कहते हैं ना कि एक शेयरिंग वाला मोमेंट आ जाए और हमारे शो की हर एक चीज और स्पेशल हो जाए और सही चीज के बारे में करके हम और भी ज्यादा नॉलेज हासिल कर सके. Well, अगर आप एक स्टूडेंट हैं जो रात रात भर असाइनमेंट्स बनाते हैं या एक रिसर्चर है जिसे पुख्ता या यूं कहे सॉलिड फैक्ट्स चाहिए तो आज के ये टूल या यूं कहे आज का ये टूल आपका सबसे बड़ा कंपेनियन बन सकता है. और आज हम बात करेंगे Perplexity AI की. अब आप सोचेंगे कि देखो अमिता, इतनी सारी हमने बातें की, AI chatbots तो है, बहुत सारे हैं, तो हम Perplexity की तरफ क्यों जाएं और Perplexity में ऐसा क्या खास है? चलिए डिस्कवर करते हैं. सो Perplexity एक आम सर्च इंजन नहीं है बल्कि एक आंसर इंजन है. ठीक है, फर्क समझिए. गूगल आपको रास्ता दिखाता है लेकिन Perplexity आपको मंजिल तक ले जाता है. जब आप इसे कोई मुश्किल सवाल पूछते हैं तो ये इंटरनेट की खाक छानता है और आपको एक साफ सुथरा डायरेक्ट जवाब लिखकर देता है. लेकिन सबसे खास बात पता है क्या है जो इसे बाकी सबसे अलग बनाती है? वो है इसका सोर्स साइटेशन. ये जो भी जवाब देता है उसके साथ नीचे छोटे छोटे नंबर्स में बताता है कि ये जानकारी किस वेबसाइट या किस रिसर्च पेपर से ली गई है. वेल, डीप फेक्स और फेक न्यूज के इस वो कहते हैं ना कि ट्रबल्ड दौर में जहां गलत जानकारी आग की तरह फैलती है ना, वहां मेडिकल इन्फो या साइंटिफिक फैक्ट्स को वेरीफाई करने के लिए ये लाजवाब टूल है. इसे हम वेरिफिकेशन का सबसे असरदार हथियार कह सकते हैं. तो जनाब टूल तो मिल गया लेकिन इसे चलाना कैसे है? चलिए अब वक्त है हमारी प्रो टिप फॉर प्रॉम्प्टिंग का. AI से बेहतरीन जवाब पाने के लिए हमेशा कॉन्टेक्स्ट रूल याद रखें. ठीक है कि AI एक मिरर या यू कहे आईने

0: तरह है, आप जैसा दिखाएंगे वैसा ही पाएंगे. सो लोग अक्सर गलती करते हैं और बहुत सिंपल सवाल पूछते हैं, जैसे हार्ट हेल्थ के बारे में बताओ. अब बेचारा एआई कंफ्यूज हो जाता है कि वो आपको एक बच्चे की तरह समझाए या एक डॉक्टर की तरह. तो इसके बजाय एक बेहतर तरीका आजमाइए, इसे एक रोल दीजिए. ऐसे पूछिए कि एक प्रोफेशनल कार्डियोलॉजिस्ट की तरह एक्ट करें और एक 40 साल के व्यक्ति के, यानी कि 40 साल के पर्सन के लिए मेडिटेरेनियन डाइट के फायदे आसान शब्दों में समझाएं. और फिर आप देखेंगे कि जब आपने बताया कि उसे डॉक्टर बनना है, किसे समझाना है और कैसे समझाना है, तो एआई का दिमाग एक लेजर की तरह फोकस हो जाता है. ठीक है, जितना साफ और क्लियर आपका कॉन्टेक्स्ट होगा, एआई उतना ही स्मार्ट जवाब देगा. तो आई होप कि ये बातें जो मैंने आज हमारे एपिसोड में की वो आपको समझ आई होंगी. और इसी के साथ हम आज के इस एपिसोड को बिल्कुल अपने खात्मे पर ले आए हैं, बिल्कुल आखिरी पड़ाव चल रहा है. तो मुझे पूरी उम्मीद है कि डिजिटल हेल्थ केयर और परप्लेक्सिटी की ये बातें जो आज हमने हमारे शो एआई अनलॉक्ड में आपसे शेयर की, जरूर आपके काम आएंगी. वेल, टेक्नोलॉजी से कहते हैं ना कि डरना नहीं होता है, इसे अपना दोस्त बनाना होता है और तभी हमारी लाइफ आसान हो सकती है. वेल, अगले हफ्ते और भी दिलचस्प बातें होने वाली हैं. हम हेल्थ केयर से निकल कर रुख करेंगे क्लासरूम्स की तरफ. हाँ, हम बात करेंगे एआई इन एजुकेशन, कि क्या एआई हमारे बच्चों की क्रिएटिविटी को खत्म कर देगा या उन्हें और भी इंटेलिजेंट बनाएगा. ये सब जानेंगे अगले एपिसोड में. तो आपने कहीं नहीं जाना है, बने रहना है हमारे साथ. तो मिलिएगा एआई अनलॉक पर आपकी अमिता से सेम टाइम सेम प्लेस अगले हफ्ते. और तब तक के लिए क्या करें, हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से जुड़ जाइए FM 107 के, और अपनी आरजे अमिता को भी सोशल मीडिया पे ढूंढ सकते हैं. और अभी अपना खूब सारा ख्याल रखें. एंजॉय योर रेस्ट ऑफ द डे. बने रहें FM 107 पर, दिल से देसी.
1: RJA for Amita ke saath sirf FM 107 par dil se desi.
2: Aap sun rahe hain FM 107
3: dil se desi.

0: FM 107 पर अपना बिजनेस एडवर्टाइज करने के लिए आज ही राबता करें,
1: आज ही राबता करें
0: हमारी कतर मीडिया कॉरपोरेशन की मार्केटिंग टीम से। कॉल करें 448888806 पर या ईमेल करें marketing@qmc.qa।

0: अरे मौसी जी, कतर के चप्पे चप्पे पे सुनाई देता है एक ही रेडियो, FM 107, दिल से देसी।
1: FM 107 पर अपना बिजनेस एडवर्टाइज करने के लिए आज ही रابطہ करें हमारी कतर मीडिया कॉरपोरेशन की मार्केटिंग टीम से। कॉल करें 4488806 पर या ईमेल करें marketing@qmc.qa।
2: साइंस कैन बी फन? ना, साइंस विल बी फन, क्योंकि एक्सपेरिमेंट्स होंगे तभी तो थ्योरीज फैक्ट्स बनेंगी, है ना? तो बस दुनिया बदलते देखिए हमारे साथ, क्योंकि हम करेंगे फन साइंस एक्सपेरिमेंट दोहा वाले कबीर के साथ, एक इजी एंड सेफ एनवायरनमेंट में। सुनिए और देखिए हमारे साथ ये खास शो जूनियर साइंटिस्ट, सिर्फ FM 107 पर, दिल से देसी।
3: अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूं दोहा वाला कबीर FM 107 पे, या फिर दोहा वाला साइंटिस्ट ओनली ऑन FM 107। सो ये खास शो है जिसका नाम है जूनियर साइंटिस्ट। और पिछले शो में, सबसे पहले एपिसोड में इनफैक्ट, हमने बात करी थी किस तरीके से जो बॉयंट फोर्स है वो पुश करती है ऑब्जेक्ट्स को, और फिर जो है हमने एक एक्सपेरिमेंट आपको ऑडियो फॉर्मेट में सुनाया जिसमें हमने एक अंडे को पानी में डुबाने की कोशिश करी, लेकिन जा ही नहीं रहा था। फिर हमने नमक मिला दिया, हमने अंडे से कहा कैसे नहीं जाओगे बेटा तुम, और फिर हमने सीखा कि बॉयंट फोर्स होती क्या है। आज लेकिन हम बात करेंगे टेंशन के बारे में, लेकिन ये टेंशन सरफेस टेंशन है, क्योंकि पानी की सिर्फ एक क्वालिटी नहीं है भाई साहब, पानी की हिडन क्वालिटीज है, पानी के पास हिडन फोर्सेस हैं। ये दिखता तो बाहर से बड़ा ही जेंटल, बड़ा ही काम किस्म का है, लेकिन पानी इतना जेंटलमैन है नहीं, इसके अंदर छुपी हैं बहुत सारी ताकतें। ये वो ताकतें जो पानी को मदद करती हैं कि वो होल्ड कर सके।

के अपने सारे मॉलिक्यूल्स को टुगेदर और एक सरफेस फॉर्म कर सके। आपने देखा होगा ऊपर से, अगर बहुत ही ऊपर से कोई पानी में डुबकी लगाने की कोशिश करेगा तो बिल्कुल ऐसे गिरेगा जैसे कंक्रीट पे गिरा हो। ये भी इफेक्ट आपको यहीं पे पता लगेगा। एंड ये जो इनविजिबल फोर्स है ये लाइट ऑब्जेक्ट्स के लिए थोड़ी सी अलग हो जाती है। यानी कि आज एक्सपेरिमेंट में एक लाइट ऑब्जेक्ट हम यूज करने वाले हैं, वी विल यूज ब्लैक पेपर, जी काला नमक। ये पानी के ऊपर फ्लोट करने लगता है। इस फोर्स को ही कहते हैं सरफेस टेंशन और ये हमें हर जगह देखने को मिलती है, बहुत सारी जगहों पे इनफैक्ट। अब जो पानी है इसमें क्या कर रहा है, वो एक सरफेस लेयर बनाता है। जो ब्लैक पेपर है वो रिप्रेजेंट करता है लाइट फ्लोटिंग पार्टिकल्स को और इसमें हम चीजें बाकी ऐड करेंगे। लेकिन इस एक्सपेरिमेंट को हम आगे बढ़ाने से पहले आपको बता दें कि भाई साहब ये एक्सपेरिमेंट आपको इंशाल्लाह वीडियो फॉर्म में भी देखने को मिलेगा, लेकिन सोशल मीडिया हैंडल्स पे जरूर जुड़िएगा। आपके घर में भी कोई ऐसा एक्सपेरिमेंट आप करके दिखाते हैं बच्चों को, इन जूनियर्स के अंदर साइंस की जिज्ञासा क्यूरियोसिटी जगाते हैं, जरूर जरूर बताइएगा। FM 107 कतर ये नंबर है हमारा, FM 107 कतर, इस नाम से हम हर जगह मौजूद हैं। प्लीज ये सारे एक्सपेरिमेंट इतने इजी हैं कि आपको ऐसा नहीं है कि बहुत ही ज़्यादा सेफ्टी की ज़रूरत पड़ेगी, बहुत आसान इजी एक्सपेरिमेंट्स हैं। इस शो के ज़रिए हम इन्हीं को बच्चों तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे ताकि इन एक्सपेरिमेंट्स के ज़रिए वो रियलिस्टिकली कई सारे फिनोमेना को समझ पाएं, क्योंकि साइंस इज एक्चुअली ईजी एंड इज एक्चुअली फन इफ़ यू डू इट इन द राइट वे, और वो राइट वे फाइंड करना हमारा और आपका काम है। मिल बांट के कर लेंगे, कोई टेंशन नहीं, वो ज़्यादा ज्ञान नहीं देंगे, नॉर्मल एक्सपेरिमेंट्स करेंगे। तो आपको इंग्रेडिएंट्स क्या क्या चाहिए इस एक्सपेरिमेंट को करने के लिए? आपको चाहिए पानी, आपको तो पता ही है, उसके अलावा चाहिए ब्लैक पेपर, उसके अलावा चाहिए एक साबुन की टिकिया, मतलब लिक्विड सोप भी चलेगा, ऐसे कोई टेंशन नहीं है। उसके बाद आपको चाहिए एक बॉल या फिर एक प्लेट चाहिए। तो इंग्रेडिएंट्स इस एक्सपेरिमेंट में बड़ा ही सिंपल है, घर में मिल जाते हैं, मगर आपको ये सिंपल एक्सपेरिमेंट मदद करेंगे बच्चों को ये सिखाने में कि सरफेस टेंशन किस चिड़िया का नाम है जो ये पानी डेवलप करता है। पानी एक्चुअली में, जैसे मैंने स्टार्टिंग में कहा, एक स्ट्रेंथ रखता है कि उसके ऊपर एक सरफेस टेंशन पैदा होती है जो काफ़ी इनविजिबल फोर्स है, और उस फोर्स को ब्रेक करने के लिए कोई ना कोई अलग अलग ऑब्जेक्ट्स या फिर चीज़ें यूज़ की जा सकती हैं। सो ब्लैक पेपर जो है आपने उसका इस्तेमाल करना है सरफेस टेंशन दिखाने के लिए। और आपके पास भी सिमिलर कोई एक्सपेरिमेंट है अगर आप कर चुके हैं तो व्हाट्सएप या फिर सोशल मीडिया हैंडल्स के जरिए जरूर जरूर बताइएगा। एंड तो एक एक्सपेरिमेंट को शुरू करते हैं। तो अगर ब्लैक पेपर को आप पूरे सरफेस पे, पानी के सरफेस पे स्प्रेड कर दें, ऐसे छिड़क दें उसके ऊपर, तो वो फ्लोट होने लग जाएगा बिकॉज वो काफी ज्यादा लाइट है। लेकिन लिक्विड सोप अगर इसे मिला दिया जाए तो होगा क्या, वो सरफेस की टेंशन को डिस्टर्ब कर देगा। ये तीसरा बंदा उसमें आ गया है दोनों की दोस्ती के बीच में, और इस वजह से सरफेस की टेंशन हो जाती है ब्रेक। सो ब्लैक पेपर फ्लोट क्यों कर रहा है, दरअसल ये सवाल है, और इस सवाल का जवाब कुछ देर में देंगे क्योंकि अभी शो को हम शुरू कर रहे हैं जूनियर साइंटिस्ट, और आज हम समझेंगे पानी की उस हिडन कैरेक्टरिस्टिक को, उस हिडन स्ट्रेंथ को जो आपको बहुत सारी जगहों पे देखने को मिलती है। जूनियर साइंटिस्ट शो का नाम है, बंदे का नाम है दोहा वाला कबीर, दोहा वाला साइंटिस्ट कबीर। जाएगा नहीं, बहुत सारे एक्सपेरिमेंट करने बाकी हैं। मेरा साइंटिस्ट वाला चश्मा लाओ भी, जाना नहीं, स्टे ट्यून्ड।

वेलकम बैक, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं उदुहा वाला कबीर FM 107 से, एंड FM 107 पे आप सुन रहे हैं जूनियर साइंटिस्ट। तो एक क्यूरियोसिटी जागती है कि वाटर सरफेस टेंशन एक्चुअली में क्या है। अब मैंने एक्सपेरिमेंट आपको कुछ देर पहले ऑडियो फॉर्मेट में बता दिया, तो आपने रेडियो पे ही तो जान लिया कि एक्सपेरिमेंट बच्चों को कैसे दिखाना है। आपने सिंपल एक पानी पे ब्लैक पेपर छिड़क के आपने दिखाना है कि किस तरीके से वाटर की एक प्रॉपर्टी है वो उसके अपने खुद के मॉलिक्यूल्स को इतना टाइटली एक दूसरे को पकड़ के रखता है कि उसके ऊपर लाइट ऑब्जेक्ट्स लाइक अ ब्लैक पेपर फ्लोट करता है। मगर जैसे ही आपने लिक्विड सोप से जरा सा उसे छू दिया तो ये छुई मुई हो जाता है और वो सरफेस टेंशन ब्रेक हो जाती है एंड इट कम्प्लीटली ब्रेक्स, तो बैलेंस बिगड़ जाता है। मगर ये असल जिंदगी में एग्जांपल कैसे देंगे आप? बहुत सारे एग्जांपल है। सबसे पहला एग्जांपल है वाटर पे, पानी पे आपने देखा होगा किस तरीके से कुछ कीड़े मकोड़े आराम से तैर रहे होते हैं मौज में, उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ रहा होता। जो छोटे छोटे इंसेक्ट्स आप देखते हैं पानी पर आराम से, लेक पे, पॉन्ड्स में, सरफेस लेवल पे एकदम आराम से चल फिर रहे होते हैं, मून वॉक कर रहे होते हैं, क्योंकि वाटर लेवल के जो वाटर का जो सरफेस टेंशन है वो उन्हें मदद करता है और वो मॉलिक्यूल्स पानी को बिल्कुल सरफेस पे एकदम इलास्टिक की तरह बना देते हैं, इलास्टिक शीट की तरह। दैट्स व्हाई इट इज इजीयर फॉर देम टू डू इट। अब अगर आप सेम एक्सपेरिमेंट करें एक नीडल या फिर एक पेपर क्लिप के साथ, तो हालांकि मेटल जो होता है वो डेंसर होता है पानी से, लेकिन अगर बहुत ही केयरफुली आप प्लेस करें नीडल या फिर पेपर क्लिप को, तो आप देखेंगे कि ये भी फ्लोट करते हैं सपोर्टिंग इट्स वेट, बिकॉज सरफेस टेंशन उसकी वेट को सपोर्ट करती है। क्या क्या ढंग से किया जाए। वाटर ड्रॉपलेट्स का सबसे कमाल का एग्जाम्पल है, इससे बढ़िया एग्जाम्पल हो नहीं सकता। वाटर ड्रॉपलेट्स जो लीव्स पे आप देखते हैं या फिर अलग सर्विसेज पे, रेन वाटर जो होता है वो फॉर्म करता है राउंड वाटर ड्रॉपलेट्स। देखा ना, पानी गिरता है शबनम, तो जब किसी पत्ते पे गिरता है तो एक मोटी सी एक लेयर बन जाती है, मोटी ड्रॉपलेट होती है, तो वो फैलती नहीं है, है ना, वो बूंद बन जाती है, उस पर रहती है देर तक। ये सरफेस टेंशन है, पानी के मॉलिक्यूल्स एक दूसरे को जकड़ के रखते हैं, जिस वजह से ये शेप आपके सामने आता है जिसे हम बूंद कह देते हैं। ये एक अलग एग्जांपल है। लेकिन जो जैसे सोप है वो इसको भी ब्रेक कर सकता है, सरफेस टेंशन को डिक्रीज कर देता है, इसलिए फ्लोटिंग पेपर सिंक कर जाता है और पानी जो है काफ़ी ईजिली जो डिशेज हैं मोर इजिली डिश वॉशिंग पे काम आ सकता है, क्योंकि वहाँ पे पानी रुकता नहीं है, फिर मॉलिक्यूल्स के ब्रेक हो जाते हैं, उसमें सोप मिला होता है। तो ये कुछ रियल लाइफ एग्जांपल्स हैं जो आप इस्तेमाल कर सकते हैं। वैसे ही एग्जांपल मेरे जहन में आता है बबल्स हैं। बबल्स कैसे फॉर्म होते हैं? पानी की मर्जी आया, मर्जी बोल वो बोले भाई मेरे को फैलना है, तो आपके बबल्स बना पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। लेकिन सोप बबल एग्जिस्ट करते हैं बिकॉज सरफेस टेंशन जो है होल्ड करती है उस थिन लेयर को पानी की एक साथ, और इसलिए आपको वो स्फेरिकल शेप आपकी नजरों के सामने होता है। सरफेस टेंशन वो फोर्स है जो विच रियली मेक्स द सरफेस ऑफ वाटर एक्ट लाइक अ स्ट्रेच स्किन। अंग्रेजी में ये हो गया, उर्दू में बताऊं तो एक रबर की शीट बना देती है सरफेस टेंशन को पानी के, जिस वजह से एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन बनता है पानी के मॉलिक्यूल्स के अंदर, और आपके सामने एक्सपेरिमेंट ये नजरों के सामने आता है और बच्चों को सिखाने के लिए काफी वायरल। मगर एक्सपेरिमेंट इंशाल्लाह हम आपको वीडियो फॉर्मेट पे भी करके दिखाएंगे और आप घरों में भी दिखाएं, क्योंकि यू नेवर नो, आपके घर से कोई साइंटिस्ट बनने के लिए तैयार बैठा है, बस उसे वो एक ट्रिगर पॉइंट की जरूरत है जो आप उसे दे सकें। साइंस इज रियली रियली फन, और वो फन तभी आएगा जब आप एज अ पेरेंट, एज समवन हु इज टेकिंग केयर ऑफ देम, आप उतना ही इंटरेस्ट लेंगे, तो ही आप इंटरेस्ट से उन्हें बता पाएंगे। तो आपका इंटरेस्ट लेना जरूरी है, और जूनियर जो मुझे सुन रहे हैं, अगर आपने सुना है मुझे, तो प्लीज़ प्लीज़

0: एक्सपेरिमेंट करके जरूर बताना। कबीर अंकल नहीं, अंकल नहीं, भाई चले, कबीर भाई को बता देना। सोशल मीडिया हैंडल्स FM107 Qatar, इस नाम से हम हर जगह मौजूद हैं। एंड प्लीज अगर एक्सपेरिमेंट घर पे करें तो जरूर जरूर बताएं, और ऐसे ही साइंस का कोई बहुत ही नॉर्मल टॉपिक हो जो आसान है समझाना तो जरूर बताएगा। आई वुड लव टू गो इन डिटेल और फिर आपको बताने में मुझे उतना ही मजा आएगा। मैं इंटरेस्ट नहीं लूंगा तो आपको इंटरेस्ट से कैसे बताऊंगा, इसलिए मैं भी इंटरेस्ट लेके पढ़ूंगा और आप भी थोड़ा सा इस बारे में पढ़ाई करें। और ये पढ़ाई हैवी नहीं है, बोझ नहीं बनाना है, एंटरटेनमेंट की तरह समझना है। असल जिंदगी के असल एग्जाम्पल्स से जोड़ना है साइंस को, वो कैसे जोड़ेंगे इज द क्यूरियोसिटी ट्रिगर, वो ढूंढिए। बट सोशल मीडिया हैंडल्स FM107 Qatar एंड दिस इज दोहा वाला कबीर साइनिंग ऑफ फ्रॉम जूनियर साइंटिस्ट। अपना ख्याल रखिएगा क्योंकि आप बेहद बेहद जरूरी हैं। मास्टर
1: जूनियर साइंटिस्ट सिर्फ FM107 पर, दिल से देसी। आप सुन रहे हैं FM107,
2: दिल से देसी।

सितारे उतरेंगे मैदान में अजमत की जुस्तजू में टीमें टकराएंगी टॉप पोजीशन के लिए और जोश ऐसा जो आखिरी सीटी तक थमने ना पाए दोहा बैंक स्टार्स लीग सिर्फ

0: अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाही वबरकातुहू। दोस्तों, मेरे यानी सरवर मिर्ज़ा के साथ आइए जानते हैं वज़ारत दाखला से वीकली अपडेट।
1: हर हफ्ते की सबसे जरूरी अपडेट लेकर आ रहे हैं आरजे सरवर एमओआई वीकली अपडेट प्रोग्राम में। एमओआई वीकली अपडेट प्रोग्राम में वज़ारत दाखला की हर एक एक्टिविटी, जरूरी खबरें और आप और आपकी फैमिली के लिए इम्पोर्टेंट अवेयरनेस, सब कुछ मिलेगा यहाँ, कुछ मिलेगा यहाँ। और जानिए वो सब जो आपके लिए मैटर करता है। एमओआई वीकली अपडेट, एमओआई वीकली अपडेट, आपका वीकली डोज ऑफ न्यूज एंड मच मोर विद आरजे सरवर, विद आरजे सरवर।
0: वज़ीर दाखला और इंटरनल सिक्योरिटी फोर्स लखविया के कमांडर शेख खलीफा बिन हमद बिन खलीफा अल्थानी ने स्पेन के दौरे के दौरान स्पेन के वज़ीर दाखला फर्नांडो ग्रैंडे मालास्का गोम से मुलाकात की। मुलाकात के दौरान दोनों दोस्त ममालिक के दरमियान मौजूद तआवुन का जायजा लिया गया और खासतौर पर अमनियत के शोबे में इस तआवुन को मजीद मजबूत और फरोग देने के तरीकों पर तबादला ख्याल किया गया। इसके अलावा दो तरफा बाहमी दिलचस्पी के कई अहम मौजूदात पर भी बातचीत की गई। मुलाकात के बाद वजीर दाखला और इंटरनल सिक्योरिटी फोर्स लखविया के कमांडर शेख खलीफा बिन हमद बिन खलीफा अल्थानी और उनके स्पेनिश हम मनसब ने रियासत कतर की वजारत दाखला और स्पेन की वजारत दाखला के दरमियान फीफा वर्ल्ड कप 2030 के सिक्योरिटी इंतजाम के हवाले से तआवुन पर एक लेटर ऑफ इंटेंट पर भी दस्तखत किए। दोस्तों, जैसे कि फॉग या धुंध में गाड़ी चलाना ज्यादा तवज्जो, एहतियात और जरूरी हिफाजती इकदाम तलब करता है, इसमें कुछ अहम सेफ्टी गाइडलाइंस हैं जो फॉग में गाड़ी चलाते वक्त मददगार साबित हो सकते हैं। सबसे पहले रफ्तार का देहा

0: ध्यान करें। फॉग या कोहरे के वक्त व्यू कम हो जाता है, इसलिए गाड़ी की रफ्तार को धीमा करें ताकि हादसे का खतरा कम हो। स्पीड लिमिट का ख्याल रखें और फॉग के हिसाब से रफ्तार एडजस्ट करें। दूसरा ये कि गाड़ी की बीम्स का ख्याल करें। अपनी गाड़ी की फॉग लाइट्स और लो बीम्स का इस्तेमाल करें। हाई बीम्स फॉग पर रिफ्लेक्ट करती हैं और आपके व्यू को और ज्यादा कम कर देती हैं। तीसरा ये कि डिस्टेंस बढ़ाएं। अपनी गाड़ी और सामने वाली गाड़ी के दरमियान ज्यादा फासला रखें। अगर ट्रैफिक सडनली स्लो हो जाता है तो गाड़ी में रिएक्ट करने का ज्यादा वक्त मिलेगा। और पॉइंट नंबर 4, राइट लेन में रहिए। ज्यादा फॉग में राइट लेन में चलना बेहतर होता है क्योंकि ये अक्सर रोड मार्किंग्स को फॉलो करना आसान बनाता है और रोड के किनारे पे रहने में मदद करता है। पॉइंट नंबर 5, अचानक मुड़ने और ब्रेक लगाने से बचिए। फॉग में अचानक टर्निंग या ब्रेकिंग से बचना चाहिए क्योंकि ये कंट्रोल खो देने का सबब बन सकता है। हमेशा ग्रेजुअल एडजस्टमेंट्स करें। पॉइंट नंबर 6, विंडशील्ड वाइपर्स का इस्तेमाल करें। अपनी विंडशील्ड को साफ रखें ताकि विजिबिलिटी बेहतर हो सके। इसके अलावा अपने विंडोज को भी डीफॉग करें। नंबर 7 और आखिरी, जरूरत पर गाड़ी को रोक दें। अगर फॉग इतनी ज्यादा है कि व्यू मुश्किल हो जाए तो किसी सेफ जगह जैसे पार्किंग लॉट में गाड़ी को रोक कर रुक जाइए और विजिबिलिटी के बेहतर होने का इंतजार करिए। इन सेफ्टी टिप्स पर अमल करके आप फॉग में ड्राइविंग के रिस्क को कम कर सकते हैं। सामीन, दुकानों और कैफेज के सामने गलत जगह पर गाड़ी पार्क करना सिर्फ ट्रैफिक की रवानी में रुकावट नहीं बनता बल्कि आपको ट्रैफिक वायलेशंस का सामना भी करना पड़ सकता है। याद रखिए, चंद लम्हों की सहूलत दूसरों के लिए परेशानी का सबब बन सकती है। अपनी गाड़ी को सिर्फ मुकर्रर की गई पार्किंग वाली जगहों पर ही पार्क करें और ट्रैफिक कानून की पाबंदी करें। वजारत दाखिला का कहना है कि आपका जिम्मेदाराना रवैया न सिर्फ आपकी हिफाजत को यकीनी बनाता है बल्कि दूसरे रोड यूजर्स की सलामती में भी अहम किरदार अदा करता है। ट्रैफिक कानून की पाबंदी महफूज और मुनज्जम मुआशरे की जमानत होती है। वजीर दाखिला और इंटरनल सिक्योरिटी फोर्स लखविया के कमांडर शेख खलीफा बिन हमद बिन खलीफा अलसानी ने अपने जर्मनी के दौरे के दौरान जर्मनी के फेडरल वजीर दाखिला अलेक्जेंडर डॉब्रिंट से मुलाकात की। मुलाकात के दौरान दोनों ममालिक के दरमियान ताबुन के रिश्तों का जायजा लिया गया और खासतौर पर अमनियत के शोबे में इन रिश्तों को मजीद मजबूत और फरोग देने के तरीकों पर बातचीत की गई। इसके अलावा दो तरफा बाहमी दिलचस्पी के कई अहम मौजूदात पर भी तबादला ख्याल किया गया। मुलाकात के बाद वजीर दाखिला और लखविया के कमांडर शेख खलीफा बिन हमद बिन खलीफा अलसानी और उनके जर्मन हम मनसब ने दोनों ममालिक की वजारत दाखिला के दरमियान ट्रेनिंग और तजुर्बात के तबादले के शोबे में सिक्योरिटी कॉपरेशन से मुतालिक एक लेटर ऑफ इंटेंट पर भी दस्तखत किए। सामईन, स्कूल बस सिर्फ एक गाड़ी नहीं बल्कि हमारे बच्चों की हिफाजत की जिम्मेदारी भी है। जब स्कूल बस बच्चों को छोड़ने या उतारने के लिए रुककर अपना स्टॉप साइन जाहिर करती है तो उसे किसी भी तरफ से ओवरटेक करना या क्रॉस करना इंतहाई खतरनाक हो सकता है। याद रखिए, बच्चे अचानक सड़क पर आ सकते हैं और बड़ी स्कूल बस की वजह से उन्हें देखना मुश्किल हो जाता है। इसलिए जब स्कूल बस रुके और स्टॉप साइन को जाहिर करें तो अपनी गाड़ी को मुकम्मल तौर पर रोक दें और बस के दोबारा चलने का इंतजार करें। याद रखें कि आपका ये चंद सेकंड्स का इंतजार किसी बच्चे की जिंदगी के लिए बेहद अहमियत रखता है। वजारत दाखिला का कहना है कि ऐसे मौकों पर बस के दोबारा चलने तक रुक जाएं और ये भी याद रखें कि आपका ये छोटा सा एहतियात भरा कदम हमारे बच्चों की हिफाजत और रोड सेफ्टी में बड़ा किरदार अदा करता है। सामईन, हमारे बच्चों को सड़क पर हिफाजत के उसूल सिखाना उनकी जान की हिफाजत करता है और उनमें ट्रैफिक सेफ्टी का शऊर पैदा करता है। याद रखिए, सड़क हमेशा मुकर्रर पेडेस्ट्रियन क्रॉसिंग या ज़ेब्रा क्रॉसिंग से ही पार करनी चाहिए। उन्हें ये भी बताइए कि सड़क पार करने से पहले अच्छी तरह देख लें और यकीन कर लें कि रास्ता गाड़ियों से खाली है। इसके अलावा सड़क पार करते वक्त हर तरफ से आने वाली गाड़ियों पर नजर रखें और पूरी तवज्जो के साथ चलें। मोबाइल फोन इस्तेमाल करते हुए या किसी और चीज में मशगूल होकर सड़क पार करना खतरनाक हो सकता है। वजारत दाखिला का कहना है कि आइए मिलकर अपने बच्चों को ट्रैफिक सेफ्टी की आदतें सिखाएं ताकि वो हर रोज महफूज तरीके से स्कूल जाएं और घर वापस लौटें। बच्चों की हिफाजत हम सबकी मुश्तरका जिम्मेदारी है। मुख्तलिफ शोबों में कतरी ख्वातीन की शिरकत को फरोग देने की कोशिशों के तहत मिलिट्री इदारों के लिए अफसर और दीगर रैंक्स के उम्मीदवारों के इंतखाब की मुश्तरका कमेटी अपनी सरगर्मियां जारी रखे हुए है। कमेटी का मकसद काबिल और बासलाहियत ख्वातीन को मिलिट्री और सिक्योरिटी तालीम और ट्रेनिंग प्रोग्राम्स में शामिल होने के मौके फराहम करना है। वजारत दिफा यूनिवर्सिटी ऑफ दोहा फॉर साइंस एंड टेक्नोलॉजी के तआवुन से टेक्निकल इंस्टीट्यूट डिप्लोमा प्रोग्राम पेश कर रही है। ये प्रोग्राम मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन एंड हायर एजुकेशन से तस्दीक शुदा है और इसका मकसद आर्म्ड फोर्सेस की जरूरियात के मुताबिक टेक्निकल महारत रखने वाली कतरी ख्वातीन को एकेडमिक तालीम, अमली ट्रेनिंग और मिलिट्री डिसिप्लिन के जरिए तैयार करना है। दूसरी जानिब वजारत दाखिला 2 साल डिप्लोमा इन पुलिस साइंस प्रोग्राम पेश कर रही है। इसका मकसद ख्वातीन को एकेडमिक और अमली ट्रेनिंग के साथ पुलिसिंग और सिक्योरिटी से मुतालिक ऐसी मालूमात और महारत फराम करना है जो उन्हें अपनी जिम्मेदारियां पेशवराना और मुअस्सर अंदाज में अदा करने में मदद दें। वाज़े रहे कि कमेटी अपने पहले साल में इंतखाब और दाखिले के अमल को यकसा और शफाफ मयारों के मुताबिक बनाने पर काम कर रही है। इससे बराबर मौकों को फरोग मिलेगा, कौमी सलाहियतों को मुतवज्जे किया जा सकेगा और मिलिट्री और सिक्योरिटी शोबों में कतरी ख्वातीन की शिरकत को मजीद मजबूत बनाया जा सकेगा। सामीन अपने मोबाइल एप्स और डिवाइस के ऑपरेटिंग सिस्टम को बाकायदगी से अपडेट करना साइबर जुर्म से बचाव में अहम किरदार अदा करता है। अपडेट्स न सिर्फ आपके डिवाइस की परफॉर्मेंस बेहतर बनाती है बल्कि उन कमजोरियों को भी दूर करती है जिनका फायदा उठाकर साइबर मुजरिम आपका डेटा चुरा सकते हैं या आपकी मालूमात तक गैर कानूनी रसाई हासिल कर सकते हैं। याद रखिए, मोबाइल एप्स और ऑपरेटिंग सिस्टम्स को हमेशा लेटेस्ट वर्जन पर अपडेट रखें। सिर्फ मुअतबर और ऑफिशियल सोर्सेज से अपडेट डाउनलोड करें। जरूरी सिक्योरिटी अपडेट्स को नजरअंदाज ना करें। अपने अहम डेटा का बैकअप भी बाकायदगी से लेते रहें। वजारत दाखिला का कहना है कि आपकी आगाही और एहतियात ही आपकी डिजिटल हिफाजत की सबसे बड़ी ताकत है। साइबर सिक्योरिटी का ख्याल रखें और अपनी मालूमात को महफूज बनाएं। वजीर दाखिला और इंटरनल सिक्योरिटी फोर्स लखविया के कमांडर शेख खलीफा बिन हमद बिन खलीफा अल्सानी की तरफ से वजारत दाखिला के असिस्टेंट अंडर सेक्रेटरी फॉर सिक्योरिटी अफेयर्स शेख नाइफ बिन फाले बिन सऊद अल्सानी ने पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना के शहर लैंग यूंग गैंग में मुनक्किद ग्लोबल पब्लिक सिक्योरिटी कोऑपरेशन फोरम 2026 में शिरकत की। ये शिरकत बैनुल अक्वामी तआवुन को मजबूत बनाने, तजुर्बात के तबादले और पब्लिक सिक्योरिटी और सेफ्टी के शोबे में दुनिया भर के बेहतरीन तजुर्बात से फायदा उठाने की कोशिशों का हिस्सा हैं। फोरम की साइडलाइंस पर शेख नाइफ बिन फाहले बिन सऊद अल सानी और उनके हमरा वफ्द ने सिक्योरिटी एग्जीबिशन का भी दौरा किया जहां उन्होंने सिक्योरिटी के मैदान में ताज़ा तरीन टेक्नोलॉजीज और इनोवेशन का जायजा लिया। इस मौके पर एडवांस्ड सॉल्यूशंस और जदीद टेक्नोलॉजीज के बारे में मालूमात भी हासिल की गई जो सिक्योरिटी ऑपरेशंस को सपोर्ट करने और पब्लिक सिक्योरिटी और सेफ्टी निजाम की कारकर्दगी को मजीद बेहतर बनाने के लिए तैयार की गई हैं। एयरपोर्ट सिक्योरिटी डिपार्टमेंट ने 6 से 10 सितंबर तक मुनक्किद किए गए एविएशन सिक्योरिटी स्क्रीनिंग कोर्स का अख्तिताम कर दिया है जिसमें जीसीसी ममालिक के अफसरान ने शिरकत की। कोर्स के दौरान स्क्रीनिंग प्रोसीजर्स, एयरपोर्ट्स पर इस्तेमाल होने वाले जदीद डिवाइसेस और मॉडर्न टेक्नोलॉजीज और एयरपोर्ट सिक्योरिटी से मुतालिक बैनुल अक्वामी क़वानीन और स्टैंडर्ड्स पर तफसीली ट्रेनिंग दी गई थी। ट्रेनिंग प्रोग्राम में एयरपोर्ट का फील्ड टूर भी शामिल था जहां शिरका ने एयरपोर्ट सिक्योरिटी डिपार्टमेंट के मुख्तलिफ शोबों का दौरा किया। इसका मकसद अमली मालूमात और महारत में इजाफा करना और मुख्तलिफ शोबों में काम के तरीका कार और जिम्मेदारियों से आगाही फराहम करना था। इंतखाबी तकरीब में असिस्टेंट डायरेक्टर एयरपोर्ट सिक्योरिटी डिपार्टमेंट लेफ्टिनेंट कर्नल जायद राशिद अल नुआइमी के साथ कई अफसरान ने इसमें शिरकत की। सामईन, इसी के साथ मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर की वीकली अपडेट का सिलसिला अपने अख्तिताम को पहुंचा। अगली मुलाकात तक के लिए प्रोग्राम डिजाइनर शहबाज अंसारी और सरवर मिर्जा को इजाजत दीजिए और याद रखिए, कानून की पासदारी और एहतराम कीजिए, कानून आपकी हिफाजत करेगा।
1: आप सुन रहे हैं FM 107
2: दिल से देसी।

0: Qatar's most heard radio station, FM 107. Dil se Desi.
1: दोस्तों, आग लग जाने के दौरान एलिवेटर्स या लिफ्ट का इस्तेमाल करना बहुत खतरनाक हो सकता है। जब बिल्डिंग में आग लग जाती है तो इलेक्ट्रिक सप्लाई अक्सर अनस्टेबल हो जाती है, जिसकी वजह से लिफ्ट रुक सकती है या आप फंस सकते हैं और अंदर मौजूद लोगों को धुएं और शदीद गर्मी का सामना करना पड़ सकता है, जो आपकी जिंदगी के लिए बहुत बड़ा रिस्क बन सकता है। सेफ्टी एक्सपर्ट्स हमेशा ये रिकमेंड करते हैं कि फायर सिचुएशन में सिर्फ और सिर्फ इमरजेंसी एग्जिट और सीढ़ियों या स्टेयर्स का ही इस्तेमाल किया जाए। सीढ़ियां ओपन और एक्सेसिबल होती हैं और उनकी डिजाइन ही इवैक्यूएशन के लिए बनाई जाती है, या उनको इस तरह से डिजाइन किया जाता है कि वहां आग लगने की सूरत हाल में आप आसानी से निकल सकें। वजारत दाखिला का कहना है कि याद रखें, ऐसी सिचुएशन में सही फैसला लेना आपकी जिंदगी और मौत का फर्क बन सकता है, इसलिए अपनी और दूसरों की हिफाजत के लिए सीढ़ियों का इस्तेमाल करें और आग लगने की सूरत हाल में लिफ्ट से हर सूरत परहेज करें। FM 107 आपकी और आपकी फैमिली की हिफाजत की दुआ करता है। सेफ रहें और खुश रहें।
0: Qatar's most heard radio station, FM 107. FM 107. Dil se Desi.

0: और कभी वो शख्स एक ऐसी जंग लड़ रहा होता है जिसके बारे में हमें कुछ मालूम ही नहीं। तो सामने किराम, इस हदीस में क़यादत के हवाले से एक बड़ा उसूल है, वो ये कि कायद वो नहीं जो सिर्फ ये देखे कि मैं कितनी तेज़ी से आगे बढ़ सकता हूँ, अच्छा कायद ये भी देखता है कि मेरे साथ चलने वाले लोग कहाँ हैं। अगर आप उस्ताद हैं, सिर्फ ज़हीन तरीन तालिब इल्म को सामने रख कर न पढ़ाइए, क्लास में कोई ऐसा तालिब इल्म भी हो सकता है जिसे बात समझने के लिए कुछ ज़्यादा वक्त चाहिए। अगर आप किसी टीम के जिम्मेदार हैं, हर मुलाजिम की सलाहियत और सूरत हाल यकसा नहीं। अगर आप घर के सरबरा हैं, घर के हर फर्द से अपनी ही कुव्वत मिजाज और रफ्तार की तवक्को न रखिए। और अगर आप किसी दीनी या समाजी जिम्मेदारी में लोगों की रहनुमाई कर रहे हैं तो याद रखिए, लोगों को मंजिल तक पहुँचाना मकसूद है, रास्ते ही में थका देना नहीं। अल्लाह ताला हमें सुन्नत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कदर करने, उसे समझने और मोहब्बत के साथ अपनी ज़िंदगियों में उन्हें नाफिज करने की तौफीक अता फरमाएं। इसी दुआ के साथ प्रोग्राम रूपर व सुन्नत के आज के इस हलके से तकनीकी मुआविन शकील अहमद और मुझे तलहा अशरफुज़्ज़मान को दीजिए इजाज़त। अपना ख्याल रखिए, सुन्नतों को अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बनाते रहिए। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।
1: आप सुन रहे हैं FM 107
2: दिल से देसी।

अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप सुन रहे हैं एफएम 107 और स्पोर्ट्स हाईलाइट के साथ, मैं हूं आपका होस्ट मोहम्मद अमीन। दोस्तों, फुटबॉल में अगर माराडोना को जीनियस कहा जाता है, टेनिस में रॉजर फेडरर को आर्टिस्ट, तो शतरंज की दुनिया में एक नाम ऐसा है जिन्हें अक्सर शतरंज का बादशाह कहा जाता है। यहां दोस्तों, रशिया के गैरी कास्पारोव। कास्पारोव सिर्फ एक ग्रेट शतरंज खिलाड़ी नहीं थे, वो एक ऐसे कॉम्पिटिटर थे जो अपने ओपोनेंट को बोर्ड पर ही नहीं बल्कि जहनी तौर पर भी चैलेंज करते थे। हाँ, मैंने ये कहा कि वो थे, आज भी गैरी कास्पारोव चेस खेलते हैं। I mean, there is no retirement for any chess player. 1963 में बाकू में पैदा होने वाले कास्पारोव ने बहुत छोटी सी उम्र में अपनी एक्स्ट्राऑर्डिनरी टैलेंट का सबूत देना शुरू कर दिया था। सिर्फ 22 साल की उम्र में 1985 में, टू बी वेरी प्रिसाइज, सन 1985 में वो दुनिया के सबसे कम उम्र वर्ल्ड चैंपियन बन गए। और फिर उन्होंने तकरीबन दो डेकेड्स तक वर्ल्ड चेस पर अपनी हुकूमत कायम रखी। अजय बताना चलो कि 1985 में उन्होंने हराया किसको था। उन्होंने हराया था उस वक्त के अनदर लेजेंडरी सोवियत यूनियन के टॉप, वर्ल्ड के टॉप चेस प्लेयर अनातोली कारपोव को। लेकिन सवाल ये है कि कास्पारोव इतने अच्छे क्यों थे या क्यों हैं? उनकी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ उनकी कैलकुलेशन। वो चेस बोर्ड पर बहुत आगे तक सोच सकते थे। जहां आम खिलाड़ी एक या दो मूव्स आगे देखता है, कास्पारोव कई पॉसिबिलिटीज को एक साथ कैलकुलेट करने की कोशिश करते थे। लेकिन सब कैलकुलेशन ही सब कुछ नहीं होता है। कास्पारोव की ओपनिंग प्रिपरेशन लेजेंडरी थी। वो अपने ओपोनेंट्स के गेम्स का गहरा जो इरो फोकस था उसको नोट करते थे, उनकी वीकनेसेस ढूंढते और फिर मैच के लिए स्पेसिफिक स्ट्रेटजीज तैयार करते। मतलब एक शार्प आई, मतलब बहुत ही तीखी नजर से अपने ओपोनेंट को देखना, उनके मूव्स को नोट करना, मतलब एक चेस खिलाड़ी के अंदर ये सलाहियत बहुत कम खिलाड़ियों में हमने देखा है। और वहां पे एक्सेप्शनल वॉज गैरी कास्पारोव। आज के कंप्यूटर असिस्टेड चेस के दौर में जो चीज नॉर्मल लगती है, कास्पारोव के जमाने में उस लेवल की प्रिपरेशन बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरी समझी जाती थी। और फिर आती है उनकी एग्रेसिव स्टाइल। कास्पारोव को सिर्फ चेस खेलना पसंद नहीं था, वो पोजीशन को कॉम्प्लिकेटेड बनाते, प्रेशर क्रिएट करते और ओपोनेंट को डिफिकल्ट डिसीजंस लेने पर मजबूर कर देते। उनकी आंखों में वो कॉन्फिडेंस नजर आता था कि वो मुश्किल पोजीशन में भी कुछ ना कुछ नया निकाल लेंगे। लेकिन कास्पारोव की सबसे मशहूर राइवलरी थी अनातोली कारपोव के साथ, जिसके बारे में आपको बताया था। 1985 में उनको हराने के बाद ही बिकेम द यंगेस्ट वर्ल्ड चैंपियन। कास्पारोव और कारपोव बिल्कुल मुख्तलिफ स्टाइल्स के खिलाड़ी थे। कारपोव को पोजिशनल जीनियस कहा जाता था। वो धीरे धीरे ओपोनेंट की पोजिशन को स्क्वीज करते और छोटी सी वीकनेस का फायदा उठाते। दूसरी तरफ कास्पारोव एनर्जी और एग्रेशन लेकर आते। 1984 में दोनों के दरमियान वर्ल्ड चैंपियनशिप मैच शुरू हुआ। मैच इतना लंबा और इंटेंस हो गया कि आखिरकार ऑथोरिटीज ने इसे रोक दिया। अगले साल यानी 1985 में दोनों दोबारा आमने सामने आए और कास्पारोव ने कारपोव को हराकर वर्ल्ड चैंपियन का टाइटल हासिल कर लिया। लेकिन कहानी यहां खत्म नहीं होती है। कारपोव और कास्पारोव ने वर्ल्ड चैंपियनशिप के लिए कई बार मुकाबला किया। हर मैच में स्ट्रेटजी, साइकोलॉजी और नर्व्स का जबरदस्त इम्तिहान होता था। ये राइवलरी चेस हिस्ट्री के सबसे लेजेंडरी राइवलरीज में शुमार होती है। फिर 1990s में कास्पारोव का सामना हुआ एक और जबरदस्त ओपोनेंट के साथ, और वो थे और हैं इंडिया के विश्वनाथन आनंद। आनंद की स्पीड, प्रिपरेशन और टैक्टिकल ब्रिलियंस ने कास्पारोव के लिए एक नया चैलेंज पैदा किया। 1995 में दोनों ने वर्ल्ड चैंपियनशिप मैच खेला। कास्पारोव ने मैच जीता, लेकिन आनंद ने दुनिया को दिखा दिया कि इंडिया से एक ऐसा चेस सुपरस्टार आ चुका है जो वर्ल्ड चैंपियन को भी सीरियस चैलेंज दे सकता है। और दोस्तों, यही कास्पारोव की ग्रेटनेस का एक और रीजन है। वो सिर्फ
अपने जमाने के प्लेयर से नहीं लड़ते थे, यानी न चेस करते थे या नो राइवलरी रखते थे, वो चेस को इवॉल्व करने पर मजबूर करते थे। आज के मॉडर्न चेस में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, पावरफुल इंजन्स और ऑनलाइन डेटाबेसेस ने गेम को बिल्कुल बदल दिया है, लेकिन कास्पारोव की कैलकुलेशन, प्रिपरेशन, अटैकिंग माइंडसेट और साइकोलॉजिकल स्ट्रेंथ आज भी चेस खिलाड़ियों के लिए एक इंस्पिरेशन है। शायद इसीलिए गैरी कास्पारोव को सिर्फ एक वर्ल्ड चैंपियन कहना कम होगा, वो एक चेस रेवोल्यूशनरी थे। उन्होंने हमें दिखाया कि शतरंज सिर्फ 64 खानों और 32 मोहरों का गेम नहीं, ये इमेजिनेशन, डिसिप्लिन, पेशेंस, कैलकुलेशन और सबसे बढ़कर ह्यूमन माइंड की पावर का इम्तिहान है। तो दोस्तों, उम्मीद है आपको हमारा आज का ये स्पोर्ट्स सेगमेंट पसंद आया होगा। अगली बार एक नए लेजेंड की कहानी के साथ वापस आएंगे। तब तक के लिए मुझे यानी मोहम्मद अमीन और साउंड डिजाइनर नदीम अंसारी को दीजिए इजाजत। खुश रहें, सेहतमंद रहें और हमेशा अपना जज्बा जिंदा रखें। फी अमानिल्लाह।

अस्सलाम वालेकुम, मैं दुहा वाला कबीर एफएम 107.7। वेलकम टू अनदर टेक अपडेट। आज जो है वेबसाइट्स बहुत जरूरी हैं। आज एजुकेशनल पर्पस के लिए हम वेबसाइट्स लेकर आए हैं। मेरा मकसद ये है कि मैं आज उन बच्चों तक पहुंच सकूं, उन माँ बाप तक स्पेशली, जो अपने बच्चों को अलग अलग तरीके से एजुकेट करने की कोशिश करते हैं, इंटरैक्टिव तरीके से, जो माँ बाप क्रिएटिवली अप्रोच रखते हैं, कुल मिला के उनकी बात कर रहा हूँ मैं। तो आज उन्हीं के लिए है सारी की सारी वेबसाइट्स, नहीं इनफैक्ट दो वेबसाइट्स उनके लिए, एक थोड़ा सामने अलग रखे, ठीक है? तो शुरू करते हैं। नंबर वन जो वेबसाइट है ऑन द लिस्ट, इसका नाम है टॉय थिएटर। टॉय थिएटर, खिलौने वाला, TOY, टॉय थिएटर, TH EATRE। इस वेबसाइट पे अगर आप जाएंगे तो अपने बच्चों के साथ आप बहुत सारे गेम्स खेल सकते हैं। इस पे बहुत सारे गेम्स हैं जो इंटरैक्टिव हैं, ऑनलाइन है, तो ऑब्वियसली उनको अगर आप हाथ में टैबलेट पकड़ा देते हैं, फोन ही पकड़ा देते हैं, तब भी आप इसके जरिए उन्हें सिखा सकते हैं। फोनिकली वो आवाजों के जरिए मैथ्स के सम से लेकर एक एक चीज पजल के थ्रू पढ़ाई कर सकते हैं, और ये ब्रेन के ना उन हिस्सों को टैप इन करता है जो यूजुअली गेम्स करते हैं। और मैं हमेशा से इस बात के लिए आगे आता हूँ, वकालत करता हूँ कि गेम्स आपके ब्रेन को खोलते हैं। तो वाले

0: गेम जो बच्चों के लिए और एलिमेंट्री स्कूल तक के लिए, जो बच्चों के दिमाग को खोलेंगे भी, उन्होंने बहुत कुछ सिखाएंगे, ये वेबसाइट उनके काम की है, toytheater.com। इस वेबसाइट पे जरूर जरूर जाइएगा। इससे मिलते जुलती एक और वेबसाइट मैं आपको बता देता हूँ। अगली वेबसाइट का नाम है starfall.com, starfall.com, starfall.com। इस वेबसाइट पर जब आप जाएंगे तो इस वेबसाइट पर भी आपको शुरुआत से किंडरगार्टन से लेकर एलिमेंट्री तक बच्चों को सिखाने के लिए बहुत सारी एक्टिविटीज हैं। इसमें क्या है ना, रीडिंग का भी जो हिसाब किताब है ना, वो एनिमेशन के जरिए है, तो वो किताब उनके सामने खुलेगी, वो किताबें पढ़ेंगी, किताबें उनसे बात भी करेंगी, और सारी की सारी कहानी है कि एनिमेशन के थ्रू उनकी नजरों के सामने आएगी। इट इज इमेंसली ब्यूटीफुल। ये जो मौका है ना, ये अपने बच्चों को दीजिए, बिकॉज आई थिंक कॉग्निटिव जो एबिलिटीज होती हैं दिमाग की, वो अनलॉक होती हैं, और एनिमेशन के थ्रू बहुत इंटरेस्टिंग हो जाती है पढ़ाई, है ना। तो राधर देन यू सिटिंग एंड टेलिंग देम पढ़ो पढ़ो पढ़ो पढ़ो पढ़ो एंड टेलिंग देम स्टोरीज, ये जो है ना उनको मदद करेगा, चाहे उनके हाथ में फोन्स क्यों ना हो, अगर आपने ये कर दिया है ना तो उनको एक आदत लगेगी, और वो आदत उन्हें बहुत सारी चीजें सिखाएगी, कलर्स हो, नाम हो, मैथ्स के सम्स हो, या फिर एक बेसिक एक कहानी सुनाने का तरीका हो। और कहानी सुनाने के तरीके से बेहतर कोई और तरीका नहीं है जो बच्चे के दिमाग को टैप इन करता है, बिकॉज उसके इमेजिनेटिव वर्ल्ड को छू लेना इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, अगर आप उसे सच में कुछ सिखाना चाहते हैं। दैट इज सो ट्रू। मैं कोई इसमें डॉक्टर नहीं हूं, बट जहां तक मैंने जाना है, देखा है, पढ़ा है, वो तो भाई यही है। तो आई जस्ट वॉन्टेड टू गिव दिस टू यू कि आपको अच्छा लगे। अगली वेबसाइट की तरफ बढ़ते हैं। अगली वेबसाइट का जो नाम है ये है chatforce.com, chatforce, chatforce.com। इस वेबसाइट में जब आप जाएंगे तो आपको एक मौका मिलेगा एक गेम अपने हिसाब से फ्री में बनाने का। ट्रस्ट मी, मोबाइल गेम आप अपने आप बना सकते हैं, और आपका इमेजिनेशन जितना लंबा दौड़ाना चाहे घोड़े को दौड़ाइए भाई। आपको कोई सा इसमें कैसा एनवायरनमेंट चाहिए, कैसा म्यूजिक चाहिए, आप कैसा देखते हैं वो गेम है क्या, वो सब कुछ आप एक प्रॉम्प्ट पे दे सकते हैं। एंड ये हालांकि मजे मजे में आप कुछ बनाएंगे, मगर आपको सीखने को मिलेगा कि गेम्स में क्या क्या चीज़ें की फैक्टर्स होती हैं, एनवायरनमेंट कैसे होता है, क्या बिल्डअप होता है, और ये सब चीज़ें सीख के हो सकता है यू नेवर नो कि किसी का इंटरेस्ट किसी और फील्ड को अनलॉक कर दे। तो डेफिनेटली ये तो खैर एडल्ट्स के लिए भी है, आप अगर गेम बनाना चाहें आप बनाइए, बिंदास बनाइए और सीखिए इससे, यू नेवर नो कि एक और इंडस्ट्री को आप अनलॉक कर लें अपने लिए, एंड डेफिनेटली आप काम आ सकते हैं। सो chatforce.com ये है जी इसका नाम। जरा खबरों की तरफ बढ़ते हैं। देखिए खबरों में मैं बताना चाहूंगा, साल का आखिर होने वाला है, अभी अगर आप कोई प्रोडक्ट खरीदने की कोशिश कर रहे हैं तो अभी आप खरीद दीजिए। मैं सही बता रहा हूँ, विंटर क्या आते आते मतलब टुवर्ड्स द फॉल सीजन में कुछ ही प्रोडक्ट्स हैं जो कम जो जिनका प्राइस कम होगा, बाकी सबके सब अपने प्राइस पे अड़े रहेंगे। हाउएवर अभी एक जंग जो है वो फोल्डेबल फोन्स की चल रही है, जिसमें आपको डिस्काउंट मिलने के चांसेस हैं। रिसेंटली एक आर्टिकल में छपा है कि अभी तो र्यूमर्ड है, बट अगर उसकी माने तो टुवर्ड्स द फॉल आपको बहुत सारे जो फोल्डेबल फोन्स हैं उस पे एक प्राइस कट मिल सकता है। ऑल द बेस्ट फॉर दैट। तो ये थी टेक अपडेट, मैं दुआ वाला कबीर साइनिंग ऑफ। अपना ख्याल रखिएगा, आप बेहद बेहद जरूरी हैं। मास्सलाम।
1: स्कैम अलर्ट। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु। FM 107 पे फजील के साथ दोस्तों इस्तकबाल है एक नए दिन में आप सभी का, और ये शो है या ये एपिसोड है फ्रॉड अवेयरनेस, जहां पर नए जमाने के नए फ्रॉड के बारे में आपको मैं अवेयर करता रहता हूं। और आज जिस फ्रॉड के बारे में मैं बात करने वाला हूँ, इस फ्रॉड में लोग बड़े आसानी से फंस जाते हैं, चाहे वो घर की फीमेल्स हो या फिर सोशल मीडिया पे एक्टिव कोई लड़का हो या फिर सोशल मीडिया पे एक्टिव कोई बच्चे हो, ये सब बड़े आसानी से इस फेक या कहें फ्रॉड में फंस जाते हैं। ये है फेक सोशल मीडिया गिव अवेज। ये एक डीप स्कैम है दोस्तों। ये काम कैसे करता है, सबसे पहले इस पर बात करते हैं। सोशल मीडिया पर चलने वाला ये फेक गिव अवेज दिखने में बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्टिव लगता है, लेकिन इनके पीछे एक बहुत बड़ा साइबर क्राइम नेटवर्क होता है। इस स्कैम को करने के लिए क्रिमिनल सबसे पहले आइडेंटिटी थेफ्ट का सहारा लेते हैं। वो आपके किसी बेहद क्लोज फ्रेंड की प्रोफाइल को टारगेट करते हैं, उनकी सारी फोटोज, कवर पिक्चर, बायो, पर्सनल स्टेटस, अपडेट्स को सब चुरा लेते हैं। एक बिल्कुल फिर डुप्लीकेट फेक प्रोफाइल क्रिएट की जाती है। इसके बाद आपको उस डुप्लीकेट प्रोफाइल से एक नई फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजी जाती है। चैट शुरू करते ही वो झूठ बोलते हैं, मेरा पुराना अकाउंट ब्लॉक है, हैक हो गया है, इसलिए मैंने ये बैकअप आईडी बनाई है। जैसे ही आप उनकी रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कर लेते हैं, वो फेक फ्रेंड आपसे एक बड़ी एक्साइटिंग ऑफर शेयर करता है। वो बोलेगा कि मैंने अभी एक सीक्रेट गवर्नमेंट ग्रांट जीता है, या मुझे एक मैसिव इंटरनेशनल कैश गिव अवे में लाखों रुपए मिले हैं। आपका लालच बढ़ाने के लिए वो कहेगा कि मैंने विनर्स लिस्ट चेक की है, उसमें तेरा भी नाम शामिल है, मुझे तो पैसे मिल गए, तू भी अपने प्राइज मनी को क्लेम कर सकता है। वो आपको चैट पर एक एक्सटर्नल लिंक भेजेगा और बोलेगा कि इस लिंक पर क्लिक करके अपनी बैंक डिटेल्स और लॉगिन डिटेल्स भर दो, ताकि प्राइज मनी आपके अकाउंट में ट्रांसफर हो सके। देखिए, ये तो मैंने बहुत छोटे में बता दिया, लेकिन और भी बहुत ज्यादा ट्रिक जो है ये स्कैमर्स उस फेक प्रोफाइल से लगाते हैं ताकि आपको फंसाया जा सके। लेकिन रियलिटी ये होती है कि जैसे ही आप उस फ्रॉड लिंक पर क्लिक करते हैं, आपके फोन या कंप्यूटर में ऑटोमेटिक मालवेयर और स्पाईवेयर डाउनलोड हो जाता है। ये मालवेयर आपके बैंक पासवर्ड्स, OTPs और सोशल मीडिया लॉगिन क्रेडेंशियल्स को चुरा कर हैकर के पास भेज देता है, और कुछ ही मिनट्स में आपका बैंक अकाउंट पूरी तरह खाली हो जाता है। लेकिन इस तरह के फ्रॉड से बचने का कंप्लीट सॉल्यूशन भी है। दोस्तों, कुछ 3 सॉल्यूशंस ऐसे हैं जिनको अगर आप अपनाएंगे तो इस तरह के फ्रॉड से बड़े आसानी से आप बच जाएंगे। सबसे पहला तरीका है इस तरह के फ्रॉड से बचने के लिए, वो है क्रॉस वेरीफाई वाया अल्टरनेटिव चैनल्स। जब भी कोई दोस्त अचानक सोशल मीडिया पर फ्री मनी, गवर्नमेंट ग्रांट्स या लॉटरी की बातें करने लगे तो तुरंत अलर्ट हो जाए। उस आईडी पर रिप्लाई करने के बजाय उन्हें फोन कॉल करें, पर्सनल टेक्स्ट मैसेज या किसी दूसरी मैसेजिंग ऐप पर कॉन्टेक्ट करें और पूछें कि क्या उन्होंने सच में कोई ऐसा लिंक भेजा है या नहीं। दूसरा तरीका है एनालाइज द प्रोफाइल एज एंड फॉलोवर्स एज वेल। किसी भी पुराने दोस्त की नई रिक्वेस्ट एक्सेप्ट करने से पहले उनकी प्रोफाइल का हिस्ट्री जरूर चेक करें, देखें कि वो अकाउंट कब बना है। अगर अकाउंट बिल्कुल नया है, उसमें सिर्फ 5 से 10 फॉलोवर्स हैं और पोस्ट की डेट सिर्फ 1, 2, 3, 4, 6 दिन पुरानी है, तो समझ लीजिए कि ये 100% एक फेक डुप्लीकेट प्रोफाइल है जो आपको ठगने के लिए बनाई गई है। तीसरा तरीका है नेवर क्लिक एंड रिपोर्ट इमीडिएटली। ऐसे किसी भी सस्पिशियस एक्सटर्नल गिव अवे लिंक पर क्लिक बिल्कुल ना करें। उस अकाउंट की प्रोफाइल पर जाकर फेक अकाउंट, प्रिटेंडिंग टू बी समवन एल्स का ये ऑप्शन जो है वो आप रिपोर्ट कर सकते हैं, और बिल्कुल एडमिन को रिपोर्ट करना ये आपकी ड्यूटी भी है। अपने बाकी फ्रेंड्स को भी टाइमलाइन पर अलर्ट कर दें ताकि कोई और उस लिंक पर क्लिक ना करे, और लोगों को बताएं कि आपके दोस्त के नाम की एक फेक प्रोफाइल बनी है। इस तरह से आप अपने दोस्तों को और बाकी लोगों को बचा भी सकते हैं, खुद को बचाने के साथ साथ। इसी के साथ मुझे यानी कि फजील को दीजिए इजाजत। इंशाल्लाह मुलाकात होगी कल एक नए जमाने के नए फ्रॉड के बारे में बात करते हुए और आपको फ्रॉड से अवेयर करते हुए। सुनते रहे FM 107, दिल से देसी। स्कैम अलर्ट।
2: Welcome to our segment called Smart Money. मैं हूँ आपकी दोस्त, आपकी होस्ट नासिया। आज के सेगमेंट में दोस्तों मैं बात करने वाली हूँ कि जेन जी जो है वो किस तरह से डिफरेंटली इन्वेस्ट कर रहे हैं। वेल, हर जनरेशन के आप पैसे को लेकर एक अलग परसेप्शन है। हर जनरेशन के पैसे को देखने का अपना एक अलग तरीका भी है। आज के दौर में सबसे ज्यादा डिस्कस होने वाली दो जनरेशन, मिलेनियल एंड जेन जी। मिलेनियल्स वो लोग हैं जो लगभग 1981 से 1996 के दरमियान पैदा हुए, जबकि जेन जी वो जनरेशन है जो उनके बाद आई। देखिए, दोनों जनरेशन्स इन्वेस्टिंग में इंटरेस्टेड हैं, लेकिन उनकी अप्रोच, उनकी प्रायोरिटीज, उनके इन्वेस्टमेंट डिसीजंस एक दूसरे से बिल्कुल अलग। मिलेनियल्स में अपनी जवानी, उस दौर में गुजरे ट्रेडिशनल बैंकिंग, कन्वेंशनल इन्वेस्टमेंट मेथड्स, ये सारी चीज़ें उन्हें डोमिनेट आज भी करती हैं, और इसीलिए उनसे बहुत से लोग जितने भी आपने देखे होंगे वो ज्यादातर म्यूचुअल फंड्स, रिटायरमेंट प्लान्स, फिक्स्ड सेविंग प्लान्स और रियल स्टेट इन्वेस्टमेंट्स को ही प्रेफर करते हैं। उनकी इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी अक्सर लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी और सिक्योरिटी पर फोकस करती है। वहीं देखा जाए दूसरी तरफ जेन ज़ी को, तो ये कम्प्लीटली डिजिटल वर्ल्ड में पली बड़ी जनरेशन है। उन्होंने स्मार्टफोन्स, सोशल मीडिया और ऑनलाइन टेक्नोलॉजी को बचपन से यूज किया है और शायद इसी वजह से उनका इन्वेस्टिंग का स्टाइल भी ज्यादा डिजिटल और फास्ट पेस्ड होता है। देखिए जेन ज़ी के लिए स्मार्टफोन्स, एप्स और ऑनलाइन इन्वेस्टमेंट प्लेटफॉर्म सब कुछ बड़ा नॉर्मल है। वो इन्वेस्टमेंट डिसीजंस लेने के लिए इंटरनेट और सोशल मीडिया पर अवेलेबल इंफॉर्मेशन का बहुत ज्यादा सहारा लेते हैं। जेन ज़ी की सबसे खास पहचान ये है कि वो इन्वेस्टिंग को पहले की जनरेशन की तरह कॉम्प्लिकेटेड नहीं समझते। आजकल कई इन्वेस्टमेंट एप्स इन्वेस्टिंग प्रोसेस को इतना सिंपल बना चुकी हैं, यंग इन्वेस्टर्स कुछ ही मिनटों में अकाउंट ओपन कर सकते हैं और इन्वेस्टिंग स्टार्ट कर सकते हैं। इस तरह की एक्सेसिबिलिटी ने जेन ज़ी को फाइनेंशियल मार्केट के करीब ला दिया है। एक और इम्पोर्टेंट डिफरेंस है इन्फॉर्मेशन के सोर्सेस का। मिलेनियल्स अक्सर फाइनेंशियल एडवाइजर्स, बैंक या फिर ट्रेडिशनल फाइनेंशियल पब्लिकेशंस पर ही डिपेंड करते हैं। वहीं जेन ज़ी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स, यूट्यूब चैनल्स, पॉडकास्ट, ऑनलाइन फाइनेंस इन्फ्लुएंसर्स। देखिए जेन ज़ी इन्वेस्टर्स अक्सर फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस और फ्लेक्सिबिलिटी को प्रायोरिटी देते हैं। वो सिर्फ रिटायरमेंट की नहीं बल्कि फ्यूचर लाइफस्टाइल, एंटरप्रेन्योरशिप और पर्सनल गोल्स के लिए भी इन्वेस्टिंग करना चाहते हैं। देखिए इस जनरेशन के लिए पैसा सिर्फ सिक्योरिटी का सोर्स नहीं बल्कि अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करने का जरिया भी है। लेकिन हाँ, इन्वेस्टिंग में गलती रिजल्ट्स हासिल करने की डिजायर कभी कभी चैलेंजिंग हो जाती है। तो बस आखिर में मैं यही कहना चाहूंगी कि जेन ज़ी और मिलेनियल्स दोनों वेल्थ क्रिएट करना चाहते हैं लेकिन उनकी अप्रोच डिफरेंट है। मिलेनियल्स ट्रेडिशनल और स्टेबल इन्वेस्टमेंट मेथड्स को प्रेफर करते हैं जबकि जेन ज़ी टेक्नोलॉजी, एक्सेसिबिलिटी और डिजिटल प्लेटफॉर्म्स को इम्पोर्टेंस देती है। फिर इसके बावजूद एक चीज जो दोनों जनरेशंस में कॉमन है वो बताऊं क्या है? वो है फाइनेंशियल सक्सेस का राज, और ये राज नॉलेज, डिसिप्लिन और लॉन्ग टर्म थिंकिंग में छुपा है। पहले आज की जनरेशन के पास इंफॉर्मेशन और टूल्स पहले से ज्यादा है। अगर वो फाइनेंशियल लिटरेसी को इम्प्रूव करें, सोशल मीडिया इन्फॉर्मेशन को क्रिटिकली इवैल्यूएट करें और पेशेंस के साथ इन्वेस्टिंग कंटिन्यू रखें तो वो अपने फाइनेंशियल गोल्स अचीव कर सकते हैं। आखिर में यही कहूंगी कि इन्वेस्टिंग का सबसे इम्पोर्टेंट लेसन ये है कि वेल्थ जल्दी नहीं बनती लेकिन स्मार्ट डिसीजंस और कॉन्स्टेंट हैबिट से जरूर बनती है। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। मुझे यानी नाज़िया और शकीब अहमद हम दोनों को इजाजत दीजिए। देखते हो सुनते हो एफएम 107 दिल से देसी।
3: Gen Z, Gen X, Gen Alpha, Millennials. ये सब महज टर्म्स नहीं है, ये अलग अलग ख्याल, आदतें, इन सब को अगर एक दूसरे से मुखातिब कराया जाए तो क्या होगा?
4: तो ये जानने के लिए सुनिएगा जनरेशन टॉक, जनरेशन टॉक विद आरजे कबीर एंड आरजे सफा एवरी ट्यूजडे एट 3 PM, ओनली ऑन FM 107, दिल से देसी।

0: FM 107 पर अपना बिजनेस एडवर्टाइज करने के लिए आज ही राबता करें, आज ही राबता करें हमारी कतर मीडिया कॉरपोरेशन की मार्केटिंग टीम से। कॉल करें 4488806 पर या ईमेल करें marketing@qmc.qa।
1: मॉडर्न लाइफ फास्ट है लेकिन साथ ही है जहनों में एंडलेस क्वेश्चंस। और अगर आप सोच रहे हैं कैसे बैलेंस करूं फेथ और मॉडर्न लाइफ को, तो सुनिए ये शो इस्लामिक मॉडर्न लाइफ, जो आपको दिखाएगा इस्लामिक गाइडेंस आज के दौर के हिसाब से। सुनना ना भूले शो इस्लामिक मॉडर्न लाइफ, मॉडर्न जिंदगी का बैलेंस सिर्फ इसी शो में। हर थर्सडे सुबह 10 बजे से 11 बजे तक आरजे महवेश खान के साथ ओनली ऑन FM 107।

0: आपकी खामोश दुआओं को सुनता है और आपके आंसुओं को जाया नहीं करता। आप अकेले नहीं हैं, आप कमजोर नहीं हैं और आप ना उम्मीद होने के लिए पैदा नहीं किए गए। उम्मीद, शफा और सुकून आपके लिए भी है, आहिस्ता आहिस्ता लेकिन मिलेगी जरूर। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, इंशाल्लाह नेक्स्ट एपिसोड में आपसे मुलाकात होती है। तब तक के लिए मेरी तरफ से अल्लाह हाफिज।
1: Qatar's most heard radio station, FM 107, Dil Se Desi.
2: एक खास शो जहां बात होगी खातीन की सेहत, अवेयरनेस और कंप्लीट वेलबींग की।
3: Wellness is finding yourself, finding what brings you joy and what keeps you whole.
2: एक ऐसा प्रोग्राम जो सिर्फ हेल्थ रिलेटेड इंफॉर्मेशन ही नहीं देगा बल्कि हेल्दी लाइफस्टाइल को अडॉप्ट करने के लिए मोटिवेट भी करेगा। हर एपिसोड में हमारे साथ होंगे डॉक्टर्स, डिस्कस करेंगे उन टॉपिक्स को जो आपकी जिंदगी को पॉजिटिवली ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। तो दोस्तों, सुनना न भूले शो वेमेन वेलनेस हर मंडे शाम 5 बजे से आरजे नाजिया के साथ, ओनली ऑन FM 107, दिल से दी।

0: Wake up! हर हफ्ते संडे टू थर्सडे सुबह 6 बजे से सिर्फ FM 107 पर दिल से देसी।
1: आपके जहन में वजारत दाखला या उसके मुख्तलिफ शोबों से मुतालिक कोई सवाल है? वजारत दाखला की किसी सर्विस के बारे में मालूमात चाहिए या पुलिस के किसी शोबे की जिम्मेदारियों और खिदमात को जानना चाहते हैं? तो सुनिए प्रोग्राम पुलिस और अवाम, जिसमें हर हफ्ते वजारत दाखला के मुख्तलिफ शोबों से मुतालिक नुमाइंदे अपने शोबे की जिम्मेदारियों, खिदमात, कवानीन और अवाम से मुतालिक अहम उमूर के बारे में तफसीली मालूमात फराहम करते हैं। हर पीर रात 8 बजे से तलहा अशरफुज़्ज़मान के साथ पुलिस और अवाम, पुलिस और अवाम, जानिए, समझिए और बाखबर रहिए। ओनली ऑन FM 107।
2: कतर का सबसे ज्यादा सुना जाने वाला रेडियो स्टेशन
3: FM 107, FM 107, दिल से देसी।

0: एक सबक है, एक रोशनी जो हमें राह दिखाती है। उनकी कुर्बानियां, सब्र और अल्लाह पर यकीन हमें सिखाता है कि मुश्किलें आती हैं, मगर ईमान हमेशा जीतता है। Stories of Prophets, Stories of Prophets, जिसमें आप सुनेंगे नबियों की दिलचस्प कहानियां, उनकी मेहनत, उनके इम्तिहान और उनके पैगामात जो दिल को छू लेते हैं। आप भी इस सफर में शामिल हों और इन पाक कहानियों से अपने दिल को रोशन करें।
1: सुनिए शो आरजे महविश खान के साथ ओनली ऑन एफएम 107, दिल से देसी। अस्सलाम वालेकुम लिसनर्स, आप सुन रहे हैं एफएम 107 कतर। मैं हूं आपके साथ आपके आरजे महविश खान और शो है स्टोरीज फ्रॉम प्रॉफिट्स, और इसमें मैं एक दफा फिर आप लोगों को खुशामदीद कहती हूँ। यकीनन आप लोग जानते हैं कि ये वो शो है जहाँ हम अल्लाह ताला के बरगजीदा पैगंबरों की जिंदगियों से सिर्फ वाकयात नहीं सुनते, बल्कि ये समझने की कोशिश करते हैं कि उन वाकयात का हमारे आज के साथ क्या ताल्लुक है। गुज़िश्ता एपिसोड्स में हमने हजरत आदम अलैहिस्सलाम और हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम के बारे में जाना। आज हम एक ऐसे नबी की दास्तान सुनेंगे जिनका नाम आते ही हमारे जहन में

सबक है, नाकामी के बाद दोबारा खड़ा होना। अब मैं आपसे 3 सवाल पूछूंगी, आप चाहें तो अपने दिल में जवाब दीजिए। अगर कोई आपकी अच्छी नसीहत कबूल

0: FM 107 पर अपना बिजनेस एडवर्टाइज करने के लिए आज ही राबता करें, आज ही राबता करें हमारी कतर मीडिया कॉरपोरेशन की मार्केटिंग टीम से। कॉल करें 4488806 पर या ईमेल करें marketing@qmc.qa।
1: दिन भर की मसरूफियात और थकन के बाद जब कोई शाम को अजगार का अहतमाम करता है तो ये महज जिक्र के चंद अल्फाज नहीं होते बल्कि अल्लाह ताला से ताल्लुक को मजबूत करने और रूहानी व नफ्सियाती तवानाई को ताज़ा करने का जरिया बनते हैं। आइए समाअत कीजिए शाम के अजगार FM 107 पर।

0: وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. اللهم صل وسلم على نبينا محمد. اذکار شام کے اس خصوصی سیگمنٹ کے اختتام پر آپ سب کو ایف ایم 107 کی پوری ٹیم کی جانب سے شام بخیر. اللہ تعالی ہمیں اپنے حفظ و امان میں رکھے اور تمام آفتوں اور مصیبتوں سے ہماری حفاظت فرمائے. آمین یا رب العالمین.
1: आप सुन रहे हैं FM 107.
2: FM 107.
3: दिल से देसी.
4: दोस्तों, रमजान का मुबारक महीना रहमत और बरकत का महीना है. इफ्तार का वक्त करीब आता है तो अक्सर लोग जल्दी में गाड़ी तेज चलाने लगते हैं. मगर याद रखें, इफ्तार से पहले हद से ज्यादा रफ्तार ट्रैफिक हादसात की अहम वजूहात में से एक है. सिर्फ कुछ मिनट बचाने के लिए अपनी जिंदगी और दूसरों की जिंदगी को खतरे में मत डालिए. तेज रफ्तार में एकदम से ब्रेक लगाने पड़ते हैं, गाड़ी पर कंट्रोल कम होता है और एक छोटी सी गलती बड़ी ट्रेजेडी बन सकती है. इसलिए हमेशा इफ्तार से पहले रफ्तार आहिस्ता रखें, सेफ डिस्टेंस बरकरार रखें, सिग्नल और लेन डिसिप्लिन की पाबंदी करें, मोबाइल फोन इस्तेमाल ना करें और अगर आपको थकान महसूस हो रही है तो कहीं साइड पर प्रॉपर पार्किंग में गाड़ी लगाकर थोड़ी देर आराम कर लीजिए. इफ्तार के वक्त आपको घर पहुंचना है मगर महफूज पहुंचना सबसे ज्यादा जरूरी है. तो होशियार रहें, एहतियात करें, अपनी और दूसरों की जिंदगी बचाएं. रफ्तार कम रखें, सिग्नल फॉलो करें, सेफ डिस्टेंस बरकरार रखें. सिर्फ कुछ मिनट बचाने के लिए अपनी और दूसरों की जिंदगी को खतरे में मत डालिए. वजारत दाखिला का कहना है कि आपकी हिफाजत हमारे लिए अहम है. FM 107 आपकी और आपकी फैमिली की हिफाजत की ख्वाहिश करता है.

0: आपने सुना हमें ऑन एयर, नाउ फॉलो अस ऑन फेसबुक एंड इंस्टाग्राम एट FM 107 कतर। दिल से देसी।
1: ए बनी आदम, क्या तुम दुआ का मजाक उड़ाते हो? दुआ को हकीर समझते हो? हालांकि तुम्हें खबर ही नहीं कि दुआ क्या कुछ करती है। ये रात के तीर हैं जो सीधे अपने निशाने पर जा लगते हैं, खता नहीं करते। अलबत्त उनका एक वक्त मुकर्रर है जिसके बाद उनका असर जाहिर होता है। दोस्तों, प्रोग्राम आज की दुआ, इसका मकसद हमें याद दिलाना है कि दुआ बंदे का सबसे कीमती हथियार है, दिल का सुकून है और रब से ताल्लुक का सबसे मजबूत रिश्ता है। आइए चंद लम्हों के लिए हम अल्लाह की बारगाह में दुआ मांगे। समीन, आज इब्राहिम और इस्माइल अलैहिस्सलाम की दुआ सुनाएंगे जब वो अल्लाह के हुक्म पर बैतुल्लाह की बुनियादें बुलंद कर रहे थे। ये दुआ इब्राहिम और उनके फर्जंद इस्माइल अलैहिस्सलाम ने की जब दोनों मिलकर खाना काबा की तामीर में मसरूफ थे। वो अजीम अमल के दौरान भी अल्लाह की बारगाह में दुआ करते रहे ताकि ये अमल कबूल हो और उनके औलाद ईमान और इताअत पर कायम रहे। رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ।

0: إنك أنت السميع العليم. ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك، وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم.
1: हेलो,
2: क्या आप बिजनेस में इंटरेस्टेड हैं? क्या हो रहा है कतर की बिजनेस में? क्या हलचल है स्टॉक मार्केट में? बिजनेस की स्ट्रेटजी, मार्केट का हाल, करेंसी अपडेट
1: सुनिए कतर बिजनेस न्यूज़ विद आरजे सरवर मिर्ज़ा, डेली लाइव विद मॉर्निंग न्यूज़ बुलेटिन ओनली ऑन एफएम 107. दिल से देसी।
3: FM 107 पर अपना बिजनेस एडवरटाइज करने के लिए आज ही राबता करें। हमारी कतर मीडिया कॉरपोरेशन की मार्केटिंग टीम से कॉल करें 4488806 पर या ईमेल करें marketing@qmc.qa.
4: Qatar's most heard radio station, FM 107. दिल से देसी.
5: Scam alert. अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातु. FM 107 पे फजील के साथ दोस्तों इस्तकबाल है एक नए दिन में आप सभी का, और ये शो है या ये एपिसोड है फ्रॉड अवेयरनेस, जहां पर नए जमाने के नए फ्रॉड के बारे में आपको मैं अवेयर करता रहता हूं. और आज जिस फ्रॉड के बारे में मैं बात करने वाला हूँ, इस फ्रॉड में लोग बड़े आसानी से फंस जाते हैं, चाहे वो घर की फीमेल्स हो या फिर सोशल मीडिया पे एक्टिव कोई लड़का हो या फिर सोशल मीडिया पे एक्टिव कोई बच्चे हो, ये सब बड़े आसानी से इस फेक या कहे फ्रॉड में फंस जाते हैं. ये है फेक सोशल मीडिया गिव अवेज. ये एक डीप स्कैम है. दोस्तों ये काम कैसे करता है, सबसे पहले इस पर बात करते हैं. सोशल मीडिया पर चलने वाला ये फेक गिव अवेज दिखने में बहुत ही ज्यादा अट्रैक्टिव लगता है, लेकिन इनके पीछे एक बहुत बड़ा साइबर क्राइम नेटवर्क होता है. इस स्कैम को करने के लिए क्रिमिनल सबसे पहले आइडेंटिटी थेफ्ट का सहारा लेते हैं. वो आपके किसी बेहद क्लोज फ्रेंड की प्रोफाइल को टारगेट करते हैं, उनकी सारी फोटोज, कवर पिक्चर, बायो, पर्सनल स्टेटस, अपडेट्स को सब चुरा लेते हैं. एक बिल्कुल फिर डुप्लीकेट फेक प्रोफाइल क्रिएट की जाती है. इसके बाद आपको उस डुप्लीकेट प्रोफाइल से एक नई फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजी जाती है. चैट शुरू करते ही वो झूठ बोलते हैं, मेरा पुराना अकाउंट ब्लॉक है, हैक हो गया है, इसलिए मैंने ये बैकअप आईडी बनाई है. जैसे ही आप उनकी रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कर लेते हैं, वो फेक फ्रेंड आपसे एक बड़ी एक्साइटिंग ऑफर शेयर करता है. वो बोलेगा कि मैंने अभी एक सीक्रेट गवर्नमेंट ग्रांट जीता है, या मुझे एक मैसिव इंटरनेशनल कैश गिव अवे में लाखों रुपए मिले हैं. आपका लालच बढ़ाने के लिए वो कहेगा कि मैंने विनर्स लिस्ट चेक की है, उसमें तेरा भी नाम शामिल है, मुझे तो पैसे मिल गए, तू भी अपने प्राइज मनी को क्लेम कर सकता है. वो आपको चैट पर एक एक्सटर्नल लिंक भेजेगा और बोलेगा कि इस लिंक पर क्लिक करके अपनी बैंक डिटेल्स और लॉगिन डिटेल्स भर दो, ताकि प्राइज मनी आपके अकाउंट में ट्रांसफर हो सके. देखिए ये तो मैंने बहुत छोटे में बता दिया, लेकिन और भी बहुत ज्यादा ट्रिक जो है ये स्कैमर्स उस फेक प्रोफाइल से लगाते हैं ताकि आपको फंसाया जा सके. लेकिन रियलिटी ये होती है कि जैसे ही आप उस फ्रॉड लिंक पर क्लिक करते हैं, आपके फोन या कंप्यूटर में ऑटोमेटिक मालवेयर और स्पाईवेयर डाउनलोड हो जाता है. ये मालवेयर आपके बैंक पासवर्ड्स, ओटीपीज और सोशल मीडिया लॉगिन क्रेडेंशियल्स को चुरा कर हैकर के पास भेज देता है, और कुछ ही मिनट्स में आपका बैंक अकाउंट पूरी तरह खाली हो जाता है. लेकिन इस तरह के फ्रॉड से बचने का कंप्लीट सॉल्यूशन भी है. दोस्तों कुछ 3 सॉल्यूशंस ऐसे हैं जिनको अगर आप अपनाएंगे तो इस तरह के फ्रॉड से बड़े आसानी से आप बच जाएंगे. सबसे पहला तरीका है इस तरह के फ्रॉड से बचने के लिए, वो है क्रॉस वेरीफाई वाया ऑल्टरनेटिव चैनल्स. जब भी कोई दोस्त अचानक सोशल मीडिया पर फ्री मनी, गवर्नमेंट ग्रांट्स या लॉटरी की बातें करने लगे तो तुरंत अलर्ट हो जाए. उस आईडी पर रिप्लाई करने के बजाय उन्हें फोन कॉल करें, पर्सनल टेक्स्ट मैसेज या किसी दूसरी मैसेजिंग ऐप पर कॉन्टेक्ट करें और पूछें कि क्या उन्होंने सच में कोई ऐसा लिंक भेजा है या नहीं. दूसरा तरीका है एनालाइज द प्रोफाइल एज एंड फॉलोवर्स एज वेल. किसी भी पुराने दोस्त की नई रिक्वेस्ट एक्सेप्ट करने से पहले उनकी प्रोफाइल का हिस्ट्री जरूर चेक करें, देखें कि वो अकाउंट कब बना है. अगर अकाउंट बिल्कुल नया है, उसमें सिर्फ 5 से 10 फॉलोवर्स हैं और पोस्ट की डेट सिर्फ 1, 2, 3, 4, 6 दिन पुरानी है, तो समझ लीजिए कि ये 100% एक फेक डुप्लीकेट प्रोफाइल है जो आपको ठगने के लिए बनाई गई है. तीसरा तरीका है नेवर क्लिक एंड रिपोर्ट

0: इमीडिएटली। ऐसे किसी भी सस्पिशियस एक्सटर्नल गिव अवे लिंक पर क्लिक बिल्कुल ना करें। उस अकाउंट की प्रोफाइल पर जाकर फेक अकाउंट प्रिटेंडिंग टू बी समवन एल्स का ये ऑप्शन जो है वो आप रिपोर्ट कर सकते हैं, और बिल्कुल एडमिन को रिपोर्ट करना ये आपकी ड्यूटी भी है। अपने बाकी फ्रेंड्स को भी टाइमलाइन पर अलर्ट कर दें ताकि कोई और उस लिंक पर क्लिक ना करे, और लोगों को बताएं कि आपके दोस्त के नाम की एक फेक प्रोफाइल बनी है। इस तरह से आप अपने दोस्तों को और बाकी लोगों को बचा भी सकते हैं, खुद को बचाने के साथ साथ। इसी के साथ मुझे यानी कि फजील को दीजिए इजाजत। इंशाल्लाह मुलाकात होगी कल एक नए जमाने के नए फ्रॉड के बारे में बात करते हुए और आपको फ्रॉड से अवेयर करते हुए। सुनते रहे FM 107, दिल से देसी।
1: स्कैम अलर्ट।
2: फुटबॉल का असली रंग, असली जज्बा और असली धमाका लेकर आ रहा है मोहम्मद अमीन। इट्स अ गोल शो, जहां हर मैच की हर किक होगी लाइव, हर गोल बनेगा एक सेलिब्रेशन।
3: हाइलाइट्स, कमेंट्री और स्पोर्टी वाइब्स का फुल पैकेज। अगर फुटबॉल है आपका पैशन तो ये शो है आपका अल्टीमेट मजा। डोंट मिस इट, इट्स अ गोल शो विद मोहम्मद अमीन एवरी संडे एंड थर्सडे एट 1 PM लाइव ऑन FM 107, दिल से देसी।
4: कतर का पहला देसी रेडियो स्टेशन FM 107, दिल से देसी।

0: सितारे उतरेंगे मैदान में अजमत की जुस्तजू में टीमें टकराएंगी टॉप पोजीशन के लिए और जोश ऐसा जो आखिरी सीटी तक थमने ना पाए दोहा बैंक स्टार्स लीग सिर्फ अलकास के इनक्रिप्टेड चैनल्स और शू प्लेटफॉर्म पर
1: जब नई सोच और नए जज्बात टकराते हैं तो बनता है एक नया नजरिया द डिबेटेबल टेबल एक ऐसा शो जहां यंग डिबेटर्स अपने पर्सपेक्टिव से इंस्पायर करते हैं और हर डिस्कशन बन जाता है एक थॉट प्रोवोकिंग जर्नी द डिबेटेबल टेबल आरजे फजील और आरजे कबीर के साथ ओनली ऑन FM 107 दिल से देसी
2: अस्सलाम वालेकुम FM 107 पे मैं हूँ फजील इस्तकबाल आप सभी का इस शो में जिसका नाम है द डिबेटेबल शो जहां पर हम डिबेट करते हैं एक सवाल को लेकर वेल एक नया शो है जहां पर आप दो लोगों को सुनेंगे अपनी अपनी बात कहते हुए अपने पॉइंट रखते हुए एक ऐसे शो में जहां पर सवाल एक है लेकिन दो अलग नजरिए हैं और इन नजरियों को समझने के लिए दो लोगों का होना और दो लोगों की मुख्तलिफ सोच का होना बेहद जरूरी है कई बार हम ऐसा सोचते हैं कि जो हमारा थॉट है जो हमारी थिंकिंग है जो हमारा नजरिया है वो परफेक्ट है लेकिन जब दूसरे का नजरिया दूसरे की आंखों से दुनिया देखते हैं तो जिंदगी थोड़ी अलग लगने लगती है और लगता है कि कुछ हमें भी सोच बदलनी चाहिए ऐसे में इस शो की जरूरत FM 107 में थी और यही वजह है कि हम इस शो को लेकर आए हैं जिसका नाम है द डिबेटेबल टेबल FM 107 पे फजील के साथ हैं और इस वक्त हमारे साथ दो स्टूडेंट्स हैं एक का नाम है आलिया और एक का नाम है दृष्टि दोनों बहुत ही जबरदस्त स्टूडेंट हैं अपने थॉट और अपने थॉट प्रोवोकिंग आइडियाज से इन्होंने काफी कुछ आज सोचा है प्रिपेयर किया है हमारे सवाल के अकॉर्डिंग क्या ये कुछ लेकर आए हैं इन सबसे पूछेंगे इन दोनों से पूछेंगे सबसे पहले अस्सलाम वालेकुम आलिया कैसी हैं आप
3: अस्सलाम वालेकुम मैं बिल्कुल ठीक हूं आप कैसे हैं
2: मैं बहुत अच्छा हूं दृष्टि आप कैसी हैं
4: मैं भी बिल्कुल ठीक हूं
2: तो आज का जो सवाल है दोस्तों मैं आपको बता दूं वो सवाल है कि क्या एंटरप्रेन्योरशिप एक बेटर ऑप्शन है या फिर एक ट्रेडिशनल जॉब तो आलिया आपका क्या थॉट है आपको क्या सही लगता है एक एंटरप्रेन्योरशिप होना या एक ट्रेडिशनल जॉब होना
4: मुझे लगता है कि दोनों अपने ही रीजंस के लिए अच्छे हैं लेकिन अकॉर्डिंग टू मी मुझे लगता है कि ट्रेडिशनल जॉब सबसे ज़्यादा स्टेबल है सबसे ज़्यादा गारंटीड है उसमें सक्सेस होना तो मैं आज उसी के लिए अपनी

0: जो थॉट्स हैं उनको बोलना चाहूंगी और उसी के लिए अपने उसी के
1: अराउंड
0: जी अपने थॉट्स शेयर करना चाहूंगी.
1: बेस्ट. तो ऑब्वियसली दृष्टि आपको एंटरप्रेन्योरशिप का पार्ट लेना पड़ेगा और इसी की साइड लेनी पड़ेगी. तो ऐसे में आपको क्या लगता है कि एंटरप्रेन्योरशिप क्यों अच्छी है?
0: तो दोनों ही अपने अपने तरफ में अच्छे हैं क्योंकि अलग लोगों का अलग एक्सपेक्टेशंस और अलग लाइफस्टाइल होता है. बट ऑफ कोर्स अगर एंटरप्रेन्योरशिप एग्जिस्ट ही नहीं करता तो आज जो भी जॉब्स है मार्केट में वो भी नहीं एग्जिस्ट करते. सो ऑफ कोर्स एंटरप्रेन्योरशिप इज बेटर. एंड स्टेबिलिटी की जब बात आती है तो एज वी कैन सी ऑल अराउंड द ग्लोब इतने सारे ले ऑफ्स एंड कट ऑफ्स हो रहे हैं द बिगेस्ट कंपनीज वर्ल्ड वाइड. सो ऑफ कोर्स जितने स्टेबल जॉब्स पहले रहते थे अब वो नहीं रह रहे हैं. सो इट्स एक्सट्रीम इम्पॉर्टेंट की एंटरप्रेन्योरशिप की भी क्वालिटीज सारे लोगों में आजकल हुए.
1: दोनों के अपने स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स और ये बड़ा स्ट्रॉन्ग पॉइंट है कि एंटरप्रेन्योरशिप अगर है तो आज ये ट्रेडिशनल जो जॉब है लोग यू नो कार काम कर पा रहे हैं. ओके, तो मैं क्योंकि इन दोनों ने स्ट्रॉन्ग पॉइंट उठाया है तो आलिया सबसे पहले आपसे पूछना चाह रहा हूँ कि ये ट्रेडिशनल जो जॉब है इसमें क्या कमी क्या है, क्योंकि ऑब्वियसली आप पार्ट तो ले रही हैं लेकिन फिर भी आपको क्या कमी नजर आती है ट्रेडिशनल जॉब में?
0: बिल्कुल, जो जैसे हम हमेशा देखते हैं जब भी रिसेशन आता है जब भी कुछ भी होता है तो हमेशा जो वर्किंग क्लास है उसको हमेशा प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती हैं. बिकॉज अगेन अगर आप एक कंपनी के लिए काम करते हैं तो अगर कंपनी पे मार पड़ती है तो आप पे भी मार पड़ेगी. बट मैं ये कह रही हूँ कि जो ट्रेडिशनल जॉब्स पे जो मार पड़ती है वो ऑन अ वेरी लार्जर स्केल एंटरप्रेन्योर्स पे पड़ती है क्योंकि ट्रेडिशनल जॉब की जो वर्कर्स हैं सिर्फ उनके काम पर पड़ती है. एंटरप्रेन्योर्स के पूरे एम्पायर पर पड़ती है वो. तो उनके जो वर्कर्स हैं उनको उनके लिए टेंशन लेना चाहिए, उनको अपने टैक्सेस पे करनी चाहिए और जो रिसेशंस होते हैं उनमें नॉट ओनली उनकी जॉब जाती हैं बट उनको लॉसेस फेस करने पड़ते हैं. तो देयर इन अ कॉन्स्टेंट स्टेट ऑफ डेट. इसलिए मुझे लगता है जैसे दृष्टि ने कहा कि अगर एंटरप्रेन्योर्स नहीं होते तो जॉब्स नहीं होती. इन द सेम वे अगर जॉब्स नहीं होती तो एंटरप्रेन्योर्स नहीं होते.
1: क्या बात?
0: क्योंकि अगर आप एक अपना बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हो यू कांट ड्राइव इट अनलेस आपके यहाँ वर्कर्स होने हो यू नो. तो अगर आपके यहाँ वर्कर्स ही विलिंग नहीं है कि काम करें तो आप अपनी कंपनी कैसे चलाएंगे?
1: दृष्टि आपका क्या व्यू है इस पे?
2: हाँ, तो ऑफकोर्स जो एम्प्लॉयज़ आर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एक कंपनी के लिए, लेकिन एट द सेम टाइम अगर हम इस एंगल से सोचें कि अभी मतलब एवरीवन हैज़ डिफरेंट नीड्स, तो सब कोई एक बिलियनर नहीं हो सकता और सब कोई मतलब एकदम पुअर स्टेट पे भी नहीं रह सकता है. देर आर मैनी मिडिल इनकम एंड मैनी डिफरेंट टाइप्स ऑफ इनकम लेवल्स इन अ फैमिली और इन द सोसाइटी. तो एंटरप्रेन्योरशिप का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि आप एक बिलियन डॉलर कंपनी बनाओ और आप मतलब इतना ह्यूज एम्पायर सेटअप करो. ऑफकोर्स that is one side of it, but the other side of the coin is just small digital companies ho gaye and marketing companies hai and just one man people are also entrepreneurs. Freelancing is also a form of entrepreneurship. So instead of working under a boss ya under a company jo hamesha aapko unke hi rules follow karne padenge, and of course agar aap koi law firm ko lo ya koi aise firm ko lo, but then अगर जो बॉसेस है उसमें उनमें जो वो बोलेंगे यू हैव टू फॉलो दैट. एंड अगर वो कोई गलती करे इवन इफ इट्स नॉट द एम्प्लॉयज फॉल्ट, एम्प्लॉयज को भी सफर करना पड़ेगा बिकॉज द होल कंपनी इज एट स्टेक. बट इफ यू आर मेकिंग योर ओन बिजनेस एंड इफ इट्स नॉट अ ह्यूज बिजनेस, अगर एक छोटा सा एम्पायर है, इफ इट्स अ वन मैन टू मैन शो, तो ऑल ऑफ योर मिस्टेक्स ऑल ऑफ योर सक्सेस आपके ऊपर है. यू कैन कंट्रोल द रिस्क लेवल एंड एवरीथिंग.
1: तो दोनों ने बड़ा अच्छा और स्ट्रॉन्ग पॉइंट उठाया. और एंटरप्रेन्योरशिप तब तक एक छोटा बच्चा है जब तक वो बड़ा नहीं हो जाता, और बड़े होने के बाद वो अपने अब्बा की उंगली पकड़ के चलना सीख जाता है. उसके अलावा एक और चीज़ ये है कि एंटरप्रेन्योरशिप जब शुरुआत होती है तो बहुत छोटा है ना, आपको पता नहीं होता कि ये काम करेगा या नहीं करेगा. ट्रेडिशनल जॉब में क्या है कि एम्प्लॉय काम करता है और उसको किसी बात का रिस्क नहीं होता, उसको इस बात का रिस्क नहीं है कि कंपनी चले या ना चले, अगर नहीं चली तो दूसरी कंपनी है, चल गई तो अच्छा है, हमारे साथ भी इंसेंटिव, हमारे पास भी इंसेंटिव आएगा. दोनों के बहुत स्ट्रॉन्ग पॉइंट. एक छोटा सा ब्रेक लेंगे और वापस आएंगे कुछ ही देर में और फिर हम डिबेट को आगे बढ़ाएंगे और इस सवाल को आगे करेंगे कि ट्रेडिशनल जॉब बेहतर है या एंटरप्रेन्योरशिप बेहतर है. FM 107 पे एक छोटा सा ब्रेक, वापस आएंगे कुछ ही देर में आलिया और दृष्टि के साथ दिल से देसी

0: आप सुन रहे हैं FM 107 दिल से देसी।
1: तो दोस्तों एक बार फिर से इस्तकबाल है आप सभी का इस शो में जिसका नाम है द डिबेटेबल टेबल, जहां पर दृष्टि और आलिया अपना अपना साइड लेकर अपने अपने पॉइंट्स को बड़ी क्लियरली और बड़े समझदारी से पेश कर रही हैं, हमारे सामने रख रही हैं। और जहां पर दृष्टि ने एंटरप्रेन्योर का साइड लिया है, वहीं पर आलिया ने ट्रेडिशनल जॉब का साइड लिया है। और अब लगातार छोटे छोटे क्वेश्चन आएंगे और इन दोनों के पास बड़ा मुख्तसर सा टाइम होगा अपने लफ्ज को पिरोने में एक सेंटेंस में, जहां पर एक सेंटेंस में ये बताएंगी कि क्या इनको स्ट्रेसफुल जॉब कौन सी ज्यादा लगती है, या फिर आप या क्या ऐसा है कि एंटरप्रेन्योरशिप भी स्ट्रेसफुल है अगर ये खुद साइड ले रही है उसका, या ट्रेडिशनल जॉब स्ट्रेसफुल है। तो आप दोनों से ये सवाल है कि क्या आपको लगता है विच इज मोर स्ट्रेसफुल जॉब। आलिया
2: मैं पहले बोलूँ? अच्छा हाँ। तो दृष्टि ने पहले इस ब्रेक से पहले उसने कहा था कि जो एंटरप्रेन्योर्स हैं उनके जो सक्सेस है, उनकी जो फेलियर्स हैं वो सिर्फ उन पे डिपेंड करती हैं, राइट? एंड जो जॉब्स में काम करते हैं वो लोग उनकी फेलियर्स और जो सक्सेस हैं इट्स ब्लेम्ड ऑन बाय द एंटरप्रेन्योर्स, राइट? तो मुझे लगता है जैसे उसने कहा उसका ही लॉजिक उस पे यूज़ करने के लिए कि अगर एंटरप्रेन्योर्स सिर्फ अपने फेलियर या फिर सक्सेस से सिर्फ अपने आप डील करते हैं तो मुझे लगता है उनको ज़्यादा स्ट्रेस होना चाहिए ना, क्योंकि अगर आप एक कंपनी के एम्प्लॉई हैं और अगर आपने कुछ गलत किया तो आपकी गलती अल्टीमेटली उस कंपनी की हो जाएगी, राइट? तो इफ़ यू टॉकिंग अबाउट स्ट्रेस

0: एन इंडिविजुअल लेवल आपका स्ट्रेस इज अ कंपनी स्ट्रेस लेकिन अब अगर आप एंटरप्रेन्योर हैं तो यू आर योर कंपनी सबका स्ट्रेस इज योर स्ट्रेस
1: ओके करेक्ट
0: तो अगर आप एंटरप्रेन्योर हैं तो नॉट जस्ट इंडिविजुअली बट पूरी कंपनी का जो बोझ है आप पर है
1: आप पर है
0: और जब आप एक ट्रेडिशनल जॉब करते हैं तो आप नॉट जस्ट यू जस्ट इंडिविजुअल है ना आपको सिर्फ अपनी जॉब को स्टेबल रखना
1: है
0: एज एन एंटरप्रेन्योर यू हैव टू टेक केयर ऑफ थाउजेंड्स ऑफ एम्प्लॉइज या फिर जैसे दृष्टि ने कहा अगर आप स्मॉल स्केल एंटरप्रेन्योर हैं तो आपकी कोई हेल्प भी नहीं है आप सिर्फ पूरा बोझ अपने ऊपर उठा रहे हो
1: तो दृष्टि अभी आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है
2: हां सो आई डू अप्रिशिएट द टेक दैट आलिया टुक ऑन दिस लेकिन मैं एक चीज कहना चाहूंगी इसमें कि मतलब एंटरप्रेन्योरशिप में चैलेंजेस होते हैं बट एज शी आल्सो मेंशन कि पूरा कंपनी का स्ट्रेस सिर्फ आप पे है बट इन अ ट्रेडिशनल जॉब आपके पास कोई सिक्योरिटी नहीं है एज ऑफ टुडेज वर्ल्ड कि आपका जॉब आपके पास कल भी रहेगा क्योंकि एज वी आर सीइंग अभी मैंने अगर कोई गलती किया इन अ ट्रेडिशनल जॉब रहते हुए मेरे पास ये कोई गारंटी नहीं है कि मेरा बॉस कल मेरे को नई नौकरी से निकाले
1: वाह मुझे भी इस बात का डर है ओके अब हम आगे बढ़ाएंगे और एक और सवाल है आप दोनों के लिए कि किस काम में या और ट्रेडिशनल जॉब में ज्यादा रिकॉग्निशन है या एंटरप्रेन्योर होने में ज्यादा रिकॉग्निशन है
2: हाँ सो अगर आप एक ट्रेडिशनल जॉब में हो तो आप अगर कितना भी ओवरटाइम कर लो कितना भी काम कर लो एट द एंड ऑफ द डे आपके कॉन्ट्रैक्ट पे जो सैलरी लिखा है या जो इंसेंटिव का मार्क लिखा है उतना ही आपको मिलेगा इवन इफ यू डू द बेस्ट आउट ऑफ एवरीवन देयर आपको ओनली अ सर्टेन पीरियड तक प्रमोशन मिल सकता है सर्टेन लेवल तक लेकिन अगर आप एंटरप्रेन्योर है तो पूरा जो भी आप करते हो उसका एग्जैक्ट रिकॉग्निशन आपको मिलता है व्हिच यू विल नॉट गेट इन ट्रेडिशनल जॉब एंड एक बार सोच के देखते हैं कि अगर हर इंसान सिर्फ एक सेफ नौकरी चूज करता है तो दुनिया कैसी होगी मतलब बिल गेट्स रतन टाटा ये सब जो एम्पायर सेटअप किए हैं वो एग्जिस्ट ही नहीं करते
1: क्या बात क्या बात है ये स्ट्रॉन्ग पॉइंट अब आपकी बारी है और मुझे लगता है कि आपको भी ऐसे ही स्ट्रॉन्ग एक पॉइंट देना होगा
0: तो जैसे दृष्टि ने कहा कि जो एम्पायर सेटअप हुए हैं बाय बिल गेट्स और रतन टाटा इन लोगों ने जो एम्पायर सेट करे हैं दैट वॉज लॉन्ग बैक है ना और इसने ये पॉइंट उठाया था कि आज के जमाने में अपनी जॉब जो आप ले रहे हैं उसकी गारंटी नहीं है तो हाउ डू यू हैव द गारंटी कि आपका जो सक्सेस है एज एन एंटरप्रेन्योर कैन बी रिलेटेड टू रतन टाटा या फिर बिल गेट्स सक्सेस जो सालों अरसों पहले हुआ था है ना तो आज के जमाने में आपको आज के जो प्रस्पेक्टिव एंटरप्रेन्योर्स हैं उनका एग्जाम्पल लेना चाहिए बिकॉज वो जो आई एग्री जो उन्होंने एम्पायर सेट किए हैं दैट्स ह्यूज इट्स बिकम अब लाइक अबनॉर्मली लार्ज राइट
1: ये थाउजेंड्स में से कुछ ही हैं जो हम
0: एग्जैक्टली
1: करते हैं आज
0: और ये भी जो थाउजेंड्स में से एक हैं इन्होंने जो सक्सेस किया जो उनको सक्सेस मिली वो भी दैट वाज इयर्स एंड इयर्स अगो सालों पहले हुआ था ये और आप अगर आप देखें तो जो इकोनॉमी थी दुनिया की सालों पहले आज से कंपेयर करके वो इकोनॉमी बहुत बढ़ गई है देयर इज सो मच मोर कंपटीशन है ना बिल गेट्स वाज नोन टू बी द फर्स्ट एंटरप्रेन्योर वन ऑफ द फर्स्ट एंटरप्रेन्योर्स ऑफ टेक कंपनीज है ना आज उन जैसे 100-100 एंटरप्रेन्योर्स हैं तो आपको कैसे गारंटी मिलेगी कि अगर आप इस फील्ड में जाएंगे तो आप यू आर कंपीटिंग अगेंस्ट बिल गेट्स हु हैव इयर्स एंड इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस और आप उनसे कंपीट कर रहे हो और अगर आपको लगता है कि आप तो सक्सेसफुल होंगे विच इज अ ग्रेट अप्रोच आपको आपको लगना चाहिए कि आप सक्सेसफुल होंगे
1: चांसेस जो हैं वो उसके कम हैं
0: चांसेस कम हैं एंड अगेन वो चांसेस पहले ज्यादा थे मतलब कम थे यू नो फेलियर के क्योंकि उस टाइम पे कुछ लोग नहीं थे
1: करेक्ट
0: अब जो है लोग ज्यादा बढ़ गए हैं पॉपुलेशन बढ़ गई है कंपटीशन बढ़ गया है जो रिसेशंस हैं वो ज्यादा हो रहे हैं इकोनॉमी ड्रॉप हो रही है तो आपको कैसे लगता है कि आप इस कंडीशन में बीइंग अ वन मैन शो आप कैसे सब कुछ हैंडल करोगे
1: अरे वाह मैं अभी डिलेमा में हूँ कि मैं एंटरप्रेन्योरशिप ज्वाइन करूँ या फिर अपना कोई नया काम शुरू करूँ या अभी ये जॉब जो चल रही है वो मैं करता रहूँ मैं दोनों में से कोई एक चूज करूंगा लेकिन ऑब्वियसली समझ नहीं आ रहा क्या दोनों नाव पे पैर रख के चला जा सकता आलिया और दृष्टि
2: या ऑफ कोर्स आई मीन पहले आई वुड जस्ट लाइक टू आंसर जो आलिया ने बोला कि मतलब फेलियर्स बहुत होते हैं आजकल स्टार्टअप्स में राइट सो हाँ कुछ स्टार्टअप्स ऑफ कोर्स फेल होते हैं लेकिन फेलियर का मतलब एंड नहीं है क्योंकि जो बिगिनर्स स्पेशली जो जस्ट स्टार्टेड न्यू है उन लोग के पास अगर थोड़ा भी रिसोर्स है तो उससे भी वो एक

0: अपने लिए तो एटलीस्ट एक बहुत अच्छा और स्टेबल इनकम जनरेट कर सकते हैं. एंड अकॉर्डिंग टू स्टैटिस्टिक्स एज वेल, 80% ऑफ द स्मॉल बिजनेसेस सर्वाइव द फर्स्ट ईयर एंड 78% ऑफ देम आर प्रॉफिटेबल एज ऑफ टुडे. तो ऑफ कोर्स एज मैंने पहले भी बोला कि वी कैन नॉट एक्सपेक्ट एवरीवन टू कम अप विद अ बिलियन डॉलर बिजनेस, बट इफ दे आर एबल टू स्टार्ट अपने लिए भी एक छोटा सा बिजनेस एंड दैट इज प्रॉफिटेबल फॉर देमसेल्फ, तो दैट्स मोर देन इनफ इन माय.
1: बिल्कुल यार, देखो पेट में तो चाहिए दो रोटी है, मिलियन आ जाए बिलियन आ जाए क्या फर्क पड़ता है, अगर 1000 भी आ रहे हैं कतरी रियाल, मतलब कि 100,000 कतरी रियाल भी महीने में आ रहे हैं तो आपका काम बन गया है. जरूरी नहीं है कि मिलियनेयर और बिलियनेयर बनना है, लेकिन दोनों के बहुत स्ट्रॉन्ग पॉइंट रिसर्च करके आए, क्योंकि परसेंटेज भी निकाला है दृष्टि ने तो लेकिन दोनों की जो रिसर्च है वो बड़ी जबरदस्त है. FM 107 पे एक छोटा सा ब्रेक लेंगे, लेकिन ब्रेक पे जाने से पहले दोस्तों अब ये सवाल आपकी तरफ है, इतना सब कुछ सुनने के बाद आप किसका पॉइंट लेंगे, आप किसकी साइड लेंगे, एंटरप्रेन्योरशिप की या फिर ट्रेडिशनल जॉब की? इसके लिए जवाब देना होगा आपको हमारे व्हाट्सएप नंबर 6662210 7. छोटा सा ब्रेक, वापस आएंगे और इस सवाल को हम मजीद आगे बढ़ाएंगे FM 107 पे. दिल से दही सी.

0: आप सुन रहे हैं FM 107 दिल से देसी।
1: अस्सलाम वालेकुम, पेपर पलटने की आवाज आपको आ रही होगी दोस्तों। इस्तकबाल है एक बार फिर से आप सभी का इस शो में और पूरी रिसर्च के साथ इस शो में आर्या और दृष्टि हैं और द डिबेटेबल टेबल इस शो का नाम है, जहां पर दोनों ने बहुत तरीके से बात करी है कि क्या ट्रेडिशनल जॉब बेहतर है या एंटरप्रेन्योरशिप। तो मैं दोनों तरफ में बिजी हूं, मुझे समझ नहीं आ रहा क्या दोनों नाव पे पैर रख के चला जा सकता है या नहीं। मुझे तो अब दोनों समझ में आ रहा है कि एक तरफ जॉब करके दूसरी तरफ कोई बिजनेस कर लेता हूं। तो चले नेक्स्ट अपने क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, जहां अगर आपने अभी ट्यून इन किया है, मैं आपको बता दूं कि आलिया ने साइड लिया है ट्रेडिशनल जॉब का और दृष्टि ने साइड लिया है एंटरप्रेन्योरशिप का। तो अगला जो सवाल है वो मेरा दृष्टि से है कि आपको क्या लगता है दृष्टि, विच इज मोर सुटेबल फॉर बिगिनर्स, बिगिनर्स के लिए सबसे बेहतर क्या है कि क्या वो पहले जॉब शुरू करें ट्रेडिशनल या डायरेक्ट एंटरप्रेन्योरशिप में कूद सकते हैं वो।
2: तो आज के स्टूडेंट्स एक्चुअली मतलब इतनी मेहनत करते हैं अपनी एजुकेशन के लिए, इतना इन्वेस्ट करते हैं, इतने कोर्सेज करते हैं, डिग्रीज लेते हैं, बट एंड में उनके साथ क्या होता है? मतलब अगर वो सिर्फ ट्रेडिशनल जॉब्स के लिए ही प्रिपेयर कर रहे हैं तो अक्सर इतने स्किल्ड लोग होने के बावजूद भी वो अनएम्प्लॉयड रह जाते हैं, विच इज़ द बिगेस्ट प्रॉब्लम इन आवर वर्ल्ड टुडे। क्योंकि दुनिया में जॉब्स लिमिटेड है और इनोवेशन का कैपेसिटी भी बहुत कम है अगर आप मतलब सिर्फ सेम करियर पाथ फॉलो करोगे एज एवरीवन एल्स। लेकिन जो एंटरप्रेन्योरशिप चूज करते हैं जो स्टूडेंट्स, तो वो अगर एक स्मॉल स्टार्टअप ही स्टार्ट करे, लेकिन अगर या कोई क्रिएटिव सर्विस स्टार्ट करे, तो वो अपनी स्किल्स को इतना एक्टिवली ग्रो कर सकते हैं और प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं और नए अपॉर्चुनिटीज क्रिएट कर सकते हैं। और इसीलिए एंटरप्रेन्योरशिप की जो स्टूडेंट्स हैं वो सिर्फ एक नौकरी के लिए नहीं रेडी होते हैं, बल्कि एक प्रॉब्लम सॉल्वर और लीडर बनते हैं, जो आज के जमाने में हर कंपनी के लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट होता है। सो या
3: अगेन जो दृष्टि ने कहा था बिल्कुल सही है कि अगर आप एक ट्रेडिशनल पाथ फॉलो करेंगे तो आपको ज्यादा गारंटी नहीं सक्सेस की। लेकिन मैं ये सवाल पूछना चाहूँगी कि आपको अगर एंटरप्रेन्योरशिप स्टार्ट करना है, अगर आपको एक छोटा बिजनेस स्टार्ट करना है, तो आपके पास ये पैसे कहाँ से आते हैं? ओके, यू माइट से कि पापा देते हैं, मम्मी देती हैं, लेकिन उनके पास ये पैसे कहाँ से आते हैं? तो जो आप स्टार्ट कर रहे हो एज अ बिगिनर, योर प्राइमरी एम शुड बी कि आप फंड्स लो, आपको कुछ पैसा मिले ताकि आप अपना ही एम्पायर ज्यादा बढ़ाएं।
1: बिल्कुल।
3: सो इन एवरी सिंगल एस्पेक्ट आपको देखते हैं हम कि जो ट्रेडिशनल जॉब्स हैं वो एक सेंस ऑफ फुलफिलमेंट नहीं देते, बट दे गिव यू मींस टू गेट दैट फुलफिलमेंट, है ना। तो जो जॉब्स होती हैं, जो आप अगर आप कुछ काम करते हो और अगर आपके पास पैसा ही नहीं है तो आपके पास पॉइंट है क्या क्या काम करने का, है ना।
1: करेक्ट।
3: तो आपको उस फंड को लेना है, यू नीड दैट समथिंग टू गारंटी योर सक्सेस, क्योंकि इस दुनिया में पैसा ही चलता है।
1: बिल्कुल, एंटरप्रेन्योरशिप कर तो लेंगे लेकिन उसके लिए पैसे चाहिए, पैसे कहाँ से आएंगे? उसके लिए आपको एक जॉब करनी पड़ेगी और एक एक्सपीरियंस भी हो जाता है।
3: एग्जैक्टली, आई वुड लाइक टू डिफर ऑन दैट।

पॉइंट एक्चुअली, क्योंकि मतलब आपको शुरू करने के लिए कोई मैसिव इन्वेस्टमेंट या कैपिटल की जरूरत नहीं है, क्योंकि आज की दुनिया में सिर्फ एक जो प्रॉब्लम सॉल्विंग माइंडसेट एज आई मेंशन वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है।

0: Fazil. Sunday to Thursday, 6 PM to 7 PM. Only on FM 107, Dil Se Desi.
1: FM 107 पर अपना बिजनेस एडवर्टाइज करने के लिए आज ही राब्ता करें,
2: आज ही राब्ता करें
1: हमारी कतर मीडिया कॉरपोरेशन की मार्केटिंग टीम से। कॉल करें 4488806 पर या ईमेल करें marketing@qmc.qa।
3: क्योंकि आज की दुनिया में सिर्फ एक जो प्रॉब्लम सॉल्विंग माइंडसेट एज आई मेंशनड वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एंड मतलब स्टेटिस्टिक्स भी दिखाते हैं कि अगर आपके पास ये सही माइंडसेट और स्किल्स है तो आप लिमिटेड रिसोर्सेज के साथ भी बहुत सक्सेसफुल हो सकते हो, बिकॉज एज आई मेंशनड नॉट एवरीवन इज डेस्टिन टू बी अ फाउंडर ऑफ अ बिलियन डॉलर स्टार्टअप। वो सिर्फ एक छोटी सी कंपनी के साथ, छोटे से कैपिटल के साथ भी, इफ़ यू स्टार्ट फ्रॉम द ग्रूट लेवल, हमने देखा है कि मतलब आज की दुनिया में भी जो AI फर्म्स है एंड जो बहुत सक्सेसफुल लोग भी है, उनके पास बहुत कम कैपिटल और एकदम ग्रास रूट लेवल से स्टार्ट करने के बावजूद भी वो बहुत अपने आप को अच्छे से ग्रो कर पाते हैं। सो यू डोंट ऑलवेज नीड अ ह्यूज अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट इन ऑर्डर टू बिकम सक्सेसफुल।
4: वाओ, सो ये सवाल, अच्छा एक और मेरे जहन में आया जब मैं ये सवाल पूछ रहा था आपको, आपके जो जवाब थे, एक जवाब इसमें और एक सवाल और निकल के आता है, वो ये कि क्या ट्रेडिशनल जॉब के लिए या एंटरप्रेन्योरशिप के लिए स्किल की जरूरत कैसी होती है, क्या किस काम में ज्यादा स्किल की जरूरत होती है, क्या ट्रेडिशनल जॉब में ज्यादा स्किल की जरूरत होती है आलिया?
5: हाँ,
4: या एंटरप्रेन्योरशिप?
5: ऑब्वियसली मुझे लगता है कि एंटरप्रेन्योरशिप में ज्यादा स्किल की जरूरत होती है एज अपोज टू ट्रेडिशनल जॉब्स, बट दैट्स आल्सो समथिंग दैट इज ऑन द नेगेटिव साइड ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप, क्योंकि आप जब एंटरप्रेन्योर हो आपके पास स्किल्स जरूरी हैं, एंड अगेन एंटरप्रेन्योर्स नीड मोर स्किल। व्हाट डज दैट मीन? कि जो आपके कंपेटिटर्स हैं दे आर मोर स्किल्ड देन यू, इफ नॉट द सेम एज योर स्किल लेवल, सो यू आर इन अ वेरी कॉम्प्रोमाइजिंग पोजीशन। क्योंकि अगर आप एंटरप्रेन्योर हो यू रिक्वायर द स्किल सेट, एंड मोस्ट पीपल जब वो इन सब ये जो पॉजिटिव पॉइंट्स देखते हैं दे जस्ट जंप इनटू इट, है ना, तो वो दे डू इट रैशली।

0: एडवांस्ड अप्रोच देखते हैं एज अपोज टू अ प्रैक्टिकल वन. है ना, तो अगर आप एग्जैक्टली जंप इन करते हो एंड इफ यू हैवंट डेवलप्ड दैट माइंडसेट या फिर दो स्किल्स येट, तो यू आर कम्पीटिंग अगेंस्ट पीपल हु आर सो स्किल्ड that they might try to put you down. And studies actually show ki jo entrepreneurs hain, if they're actually successful, it doesn't matter. Entrepreneurs are more likely to suffer depression twice the amount of normal people. Kyunki they have so much stress on them because they're against people who are completely aware of what they're doing. Aur jo usually jo startup start karte hain, jaise as Drishti said, jo students karte hain, again student life mein aapko jo dikhta hai, that is so different from the working life.
1: Correct,
0: right? Jaise agar aap student
2: sab kuch badal jata, leadership
0: exactly,
2: quality
0: exactly jo aap students mein student life mein jo aap dekhte ho, jo environment hai aapka, the politics is nothing as compared to jo aap working class mein dekhte ho.
1: Correct.
0: तो यू डोंट हैव टू जंप इन टू इट डायरेक्टली. आई से कि आप ट्रेडिशनल जॉब्स देखें, यू गेन द एक्सपीरियंस ऑफ व्हाट पॉलिटिक्स एंड वर्किंग लाइफ इज एंड देन जंप इन टू दैट एनवायरमेंट ऑफ कॉन्स्टेंट कॉम्पिटिशन.
3: सो आपने अभी यहाँ पे दो पॉइंट्स उठाए थे, एक था अबाउट द स्किल लेवल दैट अ पर्सन रिक्वायर्स इन ऑर्डर टू डू अ स्टार्टअप एंड सेकेंड था अबाउट द स्ट्रेस दैट दे गो थ्रू, राइट? सो फर्स्ट ऑफ ऑल कमिंग टू द स्किल्स दैट दे रिक्वायर, है ना, तो ऑफकोर्स आई 100% एग्री कि अगर आप रैशनली नहीं सोचेंगे एंड अगर इफ यू जस्ट एज अ जंप यू जस्ट गो इन टू एंटरप्रेन्योरशिप, दैट इज वन ऑफ द बिगेस्ट मिस्टेक्स यू कैन मेक बिकॉज यू रिक्वायर अ लॉट ऑफ स्किल सेट एंड प्लानिंग इन बिजनेस accumulation to actually start something on your own. So of course it's not for everybody, but as we see aaj ke zamane mein, as I mentioned before, the most of the students even who have graduated from such big universities are not getting jobs even though unke paas itne sare skill set hai and they have the skills that they require to become a good entrepreneur. So it's really important ki the student actually does a lot of planning beforehand, and agar aap rationally nahi sochenge then neither a traditional job nor an entrepreneurship will work. Either way, you have to do a lot of planning beforehand, right? So that's the first thing. And the second thing is about the stress that you mentioned, right? So ek aur statistic aapne jo dikhaya, I would also like to oppose that with one of my own. So in 2022, it was shown that 47% of Indian employees in traditional jobs reported a very high stress level. And is main stress level ka reason hota hai ki logo ke paas control nahi hota hai. To entrepreneurship exactly yehi प्रॉब्लम सॉल्व करता है कि लोगों को अपना फ्रीडम और कंट्रोल ओवर देयर करियर वापस देता है. सो आपके पास अगर कंट्रोल है और डिसीजंस आपके हाथ में है, तो रिस्क और स्ट्रेस दोनों है, लेकिन जो फ्रीडम है वो भी आपके हाथ में है. सो एज अपोज टू अ ट्रेडिशनल जॉब, दोनों में स्ट्रेस है, दोनों में फेलियर्स होते हैं, सक्सेस भी होते हैं, बट इफ यू थिंक अबाउट इट, यू हैव द कंट्रोल ओवर योर लाइफ एंड नॉट अ बॉस एज इन अ ट्रेडिशनल जॉब.
1: मैं देखो क्या इंसान की फितरत होती है दोस्तों कि किसी एक का साइड ले ही लेता है वो, है ना. अब जैसे सास बहू में लड़ाइयाँ होती है ना, तो पति एक साइड ले लेता है कि कौन सही है. फिर भाइयों में लड़ाई होती है तो एक तीसरा भाई या माँ बाप कोई एक साइड ले लेते हैं. एक बड़ा बच्चा होता है घर में, एक छोटा बच्चा होता है, उनमें लड़ाई होती है तो एक साइड ले लेता. अब मुझे नहीं समझ में आ रहा मैं किसका साइड लूँ. दोनों के जो पॉइंट है बड़े स्ट्रॉन्ग हैं, बड़े ही वैलिड पॉइंट हैं. दोनों ने स्किल्स पर बहुत अच्छा यू नो कहा है, बिगिनर्स के लिए जो बातें कही हैं, रिकग्निशन के लिए जो बातें कही हैं, दोनों ने बड़ी ही स्ट्रॉन्ग बातें कही हैं. तो इसी के साथ एक छोटा सा ब्रेक और लेंगे एफ एम 107 पे और वापस आएंगे, मजीद बातचीत करेंगे और देखते हैं कि क्या इन दोनों में से किसी एक का साथ मैं दूंगा या इन दोनों के पॉइंट से मैं राजी रहूंगा, ये कुछ देर में आपको पता चली जाएगा. एफएम 107, अगर आप कुछ कहना चाहते हैं, आपका कुछ कहना है इस खास टॉपिक पर कि एंटरप्रेन्योरशिप अच्छी है या ट्रेडिशनल जॉब, वो आप हमें बता सकते हैं हमारे व्हाट्सएप नंबर 666-22-107 पे, और आप हमें कॉल भी कर सकते हैं, नंबर है 443-443-77. आप हमें कॉल करके बताएं. उसके अलावा एक और तरीका है, वो तरीका ये कि आप हमें सोशल मीडिया पर बता सकते हैं. हमारा एफएम 107 का सोशल मीडिया पेज है, इंस्टाग्राम पे है, हमारा पेज फेसबुक पे है, और भी कई जगह हम सोशल मीडिया पे अवेलेबल है. सुनते हैं एफएम 107, एक छोटा सा ब्रेक, दिल से दिल सी.

0: आप सुन रहे हैं FM 107 दिल से देसी।
1: हबीबी इस्तकबाल आप सभी का FM 107 पे। और एक बार फिर से पेपर की आवाज आती हुई, दोनों की तैयारी ऐसी ना, पेपर पलट के देख रहे हैं कि क्या जो मैंने लिखा है, जो मैंने कहा है, जो मैंने बात सुनी है, क्या वो सब सही है और इस बार आगे मजीद क्या बोला जा सकता है। क्योंकि आज का जो टॉपिक है इस खास शो में, जिसका नाम है द डिबेटेबल टेबल, इसका जो टॉपिक है आज का वो ये है कि क्या एंटरप्रेन्योरशिप सही है, बेहतर है या ट्रेडिशनल जॉब। आलिया ने अपना पॉइंट कहा है ट्रेडिशनल जॉब को लेकर, और वहीं दृष्टि ने अपना कहा है एंटरप्रेन्योरशिप को लेकर। तो अब देखते हैं कि आगे इनके क्या थॉट हैं और क्या आपके लाइफ के डिसीजन चेंज करने में इनके थॉट काम आएंगे या नहीं, ये अब आप डिसाइड करिएगा। वैसे काफी मैसेजेस आ गए, हम लेंगे, लेकिन ये बता दें कि अभी जो सवाल करने वालों बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्या है कि चाहे वो ट्रेडिशनल हो जॉब या एंटरप्रेन्योरशिप, ग्रोथ इंपॉर्टेंट है। तो क्या ट्रेडिशनल जॉब में ग्रोथ है, क्या एंटरप्रेन्योरशिप में कम ग्रोथ है या ज्यादा ग्रोथ है, इस पर क्या दोनों का कहना है FM 107 पे। दृष्टि

0: आपसे मैं पूछना चाहूंगा कि ग्रोथ को लेकर क्या कहना चाहेंगे, एंटरप्रेन्योरशिप में क्या ग्रोथ है?
1: हाँ, तो पहले एक ट्रेडिशनल जॉब के बारे में बात करते हैं, तो आपको स्टेबिलिटी देती होगी ये, लेकिन आपको बहुत सारे रिस्ट्रिक्शंस भी देती है, जैसे फिक्स टाइमिंग्स है, फिक्स बॉस है, फिक्स सैलरी है, बेसिकली एक बॉक्स है जिसमें आपको फिट होना पड़ेगा। लेकिन जो एंटरप्रेन्योरशिप है उसमें आप डिसाइड करते हो कि कैसे, कब और कितना काम करना है अकॉर्डिंग टू हाउ मच मनी एंड हाउ मच स्टेबिलिटी यू रिक्वायर। तो दैट कंट्रोल इज इन योर हैंड्स एंड नॉट इन समवन एल्सेस। लेकिन एक जॉब में जो प्रमोशंस है और सैलरी हाइक्स है वो भी आपके बॉस के ऊपर डिपेंड करती है और उनके अप्रूवल पे ही होती है। तो ग्रोथ पाथ सिर्फ एक ही है और वो भी बहुत स्लो है, और एंटरप्रेन्योरशिप में लेकिन आपकी ग्रोथ बहुत अनलिमिटेड है, और द मोर यू इनोवेट द मोर यू अर्न। तो इट रियली डिपेंड्स ऑन हाउ मच यू वर्क एंड नॉट अपॉन अ बॉस। तो लेट्स बी प्रैक्टिकल एज वेल, इन टुडेज वर्ल्ड कौन गारंटी दे सकता है कि आपकी जो नौकरी है वो कल भी रहेगी, एज आई मेंशन, क्योंकि एआई और ऑटोमेशन सब जॉब्स ले रहे हैं, ले ऑफ्स हो रहे हैं हर इंडस्ट्री में, और जो जॉब आपको कुछ सालों पहले एकदम स्टेबल लगती थी वो कभी भी वैनिश हो सकती है अब। सो एंटरप्रेन्योरशिप ऑफकोर्स रिस्की है, आई एडमिट, बट एटलीस्ट द रिस्क इज इन योर हैंड्स एंड नॉट इन अ कंपनीज और इन अ बॉस। तो अगर आप फेल होते हो, एज आई मेंशन, वो आपके ऊपर है।
0: So, okay, so ये दृष्टि ने हमला कर दिया है आलिया। एंटरप्रेन्योरशिप से ज्यादा इन्होंने इस बार ट्रेडिशनल जॉब पर बोला और नेगेटिव पॉइंट्स बताए। आपका क्या कहना है, आप इस पर क्या कहना चाहिए कि ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज क्या हैं?
2: अच्छा, तो इन्होंने मेरी साइड अटैक करी, अब मैं इनकी साइड अटैक करूंगी। ओके,
0: आई एम सॉरी, मैं आग लगा रहा हूँ। जी,
2: तो ओके, दृष्टि ने कहा कि जो आपके पास रिस्क है एज एन एंटरप्रेन्योर वो आप अपने हैंड्स में है ना, एंड शी मेंशनड हाउ कि इस दुनिया में यू कांट गारंटी कि आपकी जो जॉब है, जॉब जिस जॉब को देख रहे हो वो कल रहेगी भी नहीं। तो मेरा सेम, मैं इसका ही लॉजिक अप्लाई करते हुए आपको बताना चाहूंगी कि जैसे पहले है ना, द रिस्क ऑफ बीइंग एन एंटरप्रेन्योर वाज लो है ना, एंड देयर वाज स्टिल लाइक प्रीटी मच सिग्निफिकेंट। तो इस दुनिया में अगेन यूजिंग हर लॉजिक, आपको क्या गारंटी है कि आपका बिजनेस चलेगा है ना? सो लुकिंग एट इट प्रैक्टिकली, लेट्स ले इट डाउन है ना, रिस्क वर्सेस रिवॉर्ड। तो एंटरप्रेन्योरशिप में रिस्क है, अगेन इट्स इन योर हैंड्स, बट है, एंड ओवर द इयर्स दैट रिस्क एड्स अप बिकॉज मेनी पीपल आर प्रोस्पेक्टिव एंटरप्रेन्योर्स नाउ, और एज यू कीप गोइंग द होल risk factor of being an entrepreneur becomes so high. So jo risk hai, it keeps adding up. And as a job, as a prospective employee of a company or a corporation, aapko kaise pata, again, you have no guarantee of your stability in a job.
0: Correct.
2: But again, that guarantee is so much lesser than the guarantee of like succeeding as an entrepreneur. Hai na? So again, risk versus reward. The risk for entrepreneurship is really high. And the risk for jobs also is high. लेकिन वो जो रिस्क है वो एंटरप्रेन्योरशिप के रिस्क से बहुत ज्यादा कम है। So again, as Drishti said, that risk is in your hands. So you are accountable to everything because it's in your hands. As an employee, you are accountable to your boss. So he takes care of your risks या फिर जो भी आपका जो jobs है। And again, there are so many companies now जो ग्रोथ की बात करते हुए, देयर आर सो मेनी कंपनीज नाउ की प्रमोशंस देती हैं एज वी सी थ्रू आउट द इयर्स। लेकिन अब जो कंपनीज हैं अलोंग विद प्रमोशंस दे आल्सो ऑफर प्रोफेशनल डेवलपमेंट अपॉर्चुनिटीज, तो दे ऑफर कोर्सेज एंड मेंटरशिप प्रोग्राम्स टू अगेन बी एन एंटरप्रेन्योर। सो इफ यू हैव द सपोर्ट, अगर आपके पास सपोर्ट है फ्रॉम अ वेल defined organization, then you can go for something as risky as an entrepreneurship in this world.
0: Okay.
2: Pehle to it was fine to go without anything, but now you have to go for a job that gives you the stability and the opportunity to build your own name.
0: वैसे मुझे आप दोनों के पॉइंट से एक पॉइंट समझ में आया कि ट्रेडिशनल जॉब में एक प्लस पॉइंट ये है कि अगर आपकी नौकरी गई दूसरी जगह हम कोशिश करेंगे और उसके लिए चांसेस हैं, बट एंटरप्रेन्योरशिप में ये है कि अगर नहीं चला तो आपकी पोर्टफोलियो में जुड़ जाता है कि भाई पिछले पहले आपने जो काम किया है ना उसके लिए हम आपको फंड रिटर्न नहीं दे पाएंगे क्योंकि पिछला काम आपका पिछला आपने जो इनोवेशन की थी वो आपकी नहीं चल पाई। एक पॉइंट मुझे ऐसा लगता है
1: तो नहीं को एक्चुअली इस पे अपोज कर सकती हूँ क्या मैं? ओके थैंक यू सो मच। सो बेसिकली आपने जो अभी कहा कि अगर आप फेल होते हैं तो स्टार्टअप में तो वो आपके पोर्टफोलियो में जुड़ जाता है राइट बट एज

0: वी सी टुडे, अगर आप मतलब शोज भी देखेंगे बिजनेस शोज में, सो दे एक्चुअली रियली इनवाइट एंड वेलकम द फेलियर्स, बिकॉज इफ यू आर ग्रोइंग फ्रॉम द फेलियर, अगर आप उससे कुछ सीख रहे हैं तो इट्स नॉट रियली अ फेलियर, आप बहुत वैल्यूएबल लेसन सीख रहे हैं अबाउट योर बिजनेस. बट इफ योर जॉब लूजेस, देन इट इज एन इशू बिकॉज यू प्रोबेबली डिड नॉट एडहियर टू द कंपनीज पॉलिसी, या आपने कुछ ऐसा इनसेन मिस्टेक कर दिया कि आपको जॉब से ही निकाल दिया गया. एंड यू ऑल्सो कि अगर मेरी जॉब चली गई तो आई कैन जस्ट फाइंड अनदर वन, दैट इज वे इजियर सेड देन डन. मे बी इट वॉज पॉसिबल बिफोर कोविड, राइट, मे बी 6 years अगो, बट अब एज ऑफ टूडे अगर आपकी जॉब जाती है, देर आर न्यूमरस एग्जाम्पल्स इन द वर्ल्ड, एंड दैट एज आई मैंशन बिफोर इट इज द लीडिंग प्रॉब्लम इन आवर वर्ल्ड टूडे, कि यही माइंड सेट होता है कि अगर मेरी जॉब चली गई तो आई फाइंड अ न्यू वन, बट इट्स वेरी वेरी अनलाइकली, क्योंकि देर आर नो जॉब्स इन द मार्केट विच विल एक्चुअली लाइक द चांसेस ऑफ यू finding another job as soon as you lose the first one is very very slim. To aisa nahi hai ki agar meri ye job chali gayi I just go to another one. It is not that easy, right? But at least if your entrepreneurship startup fails, aapke paas koi aur option hai, you learn from your mistake and you make up a stronger setup the next time.
1: Jitne log bahar zulm mein, unko ehsaas ho gaya hoga ki gehun ke sath ghun pista hai aur main madhya pis raha hu. FM 107 pe इन दोनों ने बहुत ही वैलिड पॉइंट उठाए हैं ग्रोथ को लेकर. एक और सवाल है जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आज के वक्त में, क्योंकि कंपनीज और खासतौर पे एंटरप्रेन्योरशिप बहुत ज्यादा काम कराते हैं कई बार. अच्छा, कुछ ऐसी इंडस्ट्री है जहां पर वर्क लाइफ बैलेंस को बहुत ज्यादा क्लोजली मॉनिटर किया जाता है, एविएशन इंडस्ट्री. अगर मिसाल के तौर पर अगर आप पायलट हैं तो आपके सोने से लेकर आपके उठने तक, खाने पीने तक हर एक चीज मॉनिटर की जाती है, ट्रैक की जाती है. तो ऐसे में वर्क लाइफ बैलेंस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है. तो ट्रेडिशनल जॉब और एंटरप्रेन्योरशिप, इन दोनों में से वर्क लाइफ बैलेंस हमें कौन देता है, ज्यादा सही बैलेंस किसका है, एंटरप्रेन्योरशिप का आपको क्या लगता है दृष्टि, या आलिया आपको क्या लगता है ट्रेडिशनल जॉब का वर्क लाइफ बैलेंस अच्छा है?
2: मुझे लगता है कि ट्रेडिशनल जॉब्स का ज्यादा है, क्योंकि ओके एज दृष्टि सेड, जब आप एंटरप्रेन्योर हो यू हैव द अपॉर्चुनिटी कि हाँ जब आप सक्सेसफुल होगे तो आपको थोड़ा सा फ्लेक्सिबिलिटी, थोड़ी सी फ्लेक्सिबिलिटी मिलती है, है ना. लेकिन जब आप कर रहे हो एज अ बिजनेस, जब आप चला रहे हो तो इट टेक्स टाइम टू रीच टू दैट पॉइंट. एंड एज शी सेड, यू डोंट वांट टू बी अ बिलियनर, बट अगेन अगर आप एक स्मॉल स्टार्टअप हो, अगर आपके पास ज्यादा एम्प्लॉइज नहीं है तो आपको उन सब का काम करना पड़ेगा
1: खुद का,
2: है ना. एंड उसका ही लॉजिक इस्तेमाल करने के लिए, बिकॉज शी केप्ट मेंशनिंग अबाउट हाउ यू कैन बी अ स्मॉल स्टार्टअप, तो एज अ स्मॉल स्टार्टअप योर होल आइडिया ऑफ वर्क लाइफ बैलेंस इज जस्ट गॉन, क्योंकि आप एज अ स्मॉल स्टार्टअप यू आर वर्किंग एंड यू आर कॉम्पेंसेटिंग फॉर द लैक ऑफ एम्प्लॉइज इन योर बिजनेस. तो आप उन सब का काम कर रहे हो एंड यू आर कॉम्पेंसेटिंग फॉर देयर लॉस ऑफ लाइक वर्क. बट एज अपोज टू दैट, अगर आप एक ट्रेडिशनल जॉब में काम कर रहे हो, nowadays तो अब तो बहुत फ्लेक्सिबिलिटी आ गई है अगेन आफ्टर कोविड, तो देयर इज वर्क फ्रॉम होम अपॉर्चुनिटीज, देयर इज यू कैन एक्चुअली लाइक जंप टू द स्टोर एज वेल,
1: पेड लीव,
2: एग्जैक्टली पेड लीव, एंड यू डोंट गेट दैट अपॉर्चुनिटी इन एंटरप्रेन्योरशिप. अगर आप एक बार गए तो आप गए, क्योंकि दैट रिक्वायर्स कंसिस्टेंसी. इन अ जॉब यू हैव समवन टू होल्ड योर हैंड थ्रू आउट योर जर्नी अंटिल यू डिसाइड टू अगेन बी एन एंटरप्रेन्योर. सो माई पॉइंट इज कि एंटरप्रेन्योरशिप इज नॉट बैड. व्हाट आई एम सेइंग इज टू रीच टू द पोजिशन कि जहां एंटरप्रेन्योरशिप आपके लिए रिस्की नहीं है, यू हैव टू फर्स्ट सी द एनवायरमेंट ऑफ अ जॉब. लेट्स बी प्रैक्टिकल. जो हमारे लिसनर्स हैं, मैं आप सबसे पूछना चाहती हूँ कि अगर आप एक बिजनेस स्टार्ट कर रहे होंगे तो क्या आप चाहते हैं कि आप डायरेक्टली उसमें जंप कर जाए, या फिर आपको एक जॉब लेनी पड़ेगी फिर आप उसमें जाए? तो मैं आप सबसे पूछ रही हूँ, अगर आप प्रैक्टिकली सोच रहे होंगे तो आपके पास सिर्फ एक ही जवाब आएगा कि नहीं, मैं एक जॉब करूंगा फिर मैं बिजनेसमैन बनूंगा, है ना. तो ऑलवेज इट्स बेटर टू गो फॉर द लेस रिस्की ऑप्शन इन एबल टू अचीव द मोर रिस्की वन. सो एंटरप्रेन्योरशिप में जैसे आपने बोला चैलेंजेस होते हैं, एंड ऑफ कोर्स देयर आर मेनी लॉन्ग आवर्स, क्योंकि आप सोली रिस्पॉन्सिबल हो अबाउट योर होल कंपनी, राइट. लेकिन आपका वर्कलोड एटलीस्ट आपके कंट्रोल में होता है, क्योंकि जॉब में यू आर फोर्स्ड टू सिट इन द ऑफिस फ्रॉम 9 to 5, एंड एज यू मेंशन्ड ओके देयर आर पेड लीव्स, देयर आर वर्क फ्रॉम होम, एंड वर्क फ्रॉम होम इज ऑल्सो द बिगेस्ट वे ऑफ डूइंग एन एंटरप्रेन्योरशिप. व्हेन यू हैव अ कंपनी इन
0: स्पेशली इन द स्टार्टिंग स्टेजेस. आप जाके हमेशा ऑफिस में, यू वुडंट इवन हैव अ ऑफिस. मोस्ट ऑफ द सक्सेसफुल स्टार्टअप्स हैव स्टार्टेड इन योर ओन होम. तो ऑफ कोर्स यस, इट्स अ वेरी वेरी फ्लेक्सिबल स्केड्यूल. एटलीस्ट आप 9 to 5 अपने ऑफिस के बॉस के पास बैठे हुए नहीं हो. यू कैन डू योर ओन थिंग. एंड द सेकेंड थिंग इज, आप बॉस आपको बहुत फोर्स करके बोलेगा कि यू हैव टू डू दिस वर्क बाय मिडनाइट, राइट? एंड यू आर फोर्स टू डू दैट. बट अगर आप एक स्टार्टअप रन कर रहे हो, यू हैव द ऑप्शन ऑफ डूइंग इट, बिकॉज आपका वो इट इज लाइक एन इंस्पिरेशन, इट्स अ मोटिवेशन फॉर यू, क्योंकि आप अपना खुद का स्टार्टअप बिल्ड कर रहे हो. सो यू वॉन्ट टू डू दैट. इट इज अ विलिंग थिंग एंड नॉट बींग फोर्स्ड अपॉन यू कि यू हैव टू डू इट, राइट? बिकॉज वेन यू स्टार्ट एट द कंपनी, इट वॉज योर डिसीजन. नो वन इज फोर्सिंग यू टू गो एंड स्टार्ट स्टार्टअप, राइट? एंड एज आई मैंशनड अर्लियर एज वेल, ले ऑफ्स का स्ट्रेस होता है. और कभी भी आपके हाथ में कोई सिचुएशन हैंडल करने के लिए, मतलब यू हैव अ लॉट ऑफ स्ट्रेस इन योर हैंड्स. एंड मतलब मोस्ट ऑफ द पीपल राइट नाउ, ऑल्सो स्टडीज शो दैट 48% ऑफ पीपल हु आर ऑल्सो एम्प्लॉयड राइट नाउ, इंडियन एम्प्लॉयज हु आर वेरी मच एम्प्लॉयड, दे हैव अ स्टेबल जॉब राइट नाउ, दे आर स्टिल लुकिंग फॉर, दे आर स्टिल जॉब हंटिंग ऑन द साइड, क्योंकि उनको अभी भी फियर है कि मतलब मेरा जॉब स्टेबल नहीं है. बट एटलीस्ट इफ यू आर अ बिजनेसमैन, यू हैव दैट इंश्योरेंस की मतलब मैं जो काम कर रहा हूँ उसका आई हैव द फुल कॉन्फिडेंस कि इट विल वर्क आउट, एंड इफ इट डजंट आई हैव अ बैकअप प्लान. क्योंकि ऑफ कोर्स वी आर नॉट टेलिंग एनीवन टू, आल्सो सेकंड पॉइंट दैट यू मेंशनड अबाउट गोइंग इनटू अ जॉब फर्स्ट एंड देन गोइंग इनटू एंटरप्रेन्योरशिप टू लुक एट द जॉब मार्केट, राइट? ऑफ कोर्स आपको पहले पूरा प्लानिंग एंड रिसर्च के साथ, मे बी यू गो इनटू द मार्केट, यू सी हाउ थिंग्स वर्क आउट ओवर देयर, एंड देन आप बिजनेस में जंप करोगे. नो वन इज गोइंग स्ट्रेट अप इनटू द बिजनेस. बट व्हाट इज द एंड गोल? The end goal is to run something of your own, not to work for someone else. So of course, the first step for a beginner to be to get a job. But then after that, the end goal will always remain to be accountable for your own matlab freedom.
1: तमाम गवाहों और मुद्दों को सुनने के बाद, अब जज इस बात पर पहुंचे हैं कि आप दोनों के पास 30-30 सेकंड हैं. अब दोनों कटघरे में खड़े हैं, अपने क्लोजिंग आर्ग्यूमेंट्स आपको देने हैं इन दोनों पर्सपेक्टिव पे, ट्रेडिशनल जॉब पर या फिर बात हो एंटरप्रेन्योरशिप पे. तो 30 सेकंड है आप दोनों के पास, एक एक करके आप अपने क्लोजिंग आर्ग्यूमेंट दीजिए. आप दोनों ने बहुत अच्छे पॉइंट्स आज कोर्ट में पेश किए हैं. अब वक्त है सही फैसले का, कि क्या जज सही फैसला कर पाएगा, क्या जज साहब को एंटरप्रेन्योरशिप शुरू करनी चाहिए या इसी तरह से ट्रेडिशनल जॉब करते रहना चाहिए. इसके फैसले पर हमारी जनता भी पहुंचेगी हमारे व्हाट्सएप नंबर 6662217 पे. तो अगर हम ट्रेडिशनल जॉब की बात करें तो आलिया आप क्या कहना चाहेंगे, 30 सेकंड है आपके पास.
2: जी ओके, तो मैं इस एस्पेक्ट पे फोकस करना चाहती हूँ अबाउट मेंटल हेल्थ. हम सबका जो प्राइमरी एम है कि हम हेल्थी रहें, हैप्पी रहें, सैटिस्फाइड रहें. ओके, स्टडीज शो दैट 42% ऑफ बिजनेस ओनर्स एक्सपीरियंस्ड बर्नआउट इन द पास्ट मंथ. 24% अभी एक्सपीरियंस कर रहे हैं बर्नआउट. 27% स्ट्रगल विद लोनलीनेस. एंड मोस्ट ड्रामेटिकली 73% ऑफ एंटरप्रेन्योर्स स्पेंड लेस टाइम विद फ्रेंड्स, 60% लेस टाइम विद देयर स्पाउसेस, 58% विद देयर चिल्ड्रन, एंड लोनलीनेस एवरेजेस बिटवीन 7.6 आउट ऑफ 10.
1: मुझे लगता है कि 30 सेकंड में जो सबसे हार्ड और जबरदस्त क्लोजिंग आर्गुमेंट हो सकती है वो पेश कर दी है. नाउ दृष्टि आपकी बारी है.
0: हाँ, तो जस्ट सम अप, क्योंकि एंटरप्रेन्योरशिप हमको एक इम्पैक्ट देता है, एक फ्रीडम देता है और एक अडैप्टेबिलिटी देता है टू गेट फ्यूचर रेडी स्किल्स. और हाँ, रिस्क है, लेकिन कम से कम ये रिस्क हमारे हाथ में है, एज आई हैव बीन मेंशनिंग दिस एंटायर टाइम. और आप एक ऐसा इम्पैक्ट बिल्ड कर सकते हो कि आप सिर्फ अपने फैमिली के लिए नहीं मतलब वर्क कर रहे हो, आप एक पूरे कम्युनिटी के लिए वर्क कर रहे हो. आपके जितने भी एम्प्लॉयज हैं, दे आर ऑल डिपेंडेंट ऑन यू, एंड यू आर गिविंग देम दैट सैटिस्फैक्शन ऑफ रनिंग देयर फैमिली. एंड जस्ट कमिंग टू द क्लोजिंग लाइन, द स्टैटिस्टिक्स दैट आलिया गेव राइट नाउ, मतलब ऑफ कोर्स देयर इज अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स इन मेंटल हेल्थ ऑफ एंटरप्रेन्योर्स. बट जो वर्कर्स भी है उनके भी, एज आई हैव मेंशन, 47% इवन दो दे आर एम्प्लॉयड, उनके पास इतना वर्कलोड का स्ट्रेस होता है बिकॉज दे आर स्कैर्ड कि कभी भी मेरा जॉब जा सकता है. सो ऑफ कोर्स देयर्स टू साइड्स sides of a coin, but at the end of the day, the end goal should always be to have freedom. So that's why I would say entrepreneur.
1: बहुत ही उम्दा, आपने थोड़ा ज़्यादा time ले लिया, लेकिन बहुत ही अच्छा. हाँ, last point कुछ.
2: Last point, yes.
1: तो वकील साहब कुछ कहना चाह रहे हैं? जी जी बताएं.
2: देखिए, हमारे सारे जो listeners हैं, मैं ये नहीं कहना चाहती कि employees को

0: डिप्रेशन नहीं होता होता है ऑब्वियसली होता है बट ये कहना चाहती हूँ कि उनकी जो रीजंस ऑफ डिप्रेशन होती हैं वो एंटरप्रेन्योर्स को भी झेलनी पड़ती हैं एंड वो जो झेलते हैं इट्स एट अ मच हायर लेवल देन एम्प्लॉइज ऋषि ने कहा कि 47% एम्प्लॉइज डिप्रेशन फेस करते हैं मैंने कहा कि 7.6 आउट ऑफ 10 विच इज वॉट लाइक अप्रोक्सीमेटली 70% से भी ज्यादा एंटरप्रेन्योर्स दे आर लोनली दे आर नॉट फीलिंग लाइक दे आर डूइंग समथिंग तो आखिर में हम दोनों ये कहना चाहते हैं कि आप जो करना चाहते हैं आप करिए अगर आपको स्टेबिलिटी पसंद है तो अगर आपको एक स्केड्यूल पसंद है
1: हाँ.
0: तो आप जरूर जाइए ट्रेडिशनल जॉब्स के लिए पर अगर आप फ्रीडम क्रिएट करना चाहते हैं कंट्रोल चाहते हैं तो आप एंटरप्रेन्योरशिप की तरफ जाइए बट इट्स एट योर ओन रिस्क
1: एग्जैक्टली तो मुझे पहले लगा था कि दृष्टि ने ज्यादा वक्त लिया 30 सेकंड से ज्यादा लेकिन अब मुझे पता चल गया 2 मिनट ले लिया है आलिया ने
0: सॉरी
1: ओके वेल डन गाइस कटघरे में आज दो लोग थे एंटरप्रेन्योरशिप और ट्रेडिशनल जॉब दोनों लॉयर ने आलिया ने दृष्टि ने अपनी अपनी तरफ से जितने भी सबूत और गवाह पेश किए हैं इसके जज अब आप हैं हमारे व्हाट्सएप नंबर 6662107 पे बताएं कि कौन विनर रहा लेकिन अगर मेरी तरफ से मुझसे अगर पूछा जाए तो मुझे लगता है कि दोनों जो स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स दिए हैं दोनों ने वो इतने स्ट्रॉन्ग है कि किसी एक तरफ नहीं रहा जा सकता एंटरप्रेन्योरशिप भी बहुत अच्छा कर रहे हैं लेकिन उनके साथ अपने रिस्क हैं वहीं से ट्रेडिशनल जॉब करने वाले बहुत अच्छा कर रहे हैं और वो अच्छी अच्छी पोजीशन पे पहुंचे हैं एमडी बने हैं सीईओ बने हैं
0: बिल्कुल
1: बहुत अच्छे पोजीशन पे हैं आज और उन्होंने शुरुआत बहुत छोटे से करी है आप मुझे ही देख लीजिए लेकिन मैं यही कहना चाहूंगा कि हर जॉब में हर एंटरप्रेन्योरशिप में अपने तरह का रिस्क है अब ये आपको डिसाइड करना है आप क्या फैसला लेते हैं हमारे व्हाट्सएप नंबर 6662107 पे ले सकते हैं फिलहाल हमें आलिया को और दृष्टि को इजाजत दीजिए मुलाकात होगी आपसे नेक्स्ट वीक इसी शो में जिसका नाम है द डिबेटेबल टेबल एफएम 107 पे दो नए कलाकार और जबरदस्त डिबेट करने वाले स्टूडेंट से सुनते रहे एफएम 107 दिल से दही से
2: का पहला देसी रेडियो स्टेशन FM 107 दिल से देसी
3: FM 107 पर अपना बिजनेस एडवर्टाइज करने के लिए आज ही राब्ता करें हमारी कतर मीडिया कॉरपोरेशन की मार्केटिंग टीम से कॉल करें 4488806 पर या ईमेल करें marketing@qmc.qa
4: न्यूज एट 7 PM ओनली ऑन FM 107 दिल से देसी
5: السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ریاست قطر کی آواز ریڈیو قطر سے پیش خدمت ہے آج کا دوسرا نشریہ اسماعیل خان کی زبانی اور پہلے اہم خبروں کی سرخیاں صاحب سمو امیر نے فیڈریشن آف سینٹ کٹس اینڈ نیویس کی گورنر جنرل کو ان کے ملک کے یوم آزادی کے موقع پر تہنیتی پیغام ارسال کیا ہے ریاست قطر کے مستقل وفد نے بین الاقوامی بحری تنظیم کے لندن میں 14 سے 18 ستمبر تک منعقد ہونے والی کارگو اور کنٹینرز کی نقل و حمل سے متعلق ذیلی کمیٹی کے 12th اجلاس میں شرکت کی سال 1448 ہجری کے حج کے لیے الیکٹرانک رجسٹریشن کل اتوار سے سرکاری حج پورٹل پر شروع ہو کر 20 اکتوبر تک جاری رہے گی اور امریکی صدر نے ایک قانون پر دستخط کیے ہیں جس کے تحت یوکرین جنگ کے باعث روس پر نئی پابندیاں عائد کرنے کی اجازت دی گئی ہے یہ تھی اہم خبروں کی سرخیاں اور اب سماعت کیجیے مفصل نشریات

0: अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि व बरकातुहू। दोस्तों, मेरे यानी सरवर मिर्जा के साथ आइए जानते हैं वजारत दाखला से वीकली अपडेट।
1: हर हफ्ते की सबसे जरूरी अपडेट लेकर आ रहे हैं आरजे सरवर एमओआई वीकली अपडेट प्रोग्राम में। एमओआई वीकली अपडेट प्रोग्राम में वजारत दाखला की हर एक एक्टिविटी, जरूरी खबरें और आपकी फैमिली के लिए इम्पोर्टेंट अवेयरनेस, सब कुछ मिलेगा यहाँ, कुछ मिलेगा यहाँ। और जानिए वो सब जो आपके लिए मैटर करता है। एमओआई वीकली अपडेट, एमओआई वीकली अपडेट, आपका वीकली डोज ऑफ न्यूज एंड मच मोर विद आरजे सरवर, विद आरजे सरवर।
0: वजीर दाखला और इंटरनल सिक्योरिटी फोर्स लखविया के कमांडर शेख खलीफा बिन हमद बिन खलीफा अल्थानी ने स्पेन के दौरे के दौरान स्पेन के वजीर दाखला फर्नांडो ग्रैंडे मालास का गोम से मुलाकात की। मुलाकात के दौरान दोनों दोस्त ममालिक के दरमियान मौजूद तआवुन का जायजा लिया गया और खासतौर पर अमनियत के शोबे में इस तआवुन को मजीद मजबूत और फरोग देने के तरीकों पर तबादला ख्याल किया गया। इसके अलावा दो तरफा बाहमी दिलचस्पी के कई अहम मौजूदात पर भी बातचीत की गई। मुलाकात के बाद वजीर दाखला और इंटरनल सिक्योरिटी फोर्स लखविया के कमांडर शेख खलीफा बिन हमद बिन खलीफा अल्थानी और उनके स्पेनिश हम मनसब ने रियासत कतर की वजारत दाखला और स्पेन की वजारत दाखला के दरमियान फीफा वर्ल्ड कप 2030 के सिक्योरिटी इंतजाम

मात के हवाले से 52 पर एक लेटर ऑफ इंटेंट पर भी दस्तखत किए। दोस्तों, जैसे कि फॉग या धुंध में गाड़ी चलाना ज्यादा तवज्जो, एहतियात और जरूरी हिफाजती इकदाम तलब करता है, इसमें कुछ अहम सेफ्टी गाइडलाइंस हैं जो फॉग में गाड़ी चलाते वक्त मददगार साबित हो सकते हैं। सबसे पहले रफ्तार का ध्यान करें। फॉग या कोहरे के वक्त व्यू कम हो जाता है, इसलिए गाड़ी की रफ्तार को धीमा करें ताकि हादसे का खतरा कम हो। स्पीड लिमिट का ख्याल रखें और फॉग के हिसाब से रफ्तार एडजस्ट करें। दूसरा ये कि गाड़ी की बीम्स का ख्याल करें। अपनी गाड़ी की फॉग लाइट्स और लो बीम्स का इस्तेमाल करें। हाई बीम्स फॉग पर रिफ्लेक्ट करती हैं और आपके व्यू को और ज्यादा कम कर देती हैं। तीसरा ये कि डिस्टेंस बढ़ाएं। अपनी गाड़ी और सामने वाली गाड़ी के दरमियान ज्यादा फासला रखें। अगर ट्रैफिक सडनली स्लो हो जाता है तो गाड़ी में रिएक्ट करने का ज्यादा वक्त मिलेगा। और पॉइंट नंबर 4, राइट लेन में रहिए। ज्यादा फॉग में राइट लेन में चलना बेहतर होता है, क्योंकि ये अक्सर रोड मार्किंग्स को फॉलो करना आसान बनाता है और रोड के किनारे पे रहने में मदद करता है। पॉइंट नंबर 5, अचानक मुड़ने और ब्रेक लगाने से बचिए। फॉग में अचानक टर्निंग या ब्रेकिंग से बचना चाहिए, क्योंकि ये कंट्रोल खो देने का सबब बन सकता है। हमेशा ग्रेजुअल एडजस्टमेंट्स करें। पॉइंट नंबर 6, विंडशील्ड वाइपर्स का इस्तेमाल करें। अपनी विंडशील्ड को साफ रखें ताकि विजिबिलिटी बेहतर हो सके। इसके अलावा अपने विंडोज को भी डीफॉग करें। नंबर 7 और आखिरी, जरूरत पर गाड़ी को रोक दें। अगर फॉग इतनी ज्यादा है कि व्यू मुश्किल हो जाए तो किसी सेफ जगह जैसे पार्किंग लॉट में गाड़ी को रोक कर रुक जाइए और विजिबिलिटी के बेहतर होने का इंतजार करिए। इन सेफ्टी टिप्स पर अमल करके आप फॉग में ड्राइविंग के रिस्क को कम कर सकते हैं। सामईन, दुकानों और कैफेज के सामने गलत जगह पर गाड़ी पार्क करना सिर्फ ट्रैफिक की रवानी में रुकावट नहीं बनता, बल्कि आपको ट्रैफिक वायलेशंस का सामना भी करना पड़ सकता है। याद रखिए, चंद लम्हों की सहूलत दूसरों के लिए परेशानी का सबब बन सकती है। अपनी गाड़ी को सिर्फ मुकर्रर की गई पार्किंग वाली जगहों पर ही पार्क करें और ट्रैफिक कानून की पाबंदी करें। वजारत दाखिला का कहना है कि आपका जिम्मेदाराना रवैया न सिर्फ आपकी हिफाजत को यकीनी बनाता है, बल्कि दूसरे रोड यूजर्स की सलामती में भी अहम किरदार अदा करता है। ट्रैफिक कानून की पाबंदी महफूज और मुनज्जम मुआशरे की जमानत होती है। वजीर दाखिला और इंटरनल सिक्योरिटी फोर्स लखविया के कमांडर शेख खलीफा बिन हमद बिन खलीफा अलसानी ने अपने जर्मनी के दौरे के दौरान जर्मनी के फेडरल वजीर दाखिला अलेक्जेंडर डॉब्रिंट से मुलाकात की। मुलाकात के दौरान दोनों ममालिक के दरमियान ताबुन के रिश्तों का जायजा लिया गया और खासतौर पर अमनियत के शोबे में इन रिश्तों को मजीद मजबूत और फरोग देने के तरीकों पर बातचीत की गई। इसके अलावा दो तरफा बाहमी दिलचस्पी के कई अहम मौजूदात पर भी तबादला ख्याल किया गया। मुलाकात के बाद वजीर दाखिला और लखविया के कमांडर शेख खलीफा बिन हमद बिन खलीफा अलसानी और उनके जर्मन हम मनसब ने दोनों ममालिक की वजारत दाखिला के दरमियान ट्रेनिंग और तजुर्बात के तबादले के शोबे में सिक्योरिटी कॉपरेशन से मुतालिक एक लेटर ऑफ इंटेंट पर भी दस्तखत किए। सामईन, स्कूल बस सिर्फ एक गाड़ी नहीं बल्कि हमारे बच्चों की हिफाजत की जिम्मेदारी भी है। जब स्कूल बस बच्चों को छोड़ने या उतारने के लिए रुककर अपना स्टॉप साइन जाहिर करती है तो उसे किसी भी तरफ से ओवरटेक करना या क्रॉस करना इंतहाई खतरनाक हो सकता है। याद रखिए, बच्चे अचानक सड़क पर आ सकते हैं और बड़ी स्कूल बस की वजह से उन्हें देखना मुश्किल हो जाता है। इसलिए जब स्कूल बस रुके और स्टॉप साइन को जाहिर करे तो अपनी गाड़ी को मुकम्मल तौर पर रोक दें और बस के दोबारा चलने का इंतजार करें। याद रखें कि आपका ये चंद सेकंड्स का इंतजार किसी बच्चे की जिंदगी के लिए बेहद अहमियत रखता है। वजारत दाखिला का कहना है कि ऐसे मौकों पर बस के दोबारा चलने तक रुक जाएं और ये भी याद रखें कि आपका ये छोटा सा एहतियात भरा कदम हमारे बच्चों की हिफाजत और रोड सेफ्टी में बड़ा किरदार अदा करता है। सामईन, हमारे बच्चों को सड़क पर हिफाजत के उसूल सिखाना उनकी जान की हिफाजत करता है और उनमें ट्रैफिक सेफ्टी का शऊर पैदा करता है। याद रखिए, सड़क हमेशा मुकर्रर पेडेस्ट्रियन क्रॉसिंग या ज़ेब्रा क्रॉसिंग से ही पार करनी चाहिए। उन्हें ये भी बताइए कि सड़क पार करने से पहले अच्छी तरह देख लें और यकीन कर लें कि रास्ता गाड़ियों से खाली है। इसके अलावा

सड़क पार करते वक्त हर तरफ से आने वाली गाड़ियों पर नजर रखें और पूरी तवज्जो के साथ चलें। मोबाइल फोन इस्तेमाल करते हुए या किसी और चीज में मशगूल होकर सड़क पार करना खतरनाक हो सकता है। वजारत दाखिला का कहना है कि आइए मिलकर अपने बच्चों को ट्रैफिक सेफ्टी की आदतें सिखाएं ताकि वो हर रोज महफूज तरीके से स्कूल जाएं और घर वापस लौटें। बच्चों की हिफाजत हम सब की मुश्तरका जिम्मेदारी है। मुख्तलिफ शोबों में कतरी ख्वातीन की शिरकत को फरोग देने की कोशिशों के तहत मिलिट्री इदारों के लिए अफसर और दीगर रैंक्स के उम्मीदवारों के इंतखाब की मुश्तरका कमेटी अपनी सरगर्मियां जारी रखे हुए है। कमेटी का मकसद काबिल और बासलाहियत ख्वातीन को मिलिट्री और सिक्योरिटी तालीम और ट्रेनिंग प्रोग्राम्स में शामिल होने के मौके फराहम करना है। वजारत दिफा यूनिवर्सिटी ऑफ दोहा फॉर साइंस एंड टेक्नोलॉजी के तआवुन से टेक्निकल इंस्टीट्यूट डिप्लोमा प्रोग्राम पेश कर रही है। ये प्रोग्राम मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन एंड हायर एजुकेशन से तस्दीक शुदा है और इसका मकसद आर्म्ड फोर्सेस की जरूरियात के मुताबिक टेक्निकल महारत रखने वाली कतरी ख्वातीन को एकेडमिक तालीम, अमली ट्रेनिंग और मिलिट्री डिसिप्लिन के जरिए तैयार करना है। दूसरी जानिब वजारत दाखिला 2 साल डिप्लोमा इन पुलिस साइंस प्रोग्राम पेश कर रही है। इसका मकसद ख्वातीन को एकेडमिक और अमली ट्रेनिंग के साथ पुलिसिंग और सिक्योरिटी से मुतालिक ऐसी मालूमात और महारत फराहम करना है जो उन्हें अपनी जिम्मेदारियां पेशवराना और मुअस्सर अंदाज में अदा करने में मदद दें। वाज़े रहे कि कमेटी अपने पहले साल में इंतखाब और दाखिले के अमल को यकसा और शफाफ मयारों के मुताबिक बनाने पर काम कर रही है। इससे बराबर मौकों को फरोग मिलेगा, कौमी सलाहियतों को मुतवज्जे किया जा सकेगा और मिलिट्री और सिक्योरिटी शोबों में कतरी ख्वातीन की शिरकत को मजीद मजबूत बनाया जा सकेगा। सामीन अपने मोबाइल एप्स और डिवाइस के ऑपरेटिंग सिस्टम को बाकायदगी से अपडेट करना साइबर जुर्म से बचाव में अहम किरदार अदा करता है। अपडेट्स न सिर्फ आपके डिवाइस की परफॉर्मेंस बेहतर बनाती है बल्कि उन कमजोरियों को भी दूर करती है जिनका फायदा उठाकर साइबर मुजरिम आपका डेटा चुरा सकते हैं या आपकी मालूमात तक गैर कानूनी रसाई हासिल कर सकते हैं। याद रखिए, मोबाइल एप्स और ऑपरेटिंग सिस्टम्स को हमेशा लेटेस्ट वर्जन पर अपडेट रखें। सिर्फ मुतबर और ऑफिशियल सोर्सेज से अपडेट डाउनलोड करें। जरूरी सिक्योरिटी अपडेट्स को नजरअंदाज ना करें। अपने अहम डेटा का बैकअप भी बाकायदगी से लेते रहें। वजारत दाखिला का कहना है कि आपकी आगाही और एहतियात ही आपकी डिजिटल हिफाजत की सबसे बड़ी ताकत है। साइबर सिक्योरिटी का ख्याल रखें और अपनी मालूमात को महफूज बनाएं। वजीर दाखिला और इंटरनल सिक्योरिटी फोर्स लखविया के कमांडर शेख खलीफा बिन हमद बिन खलीफा अलसानी की तरफ से वजारत दाखिला के असिस्टेंट अंडर सेक्रेटरी फॉर सिक्योरिटी अफेयर्स शेख नाइफ बिन फाले बिन सऊद अलसानी ने पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना के शहर लैंग यूंग गैंग में मुनक्किद ग्लोबल पब्लिक सिक्योरिटी कोऑपरेशन फोरम 2026 में शिरकत की। ये शिरकत बैनुल अक्वामी तआवुन को मजबूत बनाने, तजुर्बात के तबादले और पब्लिक सिक्योरिटी और सेफ्टी के शोबे में दुनिया भर के बेहतरीन तजुर्बात से फायदा उठाने की कोशिशों का हिस्सा है। फोरम की साइडलाइंस पर शेख नाइफ बिन फाहले बिन सऊद अलसानी और उनके हमरा वफ्त ने सिक्योरिटी एग्जीबिशन का भी दौरा किया जहां उन्होंने सिक्योरिटी के मैदान में ताज़ा तरीन टेक्नोलॉजीज और इनोवेशन का जायजा लिया। इस मौके पर एडवांस्ड सॉल्यूशंस और जदीद टेक्नोलॉजीज के बारे में मालूमात भी हासिल की गईं, जो सिक्योरिटी ऑपरेशंस को सपोर्ट करने और पब्लिक सिक्योरिटी और सेफ्टी निजाम की कारकर्दगी को मजीद बेहतर बनाने के लिए तैयार की गई हैं। एयरपोर्ट सिक्योरिटी डिपार्टमेंट ने 6 से 10 सितंबर तक मुनक्किद किए गए एविएशन सिक्योरिटी स्क्रीनिंग कोर्स का अख्तिताम कर दिया है जिसमें जीसीसी ममालिक के अफसरान ने शिरकत की। कोर्स के दौरान स्क्रीनिंग प्रोसीजर्स, एयरपोर्ट्स पर इस्तेमाल होने वाले जदीद डिवाइसेज और मॉडर्न टेक्नोलॉजीज और एयरपोर्ट सिक्योरिटी से मुतालिक बैनुल अक्वामी कानून और स्टैंडर्ड्स पर तफसीली ट्रेनिंग दी गई थी। ट्रेनिंग प्रोग्राम में एयरपोर्ट का फील्ड टूर भी शामिल था जहां शिरका ने एयरपोर्ट सिक्योरिटी डिपार्टमेंट के मुख्तलिफ शोबों का दौरा किया। इसका मकसद अमली मालूमात और महारत में इजाफा करना और मुख्तलिफ शोबों में काम के तरीकाकार और जिम्मेदारियों से आगाही फराहम करना था। इंतखाबी तकरीब में असिस्टेंट डायरेक्टर एयरपोर्ट सिक्योरिटी डिपार्टमेंट लेफ्टिनेंट कर्नल जायद राशिद अल नुआइमी के साथ कई अफसरान ने इसमें शिरकत की। सामईन, इसी के साथ मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर की वीकली अपडेट का सिलसिला अपने अख्तिताम को पहुंचा। अगली मुलाकात तक के लिए प्रोग्राम डिजाइनर शहबाज अंसारी और सरवर मिर्जा को इजाजत दीजिए।

0: और याद रखिए, कानून की पासदारी और एहतराम कीजिए, कानून आपकी हिफाजत करेगा।
1: आपने सुना हमें ऑन एयर, नाउ फॉलो अस ऑन फेसबुक एंड इंस्टाग्राम @FM107 Qatar। दिल से देसी।
2: कंसिस्टेंसी इज द की, ये तो सुना ही होगा आपने। और इसी कंसिस्टेंसी के साथ अगर हमने हमारी दुनिया का ख्याल किया और एनर्जी को सस्टेन करने में आगे हाथ बढ़ाया, तो यूं समझिए कि हमने हमारे कल को एक तोहफा दे दिया। सो सस्टेन द फ्यूचर, हर फ्राइडे दोपहर 2 बजे से RJ सफा के साथ छोटे छोटे कदम उठाएं एक बेहतर और सस्टेनेबल मुस्तकबिल के लिए। ओनली ऑन FM 107, दिल से देसी। स्ट्रेस या टेंशन फील कर रहे हैं, चाहते हैं लाइफ में बैलेंस और ग्रोथ, तो सुनिए यू मैटर, आपके लिए प्रैक्टिकल टिप्स और स्ट्रेटजीज ताकि आप खुश, हेल्दी और फुलफिल्ड लाइफ जी सके, क्योंकि आप मैटर करते हैं।
1: सुनिए हर संडे टू थर्सडे सुबह 10 से 11 बजे यू मैटर RJ सफा और RJ महविश के साथ, जहां वो शेयर करेंगी प्रैक्टिकल टिप्स, इमोशनल इंटेलिजेंस टेक्निक्स और पर्सनल ग्रोथ हैक्स, जो आपके स्ट्रेस को मैनेज करने में हेल्पफुल हो सकता है। ट्यून इन टू FM 107, दिल से देसी।
3: मुकाबले के दरवाजे खुल चुके हैं, पॉइंट्स की दौड़ का आगाज हो चुका है, मुकाबले फिर सजेंगे और हर राउंड लेकर आएगा एक नई कहानी। यतूर लीग सिर्फ और सिर्फ अलकास चैनल और शूफ प्लेटफॉर्म पर।
4: कतर्स मोस्ट हर्ड रेडियो स्टेशन FM 107, दिल से देसी।

0: FM 107 पर अपना बिजनेस एडवर्टाइज करने के लिए आज ही राबता करें, आज ही राबता करें हमारी कतर मीडिया कॉरपोरेशन की मार्केटिंग टीम से। कॉल करें 4488806 पर या ईमेल करें marketing@qmc.qa।
1: Qatar's most heard radio station, FM 107. FM 107. Dil se desi.
2: Smart money. Hello and welcome to our segment called Smart Money. Main hoon aapki dost, aapki host Nazia. आज हम बात करेंगे अर्निंग ग्लोबली एंड स्पेंडिंग लोकली। कितना इंटरेस्टिंग साउंड करता है ना। देखिए आज के मॉडर्न डिजिटल वर्ल्ड में एक नया लाइफस्टाइल बड़ी तेजी से पॉपुलर हो रहा है जिसे हम और आप अडॉप्ट भी कर रहे हैं। इस लाइफस्टाइल को कहते हैं डिजिटल नोमैड लाइफस्टाइल। ये लाइफस्टाइल उस लाइफस्टाइल की तरह है जो इंटरनेट की मदद से रिमोटली काम करता है और किसी एक ऑफिस या सिटी तक महदूद भी नहीं रहता। वो दुनिया के किसी भी मुल्क से अपना काम कंटिन्यू कर सकता है। इसी कॉन्सेप्ट को अक्सर अर्निंग ग्लोबली स्पेंडिंग लोकली के नाम से जाना जाता है। तो इसका मतलब ये है कि आप इंटरनेशनल क्लाइंट्स या फिर कंपनी से इनकम अर्न करते हैं लेकिन अपने डेली एक्सपेंसेस उस जगह के मुताबिक करते हैं जहां आप रह रहे होते हैं। डिजिटल नोमैड बनने का सबसे बड़ा फायदा फ्रीडम है। पिछली जनरेशन्स को ऑफिस जाना पड़ता था लेकिन आज इंटरनेट और टेक्नोलॉजी की वजह से काफी जॉब्स ऑनलाइन हो चुकी हैं। फ्रीलांस राइटर्स, ग्राफिक डिजाइनर्स, सॉफ्टवेयर डेवलपर्स, डिजिटल मार्केटर्स, ऑनलाइन टीचर्स और कॉन्टेंट क्रिएटर्स दुनिया के किसी भी कोने से काम कर सकते हैं। अगर कोई बच्चा यूरोप या अमेरिका की कंपनी के लिए काम कर रहा हो और किसी कॉम्पिटिटिव अफोर्डेबल कंपनी में रह रहा हो तो उसकी सेविंग पोटेंशियल काफी ज्यादा बढ़ सकती है। मिसाल के तौर पे अगर कोई फ्रीलांसर एक इंटरनेशनल क्लाइंट से $3,000 पर मंथ कमाता है और उसे ऐसी सिटी में रहने का मौका मिलता है जहाँ लिविंग कॉस्ट रिलेटिवली कम है तो उसके पास ज्यादा पैसा सेव करना और इन्वेस्ट करने का चांस बढ़ता है। और शायद इसी वजह से बहुत से डिजिटल नोमैड्स ऐसे मुल्क को पिक करते हैं जहां कॉस्ट ऑफ लिविंग कम हो और इंटरनेट फैसिलिटीज अच्छी हो। लेकिन ये लाइफस्टाइल सुनने में जितना अट्रैक्टिव है उतना ही फाइनेंशियल प्लानिंग भी रिक्वायर्ड करता है। सबसे पहला चैलेंज जो इसका है वो है इरेगुलर इनकम। ट्रेडिशनल जॉब्स में तो हमारी आपकी सैलरी फिक्स्ड होती है लेकिन फ्रीलांसिंग या फिर रिमोट प्रोजेक्ट्स में इनकम हर मंथ डिफरेंट हो सकती है। कभी कम कमाया तो कभी ज्यादा कमाया और शायद कभी कुछ भी नहीं। इसलिए ये लाइफस्टाइल जो है वो बजटिंग का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट स्किल हमें और आपको सिखाता है। देखिए बजटिंग का मतलब है हम अपनी इनकम और एक्सपेंसेस को प्लान करें। स्मार्ट डिजिटल नोमैड्स हर मंथ अपने एसेंशियल एक्सपेंसेस जैसे रेंट है, आपका फूड है, ट्रांसपोर्ट है, इंश्योरेंस है, इंटरनेट है, लोग अपने फाइनेंसेस को दुनिया के किसी भी हिस्से से मैनेज कर सकते हैं। लेकिन टेक्नोलॉजी के साथ सिक्योरिटी का ख्याल रखना बड़ा जरूरी है। स्ट्रॉन्ग पासवर्ड्स, टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन और सिक्योर इंटरनेट कनेक्शन, ये तो आप जानते हैं। बस आपसे यही आखिर में जाते जाते कहूंगी कि डिजिटल नोमैड लाइफस्टाइल ट्रैवलिंग का नाम नहीं है। असल सक्सेस स्मार्ट फाइनेंशियल मैनेजमेंट पर डिपेंड करती है। अगर कोई पर्सन ग्लोबली इनकम

0: लोकल लेवल पर वाइजली स्पेंड करें, रेगुलर सेविंग्स करें, इमरजेंसी फंड मेंटेन करें और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स पर फोकस करें तो फाइनेंशियल फ्रीडम की बहुत करीब होता है। लिहाजा डिजिटल नोमैड फाइनेंस का जो बेसिक रूल है वो ये है कि अर्न स्मार्ट, स्पेंड वाइजली, सेव कॉन्स्टेंटली एंड इन्वेस्ट फॉर द फ्यूचर। जो लोग फाइनेंशियल डिसिप्लिन के साथ रिमोट लाइफस्टाइल को बैलेंस कर लेते हैं वो सिर्फ दुनिया एक्सप्लोर नहीं करते बल्कि अपनी वेल्थ भी स्टेडली बिल्ड करते हैं। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। मुझे यानी नाजिया और शकीब अहमद, हम दोनों को इजाजत दीजिए। एक नई टर्म आपने सीखी ली और किस तरह से उसको समझा है और कितना अप्लाई करने वाले हैं आप, ये मुझे बताइएगा जरूर 666-22-107 पर। फिलहाल आपसे इजाजत लूंगी, कल होगी मुलाकात। अपना ख्याल रखिए, देखते हो सुनते रहिए FM 107, दिल से देसी।
1: आप सुन रहे हैं FM 107, FM 107,
2: दिल से देसी।
3: What's up, Ellie?

Assalamualaikum, मैं दुहा वाले कबीर एफएम 107.7। वेलकम टू अनदर टेक अपडेट। आज जो है वेबसाइट्स बहुत जरूरी हैं। आज एजुकेशनल पर्पस के लिए हम वेबसाइट्स लेकर आए हैं। मेरा मकसद ये है कि मैं आज उन बच्चों तक पहुंच सकूं, उन माँ बाप तक स्पेशली, जो अपने बच्चों को अलग अलग तरीके से एजुकेट करने की कोशिश करते हैं, इंटरैक्टिव तरीके से, जो माँ बाप क्रिएटिवली अप्रोच रखते हैं, कुल मिला के उनकी बात कर रहा हूं मैं। तो आज उन्हीं के लिए है सारी की सारी वेबसाइट्स, नहीं इनफैक्ट दो वेबसाइट्स उनके लिए, एक थोड़ा सामने अलग रखे, ठीक है? तो शुरू करते हैं। नंबर वन जो वेबसाइट है ऑन द लिस्ट, इसका नाम है टॉय थिएटर। टॉय थिएटर, खिलौने वाला, TOY, टॉय थिएटर, TH E A T R E। इस वेबसाइट पे अगर आप जाएंगे तो अपने बच्चों के साथ आप बहुत सारे गेम्स खेल सकते हैं। इस पे बहुत सारे गेम्स हैं जो इंटरैक्टिव हैं, ऑनलाइन है, तो ऑब्वियसली उनको अगर आप हाथ में टैबलेट पकड़ा देते हैं, फोन ही पकड़ा देते हैं, तब भी आप इसके जरिए उन्हें सिखा सकते हैं। फोनिकली वो आवाजों के जरिए मैथ्स के सम से लेकर एक एक चीज पजल के थ्रू पढ़ाई कर सकते हैं, और ये ब्रेन के ना उन हिस्सों को टैप इन करता है जो यूजुअली गेम

0: गेम्स करते हैं, और मैं हमेशा से इस बात के लिए आगे आता हूँ, वकालत करता हूँ कि गेम्स आपके ब्रेन को खोलते हैं। तो वाले गेम्स जो बच्चों के लिए और एलिमेंट्री स्कूल तक के लिए, जो बच्चों के दिमाग को खोलेंगे भी और उन्हें बहुत कुछ सिखाएंगे, ये वेबसाइट उनके काम की है, toytheater.com। इस वेबसाइट पे जरूर जरूर जाइएगा। इससे मिलती जुलती एक और वेबसाइट मैं आपको बता देता हूँ। अगली वेबसाइट का नाम है starfall.com, starfall.com, starfall.com। इस वेबसाइट पर जब आप जाएंगे तो इस वेबसाइट पर भी आपको शुरुआत से किंडरगार्टन से लेकर एलिमेंट्री तक बच्चों को सिखाने के लिए बहुत सारी एक्टिविटीज है। इसमें क्या है ना, रीडिंग का भी जो हिसाब किताब है ना, वो एनिमेशन के जरिए है। तो वो किताब उनके सामने खुलेगी, वो किताबें पढ़ेंगी, किताबें उनसे बात भी करेंगी, और सारी की सारी कहानी है कि एनिमेशन के थ्रू उनकी नजरों के सामने आएगी। इट इज इमेंसली ब्यूटीफुल। ये जो मौका है ना, ये अपने बच्चों को दीजिए, बिकॉज आई थिंक कॉग्निटिव जो एबिलिटीज होती हैं दिमाग की, वो अनलॉक होती हैं, और एनिमेशन के थ्रू बहुत इंटरेस्टिंग हो जाती है पढ़ाई, है ना। तो रादर देन यू सिटिंग एंड टेलिंग देम पढ़ो पढ़ो पढ़ो पढ़ो पढ़ो एंड टेलिंग देम स्टोरीज, ये जो है ना उनको मदद करेगा। चाहे उनके हाथ में फोन्स क्यों ना हो, अगर आपने ये कर दिया है ना, तो उनको एक आदत लगेगी, और वो आदत उन्हें बहुत सारी चीजें सिखाएगी। कलर्स हो, नाम हो, मैथ्स के सम्स हो, या फिर एक बेसिक एक कहानी सुनाने का तरीका हो। और कहानी सुनाने के तरीके से बेहतर कोई और तरीका नहीं है जो बच्चे के दिमाग को टैप इन करता है, बिकॉज उसके इमेजिनेटिव वर्ल्ड को छू लेना इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, अगर आप उसे सच में कुछ सिखाना चाहते हैं। दैट इज सो ट्रू। मैं कोई इसमें डॉक्टर नहीं हूं, बट जहां तक मैंने जाना है, देखा है, पढ़ा है, वो तो भाई यही है। तो आई जस्ट वॉन्टेड टू गिव दिस टू यू कि आपको अच्छा लगे। अगली वेबसाइट की तरफ बढ़ते हैं। अगली वेबसाइट का जो नाम है ये है chatforce.com, chatforce, chatforce.com। इस वेबसाइट में जब आप जाएंगे तो आपको एक मौका मिलेगा एक गेम अपने हिसाब से फ्री में बनाने का। ट्रस्ट मी, मोबाइल गेम आप अपने आप बना सकते हैं, और आपका इमेजिनेशन जितना लंबा दौड़ाना चाहे घोड़े को दौड़ाइए भाई। आपको कोई सा इसमें कैसा एनवायरनमेंट चाहिए, कैसा म्यूजिक चाहिए, आप कैसा देखते हैं वो गेम है क्या, वो सब कुछ आप एक प्रॉम्प्ट पे दे सकते हैं। एंड ये हालांकि मजे मजे में आप कुछ बनाएंगे, मगर आपको सीखने को मिलेगा कि गेम्स में क्या क्या चीज़ें की फैक्टर्स होती हैं, एनवायरनमेंट कैसे होता है, क्या बिल्डअप होता है, और ये सब चीज़ें सीख के हो सकता है यू नेवर नो कि किसी का इंटरेस्ट किसी और फील्ड को अनलॉक कर दे। तो डेफिनेटली ये तो खैर एडल्ट्स के लिए भी है, आप अगर गेम बनाना चाहें आप बनाइए, बिंदास बनाइए और सीखिए इससे। यू नेवर नो कि एक और इंडस्ट्री को आप अनलॉक कर लें अपने लिए, एंड डेफिनेटली आप काम आ सकते। सो chatforce.com ये है जी इसका नाम। जरा खबरों की तरफ बढ़ते हैं। देखिए खबरों में मैं बताना चाहूंगा, साल का आखिर होने वाला है, अभी अगर आप कोई प्रोडक्ट खरीदने की कोशिश कर रहे हैं तो अभी आप खरीद दीजिए। मैं सही बता रहा हूँ, विंटर क्या आते आते मतलब टूवर्ड्स द फॉल सीजन में कुछ ही प्रोडक्ट्स हैं जो कम जो जिनका प्राइस कम होगा, बाकी सबके सब अपने प्राइस पे अड़े रहेंगे। However, अभी एक जंग जो है वो फोल्डेबल फोन्स की चल रही है, जिसमें आपको डिस्काउंट मिलने के चांसेस हैं। रिसेंटली एक आर्टिकल में छपा है कि अभी तो रूमर्ड है, बट अगर उसकी माने तो टूवर्ड्स द फॉल आपको बहुत सारे जो फोल्डेबल फोन्स हैं उस पे एक प्राइस कट मिल सकता है। ऑल द बेस्ट फॉर दैट। तो ये थी टेक अपडेट, मैं दुआ वाला कबीर साइनिंग ऑफ। अपना ख्याल रखिएगा, आप बेहद बेहद जरूरी हैं। मास्सलाम।
1: Maximum music, maximum fun. On FM 107, Dil Se Desi.

0: आप सुन रहे हैं FM 107
1: दिल से देसी।

0: आपने सुना हमें ऑन एयर, नाउ फॉलो अस ऑन फेसबुक एंड इंस्टाग्राम एट FM 107 कतर। दिल से देसी,
1: एक खास शो जहां बात होगी खातीन की सेहत, अवेयरनेस और कंप्लीट वेलबींग की।
2: वेलनेस इज फाइंडिंग योरसेल्फ, फाइंडिंग व्हाट ब्रिंग्स यू जॉय एंड व्हाट कीप्स यू होल।
1: एक ऐसा प्रोग्राम जो सिर्फ हेल्थ रिलेटेड इंफॉर्मेशन ही नहीं देगा बल्कि हेल्दी लाइफस्टाइल को अडॉप्ट करने के लिए मोटिवेट भी करेगा। हर एपिसोड में हमारे साथ होंगे डॉक्टर्स, डिस्कस करेंगे उन टॉपिक्स को जो आपकी जिंदगी को पॉजिटिवली ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। तो दोस्तों, सुनना न भूले शो वेमेन वेलनेस हर मंडे शाम 5 बजे से आरजे नाजिया के साथ, ओनली ऑन FM 107 दिल से देसी।
3: दोस्तों, गाड़ी की रूफ टॉप पर बैठना या विंडो से बाहर झांकना सिर्फ एक ट्रैफिक वायलेशन नहीं बल्कि ये एक बहुत बड़ा सेफ्टी रिस्क भी है। जब गाड़ी चल रही होती है तो ऐसे रवैयों से ना सिर्फ आपकी अपनी जान खतरे में होती है बल्कि दूसरे लोग भी नुकसान उठाते हैं। ऐसे अनसेफ और इलीगल एक्शंस का सामना करते हुए हम ना सिर्फ अपनी जिंदगी खतरे में डालते हैं बल्कि दूसरों को भी चोटों का शिकार बना सकते हैं। ट्रैफिक लॉज का मकसद सिर्फ कानून पर अमल करना नहीं बल्कि हमारी और हमारे आसपास के लोगों की सेफ्टी को इंश्योर करना है। गाड़ी के अंदर रहकर सीट बेल्ट का इस्तेमाल करना और विंडो के अंदर रहना जरूरी है। ये सब प्रिकॉशंस न सिर्फ हमारे लिए बल्कि हमारे बच्चों और दूसरे सफर करते लोगों के लिए भी जरूरी हैं। ट्रैफिक वायलेशंस का अंजाम सिर्फ फाइंस या लीगल एक्शंस तक लिमिटेड नहीं होता बल्कि इससे सीरियस इंजरीज और एक्सीडेंट्स का खतरा भी होता है। ट्रैफिक लॉ के आर्टिकल नंबर 83 के तहत ऐसे रवैयों को कानून के तहत सजा मिलती है जो हमारे लिए एक जरूरी वार्निंग है। हमारी जिम्मेदारी है कि हम अपने बच्चों को सही रास्ते पर चलने की तालीम दें और उन्हें सफाई और हिफाजत के तरीकों का एहसास दिलाएं। आइए हम सब मिलकर ट्रैफिक रूल्स को अपनाकर ना सिर्फ अपनी लाइफ को प्रोटेक्ट करें बल्कि अपने आसपास के लोगों के लिए भी एक बेहतर और सेफर एनवायरनमेंट क्रिएट करें। FM 107 आपके महफूज सफर की ख्वाहिश करता है।

0: Wake up! हर हफ्ते संडे टू थर्सडे सुबह 6 बजे से सिर्फ FM 107 पर दिल से देसी
1: सितारे उतरेंगे मैदान में अजमत की जुस्तजू में टीमें टकराएंगी टॉप पोजीशन के लिए और जोश ऐसा जो आखिरी सीटी तक थमने ना पाए दोहा बैंक स्टार्स लीग सिर्फ अलकास के इनक्रिप्टेड चैनल्स और शू प्लेटफॉर्म पर
2: आप सुन रहे हैं FM 107
3: दिल से देसी

0: Gen Z, Gen X, Gen Alpha, Millennials. ये सब महज टर्म्स नहीं हैं, ये अलग अलग ख्याल आदतें, इन सब को अगर एक दूसरे से मुखातिब कराया जाए तो क्या होगा?
1: तो ये जानने के लिए सुनिएगा जनरेशन टॉक्स। जनरेशन टॉक्स। अस्सलाम वालेकुम साथियों, खुशामदीद। आप सुन रहे हैं जनरेशन टॉक ऑन FM 107 और मैं हूँ आपकी होस्ट सफा। साथियों, हम में से कितने लोगों ने ये बात सुनी होगी, एक पॉपुलर कोट है ना, कहा जाता है कि लाइफ डजंट कम विद अ मैनुअल, इट कम्स विद अ मदर। लेकिन जनरेशन टॉक एक ऐसा प्लेटफॉर्म है साथियों, जहां हम मुख्तलिफ जनरेशन के लोगों को इकट्ठा करते हैं और उनसे गुफ्तगू करते हैं, उनका हिस्सा जानने के बारे में कि भाई उनकी लाइफ कैसी गुजरी और नेक्स्ट जो आ रहा है वो क्या उनको नजर आ रहा है। यहाँ बात होती है एक्सपीरियंस की, यहाँ बात होती है इनोवेशन की, बात होती है सोच की और नए नज़रिए की, चैलेंजेस की और ड्रीम्स की। हमारा मकसद ये नहीं है कि हम डिफरेंसेस को हाईलाइट करें, बल्कि उन डिफरेंसेस को समझना हमारा प्लेटफॉर्म का मकसद है। और आज का ये एपिसोड एक ऐसे टॉपिक के बारे में है, हमारा एपिसोड जिसके बारे में कहूँगी कि शायद ये आप कह लें कि हम सबके बचपन से जुड़ा हुआ है, लेकिन आज की फास्ट पेस्ड दुनिया में आहिस्ता आहिस्ता कहीं पीछे छूटता जा। यानी कि मैं बात आज करने लगी हूँ रेजिंग द नेक्स्ट जनरेशन, यानी कि द लॉस्ट आर्ट ऑफ सिंपल चाइल्डहुड। देखिए, आज अगर देखा जाए ना तो बच्चों के पास टॉयज बहुत ज्यादा है, टेक्नोलॉजी भी बहुत ज्यादा है, एक्टिविटीज बे इंतहा है, लेकिन क्या वो सिंपल सी खुशियां भी उतनी ही है उनकी जेब में जितनी ये बाकी सारी चीजें हैं? गली में खेलना, दोस्तों के साथ वक्त गुजारना, बोर्डरूम में क्रिएटिविटी एक्सप्लोर करना चीजों को, घर वालों के साथ बैठना और बिना किसी स्क्रीन टाइम के सिर्फ बच्चा होना, भाई ये वो चीजें हैं जिनके बारे में हम कह सकते हैं कि क्या आज के बचपन का हिस्सा हैं ये चीजें। और सबसे इंटरेस्टिंग बात ये है कि जब हम अपने बच्चों की परवरिश कर रहे होते हैं, जब उन्हें हम उनको सिखा रहे होते हैं चीज़ों का, तो कहीं ना कहीं हम अपना खोया हुआ बचपन भी दोबारा जीत ही लेते हैं, या यूं कह लें कि जी लेते हैं। अच्छा, आज इसी खूबसूरत और इम्पोर्टेंट टॉपिक पर हम बात करने वाले हैं और आज हमारे साथ मौजूद हैं राफिया फरूख चौहान। देखिए, राफिया जो हैं वो माशाल्लाह से मैरिड हैं और तीन बेटियों की मदर हैं, जिनमें से सबसे छोटी बेटी उनकी, मैं आपको बता दूं कि शी इज़ ओनली 1.5 ईयर्स ओल्ड। माशाल्लाह माशाल्लाह। अच्छा, माशाल्लाह से राफिया ने खुद बैचलर्स इन कॉमर्स किया हुआ है, लेकिन आज उनके लिए सबसे इम्पॉर्टेंट और चैलेंजिंग रोल पता है क्या है? शी इज़ अ होम मेकर, और उसको वो पूरी तरह से एक्सपीरियंस भी कर रही हैं और निभा भी रही हैं माशाल्लाह से। तो राफिया के लिए मदरहुड सिर्फ बच्चों की तरबियत का नाम नहीं है। मैंने जब इनसे पूछा ना कि भाई कैसा गुजर रहा है मदरहुड, तो उन्होंने कहा बच्चों की तरबियत नहीं होती इसके अंदर सिर्फ, बल्कि एक ऐसा सफर है जहां वो अपने बच्चों के साथ साथ वो चीजें भी दोबारा सीख रही हैं जो वक्त के साथ उन्हें खुद भूल गई हैं, और कुछ ना कुछ जो नया चल रहा है वो भी साथ साथ वो सीखती चली जा रही हैं, और अपने बच्चों के साथ वो अपना बचपन फिर से दोबारा जी रही हैं। तो भाई राफिया, जनरेशन टॉक में आपको बहुत बहुत खैर मकदम है। आप कैसी हैं पहले तो ये बताएं, ठीक ठाक हैं?
2: अस्सलाम वालेकुम, मेरी तरफ से पहले आपको बहुत
1: वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम। ये बताएं राफिया कि माशाल्लाह से अब मैंने जैसा कब बोला, अल्लाह ताला नजरे बद से बचाए, कि आपकी छोटी बेटी सिर्फ 1.5 साल की है।
2: जी,
1: तो भाई आप तो माशाल्लाह से फुल ऑन टिपी टोस पर होंगी अपने।
2: बिल्कुल बिल्कुल, बड़ी वाली के डिफरेंट टास्क हैं, छोटी वाली के डिफरेंट चीजें हैं करने के लिए, तो हर वक्त कुछ ना कुछ चल ही रहा होता है मेरे साथ। तो
1: मुझे माशाल्लाह से ये वो होता है जिनके माशाल्लाह से बच्चे छोटे हैं अभी और मल्टीपल बच्चे हैं उनके, तो मैं कहती हूँ क्या अम्मा जो हैं वो मल्टीपल जिंदगियां जी रही हैं और मल्टीपल माइंड रख के कैसे कैसे कोप अप करती हैं आप?
2: ये बहुत आपने अच्छा सवाल किया, ये एट टाइम्स बहुत डिफिकल्ट भी होता है, क्योंकि बड़े की कभी रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी एक तो डिफरेंट हो जाती हैं, काम भी डिफरेंट होते हैं, छोटे का डिफरेंट होता है। अब छोटे को समझाना करना बहुत मुश्किल होता है। अब जैसे मैं अपनी बड़ी वाली को फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बताती हूँ, काम करवा रही हूँ उसको, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हम काम कर रहे हैं, लेकिन अब छोटी वाले कोई चीज चाहिए तो वो रो रही है, वो फिर वो चीज चाहिए उस टाइम पे, लेकिन वो नहीं समझेगी कि मामा कितनी इंपॉर्टेंट कोई चीज करी है, वो मेरी बहन को कितना कोई इंपॉर्टेंट काम करवा रही है.
1: सही.
2: तो मतलब ये वाली चीजें जो है ना एट टाइम से कहते हैं कि आपको थोड़ा सा मुश्किल में डाल देते हैं, कहते हैं, लेकिन
1: ये
2: बाकी
1: काम अम्मा ही कर सकती हैं.
2: बिल्कुल जी, बिल्कुल बिल्कुल. मल्टी टास्किंग होती है कि कहते हैं कि उसको उसके मुताबिक चीज करवा के देना, कि कहते हैं बीच वाली जो है उसको उसके मुताबिक टास्क देना, बड़ी वाली को उसके मुताबिक टास्क देना, मतलब सबका एक मुझे करना पड़ता है, अगर सबको लेके बैठी हूँ तो मुझे सबका पैटर्न सेट करना पड़ता है.
1: सही सही सही, मल्टी टास्किंग करनी पड़ती है. अच्छा राफिया, आपने मुझे एक बड़ी मजे की बात बोली थी, बताई थी पहले अपने बारे में कि आप जो हैं, एवरीबॉडी हैज टू गो थ्रू अ फेज, और जब आप मदरहुड के फेज से गुजरी तो इट इज अ टास्क, इट इज चैलेंजिंग. तो आपने कहा कि जब आप अपने बच्चों के साथ जो ना अब अपना चाइल्डहुड वापस से रीलिव कर रही हैं, तो आपको क्या चीज इसमें सबसे ज्यादा खूबसूरत लग रही है, जो आप इतनी प्यारी बात बोल रही हैं कि आई एम रीलिविंग माय चाइल्डहुड.
2: देखें, पहली बात तो देखें, अब बीइंग अ गर्ल आपको भी पता ही, कहते हैं हमारे बचपन में शौक डॉल वाली चीजें, अब जब मेरे मैं बच्चों को जब टॉय शॉप पे जाती हूँ तो मुझे लगता है मैं ज्यादा उनसे ज्यादा एक्साइटेड होकर
1: हर चीज ले लो,
2: और मुझे इतनी अच्छी चीजें लग रही होती है, मतलब और मुझे वो एक चीज बहुत ही कहते हैं कि एक अट्रैक्ट करती है उनके साथ, मतलब उनको डिफरेंट चीजें लेके देना, फिर कपड़े बच्चों के ही कहते हैं,
1: ये बोले पर्टिकुलरली बच्चियों के कपड़े,
2: हाँ जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल
1: सही,
2: बच्चियों के कपड़े, उनकी मैचिंग, उनके शूज, वो सब चीजें, वो मुझे एक बहुत ज्यादा उसमें बहुत मुझे मजा आता है. और फिर उनके साथ छोटी छोटी चीजें करना, कुछ ड्रॉइंग्स बना लेना, कोई डिफरेंट
1: एक्टिविटीज करना आपके साथ, ठीक है,
2: बिल्कुल
1: ठीक है,
2: बिल्कुल.
1: अच्छा, अगर मैं आपसे पूछूं कि आपकी ऐसी कौन सी एक्टिविटी थी आपके टाइम पर, जो उस वक्त तो आप कितनी भी बड़ी ऑर्डिनरी सी है, बचपन में कुछ चीजें ऐसी थी हमें इतनी ज्यादा नहीं लग रही होती कि हम कहते हैं भाई ये तो ऑर्डिनरी सी चीज है, लेकिन आज जब याद करती है ना तो आप कहती हैं भाई वो बड़ी बड़ी स्पेशल चीज थी.
2: मैं आपको एक बात बताऊं, देखें अब आजकल लेकिन स्क्रीन टाइम तो है बच्चों के पास हर वक्त है मौजूद, सही. हमारे टाइम पे था जैसे डिज्नी की कोई मूवी आ रही है, हम लोग वो, हमारे लिए वो इतनी बड़ी बात होती थी कि हम लोग वो एक मूवी 2 आवर्स की मूवी हमने वॉच की है, तो मतलब वो हम लोग दूसरों को भी, मतलब दूसरे बच्चों को भी जाके, अच्छा
1: वो जो स्टोरीज चलती थी, हाँ वो जो ड्रामे और बच्चों की स्टोरीज वगैरह चलती थी, सही वो वाला
2: जी. नहीं अब वो तो एक चीज थी, लेकिन जैसे डिज्नी की कोई भी मूवी, मौलान एक जो बचपन की मुझे एक मूवी जो याद है, मैंने जो अपने भाइयों के साथ बहुत हम लोगों ने बहुत दफा वॉच, लेकिन वो हमारी एक टीचर ने हमें गिफ्ट की थी, और वो हम लोगों ने, मतलब हम लोग कोई मंथ में एक दफा वो मूवी देखते थे, लेकिन वो एक हमें है कि मतलब हमें इतना ज्यादा नहीं मिलता था स्क्रीन टाइम, लेकिन जब हमें मिलता था तो हम लोग उसकी एक तो कदर
1: करते थे,
2: और हमें मजा भी आता था, हम
1: सही.
2: वो चीज मुझे अभी तक याद है, मैं उस चीज को अभी भी एंजॉय करती हूँ, क्योंकि मतलब वो मुझे अभी तक मेरे जहन में है कि हम लोग ऐसे बैठ के, मैं मेरे भाई बैठ के, हम लोग आराम से एंजॉय कर रहे हैं बैठ के, हम लोग
1: जी बिल्कुल
2: ये नहीं है कि हर वक्त ही हमारे पास अवेलेबल.
1: हाँ हाँ हाँ. अच्छा एक और चीज, ये बात तो हो गई, ये बताएं जरा कि अगर मैं आपसे सवाल करूं कि बच्चे जो अभी के बच्चे हैं उनकी जेनरेशन में और आपके बचपन में क्या डिफरेंस आपको नजर आता है, इज देयर समथिंग विच इज मिसिंग, बिकॉज यू आर रेजिंग अ जेनरेशन, तो कुछ तो होगा ना ऐसा जो उनमें और आप में डिफर कर रहा है.
2: मिसिंग, अब मैं आपको बताऊं, मुझे जो चीज थोड़ी अफसोस जो मुझे होता है, जिस चीज का अफसोस होता है, इन बच्चों में इतना ये लोग ग्रेटफुल नहीं है, इनको माशाल्लाह हर चीज जो है वो बहुत पहले और बहुत आराम से मिल गई ये चीजें. हम लोगों के टाइम में हमें छोटी सी भी चीज मिलती थी तो हम लोग उसके लिए बहुत ज्यादा थैंकफुल भी होते थे और बहुत ज्यादा खुश होते थे, उस चीज को बहुत संभाल के और उस चीज को बहुत संभाल के रखते थे,
1: वैल्यू.
2: अब आज वैल्यू थी, मतलब अब आजकल इनके पास हर चीज मौजूद है, लेकिन ये लोग उसके लिए ग्रेटफुल नहीं, ये लोग थैंकफुल उस तरह से थैंकफुल नहीं है, मतलब ये चीज मुझे,
1: हम चूम चाट के रखते थे चीजों को,
2: बिल्कुल बिल्कुल बहुत संभाल के रखते थे बहुत ज्यादा. एक चीज मैं बहुत ज्यादा वो करती हूँ, कहते हैं कि मिस करती हूँ अपने बच्चों में, मतलब मैं वो नहीं देखती हूँ इतना कि अपनी चीज को संभाल के रखना, अपनी चीज को, मतलब मेरे
1: केयरलेस हो जाती हूँ
2: जी, मतलब वो मुझे चीज लेने के बाद मुझे ऐसा मुझे लगता है कि कहते हैं कि ये चीज इनके नजदीक शायद बहुत ज्यादा वैल्यू रखेगी, लेकिन नहीं, 2 दिन बाद वो चीज इधर उधर कहाँ होती है पता भी नहीं होता. ये चीज मुझे थोड़ी सी बॉदर करती है. और मतलब मैं अपने टाइम से और ये आज रिलेट करूँ, सिर्फ मेरे बच्चों की बात नहीं है, बहुत से बच्चे मैं पिछले गए बहुत से बच्चे देखूँ अगर, तो ये सेम चीज है. बच्चों को आजकल वैल्यू नहीं रही है. देखें सफा, उनको अभी आप एक चीज लेके देंगे, हफ्ते बाद उन्हें एक नई चीज चाहिए. मतलब हम हमारे टाइम में अगर आप सोचें तो हम लोग ऐसा होता था कि हमें हर हफ्ते कोई नई चीज मिल रही हो.
3: अच्छा इसमें इसमें जो है इस चीज में, ये जो आप एक मुझे फैक्ट बता रहे हैं, आई वुड कॉल इट अ फैक्ट, ये एक फैक्ट है आज की जनरेशन का कि हमें चाहिए, हमें हम इस चीज से बोर हो गए. क्योंकि ये देखिए द प्रॉब्लम इज, आई वुडन्ट से द प्रॉब्लम, द थिंग इज कि आज के दौर में ना हर चीज बहुत जल्दी जल्दी, एवरीथिंग इज टू मच ऑन द टोज. तो इनके शायद मूड स्पैन भी ऐसे ही बदलते रहते हैं जल्दी जल्दी, और इनको ना चीज़ों से दिल भी जल्दी जल्दी उड़ जाता है. तो क्या आपको लगता है कि इसके अंदर बच्चों का कसूर चल रहा है, सोसाइटी का कसूर चल रहा है, अम्मा अप्पा का कसूर चल रहा है, आपको क्या लगता है? बींग ऑन अ वेरी सीरियस एंड अ वेरी डीप नोट, आपको क्या लगता है? क्योंकि ये तो छोटे हैं भाई. अब जैसे मैं आपके बच्चों के बारे में बात करूं, आपकी बड़ी बेटी कितने साल की होगी?
2: मेरी बड़ी बेटी जो है वो एक 8 साल की है, एक 6 साल की, और छोटी मेरी 8 साल की.
3: सो माशाल्लाह माशाल्लाह दे आर स्टिल यंग. तो दिल पे हाथ रख के बताएं कि ये मामला कहाँ से बिगड़ता हुआ नजर आ रहा है कि ये जो बच्चे को देखें, क्योंकि बच्चा, हमने भी अपने बचपन में ऐसी चीजें की हैं कि हमारा दिल आता था हर चीज के ऊपर, लेकिन वो मुंह से निकलता नहीं था और हम उसके ऊपर जिद नहीं करते थे. बिकॉज देर वाज पता नहीं वो क्या था, वो अम्मा अब्बा का एहसास था, डर था, रिस्पेक्ट थी, क्या था कुछ नहीं बोल सकते अभी उसे. लेकिन आपको क्या लगता है कि आज के दौर में जो बच्चों की ये वाली जो फैक्टर आ रहा है, जो आप कह रही हैं कि दे वॉन्ट देयर हैंड्स ऑन एवरीथिंग एंड दे डोंट वैल्यू एनीथिंग, टू मच एक्सेस हो गया ना, तो ये किस कौन प्रॉब्लम कहाँ से, रूट कॉज क्या है इसकी?
2: देखिए मैं ऐसे तो ऐसे ब्लेम नहीं कर सकती हूँ, लेकिन थोड़ा सा जहाँ तक मुझे लगता है, मैं कमकल हो सकती हूँ, लेकिन थोड़ा सा इसमें पेरेंट्स का भी कसूर है. कैसे? क्योंकि पेरेंट्स का इस लिहाज से कसूर है कि बच्चा जो भी कह रहा है आप फौरन से मतलब प्यार में आके इस तरह सोचे समझे बस हर चीज लेते नहीं. अब यही बात है कि बच्चे जब स्कूल जाते हैं, अब मैं अगर अपनी बेटी को किसी चीज से मना कर रही हूँ, लेकिन बच्चे जब स्कूल जाते हैं, बच्चे उसके पास तो ये भी है
3: कंपैरिजन का दौर आ गया ना,
2: कंपैरिजन की कहते हैं. और फिर वो वाली चीज जो है, वो बच्चा जब घर आके आपको इस तरह कहता है तो आप भी फिर एक यू नो पीयर प्रेशर एक हो जाता है, मैं आके कहते हैं कि अच्छा आपके तो अच्छा क्या चीज है. मतलब एक चीज कोई स्टार्ट होती है क्लास में,

0: कर लेते हैं, वो सारी क्लास में वो चीज हो जाती है कि अच्छा ये हमें भी चाहिए, हमें भी चाहिए. कुछ पेरेंट्स, देखिए कुछ पेरेंट्स अफोर्ड कर सकते हैं, कुछ पेरेंट्स अफोर्ड नहीं कर सकते. हर एक की जेब इजाजत नहीं देती.
1: सही, सही, मैं बात
0: अब आज जी अब आजकल बच्चे जो हैं वो इस चीज को इतना समझते भी नहीं है. हम लोग आप खुद हमें पता होता था कि हमारे पेरेंट्स ने हमें एक चीज दे दी है तो हम लोगों ने अभी कोई एक दो महीने
1: साल
0: ने कुछ
1: नहीं बैग लेते थे, जूते लेते थे, पूरे साल गुजारना है.
0: जी बिल्कुल बिल्कुल ऐसा ही होता था. ऐसे आज देखे माशाल्लाह इन लोगों के पास मतलब 10-10 जूतों के पेयर
1: जी. सही सही सही. तो सामीन मैं चाहूंगी कि हम यहाँ पर एक छोटा सा ब्रेक लें. सुनते रहिए FM 107 पर जेनरेशन टॉक विद सफा.
2: जेन जी, जेन एक्स, जेन अल्फा, मिलेनियल्स, ये सब महज टर्म्स नहीं है, ये अलग अलग ख्याल आदतें. इन सब को अगर एक दूसरे से मुखातिब कराया जाए तो क्या होगा?
3: तो ये जानने के लिए सुनिएगा जनरेशन टॉक्स. जनरेशन टॉक्स.
1: एक और चीज, अगर मैं आपसे ये बात पूछूं कि भाई देखिए आजकल के बच्चों के पास इट्स प्रीटी ऑब्वियस, आजकल के बच्चों के पास एक्सेस टू टॉयज हैं, टेक्नोलॉजी है, एक्टिविटीज हैं, एंटरटेनमेंट की बहुत ज्यादा ऑप्शंस हैं इन शॉर्ट, तो अपने चाइल्डहुड में और आपके बच्चों के चाइल्डहुड में आपको क्या चीज बहुत सिमिलर नजर आती है? अलग नहीं, चले AI और ये टेक्नोलॉजी तो ये हमें दूर से नजर आ रही है कि हमारे टाइम पर नहीं थी, लेकिन सिमिलैरिटी जॉयज में जो सिमिलैरिटी वो क्या नजर आती है
0: अपने बच्चों के चाइल्डहुड में? मैं अपने कंपैरिजन अपने बच्चों में तो एक चीज जो अल्हम्दुलिल्लाह मैं कह सकती हूँ कि मेरे बच्चे एक इनमें फिजिकल एक्टिविटी का बहुत शौक है. इनको फिजिकल बट ये नहीं है कि कहते हैं कि इन लोगों को हर वक्त बैठ के स्क्रीन के सामने बैठना और वो सब चीजें. इन ये चीज पे मैं बहुत अल्लाह का शुक्र अदा करती हूँ कि इनको इस चीज का शौक है कि हम किसी स्पोर्ट्स एक्टिविटी में हों या खेलें और इस तरह करें. ये नहीं है कि हर वक्त हम लोग स्क्रीन के सामने ही बैठे रहे.
1: सही.
0: ये वाली चीज मुझे जी, क्योंकि ये मुझे भी साइकिलिंग का खेलने का, मैं अभी अपने भाइयों के साथ खेलना और मतलब स्कूल में भी स्पोर्ट्स में काफी एक्टिव थी, तो इसी तरह मेरे बच्चों का ये मुझे एक सिमिलैरिटी अपने बच्चों में और मुझमें
1: आपके जो बच्चे हैं वो आप उनके साथ इन्वॉल्व रहती हैं इन एक्टिविटीज में?
0: जी बिल्कुल. अगर कहीं मतलब कहीं बाहर है, कहीं किसी सेंटर में लेकर जाना या कुछ भी है, उस तरह से भी इन्वॉल्व होती हूँ. बाहर भी खेल रहे हैं तब भी देख रही हूँ, मतलब घर में भी है तो मतलब हर वक्त नजरों के सामने ही होता है.
1: सही. अच्छा आजकल ना ये भी बड़ा एक ट्रेंड आया हुआ है कि भाई बच्चे घर में बैठे वीडियो गेम्स खेल रहे हैं. एक दौर वो भी था कि हाँ गर्मी की शिद्दत होती है मुझे पता है, लेकिन मुझे ये भी पता है कि जब बच्चे छोटे होते हैं ना तो उनको गर्मी सर्दी कुछ एहसास नहीं होता. हम भी बहुत खेले नेबरहुड्स में, गलियों में खेले हैं, दोस्तों के साथ नए नए दोस्त बनाए हैं. और आप क्या लगता है कि पहले बच्चे अक्सर औकात नेबरहुड्स में फ्रीली खेला करते थे, घरों में जाते थे, नेचुरली फ्रेंडशिप उनकी डेवलप होती दूसरे बच्चों से, क्या सेफ्टी कंसर्न्स और मॉडर्न लाइफस्टाइल ने चाइल्डहुड फ्रीडम को चेंज कर दिया?
0: जी ये तो आया है, ये तो एक चीज आई है. आप खुद देखेंगे कहते हैं कि सोसाइटी में क्या कुछ हो रहा है.
1: सही.
0: और आप कहते हैं कि बच्चों को की प्रोटेक्शन के लिए पेरेंट्स ही कहते हैं अब अलाउ नहीं करते किसी घर जाना या करना. पहले हम लोग तो अलाउ होते थे, हम लोग तो अपने नेबर्स में, मुझे जितनी जितनी याद है मेरे नेबर्स में मेरी फ्रेंड्स थी, हम लोग जाते थे, वो हमारे घर आती थी, मैं उनके घर जाती थी, हम लोग खेलते थे. लेकिन अब जो है वो माहौल जो है वो डिफरेंट हो गया है, बहुत ज्यादा चेंजेस आ गए हैं. अब बच्चों को इस तरह भेजना सेफ नहीं है.
1: सही.
0: अब पेरेंट्स जो है जी
1: नजर रखनी चाहिए.
0: जी नजर रखनी चाहिए. और मेरे बच्चे भी जाते हैं करते हैं, लेकिन मैं अगर मैं साथ हूँ.
1: सही सही.
0: जी
1: अच्छा एक चीज मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि माशाल्लाह से आपके बच्चे हैं छोटे वाले बच्चे हैं, और ये बच्चे जो ना ये टिपी टोस पे रखते हैं, मुझे पता है ये एज जो है ना इसके अंदर खासतौर पर जो हमारी 8-9 की जो एज होती है इसके अंदर, मुझे याद है मैंने डॉक्टर से पूछा था तो ये वो कहते हैं कि 6-8 की जो एज होती है ना इसको हम क्वेश्चन मार्क एज कहते हैं. इसके अंदर एक बच्चे के अंदर इतनी कैपेसिटी होती है कि वो इतने सवाल करता है, दे कैन लिटरली थ्रो मोर देन 3,000 क्वेश्चन एट यू एंड दे नीड अ प्रॉपर आंसर फॉर इट. तो आपके साथ ऐसा होता है कि आपके बच्चे रैपिड फायर क्वेश्चन आपके साथ करते हैं?
0: आप अभी बात करें 6-8 years की, आप मेरी बेटी छोटी 1.5 साल की, वो मुझसे हर जगह में what this पूछती है, तो आप बात कर रहे हैं.

0: बड़े हैवी क्वेश्चंस कर जाते हैं कभी कभी तो.
1: हाँ जी
0: माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह
1: ये तो है. ये
0: आप
1: तो
0: कैसे
1: है.
0: आप कैसे मतलब कुछ पेरेंट्स ऐसे होते हैं ना बच्चों के हाथ मोबाइल पकड़ा दिया, बच्चों के हाथ में कोई और चीज दे दी, डिस्ट्रैक्ट कर दिया क्योंकि उनके अपने पास जवाब नहीं है तो डिस्ट्रैक्ट कर दो इन्हें. आप इस चीज पे इस डिस्ट्रैक्शन पे बिलीव करती हैं? ये आपको क्या लगता है कि आजकल के बच्चे बहुत ज्यादा, कुछ लोग कहते हैं ना नहीं भाई हमारा बच्चा जो है ना बहुत ज्यादा हाइपर एक्टिव है, उनको पता भी नहीं होगा डायग्नोसिस नहीं होगा उनके पास लेकिन होंगे बस ये हाइपर एक्टिव बच्चा है बहुत ज्यादा सवाल करता है तो आप इरिटेट हो जाती हैं.
1: अगर बच्चे को जब तक सैटिस्फैक्ट्री आंसर नहीं मिलेगा ना, अगर कमिश्नर कोई बच्चा को सवाल कर रहा है और मैं उसको जब तक उसके नजदीक उसका वो सैटिस्फैक्ट्री आंसर नहीं होगा ना, वो कभी भी उस सवाल को वहां पे खत्म नहीं करेगा. वो किसी ना किसी और से जाकर जरूर वो सवाल पूछेगा. वो बच्चा जरूर ही कहते हैं अपने मतलब अपने आप को सैटिस्फाई करने के लिए आंसर जो उसको चाहिए, जो उसको अपील करे वो आंसर वो लेने की कोशिश करेगा वो बच्चा.
0: सही,
1: तो
0: सही.
1: अब ये है कि इन बच्चों के पास आजकल नॉलेज जो है वो ज्यादा है. हम लोग ये बात, ये चेंज है हमारे बचपन में और इनके बचपन में. हम लोग इतने ज्यादा क्वेश्चन नहीं करते थे. हमारे पेरेंट्स हमें एक दफा कहते थे अच्छा मतलब कुछ भी हम लोग सवाल किए वो उन्होंने हमें लिमिटेड सा भी आंसर दिया ना, हम उस पे
0: हम अग्री हो जाते थे क्योंकि पता है ऐसी बात तो डांट पिटेगी.
1: जी बिल्कुल उससे आगे हम नहीं पूछते थे लेकिन ये बच्चे इनके आगे से आगे सवाल होते हैं और अगर आप नहीं सही से दोगे तो ये चुप नहीं करेंगे, ये आपसे आगे करेंगे, आपसे आर्ग्यू भी करेंगे और आपसे आगे सवाल भी करेंगे.
0: सही.
1: तो ये आपके इस दौर में मुझे लगता है थोड़ा सा आपको इंफॉर्मेटिव होना ज्यादा जरूरी है. जी बिल्कुल, आपकी इंफॉर्मेशन थोड़ी ज्यादा होनी चाहिए, अप टू डेट होनी चाहिए आपकी इन्फॉर्मेशन.
0: मतलब वही वाली बात आती है कि यू आर ऑल्सो लर्निंग. अब जैसे बच्चों की किताबें होती हैं उसके अंदर नई नई चीजें आ रही हैं तो वो अम्मा अब्बा के लिए पढ़ना जरूरी है भाई.
1: बिल्कुल, लेकिन अब वही जैसे अब मेरी बड़ी बेटी है 8 years की जो है अब उसकी वो चीजें आ रही हैं जो मैंने की हुई लेकिन फिर भी मुझे दोबारा से उनको थोड़ा सा रिवाइज करना पड़ता है, फिर उसको समझाना पड़ता है तो मैं वो वापस सब चीजें
0: हमें पढ़ाया गया था भाई देयर आर 9 प्लैनेट्स इन द सोलर सिस्टम, फिर बाद में जाके अब ये है कि 8 है. और अच्छा मजे की बात ये 8 है तो इनको ये भी बताया जा रहा है कि वो जो 9th प्लैनेट था वो इसके अंदर सेटिस्फैक्ट्री कंडीशन में नहीं था कि उसको एक प्लैनेट प्रॉपर करार दिया जाए ये वो, तो वो इन्हीं की बुक से हमें सीखने को मिल रहा है.
1: बिल्कुल जी बिल्कुल. अब हम लोगों ने तो बचपन से 9
0: हमने 9 लाइन पढ़े थे.
1: बिल्कुल अब देखें हम चेंज के पास.
0: सही. अच्छा आपने कहा कि जो है ना आपने अपने बच्चों के साथ ना वो चीजें दोबारा सीख रही हैं अभी जो आप वक्त के साथ भूल चुकी थी, तो कोई ऐसी चीज जो आपने भी रिसेंटली फिर से दोबारा सीखी हो?
1: अब आप कहेंगे मैं सीरियसली मैथ
0: मैथ्स. अच्छा ये मेरा भी एक इशू है. आई विल बी वेरी ऑनेस्ट टू यू, ये मेरा भी एक इशू है मैथ्स.
1: I am learning again the fractions for her, how to explain it to her. मैं उसको किस तरह से explain करूँ, easiest way में किस तरह से मैं उसको explain करूँ. तो वो fractions आजकल मेरी, मैं खुद दोबारा से
0: class ले रही हूँ fractions की. double degree होनी चाहिए माँओं के पास, double degree.
1: तो वो मैं कि मैं उसको कितना कितने easy way में मैं उसको explain कर सकती हूँ वो चीज़, तो मैं अब आजकल वो learn कर रही हूँ.
0: But the fact is कि जब आप बच्चों को school से उठाते हो या बच्चे जब school से आते हैं तो उनसे पूछा जाए हाँ भाई आज का दिन कैसा गुजरा, टेबल पे बैठे हुए हो, खाना खा रहे हो, हाँ भाई खाना कैसा लगा, अच्छा भाई मोबाइल साइड पे रखो, अच्छा भाई तुम बताओ तुम्हारी किसी से लड़ाई तो नहीं स्कूल में, अच्छा टीचर ने आज क्या कहा, अच्छा फलाना टेस्ट हुआ था कैसा गया.
1: बिल्कुल. और पता है बच्चे बताना भी चाहते हैं, बच्चे बताना चाहते हैं, कहते हैं कि उनको कोई चाहिए होता है कि उनकी वो बात सुने.
0: भाई उनके पास बहुत कुछ होता है बोलने को,
1: बोलने के लिए बस वही. लेकिन आजकल का दौर भी इतना फास्ट हो गया, हमारे भी इतने काम है कि हम लोगों के पास भी सुकून से थोड़ी देर बैठ के बात करना भी मुश्किल हो जाता है, कभी कभी बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता है. लेकिन उनको बतानी होती है, या आप बिल्कुल सही है, उनको बताना होता है कैसे हमारे स्कूल में क्या हुआ, किसके साथ हमारी दोस्ती हुई, हमने क्या किया, सब चीजें मतलब उनको ये बतानी होती है चीजें. माँ को नहीं तो मतलब फादर को उनका होता है, ये कहते हैं कोई उन सुनने वाला उनके पास हो.
0: सही सही. अच्छा भाई राफे हमारे पास ना टाइम बहुत कम है लेकिन मैं जाते जाते ना आपसे एक दो सवाल और पूछना चाहूँगी. दिस इज़ वेरी क्लोज टू माय हार्ट, तभी मैं आपसे पर्सनल लेवल पर ही सवाल पूछ रही हूँ कि आप माशाल्लाह से एज अ मदर आप जो है वो दूसरी मदर्स को जो कि बेटियों की

0: फरमाए हैं उनको कोई भी कुछ भी ऐसी कोई एडवाइस, कोई ऐसी अच्छी बात, दो से तीन बातें, कुछ ऐसी चीज़ें जो आपकी बच्चियों के बचपन को, उनकी टीन एज को, उनकी यंग एज को प्रिजर्व करने में मदद कर सकें, कुछ ऐसी बातें बताना चाहेंगी?
1: पहले तो मैं ये वाली चीज़ कहती हूँ कि आप बस पेरेंट्स को ये चाहिए, स्पेशली मदर को, अगर फादर अपने काम में मसरूफ हैं या कुछ भी किसी चीज़ में बिजी हैं, वो मदर को चाहिए कि अपने बच्चों को अपनी आंखों से दूर नहीं करना, किसी पे ट्रस्ट नहीं करना.
0: सही.
1: नो मैटर व्हाट,
0: आई डोंट एग्री विद यू.
1: जी, पेरेंट्स के अलावा कोई भी नहीं.
0: सही
1: होता ये वाली चीज़ ही कहते हैं कि आपने कभी भी किसी पे ट्रस्ट नहीं करना, अपने बच्चों को अपने आप के
0: फर्स्ट रूल, देयर इज नो सेकंड रूल, बस यही रूल है.
1: बिल्कुल.
0: सही.
1: जी बिल्कुल.
0: सही.
1: जी बिल्कुल. ये वाली चीज है ही नहीं, और ये वाली चीज हमने अपने बच्चों के साथ ही रोल बनाया. जहाँ पे अगर मामा या बाबा में से कोई चाहेगा तो आप

0: मैक्सिमम जितना हो सके आप उनके साथ अपना टाइम स्पेंड करने की कोशिश करें, उनके साथ बातें करने की कोशिश करें, क्योंकि बेटियों का माँ के साथ एक अलग ही बॉन्ड होता है.
1: सही.
0: अब जैसे हम लोगों का भी अपनी माँ के साथ एक अलग बॉन्ड होता है, मतलब उनके साथ बॉन्ड आपका स्ट्रांग होना चाहिए कि वो किसी और के पास नहीं जाए, वो कुछ भी उन्हें प्रॉब्लम हो या कुछ भी हो वो सीधा आपके पास आए, आपको बताएं. सबसे पहले उनके जहन में कौन आए, उनकी मदर आए कि उनको बताना है सबसे पहले.
1: और लिस्ट लंबी है लेकिन लेकिन ये दो मेन चीजें, आज के दौर में मैं तो कहती हूँ कि इट्स नॉट रिगार्डिंग द जेंडर, इट इज आपके बच्चे. आप बिल्कुल ऐसे रखें जैसे हम कहते हैं ना वो मुर्गी परों में अपने रखती है अपने चूजों को, बिल्कुल वैसे रखें. तो दैट इज हाँ, उन्हें आप माइंडसेट ऐसा दें और कॉन्फिडेंस इतना दें कि उनको पता हो कि उनके साथ कौन खड़ा है, उनके पेरेंट्स खड़े हैं, ये कॉन्फिडेंस उन्हें दें. उन्हें डराए नहीं दुनिया से, उन्हें नोन कीप देम अपडेटेड विद द वर्ल्ड.
0: हाँ जी बिल्कुल, जी बिल्कुल, नहीं डराने का नहीं जी, आप बिल्कुल सही बात कह रही हैं. कहते हैं उनको पता होना चाहिए कि हमारे पीछे कोई खड़ा है, हमारे साथ कोई है, हमारे साथ कोई है.
1: डिसीजन मेकिंग होनी चाहिए बच्चों के अंदर, रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए, और वो तभी आती है जब पेरेंट्स उन्हें एक स्पेस देते हैं,
0: थोड़ा सा
1: स्पेस देते हैं. ये नहीं कि आप उनके ऊपर बिल्कुल मुसल्लत हो जाओ.
0: ये भी बिल्कुल बिल्कुल सही, बिल्कुल सही. उनको उनके उनके फैसले खुद करने का होना चाहिए, उनकी राय लेनी चाहिए और उनको उनके फैसले खुद करने का इख्तियार होना चाहिए. ये आप बिल्कुल सही बात कह रही हैं, बिल्कुल सही.
1: तो भाई जितने भी हमारे लिसनर्स हैं, आज की गुफ्तगू से एक बात तो बिल्कुल क्लियर हो जाती है कि बचपन को हमेशा महंगी चीजों से, लेटेस्ट गैजेट से और बिजी स्केड्यूल्स की जरूरत नहीं होती. हमारे बचपन को, हमारे बच्चों के बचपन को, कभी कभी बचपन की सबसे खूबसूरत यादें वही होती हैं जो हमारे वालिदैन का, हमारे भाई बहनों का टाइम होता है, जो सिंपल होती हैं. क्योंकि लाइफ के साथ वक्त, दोस्तों के साथ खेलना, खाने खाना, बातें सुनाना, हंसना, कहके मारना, सीखना, और वो भी बिना किसी प्रेशर के, ये सबसे खूबसूरत चीज होती है कि नहीं राफिया?
0: बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल सही आप बात कह रही हैं, ये बात बिल्कुल हकीकत है. बचपन जो है कि कहते हैं कि किसी भी कोई बड़ी और एक्सपेंसिव चीज का मोहताज नहीं है बचपन में. वैसे आपको छोटी सी भी चीज ही कहते हैं, कुछ भी आपको खुश कर देती है. तो ये हम इन चीजों को अगर हम कहेंगे एक्सपेंसिव चीज हम बच्चे को लेकर दें तो वो उसको खुश करेगी नहीं. आपने देखे बच्चे को, अब देखें छोटा बच्चा जो होता है उसको आप कितने एक्सपेंसिव खिलौने लेते, नहीं वो कोई छोटे से बैलून से या कोई भी छोटी किसी और घर की किसी चीज से खुश हो जाएगा और वो अपना कोई महंगा खिलौना जो है वो खेलेगा. तो बच्चे जो है वो बच्चों को बड़ी बड़ी चीजें या वो सब चीजों की जरूरत नहीं होती है, बच्चे सब चीजों में खुश हो जाते हैं. लेकिन सब सोसाइटी थोड़ा सा इस तरफ जा रही है, लेकर जा रही है.
1: नहीं इंशाल्लाह इंशाल्लाह जो पास ऑन करेंगे हम बच्चों को, बच्चे वही सीखेंगे. राफिया आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने अपना एक्सपीरियंस हमारे साथ शेयर किया और हमें ये याद दिलाया कि पेरेंटिंग एक सफ़र है, एक जर्नी है. जैसा कि मैंने शुरू में कहा था कि वी ऑल डोंट कम विद अ मैनुअल, वी कम विद अ मदर. तो हमारी अम्माएं जब तक इंशाल्लाह इंशाल्लाह हमारी सोसाइटी की मदर्स, आप जैसी मदर्स हैं जो कि चीज़ों को समझती हैं और सब्र और तहम्मुल से चल रही हैं, तो अल्हम्दुलिल्लाह वी विल बिल्ड अ बेटर सोसाइटी इंशाल्लाह इंशाल्लाह. और भाई पेरेंट्स के लिए शायद आज का सबसे खूबसूरत मैसेज यही है कि बच्चों को परफेक्ट चाइल्डहुड देने की जरूरत नहीं है, उन्हें यादगार चाइल्डहुड देने की जरूरत है. और उन्हें मोहब्बत, लर्निंग, ऑनेस्टी और सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ ग्रो करने का मौका दें, उन्हें कॉन्फिडेंट बनाएं, बच्चों को इन्फॉर्मेशन दें, उनके साथ बैठकर इन्फॉर्मेशन लें, खुद भी सीखें, उन्हें भी सिखाएं और एक दूसरे को बैकअप देते रहें. राफिया अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा और हमारे तमाम लिसनर्स को मैं बताती चलूं कि आप सुन रहे थे सफा के साथ जनरेशन टॉक ऑन FM 107. तो भाई अगली बार आपसे अगले टॉपिक पर अगले एपिसोड में मुलाकात होगी. तब तक के लिए आपको याद दिला दूं कि आप हमें फॉलो कर सकते हैं एट आवर सोशल मीडिया हैंडल विच इज @FM107 Qatar, और चाहे तो मैसेज भी भेज सकते हैं अपनी कहानी का जो कि है मैसेज नंबर 666-22107 पर. और साथियों याद रखिए जनरेशन्स अलग हो सकती हैं लेकिन एक दूसरे को समझने की ज़रूरत हर जनरेशन को होती है. मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए सफ़ा को और हमारे साउंड डिज़ाइनर शकीब अहमद को दीजिए इजाज़त. अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा, एक नए पर्सपेक्टिव के साथ जीने की कोशिश करें और सुनते रहें FM 107 दिल से देसी।

0: FM 107 पर अपना बिजनेस एडवर्टाइज करने के लिए आज ही राबता करें, आज ही राबता करें हमारी कतर मीडिया कॉरपोरेशन की मार्केटिंग टीम से। कॉल करें 4488806 पर या ईमेल करें marketing@qmc.qa।
1: आपने सुना हमें ऑन एयर, नाउ फॉलो अस ऑन फेसबुक एंड इंस्टाग्राम @FM107 कतर। दिल से देसी।
2: वक्त रुका नहीं है, वो तो नए रास्ते बना रहा है। क्या आप तैयार हैं उस कल के लिए जो आज शुरू हो चुका है? पेश करते हैं नेक्स्ट जेन, नेक्स्ट जेन आरजे सफा और आरजे अमिता के साथ एक ऐसा सफर जो है आपकी क्रिएटिविटी टेक्नो

0: दोस्तों, रात को बिना लाइट के गाड़ी चलाना कानून की खिलाफ वर्जी है। ट्रैफिक लॉ के आर्टिकल नंबर 70 के मुताबिक रात के वक्त अगर आप गाड़ी की हेडलाइट्स ऑन किए बगैर ड्राइव करते हैं तो ये ना सिर्फ एक ट्रैफिक वायोलेशन है बल्कि किसी की जान के लिए भी खतरा बन सकता है। रात के अंधेरे में दूसरी गाड़ियों, पेडेस्ट्रियंस और ऑब्स्टिकल्स को देखना मुश्किल होता है। हेडलाइट्स ऑन करने से ना सिर्फ आपको रास्ता बेहतर दिखाई देता है बल्कि दूसरे लोग भी आपकी गाड़ी को देख सकते हैं। हमेशा याद रखें, रात को गाड़ी चलाने से पहले लाइट्स चेक करें। बिला जरूरत हाई बीम का इस्तेमाल करना भी गलत है। हाई बीम सिर्फ उन जगहों पर इस्तेमाल करें जहां रोशनी कम हो और सामने से कोई आ ना रहा हो। अपनी और दूसरों की जिंदगी की हिफाजत का ख्याल करें और ड्राइविंग में एहतियात बरतें। FM 107 आपकी और आपकी फैमिलीज की हिफाजत की ख्वाहिश करता है। कहते हैं जिंदगी एक रेस है, लेकिन क्या आप इस रेस में भागने के लिए तैयार हैं?
1: आपका करियर सिर्फ एक जॉब नहीं, आपके फ्यूचर की डायरेक्शन है। तो फिर सवाल ये है कि आप किस डायरेक्शन में जा रहे हैं?
0: नए करियर्स, फ्यूचर स्किल्स, चेंजिंग जॉब मार्केट और वो अपॉर्चुनिटीज जो आपके मुस्तकबिल को नई राह दे सकती हैं। सुनिए प्रोग्राम फ्यूचर करियर आरजे महवेश खान के साथ हर मंडे शाम 7:15 से ओनली ऑन FM 107। अपने करियर का अगला कदम सोच समझ कर उठाइए।
2: आप सुन रहे हैं FM 107
3: दिल से देसी।

FM 107 पर अपना बिजनेस एडवर्टाइज करने के लिए आज ही राबता करें, आज ही राबता करें हमारी कतर मीडिया कॉरपोरेशन की मार्केटिंग टीम से। कॉल करें 448-88-8806 पर या ईमेल करें marketing@qmc.qa।

अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप सुन रहे हैं एफएम 107 और स्पोर्ट्स हाईलाइट के साथ, मैं हूं आपका होस्ट मोहम्मद अमीन। दोस्तों, फुटबॉल में अगर माराडोना को जीनियस कहा जाता है, टेनिस में रॉजर फेडरर को आर्टिस्ट, तो शतरंज की दुनिया में एक नाम ऐसा है जिन्हें अक्सर शतरंज का बादशाह कहा जाता है। यहां दोस्तों, रशिया के गैरी कास्पारोव। कास्पारोव सिर्फ एक ग्रेट शतरंज खिलाड़ी नहीं थे, वो एक ऐसे कॉम्पिटिटर थे जो अपने ओपोनेंट को बोर्ड पर ही नहीं बल्कि जहनी तौर पर भी चैलेंज करते थे। हाँ, मैंने ये कहा कि वो थे, आज भी गैरी कास्पारोव चेस खेलते हैं। I mean, there is no retirement for any chess player. 1963 में बाकू में पैदा होने वाले कास्पारोव ने बहुत छोटी सी उम्र में अपनी एक्स्ट्राऑर्डिनरी टैलेंट का सबूत देना शुरू कर दिया था। सिर्फ 22 साल की उम्र में 1985 में, to be very precise, सन 1985 में वो दुनिया के सबसे कम उम्र वर्ल्ड चैंपियन

चैंपियन बन गए और फिर उन्होंने तकरीबन दो डेकेड्स तक वर्ल्ड चेस पर अपनी हुकूमत कायम रखी। अजय बताना चलूं कि 1985 में उन्होंने हराया किसको था, उन्होंने हराया था उस वक्त के अनदर लेजेंडरी सोवियत यूनियन के टॉप वर्ल्ड के टॉप चेस प्लेयर अनातोली कारपोव को। लेकिन सवाल ये है कि कास्पारोव इतने अच्छे क्यों थे या क्यों हैं? उनकी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ उनकी कैलकुलेशन, वो चेस बोर्ड पर बहुत आगे तक सोच सकते थे। जहां आम खिलाड़ी एक या दो मूव्स आगे देखता है, कास्पारोव कई पॉसिबिलिटीज को एक साथ कैलकुलेट करने की कोशिश करते थे। लेकिन सब कैलकुलेशन ही सब कुछ नहीं होता है। कास्पारोव की ओपनिंग प्रिपरेशन लेजेंडरी थी, वो अपने ओपोनेंट्स के गेम्स का गहरा जो इरो फोकस था उसको नोट करते थे, उनकी वीकनेसेस ढूंढते और फिर मैच के लिए स्पेसिफिक स्ट्रेटजीज तैयार करते। मतलब एक शार्प आई, मतलब बहुत ही तीखी नजर से अपने ओपोनेंट को देखना, उनके मूव्स को नोट करना, मतलब एक चेस खिलाड़ी के अंदर ये सलाहियत बहुत कम खिलाड़ियों में हमने देखा है और वहां पे एक्सेप्शनल वाज गैरी कास्पारोव। आज के कंप्यूटर असिस्टेड चेस के दौर में जो चीज नॉर्मल लगती है, कास्पारोव के जमाने में उस लेवल की प्रिपरेशन बहुत एक्स्ट्रॉर्डिनरी समझी जाती थी। और फिर आती है उनकी एग्रेसिव स्टाइल। कास्पारोव को सिर्फ चेस खेलना पसंद नहीं था, वो पोजीशन को कॉम्प्लिकेटेड बनाते, प्रेशर क्रिएट करते और ओपोनेंट को डिफिकल्ट डिसीजंस लेने पर मजबूर कर देते। उनकी आंखों में वो कॉन्फिडेंस नजर आता था कि वो मुश्किल पोजीशन में भी कुछ ना कुछ नया निकाल लेंगे। लेकिन कास्पारोव की सबसे मशहूर राइवलरी थी अनातोली कारपोव के साथ, जिसके बारे में आपको बताया था। 1985 में उनको हराने के बाद ही बिकेम द यंगेस्ट वर्ल्ड चैंपियन। कास्पारोव और कारपोव बिल्कुल मुख्तलिफ स्टाइल्स के खिलाड़ी थे। कारपोव को पोजिशनल जीनियस कहा जाता था, वो धीरे धीरे ओपोनेंट की पोजीशन को स्क्वीज करते और छोटी सी वीकनेस का फायदा उठाते। दूसरी तरफ कास्पारोव एनर्जी और एग्रेशन लेकर आते। 1984 में दोनों के दरमियान वर्ल्ड चैंपियनशिप मैच शुरू हुआ। मैच इतना लंबा और इंटेंस हो गया कि आखिरकार ऑथोरिटीज ने इसे रोक दिया। अगले साल यानी 1985 में दोनों दोबारा आमने सामने आए और कास्पारोव ने कारपोव को हराकर वर्ल्ड चैंपियन का टाइटल हासिल कर लिया। लेकिन कहानी यहां खत्म नहीं होती है। कारपोव और कास्पारोव ने वर्ल्ड चैंपियनशिप के लिए कई बार मुकाबला किया। हर मैच में स्ट्रेटजी, साइकोलॉजी और नर्व्स का जबरदस्त इम्तिहान होता था। ये राइवलरी चेस हिस्ट्री के सबसे लेजेंडरी राइवलरीज में शुमार होती है। फिर 1990s में कास्पारोव का सामना हुआ एक और जबरदस्त ओपोनेंट के साथ, और वो थे और हैं इंडिया के विश्वनाथन आनंद। आनंद की स्पीड, प्रिपरेशन और टैक्टिकल ब्रिलियंस ने कास्पारोव के लिए एक नया चैलेंज पैदा किया। 1995 में दोनों ने वर्ल्ड चैंपियनशिप मैच खेला। कास्पारोव ने मैच जीता, लेकिन आनंद ने दुनिया को दिखा दिया कि इंडिया से एक ऐसा चेस सुपरस्टार आ चुका है जो वर्ल्ड चैंपियन को भी सीरियस चैलेंज दे सकता है। और दोस्तों, यही कास्पारोव की ग्रेटनेस का एक और रीजन है। वो सिर्फ अपने जमाने के प्लेयर से नहीं लड़ते थे, यानी न चेस करते थे या नो राइवलरी रखते थे, वो चेस को इवॉल्व करने पर मजबूर करते थे। आज के मॉडर्न चेस में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, पावरफुल इंजन्स और ऑनलाइन डेटाबेसेस ने गेम को बिल्कुल बदल दिया है, लेकिन कास्पारोव की कैलकुलेशन, प्रिपरेशन, अटैकिंग माइंडसेट और साइकोलॉजिकल स्ट्रेंथ आज भी चेस खिलाड़ियों के लिए एक इंस्पिरेशन है। शायद इसीलिए गैरी कास्पारोव को सिर्फ एक वर्ल्ड चैंपियन कहना कम होगा, वो एक चेस रेवोल्यूशनरी थे। उन्होंने हमें दिखाया कि शतरंज सिर्फ 64 खानों और 32 मोहरों का गेम नहीं, ये इमेजिनेशन, डिसिप्लिन, पेशेंस, कैलकुलेशन और सबसे बढ़कर ह्यूमन माइंड की पावर का इम्तिहान है। तो दोस्तों, उम्मीद है आपको हमारा आज का ये स्पोर्ट्स सेगमेंट पसंद आया होगा। अगली बार एक नए लेजेंड की कहानी के साथ वापस आएंगे। तब तक के लिए मुझे यानी मोहम्मद अमीन और साउंड डिजाइनर नदीम अंसारी को दीजिए इजाजत।
खुश रहें, सेहतमंद रहें और हमेशा अपना जज्बा जिंदा रखें। फी अमानिल्लाह।

0: आपने सुना हमें ऑन एयर, नाउ फॉलो अस ऑन फेसबुक एंड इंस्टाग्राम एट FM 107 कतर। दिल से देसी।
1: सामईन किराम, जिस तरह अहकाम खुदाबंदी से बेनियाजी नहीं हो सकती, उसी तरह उस्वे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनकी सुन्नत से बेपरवाही इख्तियार नहीं की जा सकती। सुन्नत रसूलुल्लाह की इताअत भी ऐसी ही जरूरी है जैसी किताबुल्लाह की, इसलिए कि दोनों की पैरवी हुक्म इलाही की पैरवी है। सामीने किराम, इन्हीं हिदायत की रोशनी में पेश किया जा रहा है प्रोग्राम रूह परवर सुन्नतें। इस प्रोग्राम के हर किस्त में हम एक सुन्नत नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र करेंगे, उसके मानी पर गौर करेंगे और ये देखेंगे कि किस तरह ये सुन्नत हमारी रोजमर्रा जिंदगी में रोशनी और सुकून का जरिया बन सकती है। सामिन किराम, इंसान जब अकेला होता है तो अपने हालात के मुताबिक बहुत से फैसले कर सकता है। वो चाहे तो ज्यादा देर इबादत करे, ज्यादा तिलावत करे, ज्यादा वक्त लगाए, लेकिन जब उसके साथ है दूसरे लोग भी वाबस्ता हो जाएं तो मामला बदल जाता है। अब सवाल सिर्फ ये काफी नहीं रहता कि मैं कितना कर सकता हूँ, बल्कि ये भी देखना पड़ता है मेरे साथ मौजूद लोग कितना कर सकते हैं। मेरे पीछे कोई बूढ़ा तो नहीं, कोई बीमार तो नहीं, कोई छोटा बच्चा तो नहीं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जमात की नमाज के हवाले से हमें यही अजीम अखलाक सिखाया है। ओवरऑल हर इज्तिमाई अमल में इस बात का ख्याल रखना जरूरी है कि अपनी ताकत को सबकी ताकत न समझिए। अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब तुम में से कोई लोगों को नमाज पढ़ाए तो उसे चाहिए कि नमाज में तख़फीफ करे, क्योंकि उनमें छोटे भी होते हैं, बड़े भी, कमज़ोर भी और बीमार भी, और जब वो अकेला नमाज पढ़े तो जिस तरह चाहे पढ़े। फलयुसल्ली कैफ शाअ। समझ के हम यहाँ सुन्नत का एक बहुत खूबसूरत पहलू सामने आता है कि इबादत जितनी अजीम है, उस अजीम इबादत के अंदर भी इंसानों की हालत को नज़रअंदाज नहीं किया गया। ये नहीं कहा गया कि जो पीछे खड़ा है उसे हर हाल में बर्दाश्त करना होगा, बल्कि इमाम से कहा गया तुम उनका ख्याल रखो। ये नबवी

0: Wake up! हर हफ्ते संडे टू थर्सडे सुबह 6 बजे से सिर्फ FM 107 पर दिल से देसी।
1: दोस्तों, टनल से गुजरने के दौरान महफूज ड्राइविंग के लिए जरूरी है कि ट्रैफिक कानून की सख्ती से पाबंदी की जाए। अंदर दाखिल होने से पहले चाहे दिन का वक्त ही क्यों ना हो, अपनी हेडलाइट्स जरूर ऑन करें और तमाम ट्रैफिक साइंस पर खास तवज्जो दें। एंट्रेंस के करीब पहुंचते ही अपनी रफ्तार कम करें और मुकर्ररा हद की पाबंदी करें। सुरंग या टनल्स के अंदर अपनी लेन में रहें, राइट साइड पर ओवरटेक करने से गुरेज करें और अपने से आगे चलने वाली गाड़ी से हमेशा मुनासिब फासला बरकरार रखें। वजारत दाखिला का कहना है कि टनल्स या सुरंगों के अंदर ट्रैफिक कानून की पाबंदी न सिर्फ आपकी बल्कि सड़क पर मौजूद हर शख्स की हिफाजत को यकीनी बनाती है। FM 107 आपकी और आपकी फैमिलीज की हिफाजत की ख्वाहिश करता है।
2: Anytime, anywhere.
3: कभी भी और कहीं भी आप सुन सकते हैं FM 107। Log into our website urduradio.qa और डाउनलोड the app QMC now।

0: बस मेरे लिए।
1: Qatar's most heard radio station, FM 107. FM 107. Dil se desi.

दीवारों से कमर लगी हैं, आंखें हैं दरवाजों पर, आज भी चौंक उठता हूं हाफी मैं तेरी आवाजों पर, तुझको कोई और ना चाहे दुआ करूंगा, रो पड़ूंगा।

0: का पहला देसी रेडियो स्टेशन FM 107, दिल से देसी।
1: अस्सलाम वालेकुम, आप सुन रहे हैं कल्चर मोमेंट। मैं हूं आपकी आरजे महावश। इस 5 मिनट के सफर में हम बात करेंगे कतर की खूबसूरत सकाफत, रिवायत और विरसे की। यहाँ हर रसम, हर लिबास, हर खाने और हर मेहमान नवाजी के पीछे एक प्यारी सी कहानी होती है। आइए मिलकर कतर की सकाफत को समझें, महसूस करें और इस विरसे को अगली नस्लों तक पहुँचाने का अहद करें। कतर की सकाफत में दस्तकारी को बहुत अहमियत हासिल है। ये हुनर सिर्फ खूबसूरत अशिया तैयार करने का जरिया नहीं, बल्कि मेहनत, सबर, तसव्वुर और रिवायत को जिंदा रखने का तरीका भी है। कतरी दस्तकारी में ऐसी चीजें शामिल हैं जो रोजमर्रा जिंदगी, घर की जरूरियात और खास मौकों से जुड़ी हुई हैं। पुराने वक्त में घर की बहुत सी अशिया हाथ से तैयार की जाती थी। लोग अपनी जरूरत के मुताबिक कपड़ों, बर्तनों, टोकरियों और दूसरी चीजों पर काम करते थे। ये हुनर घरों और खानदानों में सीखे और सिखाए जाते थे। इसी तरह दस्तकारी का इल्म एक नस्ल से दूसरी नस्ल तक मुंतकिल होता रहा। कतर की मशहूर रिवायती दस्तकारियों में सद्दू बुनाई का खास तौर पर नाम लिया जाता है। सद्दू में रंगीन धागों और मुख्तलिफ नक्शों की मदद से कपड़ा तैयार किया जाता है। ये बुनाई पहले जरूरी अशिया बनाने के लिए भी इस्तेमाल होती थी। आज ये कतरी वर्से और हुनरमंदी की खूबसूरत अलामत समझी जाती है। सद्दू बुनाई के लिए सबर और बहुत तवज्जो दरकार होती है। हुनरमंद एक एक धागे को तरतीब के साथ बुनकर कपड़े पर नक्श बनाता है। रंगों का इंतखाब और नक्शों की तरतीब इस काम को दिलचस्प बनाती है। रिवायती सद्दू नक्शों में अक्सर कुदरत, सहराई

0: जिंदगी और रोजमर्रा के तजुर्बात की झलक मिल सकती है। इन नक्शों की अहमियत सिर्फ जाहिरी खूबसूरती में नहीं बल्कि उस हुनर के साथ जुड़ी यादों और कहानियों में भी होती है। सदों का काम अक्सर घरों में मिलजुल कर किया जाता था। खवातीन एक साथ बैठकर बुनाई करती थीं और इसी दौरान गुफ्तगू, कहानियां और तजुर्बे भी शेयर होते थे। इसी तरह दस्तकारी एक समाजी राब्ते का जरिया भी बन जाती थी। इस हुनर में इस्तेमाल होने वाले रंग और धागे मशहूर तौर पर सहराई माहौल से मुतासिर होते थे। काला, सफेद, सुर्ख और पीला जैसे रंग अक्सर दिखाई जाते हैं। हर रंग और नक्श को लोग अपनी पसंद और दस्तकारी के अंदाज के मुताबिक तरतीब देते हैं। सदियों से बनने वाली अशिया में रिवायती कपड़े, सजावटी चीजें, कुशन, चादरें और दूसरी अशिया शामिल हो सकती हैं। आज के दौर में उन्हें घर की सजावट और सकाफती पेशकश के तौर पर भी पसंद किया जाता है। दस्तकारी की दूसरी किस्मों में खजूर के पत्तों से बुनाई भी शामिल है। खजूर के पत्तों को इस्तेमाल करके टोकरियां, चटाइयां और घर में काम आने वाली मुख्तलिफ अशिया तैयार की जाती थी। इस हुनर में फितरी वसाइल को मेहनत और हुनरमंदी के साथ मुफीद चीजों में तब्दील किया जाता। दस्तकारी का असल हुसन सादगी में होता है। हाथ से तैयार की गई चीजों में हुनरमंदी का वक्त, मेहनत और तवज्जो नजर आती है। हर चीज बिल्कुल एक जैसी नहीं होती, इसलिए हाथ की बनी अशिया में एक खास अपनायत महसूस होती है। आज कतर में सकाफती मरकज, वर्षे के प्रोग्राम और नुमाइशी दस्तकारी को लोगों तक पहुंचाने में अहम किरदार अदा करते हैं। यहाँ लोग रिवायती हुनर को देख सकते हैं, हुनरमंदों से बात कर सकते हैं और इस काम की बारीकियां समझ सकते हैं। नई नस्ल को दस्तकारी सिखाना बहुत जरूरी है क्योंकि किसी भी हुनर की हिफाजत सिर्फ उसे देखने से नहीं होती बल्कि उसे सीखने, अमल में लाने और इसको आगे पहुंचाने में होती है। जदीद डिजाइन के साथ रिवायती दस्तकारी को भी नया अंदाज दिया जा रहा है। पुराने नक्श और हुनर को नए घरों और एक्सेसरीज, सजावटी अशिया में शामिल करके लोग वर्षे को आज की जिंदगी से जोड़ रहे हैं। इससे साबित होता है कि रिवायत वक्त के साथ खूबसूरती के साथ आगे बढ़ सकती है। दस्तकारी हमें मेहनत और सब्र का दर्स देती है। एक खूबसूरत चीज चंद लम्हों में तैयार नहीं होती, इसके पीछे मंसूबा बंदी, तवज्जो और मुसलसल कोशिश होती है। कतरी दस्तकारी किसी एक चीज का नाम नहीं, ये उन तमाम लोगों के हुनर की पहचान है जो लोगों की जिंदगी, यादों और वर्षे से जुड़े होते हैं। तो लिस्टनर्स, आज के कल्चर मोमेंट को यही मुकम्मल करते हैं। याद रखिए, सकाफत सिर्फ गुजरे हुए वक्त का नाम नहीं बल्कि हमारी रोजमर्रा जिंदगी का खूबसूरत हिस्सा है। मैं हूँ आपकी आरजे महाविश। अगली मुलाकात तक अपना ख्याल रखिए और कतर की खूबसूरत सकाफत को हमेशा इज्जत और मोहब्बत के साथ याद रखिए। अल्लाह हाफिज।
1: आप सुन रहे हैं FM 107,
2: दिल से देसी।

0: पहला देसी रेडियो स्टेशन FM 107, दिल से देसी।
1: कतर नेशनल हेल्थ स्ट्रेटेजी, हेल्थ फॉर ऑल। सुनिए डॉक्टर फौजिया शफीक के साथ FM 107, दिल से देसी।
2: अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह, हेल्थ फॉर ऑल में खुश आमदीद। सर्दियाँ आती हैं तो मौसम भी बहुत अच्छा लगता है और ख़ास तौर पर हमें, मगर उसके साथ साथ कुछ मसले भी हो जाते हैं, जैसे हमारी स्किन है वो ड्राई हो जाती है, हमारे जॉइंट्स जो हैं वो भी हार्ड महसूस होते हैं, और फिर सांस की कुछ बीमारियाँ जो हैं वो भी ज़्यादा हो जाती हैं। तो इसमें हमारी जो स्किन है उसे ड्राइनेस से बचाने के लिए हमें मॉइस्चराइजर्स जो हैं वो यूज़ करने हैं, और जो गर्म पानी है यानी उसे आप अपनी बाथिंग में कम से कम इस्तेमाल कीजिए, और विटामिन ई जो है वो आप शामिल कर लीजिए अपनी ग़िज़ा में। पानी कम ना कीजिए, सर्दी का मौसम शुरू होता है तो हमें प्यास इतनी ज़्यादा महसूस नहीं होती, मगर आपने 7 से 8 ग्लास पानी ज़रूर पीना है। इसी तरह जो लिप बाम है या जो हैंड क्रीम्स हैं वो आप इस्तेमाल कीजिए। जो जॉइंट्स जैसे कि वो हार्ड हो जाते हैं तो उसके लिए आप स्ट्रेचिंग कीजिए, हल्की वॉक कीजिए, गर्म कपड़े आप इस्तेमाल कीजिए, और ओमेगा 3 फूड्स जो हैं वो अपनी ग़िज़ा में शामिल कर लीजिए। और जिस तरह के सांस की कुछ बीमारियां जो हैं, कुछ मसाइल जो हैं वो सामने आते हैं, तो आप ह्यूमिडिफायर इस्तेमाल कीजिए और नाक को भी मॉइस्चराइज कीजिए। अस्थमा पेशेंट जो हैं उन्हें जो इन्हेलर दिए गए हैं वो हर वक्त अपने पास रखें। इसी तरह कोई धुआं है या बहुत ज़्यादा सर्द हवा है तो उसे भी अवॉइड कीजिए। सीजनल फूड्स जो हैं उसमें सूप्स, एग्स आप अपनी ग़िज़ा में शामिल कीजिए, ड्राई फ्रूट्स हैं, हनी है उसका इस्तेमाल ज़्यादा कर दीजिए, और हल्दी का दूध जो है वो आप शामिल कीजिए अपनी ग़िज़ा में। तो आप देखेंगे कि बहुत सी छोटी छोटी मेजर्स अपनाकर हम ये सर्दियां जो हैं बहुत ही आराम से सेहतमंद तरीके से गुजार सकेंगे, और सर्दियों को महफूज बनाने के लिए रोज़ाना चंद मिनट की जो देखभाल है वो बहुत अच्छी है और काफ़ी है हमारे लिए। हेल्थ फॉर ऑल,
1: कतर नेशनल हेल्थ स्ट्रेटेजी, हेल्थ फॉर ऑल। FM 107, दिल से देसी।
3: आप सुन रहे हैं FM 107,
0: दिल से देसी।

0: तो क्या तू फिर भी जान है मेरी।
1: FM 107 पर हर गाना हिट,
2: हर गाना हिट,
1: हर दूसरा गाना सुपर हिट।

0: का पहला देसी रेडियो स्टेशन FM 107, दिल से देसी।
1: हेलो एंड वेलकम टू अवर सेगमेंट कॉल्ड स्मार्ट मनी। मैं हूं आपकी दोस्त, आपकी होस्ट नासिया। आज के सेगमेंट में दोस्तों मैं बात करने वाली हूँ कि जेन जी जो है वो किस तरह से डिफरेंटली इन्वेस्ट कर रहे हैं। वेल, हर जनरेशन के आप पैसे को लेकर एक अलग परसेप्शन है। हर जनरेशन के पैसे को देखने का अपना एक अलग तरीका भी है। आज के दौर में सबसे ज्यादा डिस्कस होने वाली दो जनरेशन, मिलेनियल एंड जेन जी। मिलेनियल्स वो लोग हैं जो लगभग 1981 से 1996 के दरमियान पैदा हुए, जबकि जेन जी वो जनरेशन है जो उनके बाद आई है। देखिए, दोनों जनरेशन्स इन्वेस्टिंग में इंटरेस्टेड हैं, लेकिन उनकी अप्रोच, उनकी प्रायोरिटीज, उनके इन्वेस्टमेंट डिसीजंस एक दूसरे से बिल्कुल अलग। मिलेनियल्स में अपनी जवानी, उस दौर में गुजरे ट्रेडिशनल बैंकिंग, कन्वेंशनल इन्वेस्टमेंट मेथड्स, ये सारी चीज़ें उन्हें डोमिनेट आज भी करती हैं, और इसीलिए उनसे बहुत से लोग जितने भी आपने देखे होंगे वो ज्यादातर म्यूचुअल फंड्स, रिटायरमेंट प्लान्स, फिक्स्ड सेविंग प्लान्स और रियल स्टेट इन्वेस्टमेंट्स को ही प्रेफर करते हैं। उनकी इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी अक्सर लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी और सिक्योरिटी पर फोकस करती है। वहीं देखा जाए दूसरी तरफ जेन जी को, तो ये कम्प्लीटली डिजिटल वर्ल्ड में पली बड़ी जनरेशन है। उन्होंने स्मार्टफोन्स, सोशल मीडिया और ऑनलाइन टेक्नोलॉजी को बचपन से यूज किया है, और शायद इसी वजह से उनका इन्वेस्टिंग का स्टाइल भी ज्यादा डिजिटल।

0: फास्ट पेस्ड होता है देखिए जेंसी के लिए स्मार्टफोन्स एप्स और ऑनलाइन इन्वेस्टमेंट प्लेटफॉर्म्स सब कुछ बड़ा नॉर्मल है वो इन्वेस्टमेंट डिसीजंस लेने के लिए इंटरनेट और सोशल मीडिया पर अवेलेबल इंफॉर्मेशन का बहुत ज्यादा सहारा लेते हैं जेंजी की सबसे खास पहचान ये है कि वो इन्वेस्टिंग को पहले की जनरेशन की तरह कॉम्प्लिकेटेड नहीं समझते आजकल कई इन्वेस्टमेंट एप्स इन्वेस्टिंग प्रोसेस को इतना सिंपल बना चुकी हैं कि यंग इन्वेस्टर्स कुछ ही मिनटों में अकाउंट ओपन कर सकते हैं और इन्वेस्टिंग स्टार्ट कर सकते हैं इस तरह की एक्सेसिबिलिटी ने जेंजी को फाइनेंशियल मार्केट के करीब ला दिया है एक और इम्पोर्टेंट डिफरेंस है इन्फॉर्मेशन के सोर्सेस का मिलेनियल्स अक्सर फाइनेंशियल एडवाइजर्स बैंक या फिर ट्रेडिशनल फाइनेंशियल पब्लिकेशंस पर ही डिपेंड करते हैं वहीं जेंजी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स यूट्यूब चैनल्स पॉडकास्ट ऑनलाइन फाइनेंस इन्फ्लुएंसर्स देखिए जेंजी इन्वेस्टर्स अक्सर फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस और फ्लेक्सिबिलिटी को प्रायोरिटी देते हैं वो सिर्फ रिटायरमेंट की नहीं बल्कि फ्यूचर लाइफस्टाइल, एंटरप्रेन्योरशिप और पर्सनल गोल्स के लिए भी इन्वेस्टिंग करना चाहते हैं देखिए इस जनरेशन के लिए पैसा सिर्फ सिक्योरिटी का सोर्स नहीं बल्कि अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करने का जरिया भी है लेकिन हाँ इन्वेस्टिंग में जल्दी रिजल्ट्स हासिल करने की डिजायर कभी कभी चैलेंजिंग हो जाती है तो बस आखिर में मैं यही कहना चाहूंगी कि जेन ज़ी और मिलेनियल्स दोनों वेल्थ क्रिएट करना चाहते हैं लेकिन उनकी अप्रोच डिफरेंट है मिलेनियल्स ट्रेडिशनल और स्टेबल इन्वेस्टमेंट मेथड्स को प्रेफर करते हैं जबकि जेन ज़ी टेक्नोलॉजी एक्सेसिबिलिटी और डिजिटल प्लेटफॉर्म्स को इम्पोर्टेंस देती है वेल इसके बावजूद एक चीज जो दोनों जनरेशंस में कॉमन है वो बताऊं क्या है वो है फाइनेंशियल सक्सेस का राज और ये राज नॉलेज डिसिप्लिन और लॉन्ग टर्म थिंकिंग में छुपा है वेल आज की जनरेशन के पास इंफॉर्मेशन और टूल्स पहले से ज्यादा है अगर वो फाइनेंशियल लिटरेसी को इम्प्रूव करें सोशल मीडिया इन्फॉर्मेशन को क्रिटिकली इवैल्यूएट करें और पेशेंस के साथ इन्वेस्टिंग कंटिन्यू रखें तो वो अपने फाइनेंशियल गोल्स अचीव कर सकते हैं आखिर में यही कहूंगी कि इन्वेस्टिंग का सबसे इम्पोर्टेंट लेसन ये है कि वेल्थ जल्दी नहीं बनती लेकिन स्मार्ट डिसीजंस और कॉन्स्टेंट हैबिट से जरूर बनती है तो चलिए आज के लिए बस इतना ही मुझे यानी नाज़िया और शकीब अहमद हम दोनों को इजाजत दीजिए Victor Suntory FM 107, Dil Se Desi.
1: Smart money. Aap sun rahe hain FM 107.
2: Dil Se Desi.

0: आपने सुना हमें ऑन एयर, नाउ फॉलो अस ऑन फेसबुक एंड इंस्टाग्राम एट FM 107 कतर। दिल से देसी।
1: सेहत की बात हो तो एतमाद चाहिए माहिरीन की राय पर। माहिरीन की राय पर लीजिए, हाजिर है आपके लिए प्रोग्राम हेल्थ गाइड। हेल्थ गाइड, जहां आपके सवालात के मिलेंगे मुस्तनद जवाबात। स्पेशलिस्ट और कंसल्टेंट डॉक्टर्स करेंगे रहनुमाई, बीमारियों की पहचान से लेकर इलाज और एहतियात तक। इलाज और एहतियात तक सुनिए हर वेंसडे बुध की रात 8 बजे हेल्थ गाइड डॉक्टर फौजिया शफीक के साथ, ओनली ऑन FM 107। दिल से देसी। दिल से देसी, याद रखिए सेहत ही है सबसे बड़ी दौलत।
2: स्विमिंग पूल सेफ्टी मेजर्स पर अमल करना डूबने के हादसात से महफूज रखता है और खास तौर पर बच्चों की जिंदगियों की हिफाजत करता है। अपने घर के स्विमिंग पूल का माहौल महफूज बनाना नेहायत जरूरी है ताकि बच्चे महफूज रहें और डूबने का खतरा कम हो। सबसे पहला कदम यह है कि पूल के इर्द गिर्द मजबूत और सिक्योर फेंस लगाएं, और ये फेंस ऐसी हों कि बच्चे उसे आसानी से पार न कर सकें, और हर एंट्रेंस हमेशा ठीक से बंद कीजिए। कभी भी बच्चों को पूल के आसपास अकेला मत छोड़िए, उन पर हमेशा नजर रखें, खास तौर पर जब वो पानी के करीब हों। फ्लोटेशन और रेस्क्यू डिवाइसेस जैसे कि लाइफ जैकेट्स, फ्लोटिंग रिंग्स और रेस्क्यू हुक्स हमेशा पास रखें ताकि इमरजेंसी में उनको फौरन इस्तेमाल किया जा सके। पूल के इर्द गिर्द नॉन स्लिप फ्लोरिंग लगाना भी बहुत जरूरी है ताकि फिसलने से बचा जा सके और गीली सतह पर भी ग्रिप बरकरार रहे। बच्चों को स्विमिंग और वाटर सेफ्टी के बारे में जरूर तालीम दें ताकि वो खुद भी अपनी हिफाजत कर सके। पूल के पानी को रेगुलर सफाई और प्रॉपर केमिकल ट्रीटमेंट के जरिए साफ और सेफ रखें ताकि इन्फेक्शन और दूसरी बीमारियों से बचा जा सके। इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस को पूल के करीब इस्तेमाल करते वक्त एहतियात करें और उन्हें पानी से दूर रखें ताकि किसी भी इलेक्ट्रिकल हादसे से बचा जा सके। इमरजेंसी के लिए फर्स्ट एड किट और फोन को पूल के पास रखना बहुत जरूरी है ताकि जरूरत पड़ने पर फौरन मदद हासिल की जा सके। छोटे बच्चों के लिए प्रोफेशनल स्विमिंग इंस्ट्रक्टर से ट्रेनिंग लेना एक बेहतरीन और महफूज ऑप्शन होता है। पूल के आसपास सफाई का ख्याल रखें और ऐसी कोई चीज वहां ना छोड़ें जो किसी के फिसलने या गिरने का सबब बन सकती हो। मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर का कहना है कि बच्चों की सेफ्टी हमारी सबसे पहली तरजीह होनी चाहिए। इन तमाम एहतियाती तदाबीर पर अमल करके हम अपने बच्चों को खतरों से महफूज रख सकते हैं और उन्हें एक सेहतमंद और खुशगवार जिंदगी दे सकते हैं। FM 107 आपकी और आपकी फैमिली की हिफाजत की ख्वाहिश करता है।
0: हफ्ते के सबसे बेहतरीन दिन में जब सूरज जुमे की पुरकशिश रूहानी किरणें बिखेरने लगता है, ये दिन हमारे लिए खुशियाँ मनाने, बच्चों की तरबियत करने और घर की बुनियाद को मजबूत करने का एक बेहतरीन मौका फराहम करता है। फिर जब सूरज की किरणें ढलती हैं और शाम का वक्त करीब आता है तो कबूलियत की घड़ी दस्तक देती है, इस यकीन के साथ कि हर जवाल के बाद नया सवेरा जन्म लेता है। आइए जुमे की रूहानी, खानदानी और समाजी पहलुओं पर तबादला ख्याल करें। तलहा अशरफुज़्ज़मान के साथ जुड़िए प्रोग्राम जुमा रिफ्लेक्शंस में हर जुमा सुबह 10 बजे से 11 बजे तक, ओनली ऑन FM 107। दिल से देसी।

0: FM 107 से अब पेश खिदमत है तिलावत कलाम पाक। मतलूआ आयात का उर्दू तर्जुमा तिलावत के फौरन बाद पेश किया जाएगा।
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم

देखो हमने कभी किसी बस्ती को इसके बगैर हलाक नहीं किया कि उसके लिए खबरदार करने वाले हक़े नसीहत अदा करने को मौजूद थे और हम जालिम न थे। इस किताब मुबीन को शयातीन लेकर नहीं उतरे हैं, न ये काम उनको सजता है और न वो ऐसा कर ही सकते हैं। वो तो इसकी समाअत तक से दूर रखे गए हैं। बस ऐ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह के साथ किसी दूसरे माबूद को न पुकारो वरना तुम भी सजा पाने वालों में शामिल हो जाओगे। अपने करीब तरीन रिश्तेदारों को डराओ और ईमान लाने वालों में से जो लोग तुम्हारी पैरवी इख्तियार करें उनके साथ तवाज़ो से पेश आओ। लेकिन अगर वो तुम्हारी नाफरमानी करें तो उनसे कह दो कि जो कुछ तुम करते हो उससे मैं बरी उतिम्मा हूं, और उस जबरदस्त और रहीम पर तवक्कुल करो जो तुम्हें उस वक्त देख रहा होता है जब तुम उठते हो, और सजदा गुजार लोगों में तुम्हारी नकलो हरकत पर निगाह रखता है। वो सब कुछ सुनने और जानने वाला है। लोगों, क्या मैं तुम्हें बताऊं कि शयातीन किस पर उतरा करते हैं? वो हर जालसाज बदकार पर उतरा करते हैं। सुनी सुनाई बातें कानों में फूंकते हैं और उनमें से अक्सर झूठे होते हैं। रहे शुआरा तो उनके पीछे बहके हुए लोग चला करते हैं। क्या तुम देखते नहीं हो कि वो हर वादी में भटकते हैं और ऐसी बातें कहते हैं जो करते नहीं हैं, बजुज उन लोगों के जो ईमान लाए और जिन्होंने नेक अमल किए और अल्लाह को कसरत से याद किया, और जब उन पर जुल्म किया गया तो सिर्फ बदला ले लिया। और जुल्म करने वालों को अनकरीब मालूम हो जाएगा कि वो किस अंजाम से दोचार होते हैं।